0: تو آواز دا سفر دل سے دل تک.
1: याद रखें, अगर आप किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस में चार्ज हो गए हैं या आपको कोई भी फैमिली लॉ का मसला है, जैसे कि प्रॉपर्टी डिवीजन, स्पाउसल सपोर्ट, चाइल्ड कस्टडी एंड एक्सेस, या आपका कोई सिविल लिटिगेशन का मामला है, कम्युनिटी के जाने पहचाने और तजुर्बेकार लॉयर ताहिर मजीद से राब्ता कीजिए 6478384773. कानूनी मामलात के लिए उनसे राब्ता कीजिए जो कानून को मुकम्मल तौर पर जानते हैं. फॉर ऑल योर लीगल मैटर्स कॉल ताहिर मजीद 6478384773. बारबेक्यू टुनाइट की दूसरी लोकेशन 5165 डिक्सी रोड, डिक्सी और एमको का इंटरसेक्शन मिसिसागा में. 200 से ज्यादा लोगों की गुंजाइश, बड़ी पार्टीज भी आप अरेंज कर सकते हैं. बारबेक्यू आइटम्स, बिहारी कबाब, सीख कबाब, कड़ाही, बिरयानी, ताजा नान और बेशुमार डिशेज. जायका वही और खूबसूरत सेकंड लोकेशन. पार्टीज की बुकिंग या मालूमात के लिए कॉल कीजिए 9052829868. बारबेक्यू टुनाइट की सेकंड लोकेशन 5165 डिक्सी रोड, डिक्सी और एमको का इंटरसेक्शन मिसिसागा में 9052829868. पाकिस्तान के नंबर वन डेवलपर HMR ग्रुप आपके लिए ला रहे हैं कराची में HMR वाटर फ्रंट. इस प्रोजेक्ट के हवाले से एक्सक्लूसिव इवनिंग संडे 7 जून शाम 5 से 9 बजे तक हिल्टन गार्डन इंक 1870 मैथिसन बुलेवार्ड मिसिसागा में. इस लग्जरी वाटर फ्रंट लिविंग की डिटेल के लिए कराची से HMR की टीम यहां तशरीफ ला रही है. लेट्स कनेक्ट, इनोवेट एंड शेप प्रॉस्परस फ्यूचर टुगेदर. आपको इस एक्सक्लूसिव मीट एंड ग्रीट में शिरकत की दावत दी जाती है. रजिस्ट्रेशन के लिए HMRwaterfrontcanada.com पे लॉगिन हो या मजीद मालूमात के लिए कॉल कीजिए नजमा मलिक 6478241485 या फरहान अफसार 6479190645. कनाडा में आए हर खानदान का ख्वाब होता है कि उनका एक अपना प्यारा सा घर हो या कारोबार हो, लेकिन मॉर्गेज के बढ़ते रेट्स और घरों की बढ़ती कीमतें अगर आपके ख्वाब को पूरा नहीं होने दे रही तो रॉयल फाइनेंशियल ग्रुप के शिराज हुसैन से राब्ता कीजिए. शिराज हुसैन और उनकी टीम 100 से ज्यादा लेंडर्स के साथ काम करते हैं. इनकी इंतहाई प्रोफेशनल टीम अपनी सर्विसेज में एक्सपर्ट हैं. मॉर्गेज चाहे घर की हो या कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, प्राइवेट, या आपको चाहिए इक्विटी लाइन ऑफ लोन, पर्सनल लोन या बिजनेस लोन, 100% गारंटीड अप्रूवल. कॉल शिराज हुसैन 6472714147. लोग तो मॉर्गेज का वादा करते हैं, लेकिन हम आपसे किया हुआ वादा पूरा करते हैं. कॉल शिराज हुसैन 6472714147. डॉक्टर फयाज अहमद कुरैशी एंड एसोसिएट्स, अब मिसिसागा के बाद स्कारब्रोम में 2155 लॉरेंस एवेन्यू ईस्ट, लॉरेंस और ब्रिजमाउंट का इंटरसेक्शन, 4167579999. दांतों की कोई भी बीमारी हो, आप एतमाद के साथ डॉक्टर फयाज अहमद कुरैशी और उनकी तजुर्बाकार टीम की प्रोफेशनल सर्विसेज का फायदा उठाइए. तमाम इंश्योरेंस प्लान एक्सेप्ट करते हैं. इंश्योरेंस ना रखने वालों के लिए स्पेशल डिस्काउंट. रूट कैनाल ट्रीटमेंट और रीट ट्रीटमेंट के स्पेशलिस्ट हैं. मिसिसागा लोकेशन 1110 ब्लूर स्ट्रीट ईस्ट, ब्लूर और डिक्सी के इंटरसेक्शन 9052325678. अलकरम ज्वेलर्स, अगर आपको दुबई और मिडिल ईस्ट जैसे जेवरात की तलाश है तो अब आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं. आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे के स्टोर पर तशरीफ लाइए. अलकरम ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के बेहतरीन सेट्स. शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर पर मौजूद मिलेंगे. आज ही विजिट कीजिए अलकरम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा. 9058280009. It's 9058280009. You log in ho alkaramjewelers.ca. Alkaram Jewelers, farmaish aapki, guarantee hamari. बटकड़ाही की पिकरिंग लोकेशन में आपके लिए 6 जून से हलवा पूरी का स्पेशल नाश्ता, ऐसा जायका जो आपने पहले कभी चखा ही ना हो. इसके अलावा बटकड़ाही की रिवायती कड़ाही, गोट पाए, निहारी, खोए वाले चने, स्मोकी कीमा, बटर और सेसमी नान, लस्सी और बेशुमार आइटम्स. केटरिंग के लिए स्मॉल और लार्ज ट्रेज अवेलेबल हैं, जिसमें आपके पसंद की बेशुमार डिशेज. रेस्टोरेंट के साथ 150 लोगों तक की पार्टी के लिए बैंक्वेट हॉल, जिसमें मेहंदी, बर्थडे, वेडिंग, फैमिली या कॉर्पोरेट इवेंट्स अरेंज किए जा सकते हैं. बुकिंग के लिए अभी कॉल कर लें बटकड़ाही 820 किंगस्टन रोड पिकरिंग, 9058390002. बटकड़ाही, जहां 6 जून से हलवा पूरी का स्पेशल नाश्ता. अपने

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: विशाल त्रिवेदी, वही जाना पहचाना नाम, लाइफ इंश्योरेंस पोर्टफोलियो स्पेशलिस्ट। अब विशाल से ही लीजिए गारंटीड कैश वैल्यू लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, इनकम रिप्लेसमेंट इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, विजिटर्स टू कनाडा इंश्योरेंस। कंपेयर विद विशाल एंड गेट द बेस्ट पॉसिबल डिस्काउंट्स ऑन विजिटर्स एंड सुपर वीजा इंश्योरेंस। कॉल विशाल त्रिवेदी एट 6477679852। दैट्स 6477679852। विशाल त्रिवेदी।
3: Since 1993, MWC food banks have provided individuals and families with non-perishable food, halal meat, and essential household items. Over 10,000 families across Canada rely on MWC food banks to supplement their food requirements. We serve in Scarborough, Mississauga, and in First Nations communities. Charity starts at home. Please donate generously to Muslim Welfare Canada. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.
4: Sirf mortgages. That's Rajiv Talwar, the mortgage superstar. Mortgage residential, low ya commercial, for customized mortgage solutions, choose Rajiv Talwar. Mushkil se mushkil mortgage ho, last minute deal ho, ya phir credit issues ho. Rajiv Talwar ka wasi ilm aur tajurba aapka kaam aasan kar dega. To yaad rakhiye, mortgage unse mat lijiye jo mortgage bhi karte hain, balki mortgage sirf unse lijiye jo mortgage hi karte hain. Call Rajiv Talwar of leading edge mortgage experts, 905-819-1001. 905-819-1001. License number 12374.
5: Bride of Mississauga Barbecue Tonight Restaurant, 35 Dundas Street West, Highway 10 और Dundas के intersection Mississauga में. Barbecue का असली मजा Barbecue Tonight पर. चरगा, लाहौरी fish, चपली कबाब, कड़ाही गोश्त, chicken tikka masala, chicken biryani, सीख कबाब, रेशमी कबाब, chicken boti, chicken tikka, बिहारी कबाब, lamb chops, अफगानी tikka, नेहारी और बहुत कुछ. खूबसूरत कुशादा patio, Barbecue Tonight Restaurant, 905-268-0088. It's 905-268-0088. Or Dundas intersection, Mississauga.
6: The views expressed here during discussions, debates, and other programs are strictly that of the participants and not of the management of Radio Pakistan Toronto and CMR. Similarly, Radio Pakistan Toronto is not liable for any false, misleading messages from our advertisers. An advertiser is solely responsible for claims and litigation that may arise from airing of such ads.
7: प्रोग्राम का ये हिस्सा टीम भट्टी के ताबुन से पेश किया जा रहा है. फॉर ऑल योर रियल एस्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 6472957861 6472957861.
8: Radio Pakistan Toronto, CMR 101.3 FM. Studios mein rabte ke number 416-593-0003. Pakistan se senior journalist Bilal Zaman sahab is waqt hamare sath maujood hua karte hain. Hamara ye talk show aap YouTube par bhi, Facebook par bhi aur TikTok par bhi dekh sakte hain. Radio pe to aap sun hi rahe hain. Khush aamdeed kahenge Bilal sahab. Assalamu alaikum.
9: Ji, wa alaikum assalam.
8: Eid ki gehma ghami jari hai abhi Pakistan mein, to bhai 3 din daba ke Eid manayi jati hai. मतलब सब कुछ उसी तरह से होता है, पहले दिन से कुछ चीज़ें कम हो जाती हैं लेकिन ईद के तौर पे मनाते हैं तीनों दिन.
9: जी बिल्कुल, और ऐसी है, थोड़ा गर्मी का जोर भी ज्यादा है और टेम्परेचर जो है 44-45 डिग्री का टेम्परेचर जो है ना वो कल भी था, आज भी जो है ना वो काफी मतलब ये गर्म गर्म दिन था. तो उसकी वजह से थोड़ा सा है कि दोपहर के टाइम आपको जो है ना खास ऐसी एक्टिविटी जो नजर नहीं आती. कुर्बानी के लिए लोगों को थोड़ा सा मसला भी होता है क्योंकि उसके लिए जगह का थोड़ी खुली जगह बाहर किसी जगह पे गैरेज में या लॉन में कुर्बानी करनी होती है. गर्मी जो है उसकी वजह से सुबह सुबह के टाइम तो लोग थोड़ा सा वो कर रहे हैं, बट मैंने देखा रात के टाइम ज्यादा कुर्बानी हो रही है.
8: अच्छा ठीक. अच्छा ना, 28 मई आज है योम तकबीर के तौर पर मनाया जाता है. 28 साल पहले ही पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे. तो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम खत्ते में अमन और दिफाई तवाजुन की जमानत है. योम तकबीर पर सदर वज़ीर-ए-आज़म ने पैगामात भी दिए हैं. दुश्मन की आज भी नज़रें पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम पर हैं. तो इसको महफूज तसव्वुर किया जा सकता है? ज़ाहिर है एक ऐसा एटॉमिक अगर मुल्क है तो उसकी वजह से एक सिक्योरिटी तो रहती है उसकी.
9: जी बिल्कुल, और पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर जो है ना वो एक महफूज प्रोग्राम जो है ना वो डिजाइन किया है और दुनिया के बेहतरीन प्रोग्राम है जो IAEA जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसने भी पाकिस्तान को मतलब सर्टिफिकेट दिया हुआ है या वो तस्दीक करता है कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो स्टेट ऑफ द आर्ट न्यूक्लियर प्रोग्राम। देखिए न्यूक्लियर प्रोग्राम को दो तीन किस्म के जो है वो थ्रेट्स होते हैं। एक तो आपको होता है कि कोई दहशत गर्द जो है ना मतलब ये कि वो कहीं किसी अहलकार के थ्रू या किसी के थ्रू जो है ना मतलब ये कि उसको एक्सेस ना कर ले, वहां तक ना पहुंच जाए। दूसरा और वो हमने देखा है कि मतलब दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की जो कुर्बानियां या जिस तरीके से पाकिस्तान नंबर नजमा है वो मतलब ये सारी दुनिया के सामने है। दूसरा कि बहुत अवकात एक ऐसा मतलब ये वो प्रोग्राम होता है जो इंटरनेट से मुंसलिक होता है और उसके हैक होने का डर होता है। तो पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो मुकम्मल तौर पर ऑफ ग्रिड है। उसको मतलब एक कंट्रोल करने के लिए एक अलग से सिस्टम, खुद कार सिस्टम जो है ना वो डिजाइन किया गया है जो उसको कंट्रोल करता है। और तीसरा जो है ना मतलब एक स्पेशल जो है ना यूजली ये होता है कि जो फौज है वो कंट्रोल करती है। यहाँ पे स्पेशल प्रोग्राम जो है ना वो डिजाइन किया गया है, एक स्पेशल स्क्वाड है जो इसके जो है ना वो डिजाइन किया गया, किसी को पता नहीं है कि वो कौन है, उसमें कौन कौन है, कौन उसको जो है ना एक्सेस करता है, कहाँ से एक्सेस करता है। तो बाहर मतलब इस हवाले से देखा जाए, हाँ एक थ्रेट ऐसा है जो की सबसे मतलब खतरनाक है, जो मौशी थ्रेट है कि जो हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को जो हम एक मतलब कहते हैं IMF का है, शिकंजा है, या आप आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो जो बैरूनी ताकतें हैं वो पाकिस्तान को इस तरीके से जो है ना, तो ये एक महाज ऐसा है जिसपे हमें जो है ना वो थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत है ताकि कल को ऐसा जो है ना वो मामला ना आए जिसके ऊपर हमें अपने जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े।
8: ठीक, हम लोग के बावजूद ईरान और अमेरिका जंगबंदी के मादे पर मुत्तफिक हो गए हैं। अमरीकी मीडिया है उसकी एक वेबसाइट ने इस दावा किया है, ईरान के पास अपनी मईशत को आज़ाद करने का मौका है, ईरान जितना ज़्यादा देने को तैयार होगा उतना ज़्यादा पाएगा, अमरीकी हुकाम का बयान है। इधर ईरान ने कुवैत पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है जबकि अमरीका ने एक बार फिर ईरान पर भी फिजाई हमले किए हैं। तो क्या हमलों के दरमियान जंगबंदी और माहदा मुमकिन में से है? लगता है ऐसे कि हमले भी हो रहे हैं और साथ साथ जंगबंदी के माहदे में तोसी भी शायद हो जाए।
9: जी जी बिल्कुल, जो है ना जो यही वेबसाइट है इसने दावा किया है कि 60 दिन की जो तौसी है उसके ऊपर मतलब ये कि वो बातचीत चल रही है और डोनाल्ड ट्रंप की जो रजामंदी का इंतजार है। जैसे हमने पहले भी जिक्र किया था कि डोनाल्ड ट्रंप के फोकस जो है वो अपोर्ट तरफ है और उनको इंटरनली भी मैं देख रहा हूँ कि कुछ मामला ऐसे हैं जिसके ऊपर उनके ऊपर बहुत तनकीद हो रही है। उन्होंने इस जंग की आड़ में कुछ मामला ऐसे भी शुरू कर दिए हैं जो कि अब उनको फाइनेंशियल बेनिफिट जो है ना वो पहुंचा रहे हैं और ये चीज जो है वो मीडिया के अंदर तवातुर के साथ रिपोर्ट हो रही है। तो मुझे लगता है कि कुछ जो है ना मतलब मामला उस तरफ भी जो है ना वो हल्के हल्के जा रहे हैं, जिससे वो चाहेंगे कि अब नजरें जो है ना वो हटाई जाए और ये जो है ना मतलब एक मामला ईरान के साथ खत्म हो। लेकिन जारी बात है ईरान भी जो है ना वो गिव अप नहीं करना चाहता इजीली और ये जो हमलों का सिलसिला है ये हमने देखा है कि दो तीन दिन से थोड़ा सा जरा ज्यादा बड़ा है। तो मुझे जो है ना वो जाती तौर पे लगता है कि हाँ मतलब ये कि ऑब्वियसली क्या बोलते हैं उसको कि मतलब मुआहिदा तो बिल्कुल इसके दरमियान मुमकिनात में से है, हो सकता है। लेकिन आपको दुश्मन को जो कि इसराइल है, मैं समझता हूँ अमेरिका का भी दुश्मन है और जो है ना इस्लामी दुनिया का तो वो दुश्मन है ही है, अमेरिका का भी कहते हैं ना कि ऐसे ऐसे दोस्त से तो दुश्मन जो है ना वो बेहतर है कि जो पाकिस्तान, तो वो अमेरिका का भी फायदा नहीं चाहता लेकिन अभी ये बात जो है ना समझ में नहीं आ रही। तो ऐसे मौके उसको फराहम नहीं करना चाहिए कि जिसके जिससे वो फायदा उठा के तो गलत फहमी या जंग को जो है ना वो दोबारा हवा दे सके।
8: और चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज साहब की शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स में मेजर सर्जरी हुई है जिसके बाद वो घर मुंतकिल हो गई हैं। सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब ने ट्वीट के जरिए इसकी इतला दी है। ईद के दिन वजीर अला ने अस्पताल में सूबे में सिक्योरिटी सफाई समेत दीगर उमूर की बरासत निगरानी कह रहे हैं कि उन्होंने की है कि नहीं की, अल्लाह बेहतर जानता है। तो कौन सी सर्जरी हुई ये वाजे नहीं किया गया, तो जैसी सर्जरी बताई जा रही उसके बाद तो उनको कुछ देर आराम करना चाहिए। किस किस्म की सर्जरी को आइडिया है कि क्या हुआ?
9: देखिए आइडिया भी नहीं है और आई डोंट थिंक के मतलब ये कि मेरा अपना जाती ख्याल है कि बहुत मेजर सर्जरी नहीं हुई होगी। लेकिन जारी बात है आपको पता है कि जो सीनियर वजीर हैं या जो उनके करीबी लोग होते हैं वो ऐनी बिलावजह छोटी चीज को भी जो है ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर मेजर सर्जरी के लिए मेजर सिम्टम्स होते हैं।
8: हाँ, मतलब एक दिन पहले ठीक ठाक थी उसके बाद सर्जरी के बाद घर भी चली गई फौरन, तो सारे लोग इस हवाले से बात करते होंगे।
9: मतलब ये और आपने एक्सप्लेन भी करना चाहना मुनासिब भी समझा गया, ऐसे खुदा ना खासा ऐसी कौन सी सर्जरी थी जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते या लोगों को बता नहीं सकते। लोग दुआई करेंगे, मुझे नहीं लगता कि कोई भी जो है इस पर मरियम नवाज बड़ा अच्छा काम कर रही है, उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से लोग बड़े मुतमिन हैं और कोई इस तरह की जो है ना वो आवाजें या कोई मेजर तनकीद है वो सामने नहीं आती। तो ऐसे मौके के ऊपर तो आप ज्यादा कोशिश करते हैं कि उस बात को जो है वो सामने लेकर लोग ज्यादा से ज्यादा उनकी सेहत के लिए दुआ करें, और अगर ऐसी ही मेजर जो है वो सर्जरी थी तो फिर उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि ये
8: तो आराम करना चाहिए था।
9: ईद के दिन भी जो है ना वो मतलब निगरानी देखें, हुकूमतों की तो जिम्मेदारी होती है कि आपके आपके पास टीम ऐसी होनी चाहिए, आपके पास लोग ऐसे होने चाहिए जो आपकी गैर मौजूदगी के अंदर भी मरियम नवाज के दौरे करने नहीं जाती, या मतलब अभी वो रिसेंटली जो है बकू नहीं गई नहीं थी जो है ना वो अज़रबैजान, तो क्या पीछे से जो है ना मतलब वहां से जो है ना वो चलता है ना, मतलब सब चीजें दो तीन दिन अगर चार दिन उनको आराम करना पड़ जाता है तो उनकी टीम है वो काम
8: मतलब एक खबर के बारे में तफसील वैसे बतानी चाहिए थी। चलें ठीक हो गया। अच्छा सर, पाकिस्तान में हर साल कुर्बानी की जानवरों की तादाद में कमी हो रही है, माहिर माशियात फरुख सलीम साहब ने आदद शुमार बताए हैं, पाकिस्तान में 1 करोड़ जानवरों की कुर्बानी की गई थी 2022 में, जो अब 65 लाख तक बकौल उनके पहुंची है, नंबर दुरुस्त हैं और काबिल चैलेंज नहीं है, तो मेजर डिक्लाइन की क्या वजह, महंगाई ही वजह बना सकते हैं या कुछ और वजह भी हो सकती है?
9: नहीं, महंगाई ही जो है ना वो वजह हो सकती है। आप देखिए आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है कि जो है ना वो आम आदमी की जो पॉकेट है वो स्क्वीज होती जा रही है, और एक मैंने देख रहा था कि मतलब थोड़ा सा आप कह रहे मीम या एक मजाया वीडियो बनी हुई थी, 2070 जो है ना वो दिखाया हुआ है और जो जानवरों की कीमतें हैं वो करोड़ों रुपए के अंदर चली गई हैं, वो आप व्यापारियों के साथ जो है बहस कर रहे हैं कि नहीं जी 7 करोड़ का जानवर बहुत महंगा है, और हम ऐसे आहिस्ता आहिस्ता जो प्राइसिस जिस तरफ को जा रही है ये थोड़ा सा जरा उसके ऊपर एक हिट किया हुआ था कि जो है ना वो मैंने पहले भी जिक्र किया था, हर साल ही हम जिक्र करते हैं कि देखिए गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए, जब आप जरा मार्केट की हर चीज को जरा वो कंट्रोल करते हैं तो यहाँ पे भी देखिए दुनिया के अंदर मुझे बाकी जगहों का नहीं पता लेकिन सऊदी अरब के अंदर भी क्योंकि मेरा भाई वहां पे होता है तो वो यही बताता है कि वहां पे प्राइसेस जो है वो हुकूमत मंडियां भी होती हैं, ओपन भी जाके बहस होती है, वहां पे भी ऐसी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप आउट ऑफ द ब्लू या आउट ऑफ द मतलब कि जाके एक एक जानवर का जो है ना आप 2-2 लाख रुपए, एक बकरे का 2-2 लाख रुपए जो है ना वो आप मांग लें, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं समझता हूँ। अच्छा, और एक दफा एक और भी इस दफा जो चीज नोट करने में आई है कि इस दफा मंडी का रेट नहीं टूटा, बुनियादी तौर पे वजह ये है कि जानवर बहुत ज्यादा था, रेट ना टूटने की वजह ये है कि उनको अंदाजा है कि जो गोश्त का रेट है 3000 रुपए किलो गोश्त का रेट है पाकिस्तान के अंदर, तो उनको पता है कि अगर हमारा जानवर नहीं भी बिका तो ये ईद के बाद जो है ना वो गोश्त के लिए तो गोश्त तो लोगों को खाना है और जो है वो बिकता ही है, जानवर जो है ना वो हमारा वैसे भी जो है ना 70-80 हजार रुपए का तो बिक ही जाना है, तो हम क्यों उसको जो है ना वो रेट तोड़ के उसको जो है ना सस्ते दामों जो है ना वो हम यहाँ पे ईद पे बेचें, जो कि पहले नहीं होता था। पहले ये होता था कि गोवे गोश्त का रेट कम होता था और जानवरों की कीमतें ऐसे ही 70-80 लाख रुपए तक लोग मांगते थे, तो फिर ईद के जो है ना पहले दिन दूसरे दिन या चांद रात को रेट जो है वो टूट जाता होता था और बड़े सस्ते भी जानवर आपको जानवर लोगों को मिल जाते होते थे, लेकिन अब वो भी मुमकिन नजर नहीं आता।
8: और वैसे यहाँ भी मतलब $600 तक जो है वो समझें बकरे की जो है प्राइस रही, और मेरे ख्याल यहाँ पे एक और ट्रेंड भी है बिलाल साहब के, यहाँ ऑनलाइन जो कुर्बानी बहुत ज़्यादा हो गई है, अब लोग जो है ऑनलाइन कुर्बानी कर देते हैं, और जहाँ जहाँ लोग क्योंकि यहाँ उसको संभालना उसको बांटना वो सिस्टम बहुत कम है इस किस्म का, तो ज़्यादातर अब आई डोंट नो कि शायद पाकिस्तान में भी इसका रुझान हो तो इस वजह से वो फिक्र इसमें ना
9: आए, यहाँ पे भी ऑनलाइन अब इसका लोगों का रुझान उस तरफ जा रहा है, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे ना
8: तो उसको शायद वो इसमें शामिल ना हुई हो, वो नंबर शामिल ना हो। चले ठीक हो गया। सर जी, इकोनॉमिक पॉलिसी और बिजनेस डेवलपमेंट थिंक टैंक ने शेडो बजट पेश किया है, बरामदात $80 अरब तक बढ़ाने, दिफाई बजट में 35% इजाफा की तजावीज़ हैं, कहना आसान पर करना मुश्किल, या फिर काबिल अमल तजावीज़ पेश की गई, मुमकिन है ये जो तजावीज़ पेश की गई?
9: देखिए जो ये शेडो बजट मुख्तलिफ सियासी जमातें जो है वो भी देंगी, MQM भी दे देगी और पेपर पाकिस्तान तरीके साहब भी अपना बजट बना के दे देगी, तो जब वाइट पेपर जो है ना वो जारी कर दिया जाता है बजट के बाद जारी कर दिया जाता है कि जो हुकूमत को तो पता ही नहीं है, हमसे पूछें कि बजट जो है वो कैसे बनता है। देखिए हवाई बातें और होती हैं, प्रैक्टिकल बातें और होती हैं, जब आप वो कहते हैं ना कि जो है ना द ग्रास इज ग्रीनर ऑन दी जो है अदर साइड, जब आप बाहर से बैठ के जरा चीजों को देख रहे होते हैं तो आपके लिए मैनेज करना सोचना, अच्छा आप देखिए $80 अरब तक मतलब चले जो $32 अरब तक जो है ना वो हमारी इतनी खींच थ्रू के और ये गैस के और बिजली के मसाइल के बावजूद भी जो हमारी एक्सपोर्ट्स जो है ना वो गई है 32 पे कह लें $35 अरब पे जो है ना वो गई है, आप उसको 40 कर दें 45 कर दें 50 कर लें, आपने उसको सीधे जो है ना वो $80 अरब पे लेकर जाने के लिए आपको कम से कम 10 साल की प्लानिंग चाहिए, उसके लिए आपको सस्ती बिजली चाहिए, सस्ती लेबर चाहिए और बहुत सारे फैक्टर्स उसके अंदर जो है ना इंक्लूड होंगे। फिर ये जो पॉलिसी रेट है कि जी पॉलिसी रेट गिरा के जो है ना वो आप सिंगल फिगर के अंदर ले आए, ओवरनाइट नहीं हो सकता। फिर आप जो है ना वो सैलरी क्लास की आपकी आपने बहुत ज्यादा, हाँ ये कुछ चीजों से मैं एग्री करता हूँ कि सैलरी क्लास के ऊपर और कुछ जगह ऐसी हैं जैसे पेट्रोलियम लेवी है, दूसरी जगह यहाँ पे हुकूमत ने इजी इनकम के लिए जो है बहुत ज्यादा टैक्सेशन की हुई है और जहाँ पे हुकूमत को टैक्स लगाना चाहिए कारोबारी तबका है, फिर जो है ना वो ये है एग्रीकल्चर है और दूसरी जगह है वहाँ पे हुकूमत जो है ना वो अवॉइड करती है। कुछ जगह ऐसी जहाँ पे हुकूमत के अपने जाती इंटरेस्ट है, कुछ ऐसे लोग हैं जो खुद हुकूमतों के अंदर बैठे हुए हैं वो टैक्स नहीं लगने देते, कुछ जगह पे माफियाज हैं वो टैक्स नहीं लगने देते। तो उस तरफ फोकस जो है ना वो होना चाहिए बजाय इसके इजी इनकम जिसके जेब में हाथ डाल जाना वो जा सकता है डाला जा सकता है वहां से घूमत जाती है जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है वो निकाल लो।
8: वेल चले कॉल ले लेंगे स्टूडेंट्स में रابطے के नंबर 416-593-0003 फर्स्ट कॉलर हैं 7997 7997 जिस तरह पौने ने बात कीजिए।
10: कैसे हैं आप?
8: जी बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं खैरी से हैं?
10: बस मैं बहुत ठीक हूं, ईद मुबारक हो
8: आपको आपको भी और कुछ गैर हाजिरी है आपकी?
10: जी ठीक है। अभी मेरा सवाल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए ट्रंप साहब अब वाकई अगर इन्होंने कर दिया आजमा हरमक पे किसी का राइट नहीं है और इस पे पाकिस्तान का मौकफ तो अभी तक हमें समझ में नहीं आया। ये हमारे हजरात जा रहे हैं आ रहे हैं मिल रहे हो, भाई बताए पाकिस्तान को पाकिस्तान का मौकफ क्या है? क्या पाकिस्तान चाहता है कि आजमा हरमक पे ईरान का कंट्रोल और ओमान का कंट्रोल हो या नहीं चाहता? क्योंकि ट्रंप साहब ने तो साफ कहा है किसी का कंट्रोल नहीं, किसी का कंट्रोल होना नहीं चाहिए। अगर ये हमने कंट्रोल दे दिया
8: इस जंग से पहले, जंग से पहले किसका कंट्रोल था?
10: किसी का नहीं था,
8: ईरान का था ना तकरीबन?
10: नहीं ना, नहीं था।
8: अच्छा
10: नहीं था,
8: ठीक
10: है। क्या ईरान
8: तो फिर अगर नहीं था तो अगर नहीं था तभी फिर सही है, जैसे पहले था वैसे हो जाएगा
10: पहले, क्योंकि वो इंटरनेशनल वाटर है। और दूसरी बात एक और समझ जाए,
8: जी जी,
10: हम ईरान की फेवर करें, हम उनके गलों में हार डालें, उनको जो कुछ करें, आपको पता है अगर ये आजमा हरमक पे चुंगी देनी पड़ जाती है तो हमारा गरीब ही पिसेगा और ये हमारे लोग जो ऊपर बैठे हुए हैं ये इससे भी पैसे बना लेंगे। समझ रहे हैं ना बात ये है। और दूसरी आप जो ये 80 अरब की बात कर रहे हैं इनसे सवाल कोई क्यों नहीं? ये जर्नलिस्ट जो है बिलाल साहब भी माशाल्लाह जर्नलिस्ट है और मुझे समझ आता है कि पाकिस्तान में बहुत सारे पे आप सवाल ही नहीं कर सकते हैं, वहां का माहौल ही ऐसा है।
8: सही।
10: ये इनसे कोई पूछे कि 80 अरब का बजट आपने बनाया कैसे है और वहां पैसे कहां से लाओगे? चलिए समझाओ।
8: ठीक सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। चौधरी अकरम साहब आप ऑन एयर सर, 5794 आप ऑन एयर सर, बात कीजिए। 5794 साहब,
11: बट्टी साहब ये देखे ये जो ईरान और अमेरिका की जंग है ये बस लड़ाइयां भी हो रही हैं, हमले भी हो रही हैं और बस बीच में दोनों थके हुए भी हैं, मामला तो सेटल भी करना चाहते हैं, तो ये ऊंट किस तरफ चलेगा अभी वाकई कोई पता नहीं चल रहा। अमेरिका तो फिर भी कुछ ना कुछ अपनी तरफ से कि भाई ईरान ने ये तजावीज दी है, लेकिन ईरान और इस्लामी ममालक और पाकिस्तान वाकई ये नहीं बता रहे कि यार क्या है, को बताने में क्या मामलात है कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस आ रही हैं आप भी कुछ बताएं उसमें, इसमें डरने वाली क्या बात है, ताकि को पता तो चले ना। यानी ईरान सेफ साइड गवर्नमेंट हो या दूसरे तरफ हो वो कुछ नहीं बताते, वो जो तबसरे तुसरे करते हैं कि हम ये नहीं मानते हम ये नहीं मानते, तो इसलिए इनको भी थोड़ी सी क्लैरिटी लानी चाहिए कि भाई वाकई ये क्या चाहते हैं। मेरा ख्याल है इसमें एक थोड़ी सी क्लैरिटी होनी चाहिए। दूसरी बात भट्टी साहब, पाकिस्तान में टैक्स देना कोई पसंद करता ही नहीं। मैं आज एक छोटी सी तहकीक कर रहा था, पाकिस्तान में पानी की पानी सप्लाई जो सरकारी तौर पर 24 घंटे लोग जितना मर्जी इस्तेमाल करें, मैं गुजरन वाला की बात कर रहा हूं, बिलाल साहब इसे तहकीक कर ले, 240 रुपए महाना प्लस 60 रुपए सीवरेज 300 रुपए बिल बनता है, वो लोग देना पसंद नहीं करते जो यहाँ का $1.5 बनता है। और हम यहाँ कितना देते हैं? $80 जो 16,000 रुपए पाकिस्तानी बनता है। अभी मैं मकानों की बात नहीं कर रहा टैक्स की, सर उधर लोग टैक्स देना पसंद ही नहीं करते, फिर इसमें कोई शक नहीं है, हमको गवर्नमेंट की हिमायत नहीं कर रही, या जो भी गवर्नमेंट आती है वो उसी तरफ ही चल पड़ती है। अब हम यहाँ 1,00,000-1,50,000 पाकिस्तानी, हम क्या लोग, हम टैक्स नहीं दे रहे पाकिस्तानी?
8: सही।
11: और मैं 25 साल से फॉर एग्जाम्पल मकान ले रहा हूँ और लिखा हुआ है, और हम टैक्स देते हैं जो पाकिस्तानी 1,00,000-1,50,000 रुपया बनता है, तो उधर किसी एक मकान जो 5 मरले 10 मरले या जो भी हो, हर 1,000 रुपया या 2,000 रुपया टैक्स उसे सालाना लग जाए तो उनकी जान निकल जाती है।
8: ठीक है,
11: ये बात बट्टी साहब, हम टैक्स बाकी उनकी अलल्ले तलल्ले या खर्चा खर्चियां जो भी गवर्नमेंट आती है, मैं सबकी क्रॉस दी बोर्ड बात कर रहा हूँ, वो कौम कुछ देना ही नहीं चाहती, फिर ऊपर से फौज का भी बीच में आ जाता है, तो मामला बड़े दूर निकल जाते हैं।
8: ठीक,
11: अब रह गई बात बट्टी साहब, चले मरियम नवाज की बात आई, मरियम नवाज का जो उसमें फॉर एग्जाम्पल इलाज हो रहा है या ऑपरेशन उन्होंने उधर ही करवाया है, तो अल्लाह ताला तंदुरुस्ती दे। बाकी चलो ये बात भी तय हो गई कि अब उमरा जो ये बात करते थे कि वो बाहर ही पसंद करते हैं, वो बाहर ही जाके इलाज कराएंगे, उधर उन्होंने कराया, ये अच्छी बात है, दूसरों को भी अडॉप्ट करना चाहिए।
8: ठीक सर,
11: चले थैंक यू वेरी मच साहब, बाकी बात सुनते हैं दूसरों।
8: शुजा भाई आप ऑन एयर हैं सर, 5666 आप ऑन एयर हैं जी, बात कीजिए। 5666 सुजय साहब,
12: अस्सलाम वालेकुम बट्टी साहब।
8: वालेकुम सलाम सर, वालेकुम सलाम
12: बट्टी साहब, जल्दी जल्दी से करेंगे बात। देखिए बात यह है कि अगर हम आज अपनी ताकत बने हैं तो हम इसे भी एक फंड बक्स में डाल दें कि इकॉनमी ऐसी फ्लॉ है। देखिए अगर किसी को ये बोल्ड डिसीजन का मतलब डिटेल पढ़नी है, मैंने बहुत सी किताबें पढ़ने के बाद मुशायर हुसैन सैयद साहब ने जो डिटेल्ड एनालिसिस कर दी है ना इससे, आप वो जाके पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा कि किन सर्कमस्टांसिस में और किस प्रेशर में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ये डिसीजन किया था कि पाकिस्तान को एटमी ताकत बना दी। कि हम जब कमजोर थे हमें 2 लाख कर दिया गया था,
8: सही।
12: आज हम ये जरूरत थी हमारी कि हम खाएं भी कुछ ना, लेकिन एटम बम होना चाहिए था।
8: ठीक,
12: अब आगे मरियम नवाज शरीफ साहब आज ये स्थिति देखें, आपको जानने की जरूरत क्या है वो कौन सा ऑपरेशन करने गई थी? इतना काफी नहीं है खबर कि वो श्री सिटी में एडमिट हुई है सर जी, तो उसका मेडिकल कॉन्फिडेंस तो कॉन्फिडेंशियल इश्यू है ना कि क्या करने गई थी, ये मैटर ही नहीं करता। मैटर ये करता है कि वो गई थी और उसने अपने लोकल हॉस्पिटल से अपना इलाज करवाया।
8: चलो ठीक सर, थैंक यू जी जी,
12: चले अल्लाह
8: चले अल्लाह हाफिज। ठीक है जी, क्योंकि जान के बात करीब है। 1861 आप बात करना चाहेंगे? 1861 जी मेखर सुन रहे हैं तो उनको दोबारा होल्ड करा दें। और हैदर अली साहब आप बात करना चाहेंगे? हैदर अली साहब ये आप भी सुन रहे हैं, मेखर हैदर अली साहब भी सुन रहे हैं, तो चलिए स्टूडियोज़ में रबते के नंबर है 4165930003। अजान मगरिब का वक्त करीब आ गया है, तो अजान मगरिब उसके बाद प्रोग्राम को क्लोज करेंगे। स्टेडियम
13: FM 101.3 स्टूडियोज़ में रबते के नंबर 4165930003। टोरंटो और इसके गिरदनवाह में मगरिब की आज़ान का वक्त हो गया है। दूसरे इलाकों के रहने वाले अपने मकामी निज़ाम औक़ात के मुताबिक मगरिब की नमाज अदा करें। टोरंटो और इसके गिरदनवाह में आज़ान मगरिब।

0: You're listening to CMR FM 101.3.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm. The Lovey-Dovey Show, driving you home. A melody above and beyond. Brought to you by Radio Toronto, Canada. Monday to Friday.
2: क्या आप सुन रहे हैं?
3: क्या आप सुन रहे हैं?
2: इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
3: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए।
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
4: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639.
5: नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, खुश आमदीद एंड TGIF आमिर। थैंक गॉड इट्स फ्राइडे।
6: फ्राइडे, यस, इवेंचुअली एंड फाइनली
5: फ्राइडे है और उसके बाद सैटरडे आएगा, उसके बाद संडे आएगा। आपको पता है सैटरडे संडे भी आएगा ना फ्राइडे के बाद?
6: आजकल तो जितनी रफ्तार से आता है उससे कहीं तेज रफ्तार के साथ गुजर जाता है, और यूं लगता है दुनिया में अब के दो छुट्टियों की कोई हैसियत औकात नहीं रही।
5: मंडे टू फ्राइडे 24 घंटे का दिन आमिर के हिसाब से, सैटरडे संडे 4 घंटे का दिन, जो बड़ी जल्दी बीत जाता है। लेकिन फ्राइडे फ्राइडे है, वीकेंड वीकेंड है, कैसा भी हो लेकिन अपने आप में एक फील, एक फ्लेवर जो फ्राइडे को सैटरडे संडे के आते हैं ना, वो अपने आप में बड़े खूबसूरत होते हैं। आप सभी का स्वागत है और लवी-डवी शो शुरू हो चुका है। 9 बजे से 11 बजे तक हम आपका साथ देंगे और आप हमारा साथ दीजिए। 416-303-3639। बहुत खूबसूरत सी मॉर्निंग है, पिछले 3 दिनों से बड़ी ज़बरदस्त सी जो समर है वो हमें वेलकम कर रही है, राइट?
6: जी बिल्कुल, जब समर आता है यानी गर्मियों का मौसम आता है तो यूँ लगता है जैसे ये पत्ते जिन्हें हम देख रहे हैं, ये फूल जिन्हें हम देख भी रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं, ये न जाने कितनी दिहाइयों से खिलने के मुंतज़र थे। सबसे ज़्यादा इंतज़ार, इंसानों से भी ज़्यादा इंतज़ार शायद इन पौधों को, इन दरख्तों को, इन फूलों को और इन दरख्तों को रहता है इस मौसम का, कि जिसमें ये खिल के एक नया पैगाम देते हैं कि आप जितने भी अफसरदा हों, जितने भी परेशान हों, जितने भी वीरान और बंजर हो जाएं, एक मौसम ऐसा ज़रूर आएगा कि आपको खिलने का मौका मिलेगा। आप फूल बन के महकेंगे, आप सरसब्जो शादाब लहलहाती हुई फसलों की तरह लोगों को भी शादाब करेंगे, सरसब्ज करेंगे, देखने वाले को भी भले लगेंगे और लोगों की भूख और प्यास भी मिटाएंगे। तो ये मौसम एक बहुत बड़ा पैगाम है, देखने वालों के लिए एक बहुत बड़ी निशानी है कि हर किसी के दिन ज़रूर आते हैं। There will be some bad days, there will be some good days as well. तो पैगाम यह है कि आड़ा तिरछा वक्त हो, जली कटी हुई घड़ियां हो, या आपको लगे कि हालात शायद किसी शेप और फॉर्म में आपके हाथ से निकल रहे हैं, जैसे आप रेत को मुट्ठी में लेते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो सारी बिखरती चली जाती है, इसी तरह हालात भी कभी कभी महसूस होते हैं। लेकिन यकीन मानिए कि वही वक्त होता है नए मौसम का, नए दरख्तों को लगाने का, नई कोंपनों की आबियारी करने का, नए फूल बुनने का, नए फूलों से मुजयन करने का माहौल को, और फिर जब बहार आती है तो हम सब उसका मजा
5: लेते
6: हैं।
5: क्या बात है, अब पत्ते गिरते हैं तभी नए पत्ते आते हैं।
6: जी बिल्कुल, बिल्कुल।
5: तो इसी पॉजिटिव थॉट के साथ हम आपके साथ बने रहेंगे। हमसे रابطे का नंबर है 416-303-3639। स्टूडियो में कॉल करना चाहते हैं तो नंबर है 416-593-0055।
6: और आप जानती हैं कि आपके साथ शायरी की ज़ुबान में बात करना बहुत अच्छा लगता है
5: जी।
6: तो एक शेर आपसे बात करते करते और इन फूलों का जिक्र करते करते मेरे जहन में आया, तो मैंने सोचा मैं अपने सुनने वालों के साथ भी शेयर कर दूं
5: जी।
6: ये किस मुकाम पे सूझी तुझे बिछड़ने की, ये किस मुकाम पे सूझी तुझे बिछड़ने की, कि अब तो कहीं जाके दिन संवरने वाले थे।
5: क्या बात है।

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
2: इसी तरह जीटीए में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
3: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
4: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला। बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स टीआरटी ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन। विजिट shoptoyota.ca or योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
5: Another Dawn clean with the Dawn Ducks.
6: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
7: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
6: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
7: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
6: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
7: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
6: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
5: Dawn Platinum, the better grease getter.
8: मम्मा, why don't you go to work now?
9: बेटा, तुझे क्या बताऊं कि मेरी जिंदगी ही रुक गई है। एक महीने से काम पर नहीं गई और अब इंश्योरेंस कंपनी क्लेम डिनाई कर रही है।
10: जिंदगी रुकती नहीं, बस रास्ता बदलना पड़ता है। कॉल सैयद एम रजा, आर कम्युनिटी इंजरी लॉयर, इंजरी लॉ के एक्सपर्ट लॉयर।
9: क्या वो मदद करेंगे?
10: मदद करेंगे। उन्होंने एक क्लाइंट को $2 मिलियन की एग्रीगेट सेटलमेंट दिलवाई। तुम्हारे लिए भी लड़ेंगे। इनके पास 12 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है एंड नो फी अंटिल विक्ट्री।
11: कार एक्सीडेंट या स्लिप एंड फॉल, डोंट कॉल एनी थर्ड पार्टी एजेंट, डायरेक्टली कॉल सैयद एम रजा ऑफ सैयद लॉ। सैयद लॉ से सैयद एम रजा,
10: जहां सिर्फ वादे नहीं रिजल्ट मिले।
11: कॉल सैयद एम रजा 416-937-5046, दैट इज 416-937-5046।
12: सिर्फ मॉर्गेजेस, दैट्स राजीव तलवार द मॉर्गेज सुपरस्टार। मॉर्गेज रेजिडेंशियल लो या कमर्शियल, फॉर कस्टमाइज्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस चूज राजीव तलवार। मुश्किल से मुश्किल मॉर्गेज हो, लास्ट मिनट डील हो या फिर क्रेडिट इश्यूज हो, राजीव तलवार का वसी इल्म और तजुर्बा आपका काम आसान कर देगा। तो याद रखिए, मॉर्गेज उनसे मत लीजिए जो मॉर्गेज भी करते हैं, बल्कि मॉर्गेज सिर्फ उनसे लीजिए जो मॉर्गेज ही करते हैं। कॉल राजीव तलवार ऑफ लीडिंग एज मॉर्गेज एक्सपर्ट्स 9058191001 9058 9101001, license number 12374.
13: The Lovey Dovey Show, driving you home, a melody above and beyond. Brought to you by Radio Toronto Canada, Monday to Friday.
14: शो, और आप हैं आमिर और शिवानी के साथ। आमिर, इस वक्त 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, टन्स ऑफ सनशाइन। ये जो सन है, सन के ऊपर बिल्कुल भी कहीं भी क्लाउड्स नहीं दिखाई दे रहे। ये थोड़ा सा भी क्लाउड दिखता है तो लगता है कि यहाँ मौसम का कोई भरोसा नहीं।
15: जी बिल्कुल।
14: मैंने +15 से -15 तक तब्दील होते कुछ घंटों में देखा है।
15: कुछ घंटों में?
14: I was wearing a dress +15 and I came back home and fell sick for a few days because it was -15 by the time I came home. लेकिन अभी ऐसा नहीं है, because सारे time आप देखिए सब सन सन दिखाई दे रहा है। दोपहर का मौसम 22 degrees रहेगा। अगर हम बात करें आपके शाम के मौसम की, कल के मौसम की, रात का मौसम रहेगा करीब 9 degrees, सुबह का 12 degrees। जब आपकी क्लास शुरू होगी तो भी मौसम बड़ा प्यारा होगा, टन्स ऑफ सनशाइन के साथ। और आप अपने स्टूडेंट्स को जो होमवर्क दिया है वो अभी पूरा करने में लगे हैं।
15: पहले सेशन में हमारे लर्नर्स का होमवर्क ये है कि उन्हें पोस्टर्स बनाने
14: जी,
15: हैं। ये जो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे पोस्टर्स आप देखते हैं, इसी की ट्रेनिंग थी, कैनवा सॉफ्टवेयर पे उनकी। और दे आर ऑल वेरी वेरी एक्साइटेड। इस दफ़ा का जो बैच है वो बड़ा सीनियर, बड़ा पढ़ा लिखा, बड़ा तजुर्बा कार और स्किलफुल है अपने अपने सेक्टर्स में,
14: और उनको पता है उन्हें क्या चाहिए।
15: जी बिल्कुल बिल्कुल, उनमें एक दो लोग इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सेक्टर से हैं, एक दो लोग उनमें बिल्डिंग के हैं, दे आर बिल्डिंग द एम्पायर्स इन नायग्रा फॉल्स, उनमें एक दो लोग हेल्थ सेक्टर के हैं, एक बिजनेसमैन हैं, फिर एक साहब हैं वो अपना कोई गाड़ी वगैरह चलाते हैं, इसके अलावा एक और साहब हैं वो आईटी कंसल्टेंट हैं। इस दफ़ा क्लास बड़ी
14: डाइवर्सिटी वाली,
15: हाँ जी, जम के चल रही है, बड़ी कमाल की चल रही है और बहुत अच्छी चल रही है।
14: मैंने देखा एक कपल आपके आया था, एल्डरली कपल, और दोनों के दोनों दे वर वेरी एजुकेटेड, वेरी फोकस्ड प्रोफेशनल्स, लेकिन जो हस्बैंड थे थे मतलब उस वक्त मैंने एक हफ्ता पहले देखा, वो ज़्यादा यू नो ही वाज टेक्निकली वेरी वेरी साउंड,
15: बिल्कुल,
14: और जो उनकी वाइफ थी उनसे मैं काफ़ी रिलेट कर पाई क्योंकि वो टेक्निकली साउंड नहीं थी और वो अपने हस्बैंड को इंस्ट्रक्शंस दे रही थी बड़े आराम के साथ, शी वॉज फोकसिंग ओनली ऑन आमिर जीस लेक्चर, और हस्बैंड से वो उन आमिर जी का लेक्चर सुन के वो अपने हस्बैंड से कहती कि ध्यान दीजिए और मेरा जो बिजनेस है उसको प्रमोट करना है, पोस्टर पे ध्यान दीजिए आप, उनके हस्बैंड ने बड़ा अच्छा पोस्टर बना के दिया तो इट वाज अमेजिंग बैच।
15: या बिल्कुल बिल्कुल, और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए शिवानी हमने ये इरादा किया है
14: अच्छा
15: कि हम लोगों के प्रेमिसेस पे जाके उनको ट्रेनिंग देंगे।
14: जी बिल्कुल,
15: ये एक नया कॉन्सेप्ट है, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, इससे पहले डिजिटल मीडिया में किसी ने ये काम नहीं किया है कि किसी के बोर्डरूम में जाके 10-12-15 लोग बैठे और छोटे से क्लासरूम स्टाइल में प्रैक्टिकली लोगों को ट्रेन किया जाए।
14: क्या बात है जी,
15: ये ऐसे ही है शिवानी कि जैसे आप कोई एक स्किल सीख लें और सारी जिंदगी आपके काम आए, इट्स नॉट फॉर अ डे और टू और अ मंथ और टू और मे बी अ ईयर और टू, इट इज फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई खातून आटा गूंदना सीख ले तो सारी जिंदगी के लिए सीख लिया उसने, दोबारा नहीं सीखना है उसको। अगर खाना बनाना जैसे आलू बनाना सीख ले अगर कोई
14: मैंने आज से 19 साल पहले सीखा था वो मैं आज भी बना लेती हूँ।
15: एग्जैक्टली, सो बिल्कुल ऐसे ही ये डिजिटल मीडिया भी है, एक बार आपने सीख लिया तो 19 साल के बाद भी आपके पास ये स्किल रहेगा, एडिटिंग का, प्रोडक्शन का, फ्रेमिंग का, कॉम्पोजिशन का, हाउ टू यूटिलाइज डिफरेंट शॉट्स एंड सीन्स एंड मेक द कंटेंट एंड यूज द कंटेंट, यूट्यूब पे उसको कैसे डालना है, इंस्टाग्राम पे कैसे इस्तेमाल करना है, फेसबुक पे कैसे करना है, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो मुझे लगता है कि अगर आप बिजनेस ओनर हैं, आपकी ब्रोकरेज है, इंश्योरेंस ब्रोकरेज है, आपकी मोर्टगेज ब्रोकरेज है, या आप रियल एस्टेट ब्रोकरेज चला रहे हैं, तो अपने स्टाफ को इतना ट्रेन करवा दीजिए जिसका फ़ायदा आपको भी डायरेक्टली
14: पहुंचे। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली, और जितने आपके स्टाफ मेंबर्स हैं, मान लीजिए एक रियल एस्टेट ब्रोकरेज है, उसमें हर एक जो रियल्टर हैं वो अपने हिसाब से अपने अपनी प्रॉपर्टी को प्रमोट करें, वर्चुअल टूर को प्रमोट करें, बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं आजकल क्योंकि एक्सपोजर बहुत है, तो बहुत सारे आइडियाज़ हैं। अब आपसे ज़्यादा कौन जान सकता है कि आपको क्या चाहिए, अपने हिसाब से प्रमोट कीजिए। 416-303-3639 नंबर है, 416-303-3639, और आमिर एक खबर अपने लिसनर्स के साथ शेयर कर दें। आप लोगों की ह्यूज डिमांड थी कि आफ्टरनून के जो लिसनर्स हैं जो उस वक्त ऑफिस से आ रहे होते हैं वो भी हमें सुनना चाहते हैं, तो हमने कोशिश की थी और काफ़ी ये कोशिश रंग लाई है। अब मंडे से हम 2 बजे से 3 बजे तक आपके साथ होंगे, तो 2 to 3 आफ्टरनून ड्राइव टाइम हमें ज़रूर आप ज्वाइन कीजिए, नंबर यही रहेगा 416-303-3639।
15: जी, अब मुलाकात आप तमाम सुनने वालों से दोपहर के वक्त होगी, आप इसको सपहर का वक्त भी कह सकते हैं
14: अच्छा।
15: जिसमें बच्चों को लाने ले जाने में आप मसरूफ़ होते हैं, इसी दौरान आप रेडियो भी ट्यून इन करते हैं, बहुत से लोगों की शिफ्ट्स ख़त्म होती हैं, बहुत से लोग गाड़ी में अपने काम में मसरूफ़ मशगूल होते हैं, ट्रक्स में मसरूफ़ होते हैं, सो दैट इज़ गोइंग टू बी आवर टाइम नाउ मंडे से, यानी सोमवार से हम लोग 2 से 3 बजे आपकी खिदमत में पेश होंगे, तो आप ज़रूर सुना कीजिएगा। स्टे ट्यून्ड, दिस इज़ लवी डवी शो।
14: और ये गाना आपके लिए, आमिर, एक मूवी आई थी एक दूजे के लिए, ये मूवी 1981 में आई थी। इसमें साउथ ऑफ इंडिया के सुपरस्टार, वेरी वेरी सीजन्ड एक्टर, हिंदी फिल्मों में भी काफ़ी उन्होंने काम किया, कमल हासन वो थे और रति अग्निहोत्री थी। ये एक उस वक्त की कहानी थी जब नेबर्स, जो लोग, दो लोग होते हैं, लड़का और लड़की, दे फॉल इन लव, और डेफिनेटली दूसरी कास्ट के होते हैं, एक साउथ इंडियन होते हैं तो दूसरे नॉन साउथ इंडियन, फैमिलीज तैयार नहीं होती हैं, तो ये फैमिली ड्रामा में वो इतना इम्पैक्ट किया इस फिल्म ने लोगों को, और एंड में जाके दे डाई, उनकी दे डिसाइड टू एंड देयर लाइफ, इससे पहले कि वो अलग हों, वो दे डिसाइड टू एंड देयर लाइफ। इतने सारे लोगों ने उनको फॉलो किया और यंगस्टर्स तो बिल्कुल दीवाने हो गए उनके लिए, तो फिल्में बड़ा असर डालती हैं लोगों के जहन में। इसका एक गाना बड़ा पॉपुलर था, वही गाना, 16 बरस की बाली उम्र को सलाम, मैं प्यार तेरी पहली नजर को।
15: कमाल का गीत है, बहुत अच्छा चुनाव है आपका। स्टे ट्यून्ड।

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
2: इसी तरह जीटीए में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
3: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
4: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहाँ पहुँचे सभी वहीं पहुँचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
5: Nikki Gandhi of Home Life Miracle Realty brings you brand new freehold townhomes in Brampton. Mavis Road and Ray Lawson Boulevard ke Asan se intersection par Rollingwood Towns launching June 1st. Starting price just from $600,000. 3 se 5 bedroom options available, approximately 1300 se 1900 square feet ke layouts available, extended deposit structure, extended closing available and great incentives for first time home buyers. Early launch pricing or limited release ke liye exclusively call Nikki Gandhi at 416-456-3815. That's 416-456-3815. Your trusted listing agent for Rollingwood Towns for VIP access, pricing and floor plans. Don't miss this opportunity.
6: साहब, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं, जी चाहता है कि सेविंग हो तो वो लग जाए, जी चाहता है किसी दोस्त अहबाब से पैसा उधार लेके डालें तो वो डाल दें, जी चाहता है के बैक होम में अगर कहीं कोई सेविंग पड़ी है तो वो मंगवाएं, वो मंगवा के लगा दें। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं उनमें इतनी जान होती है और इतना फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ उनको बनाया गया होता है, उनकी लोकेशन चुनी गई होती है, उनका एरिया चुना गया होता है, फैसिलिटीज़ एमिनिटीज़ चुनी गई होती हैं, कि इंसान का जी चाहता है कि बाइंग का मौसम है, ख़रीदने की घड़ियां हैं, ख़रीदने का वक्त है, बायर्स की मार्केट है, तो क्यों ना इस मार्केट से फ़ायदा उठाया जाए। याद रखिए कि आज जो पौधा आप लगा देंगे कल उसका फल आपको मिल जाएगा, लेकिन ये पौधा आज लगाना बहुत ज़रूरी है कल के फल के लिए। कुछ लोग अगर ये समझते हैं कि बिना बीज बोए बिना पौधा लगाए ही फल उनको मिल जाएगा, तो ये याद रखिए ऐसा कभी नहीं हो सकेगा, इट विल बी इम्पॉसिबल। और फिर एक ही चीज़ रह जाएगी आपकी ज़िंदगी में, रिग्रेट, यानी पछतावा रह जाएगा कि काश अच्छे प्रोजेक्ट में अच्छे टाइम पे अच्छे रियल्टर के साथ मिलके इन्वेस्टमेंट कर लेते तो आज जो हमसाए में लोगों ने $3-4 लाख बनाए हैं हमारे भी बन जाते। बात हो रही है रॉलिंगवुड्स टाउन्स की, लॉन्च हो रहे हैं जून 1 को, लोकेशन है मेविस रोड एंड रे लॉसन बुलेवर्ड, ब्रांड न्यू फ्री होल्ड टाउन होम्स एंड स्टार्टिंग फ्रॉम 600। और भी डिटेल्स जानेंगे, कमाल का प्रोजेक्ट है, ध्यान से बात सुनिएगा। निकी गांधी जी, वेलकम करते हैं आपको।
7: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आमिर जी आपका फॉर पुटिंग मी ऑन एयर, एंड सभी लिसनर्स को मेरी तरफ से अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी फ्राइडे टू ऑल ऑफ यू। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं ब्रैम्पटन के बहुत ही एक्साइटिंग प्री कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के बारे में, रोलिंगवुड्स टाउन, जिसकी प्राइसेस जो है वो स्टार्ट हो रही है सिर्फ 600,000 से और अर्ली 2028 की क्लोजिंग है। इसका मतलब आपको एक्सटेंडेड डिपॉजिट स्ट्रक्चर की प्लानिंग करने की एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है, मतलब कि आप बहुत ही कंफर्टेबल और स्मार्ट वे में ना इन्वेस्ट करने का आपको एक मौका मिल रहा है। और जैसे अमित जी आपने बताया, बिल्कुल सही बात है कि बायर्स मार्केट है, सो बहुत टाइमिंग है, अपॉर्चुनिटी है। और अब हम अगर इस प्रोजेक्ट की बात करें ना, तो सबसे एक्साइटिंग बात यह है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो आ रहा है मेविस एंड रे लॉसन बुलेवर्ड पे, जो कि ब्रैम्पटन एंड मिसिसागा की बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक है।
6: जी
7: और ये बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइन किए हुए टाउन हाउसेस है जो कि आज के मार्केट में बहुत ही ज्यादा हाई डिमांड पे रहते हैं। और अगर हम रियल एस्टेट में ना एक चीज कहते हैं लोग कि लोकेशन लोकेशन लोकेशन राइट, तो ये बिल्कुल परफेक्टली फ्लैट बैठता है रोलिंगवुड्स टाउन पे क्योंकि इसकी लोकेशन बहुत ही बढ़िया है। मेजर हाईवेज जैसे कि 401, 410, स्कूल, शॉपिंग, ट्रांजिट, सब डेली एमिनिटीज जितनी भी है बिल्कुल नजदीक है आपकी, यहाँ तक कि कॉलेज सिर्फ 3 मिनट की दूरी पर है। हार्टलैंड टाउन सेंटर, शॉपर्स वर्ल्ड, कॉस्को, वॉलमार्ट, रेस्टोरेंट्स, ग्रोसरीज, सब कुछ बहुत ही कन्वीनियंटली लोकेटेड पे है। इसका मतलब कि अगर आप फैमिली

0: टाइम से कोई भी प्री कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट नहीं आया है और हम देख भी नहीं रहे हैं नेक्स्ट फ्यू इयर्स की कोई इस पॉकेट में प्रोजेक्ट आएगा. बहुत सारे प्रोजेक्ट ब्रैम्पटन में आ रहे हैं, मिसागा में आ रहे हैं, ब्रैम्पटन में भी जो आ रहे हैं वो बहुत नॉर्थ साइड पे, इस पर्टिकुलर पॉकेट में नहीं है. डेवलप्ड एरिया है, मैच्योर्ड कम्युनिटी है. सो अगर आप इस मैच्योर्ड कम्युनिटी में अपना ब्रांड न्यू घर लेना चाहते हो तो ये बहुत ही बढ़िया मौका है, बहुत ही ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी है. गाइस डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी. पर इसके साथ साथ ना इस यहाँ पे हमारे पास 1300 से 1900 स्क्वायर फीटेज तक के टाउन हाउसेज अवेलेबल है. हमारे पास 3 से 5 बेडरूम तक, 5 वॉशरूम तक के भी टाउन हाउसेज अवेलेबल है. इसका मतलब अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर हो, अगर आप इन्वेस्टर हो, अगर आप अपने बच्चों के साथ रहना चाहते हो, सब के लिए ना हमारे पास कुछ ना कुछ सुटेबल ऑप्शन यहाँ पे है ही है. इसके साथ साथ जो बिल्डर है ना वो बहुत बढ़िया बढ़िया इंसेंटिव देने वाले हैं. और जैसे कि आपने बताया ये प्रोजेक्ट हम लॉन्च करने जा रहे हैं जून 1 को. सो जून 1 को प्राइजेस और इंसेंटिव रिलीज हो रहा है. और मैं बता दूं कि मैं बिल्डर के साथ इसमें डायरेक्टली सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हूँ. सो सभी रियल्टर्स, ब्रोकर्स, मेरे भाइयों बहनों को बता दूं, अगर आपको भी इस ब्रोकर लॉन्च को, जून 1 को हमारा ब्रोकर लॉन्च होने जा रहा है सुबह, अगर आपको इस ब्रोकर लॉन्च में हिस्सा लेना है, अगर आपको इसकी ज्यादा जानकारी चाहिए, आप मुझे अभी के अभी कॉल कर सकते हो 416-456-3815. सभी रियल्टर्स को इस ब्रोकर्स प्रोटेक्टेड. सो मेक श्योर यू कॉल मी एट 416-456-3815. इसके साथ साथ आजकल ना प्री कंस्ट्रक्शन घरों पे ऑन्टेरियो गवर्नमेंट का भी जीएसटी एचएसटी रिबेट का बेनिफिट चल रहा है, राइट, जिसमें एलिजिबल बार को अप टू 130,000 तक का बेनिफिट मिल सकता है. इसलिए जो भी बायर्स अच्छे मौके की तलाश कर रहे थे ना, उसके लिए ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है. दोस्तों मार्केट जो है ना अब धीरे धीरे ओपन अप होनी शुरू हो चुकी है. बायर्स का जो कॉन्फिडेंस है ना वो भी अब वापस आ रहा है. इंटरेस्ट रेट भी स्टेबलाइज हो रहा है. सो जो लोग वेट कर रहे थे कि जब कोई बढ़िया अपॉर्चुनिटी आएंगे तब हम इन्वेस्ट करेंगे, तो ये बढ़िया अपॉर्चुनिटी आ चुकी है. रोलिंगवुड टाउन इज द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइज. मेक श्योर अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हो, इन्वेस्टर हो, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए कुछ लेना चाहते हो, रोलिंगवुड टाउन डेफिनेटली एक स्ट्रांग अपॉर्चुनिटी है. सो सभी मेरे रियल्टर्स भाइयों बहनों को, सभी लिसनर्स को, सभी क्लाइंट्स, अगर आपको वीआईपी प्राइसिंग, फ्लोर प्लान, इंसेंटिव सब की कंप्लीट डिटेल चाहिए, आप मुझे अभी के अभी कॉल कर सकते हो एट 416-456-3815. आई रिपीट, इट्स 416-456-3815. बैक टू यू अमय जी.
1: यहाँ नंबर दे रहे हैं, इस प्रोजेक्ट के हवाले से बात कीजिए, मशवरा कीजिए. याद रखिए कि बात आप करेंगे तो बात बनेगी, बात आगे चलेगी, रास्ता निकलेगा पैसा बनाने का. याद रखिए, मार्केट हैज टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन नाउ. और जो सिचुएशन आजकल चल रही है, अगर आपके पास कुछ पैसे हैं पड़े हुए तो उन पैसों को 2 गुना 3 गुना करने का मौका इससे बेहतर आपको आने वाले वक्त में नहीं मिल पाएगा. यहां नंबर है, नोट कीजिए, बात कीजिए, सलाह कीजिए, 416-456-3815. नंबर आपको दोबारा दे रहे हैं, 416-456-3815. थैंक यू वेरी मच निकी.
0: बहुत बहुत शुक्रिया अमीर जी.

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
0: इसी तरह जीटीए में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवर्टाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
0: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
2: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
3: Another Don Clean with the Don Ducks.
4: Oh, he's doing dishes with Don Platinum.
5: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
4: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
5: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
4: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
5: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
4: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
3: Don Platinum, the better grease getter.
6: शगन का दिन चढ़ेगा, सजना घर आएंगे, डोली लेकर जाएंगे, दुल्हन सजेगी, शहनाई भी बजेगी, लम्हा के संग हर घड़ी यादगार बनेगी। शादी हो या थीम शो, कॉर्पोरेट पार्टी हो या कोई खास इवेंट, ये पल तभी यादगार बनते हैं जब प्लानिंग हो परफेक्ट और एग्जीक्यूशन हो बेस्ट। और ये सब आपको मिलता है लम्हा इवेंट्स के साथ। डेकोरेशन से लेकर एंटरटेनमेंट तक, लाइट्स से लेकर मेहमानों की मुस्कान तक, सब कुछ बेमिसाल सेलिब्रेशन जो याद रहे सालों साल। तो इवेंट की डेट आप फिक्स कीजिए, बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए। लम्हा इवेंट्स, हर पल मुस्कुराइए, जिंदगी मनाइए। कॉल 416-522-0543।
7: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला। बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स टीआरटी ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
8: मम्मा, why don't you go to work now?
9: बेटा, तुझे क्या बताऊं कि मेरी जिंदगी ही रुक गई है। एक महीने से काम पर नहीं गई और अब इंश्योरेंस कंपनी क्लेम डिनाई कर रही है।
10: जिंदगी रुकती नहीं, बस रास्ता बदलना पड़ता है। कॉल सैयद एम रजा, आर कम्युनिटी इंजरी लॉयर, इंजरी लॉ के एक्सपर्ट लॉयर।
9: क्या वो मदद करेंगे?
10: मदद करेंगे, उन्होंने एक क्लाइंट को $2 million की एग्रीगेट सेटलमेंट दिलवाई। तुम्हारे लिए भी लड़ेंगे। इनके पास 12 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस and no fee until victory.
11: Car accident ya slip and fall? Don't call any third party agent. Directly call Sayyed M. Raza of Sayyed Law. Sayyed Law se Sayyed M. Raza.
10: Jahan sirf vaade nahi, result mile.
11: Call Sayyed M. Raza 416-937-5046. That is 416-937-5046.
12: सब हादसे का हो जाना, हादसे का सामना होना, चाहे फॉल्ट आपका हो या कसूर किसी और का, हम तकरीबन हर आए रोज हादसात को होता हुआ देखते हैं। किसी में चोटें बहुत गहरी होती हैं, जख्म बहुत गहरे होते हैं, और किसी में चोटें भी गहरी नहीं होती और जख्म भी गहरे नहीं होते। बात ये नहीं है कि हादसा हो गया, मसला और मामला दरअसल ये है कि हादसे के बाद क्या हुआ। इट्स नॉट अबाउट द एक्सीडेंट, इट्स अबाउट द प्रिकॉशंस एंड व्हाट happened after the accident, that's what matters. अगर कोई जख्मी हुआ तो अस्पताल ले जाने के लिए इंतजाम क्या था, अगर गाड़ी डैमेज हो गई तो उसको मुनासिब जगह पे ले जाने का इंतजाम क्या था, हादसे के बाद आपने हादसे को रिपोर्ट किया या नहीं किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। हादसे के बाद रिपोर्टिंग प्रोसीजर्स क्या हैं, बहुत सों को जो लोग इस मुल्क में नए आते हैं या लाइसेंस नया लेते हैं या यहां आके ड्राइविंग पास करते हैं, तो एज फॉर एज आई नो कोई सर्टन प्रोसीजर या तरबियत या कोई कोर्स ऐसा नहीं है जो ये भी बताए कि वेयर टू गो, व्हेन टू गो, हाउ टू रिपोर्ट, व्हाट टू से, व्हाट टू राइट, हाउ टू राइट। और जब आप एक्सीडेंट के बाद किसी रिपोर्टिंग सेंटर पे रिपोर्टिंग करने के लिए जाते हैं, वहाँ सहूलियात तकरीबन ना होने के बराबर हैं। एक आध शख्सियत को वहाँ बिठाया होता है और वो दे आर वेरी रिलक्टेंट टू हेल्प यू आउट, दे आर देयर टू डू देयर ओन क्लेरिकल वर्क। वहाँ आपको हादसे का पूरा नक्शा बनाने के लिए कहा जाता है कि आप बना के दिखाइए, ड्रॉ कीजिए यहाँ के क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्या थी सारी कहानी। बेस्ड ऑन ऑल दीज ट्रू फैक्ट्स एंड फिगर्स, मैं आपको बता दूं कि हादसे के फौरी बाद जिस शख्सियत की आपको ज़रूरत पड़ती है वो है एक सीजन्ड, एक स्किलफुल, एक एक्सपर्ट, एक माहिर बैरिस्टर पर्सनल इंजरी में स्पेशलाइज किया हुआ, जो आपको आपकी जुबान में बताए कि क्या प्रोसीजर होगा, अब क्या करना होगा आपको, आप किस तरह की कंपनसेशन के अहल होंगे, कौन सा डॉक्यूमेंट कहां से मिलेगा, कहां लगेगा, किसको फराहम करना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज इन्हीं मुद्दों पर बात होगी एक इंतहाई सीनियर और तजुर्बाकार पर्सनल इंजरी बैरिस्टर को हमने दावत दी है। इन्होंने स्पेशलाइज किया है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा, एमबीए किया, उसके बाद बैरिस्ट्री की, कमर्शियल लॉज को जानते हैं और पर्सनल इंजरी के हवाले से ऑल दी रेलेवेंट लॉज को प्रैक्टिस करते हैं। कमाल के बैरिस्टर हैं, सैयद एम रजा बैरिस्टर, वेलकम करते हैं सर आपको।
13: जी तो फैल भाई, आपका और आपके इंट्रोडक्शन का बहुत बहुत शुक्रिया। जी तो फैल भाई, तो आपने कहा रिपोर्टिंग किस तरह से होनी चाहिए, तो सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं। देखें, रिपोर्टिंग के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि जब आप एक्सीडेंट सीन से कॉल करते हैंगे और पुलिस ऑन द सीन आती हैगी, ये पर्टिकुलरली उन क्रैशेस में जो कि बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं और जहाँ पे इंजरीज भी जरा सीरियस होती हैं, तो वहाँ पे पुलिस सीन पर आती है और पुलिस अपना ऑफिसर अपनी इन्वेस्टिगेशन करता हैगा। कोई सीन पे अगर विटनेसेस हो तो उनका जो है वो स्टेटमेंट लेता आएगा और उसके साथ साथ जो है वो ड्राइवर्स के स्टेटमेंट भी लेता है, इफ दे आर मतलब ये कि एबल एनफ और मतलब ये कि दे कैन गिव दे स्टेटमेंट एट दैट पॉइंट। फिर ऑफिसर अपनी इन्वेस्टिगेशन करके जो है वो पूरा उसका डायग्राम बनाता आएगा कि गाड़ी कौन सी गाड़ी जो है वो टेंटेटिवली कहाँ थी, अगर फर्ज किया कि गाड़ियों की पोजीशन चेंज हो गई है और अगर वहाँ पे कोई आई विटनेस है तो उसके स्टेटमेंट की बेस पर जो है वो डायग्राम बनाता हैगा और सारी पार्टियों की जो है इंफॉर्मेशन लेता हैगा एंड देन मतलब ये कि ही फाइनलाइजेस द रिपोर्ट। वो रिपोर्ट फाइनलाइज होती है वो कंप्यूटर पे करते हैंगे और उसकी कॉपी जो है वो एक आध हफ्ते बाद जो है इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो है वो अवेलेबल होती हैगी, तो वो कॉपी जो है वो MTO का एक पोर्टल हैगा उस पर अवेलेबल हो जाती हैगी। उसके $12 चार्जेस हैंगे और जो तो वहाँ से जो है वो जिस जो भी मतलब ये कि इन्वॉल्व पार्टीज हो एक्सीडेंट में वो वहाँ से जो है वो डाउनलोड कर सकती हैंगी। दूसरा तरीका जो है वो ये होता हैगा कि जब पुलिस सीन पर नहीं आती हैगी तो पुलिस कहती है कि जी आप कोलिजन सेंटर जाएं, वहाँ पर जाके रिपोर्ट करें और कोई भी एक्सीडेंट जिसमें $1,000 से ज्यादा डैमेजेस है वो रिपोर्ट करना जरूरी हैगा। तो रिपोर्टिंग इसलिए होती है कि उसकी अकाउंटेबिलिटी हो, पार्टीज की अकाउंटेबिलिटी हो कि कौन कौन सी पार्टीज जो हैं वो इन्वॉल्व हैंगी। अच्छा, इसमें एक बात ये है कि अगर पुलिस सीन पर नहीं आती हैगी और वो फॉल्ट डिटरमिन नहीं करती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी पार्टी, अगर कोई चार्ज नहीं हुई ऑन द सीन तो किसी भी पार्टी का फॉल्ट नहीं है। जाहिर बात है एक पार्टी फॉल्ट पर है और एक पार्टी फॉल्ट पर नहीं है, या बहुत रेयर केसेस में 50-50 का चांस जो है वो भी हो सकता है। तो ये बात सारी कोलिजन सेंटर की है। जब आपको कोलिजन सेंटर आप सेम डे भी जा सकते हैं अगर टाइम नहीं है, इफ यू आर मतलब ये टेकिंग केयर ऑफ योर इंजरीज, आप हॉस्पिटल जा रहे हैं एक्सेट्रा, तो आप नेक्स्ट डे भी जा सकते हैं।
12: अच्छा।
13: या आप अगर नेक्स्ट डे भी अगर मसला आएगा तो आप उसके बाद भी जा सकते हैं, मतलब ये कि एक दो दिन बाद कोई मसला नहीं हैगा, बिकॉज देर इज अ वैलिड रीजन फॉर दैट। तो आप वहाँ पे जाके जब आप रिपोर्ट करते हैंगे तो यकीनन सीन ऑफ एक्सीडेंट से जो है वो आपने अदर ड्राइवर की इंफॉर्मेशन ले ली हैगी, उसका इंश्योरेंस स्लिप वगैरह सब चीज़ों की पिक्चर लें आप, उसका ड्राइवर लाइसेंस की पिक्चर जरूर लें, क्योंकि अक्सर लोग जो होते हैंगे वो अपने एड्रेसेस चेंज करते रहते हैंगे। तो ड्राइवर लाइसेंस से फ़ायदा ये होता है, जब आप ड्राइवर लाइसेंस की पिक्चर ले लेते हैंगे तो हमारे पास एजेंसीज हैंगी, उससे जो है उसके अपडेटेड एड्रेस का भी पता चल जाता है। यानी अगर वो बाद में एड्रेस चेंज भी कर ले, जो कि लिटिगेशन वर्क के लिए ज़रूरी होता है क्योंकि उसको डॉक्यूमेंट सर्व करने होते हैं वहाँ पे, तो ये सारी इंफॉर्मेशन लेके आपने कोलिजन सेंटर पे जाना है। आजकल वहाँ पे कंप्यूटर लगे हुए होते हैंगे, लेकिन ये आपने बिल्कुल सही कहा कि आपने हेल्प योर सेल्फ करनी है, आपने जो है वहाँ पे खुद ही सारी जो है वो फिल करनी हैगी, और खुद ही आपने जो है उसके डिस्क्रिप्शन भी देनी है और डायग्राम भी बनानी है। तो उसके लिए बेहतर तरीका ये है कि आप पहले किसी अपने सेल फोन पर जो है वो नोट्स आप जॉट डाउन कर लें, या आप ऐसा करें आजकल चैट GPT है उसको आप दें डिस्क्रिप्शन कि जी दिस वॉज द हैपनिंग ऑफ द एक्सीडेंट, आई वॉज ड्राइविंग ऑन दिस रोड, प्लीज गिव मी वन पैराग्राफ डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सीडेंट, तो वो भी आपको दे देगा।
12: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही।
13: तो वो भी जो है आप कॉपी पेस्ट मार दें, यानी कॉपी पेस्ट मारने का मतलब ये है कि वही वॉइस जो है वो आप टाइप कर दें, मगर आप ये बात ये याद रखें कि आपकी डिस्क्रिप्शन सही होनी चाहिए, यानी जिस तरह से एक्सीडेंट हुआ है उसी तरह से ज्यादातर आप लिखें। यानी अगर आपका फॉल्ट नहीं है फिर तो कोई मसला नहीं आएगा, लेकिन अगर आप कंफ्यूज हैं कि जी आपने क्या लिखना आएगा, तो यकीनन वी आर हियर टू हेल्प यू। तो ये जो है ये डायग्राम है बना के, और उसको जो है वो सारा आप उसको फिनिश कर दें, और उसके साथ साथ एक कॉपी जो है वो आपके लिए भी प्रिंट हो जाती है वहां पर ही, तो वो कॉपी आप प्रिंट करके जरूर ले लें अपने साथ, या अपने आपको जो है वो आप ईमेल कर दें, और उसके साथ साथ अगर प्रिंटेबल कॉपी है तो वो आप प्रिंटेबल कॉपी जो है वो भी आप ले लें। और क्योंकि ये डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी चाहिए होते हैंगे, वो इसलिए कि आपका क्लेम जो अगेंस्ट अदर ड्राइवर है ये उसकी बड़ी ज़्यादा बेसिस रहेंगी। याद रखें कि अगर आप क्लेम रिपोर्ट नहीं करेंगे तो आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपसे यकीनन ये क्वेश्चन कर सकती है कि आपकी गाड़ी को डैमेजेस बहुत ज़्यादा है, व्हाई यू डिडंट रिपोर्ट द एक्सीडेंट, यू शुड गो एंड रिपोर्ट द एक्सीडेंट, ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैगा। लेकिन बहरहाल अगर छोटा मोटा एक्सीडेंट हैगा और अगर आप, तो उसमें कोई मसला नहीं हैगा, आपकी इंश्योरेंस कंपनी उस पर ज़्यादा आपसे इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी, ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैगा। और जो है आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, ये आपने बहुत अच्छा टॉपिक छेड़ दिया था तो आज इस पे बात हो गई, तो नेक्स्ट टाइम जो आपने अपने इंट्रोडक्शन में टॉपिक दिए थे हम उस पे भी बात करेंगे। तो अभी जो है इसको बस समराइज करते हुए, व्हेनेवर देयर इज अ कार एक्सीडेंट यू नीड टू कॉल सैयद लॉ, वी आर हियर टू हेल्प यू, लास्ट 13 ईयर्स वी हैव बीन डूइंग दिस, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो सेटलमेंट में हमने जो है अपने क्लाइंट्स को दिलवाए हैंगे, एंड वी इंटरेक्ट डायरेक्टली विद अवर क्लाइंट्स, मीन्स टू से दैट वी स्पीक टू देम डायरेक्टली, मी एंड माई स्टाफ, so that we work together in a coordination like a team, ताकि आपके क्लेम की वैल्यू और आपकी जो भी एक्सीडेंट की नीड्स है उसको मैक्सिमाइज करें। तो फैल भाई नंबर आप बताएंगे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, यू हैव अ गुड वीकेंड, और आपके लिसनर्स को एज वेल
12: बहुत बहुत शुक्रिया। ये नंबर है, ये आप अपने पास रखिए, नंबर सेव कर लीजिए, ये नंबर बहुत कारामद, बहुत मुफीद और यूजफुल नंबर है। हादसे के हवाले से बात करें, आप ड्राइव करते हैं या नहीं करते हैं, यू मस्ट हैव दिस नंबर 416-937-5046। ये बैरिस्टर सैयद एम रजा का डायरेक्ट नंबर है, आपके काम आएगा 416-937-5046। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम के लिए, थैंक यू,
13: थैंक यू। तो फैल भाई थैंक यू।
14: आमिर कहते हैं कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जब हमारे पास एक डिफिकल्ट टाइम आता है,
12: या
14: कभी कभी हमारे पास डिफ़िकल्ट टाइम आता है तो हमें लगता है कि ज़िंदगी जो है वो फिर से रिवाइंड हो जाए, और हमें हर पल ऐसा लगता है कि हम इस चीज़ को और बेहतर कर सकते थे। अगर हम कल जो हमने कल किया उसको हम सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि हम बहुत बेहतर कर सकते थे, राइट। और काश ज़िंदगी सचमुच एक किताब होती, कहते हैं काश ज़िंदगी सचमुच एक किताब होती, पढ़ सकता मैं कि आगे क्या होगा,
12: वाह,
14: क्या पाऊंगा मैं और क्या दिल खोएगा, कब थोड़ी खुशी मिलेगी कब दिल रोएगा, काश जिंदगी सचमुच किताब होती। फाट सकता मैं उन लम्हों को जिन्होंने मुझे रुलाया है, जोड़ता उन पन्नों को जिनकी यादों ने मुझे हंसाया है, हिसाब तो लगा पाता कितना खोया और कितना पाया है।
12: वाह क्या कहें,
14: काश जिंदगी सचमुच किताब होती, वक्त से आंखें चुराकर पीछे चला जाता, टूटे सपनों को फिर से अरमानों से सजाता, कुछ पल के लिए कुछ और मुस्कुराता, काश जिंदगी सचमुच की किताब होती, है ना।
12: ये बहुत बड़े फलसफे की तरफ आपने इशारा किया है। देखिए एक फिल्म बनती है उसमें बहुत से वसाइल खर्च होते हैं, बनाने वाला बहुत खूबसूरत सेट बनाता है, दुनिया के बेहतरीन अदाकारों को कमाल के कैरेक्टर्स, कमाल के किरदार लिख के देता है, कहानी में बड़ी जान होती है, म्यूज़िक बड़ा शानदार होता है, लोकेशंस बड़ी भरपूर होती हैं और उसकी पिक्चर क्वालिटी का भी ख्याल रखा जाता है, उसकी डबिंग भी कहीं वेस्टर्न वर्ल्ड से करवाई जाती है, लेकिन बदकिस्मती से वो फिल्म नाकाम हो जाती है।
14: जी बिल्कुल,
12: चूँकि हर वो चीज़ जो आपको पसंद है ज़रूरी नहीं कि वो लोगों को भी पसंद हो।
14: जी बिल्कुल,
12: एक डायरेक्टर अपनी तमाम तर जहानत, तजुर्बा, अपनी धूप छाँव में अटी हुई मेहनत सारी की सारी उस फिल्म पर लगा देता है।
14: जी।
12: लेकिन वो फिल्म कामयाब नहीं हो पाती। ऑन दी अदर हैंड कभी कभी वो डायरेक्टर एक आम सी कहानी लेके, आम से कैरेक्टर्स को उस कहानी में पिरो के एक आम सी सादा सी फिल्म बनाता है और वो सुपरहिट हो जाती है। तो ये जिंदगी का फलसफा भी ऐसा ही है, कभी हम कुछ काम बगैर प्लानिंग के करते हैं और वो इत्तेफाकन किए हुए बगैर प्लानिंग के, बगैर मंसूबा बनाए हुए काम मशहूर व मारूफ हो जाते हैं और दुनिया में अपनी एक छाप छोड़ जाते हैं।
14: क्या बात है, ये आपकी बात जो लास्ट वाली लाइन थी कि कभी कभी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर कुछ आराम से ऐसी मूवी इन जनरल बना देते हैं, वो चल जाती है। किशोर कुमार जितने अच्छे सिंगर थे उतने अच्छे कॉमेडियन भी थे, बड़ी अच्छी एक्टिंग करते थे, मूवीज़ भी बनाते थे। उनकी पहली कुछ मूवीज़ उनकी बनी थी और वो बहुत चली, जिससे कि इनकम टैक्स उनको बहुत पे करना पड़ गया। तो उन्होंने एक मूवी बनाई चलती का नाम गाड़ी, लेट 50s में। अच्छा। और उसमें अपने दोनों भाइयों को भी लिया, अशोक कुमार और अनूप कुमार, कोई तीनों भाई थे इसमें, हीरोइन मधुबाला थी। और उन्होंने इस एम के साथ बनाई, फोकस होके स्ट्रिक्टली कि ये मूवी बिल्कुल फेल होनी चाहिए जिससे मैं लॉस दिखा सकूं और मेरा रिकवर हो जाए। और वो मूवी इतनी चली। तो कभी कभी होता है कि फ्लॉप के लिए बनाई गई है और चल गई, कभी आपने जैसे बताया कि सब कुछ डाल दिया। लेकिन
12: आपने आगाज किया बहुत खूबसूरत से अशार से, तो इस छोटे से सेशन का इख्तिताम भी कुछ शेरों से करना चाहते हैं। तुम हमारे किसी तरह न हुए, तुम हमारे किसी तरह न हुए, वरना दुनिया में क्या नहीं होता।
14: क्या बात है,
12: तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता।
14: क्या बात,
12: स्टे ट्यून्ड, दिस इज लवी डवी शो।

0: साहब आप थके मांदे थके हारे सारा दिन मेहनत करने के बाद जब घर जाते हैं तो आपको राहत अफजा कुछ घड़ियां चाहिए, सुकून चाहिए, थोड़ा सा इत्मीनान चाहिए, आप रिलैक्स होने के मूड में होते हैं, घर पहुंचते हैं, पहुंचते ही आपका जी चाहता है कि पर्दे स्क्रीन काफ़ी बड़ा हो, उस पर एक शानदार से फिल्म चल रही हो, क्रिकेट का कोई मैच देखने का इत्तेफाक हो, फैक्चुअल कंटेंट है तो कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म देख रहे हों, या फिर अगर मिजाज बड़ा शायराना सा बन गया है तो कोई अच्छा सा पुराना खूबसूरत सा मैडम नूर जहां का या मेहदी हसन खान का या फिर जगजीत चित्रा की गज़ल से दिल बहलाया जाए, शाम को और ख़ूबसूरत बनाया जाए, ये आपका जी चाहता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि वो पर्दे स्क्रीन जिस पर ये दिल के फफोले सांझे करें आप, वो बड़ी जानदार हो, आप उसके साथ चिपक जाएं और फिर गाने पे गाना चले और गानों का ये दौर चले, या फिर फिल्म पे फिल्म चले, फिल्मों का एक दौर चले, ये चाहते हैं आप। इसके लिए ऐसी पर्दा स्क्रीन के लिए, ऐसी बड़ी स्क्रीन के लिए, आला स्क्रीन के लिए, खूबसूरत ऑडियो क्वालिटी के लिए, बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी के लिए, रंगों के खूबसूरत इम्तिजाज के लिए आपको एक ही जगह जाना होगा, जहां हर शाम खूबसूरत शाम होगी, हर लम्हा खूबसूरत और रंगीन लम्हा बन जाएगा। घर आएंगे तो आपका वाकई जी करेगा घर में टिक के बैठ के कुछ देखने को। जगह एक ही है साहब अप्लाइंसेस के लिए, मायारी आला और कमाल का पायदार नाम डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स। ज्वाइन किया है सलीम चौधरी ने, वेलकम करते हैं आपको।
1: हमें भाई थैंक यू सो मच फॉर सच काइंड वर्ड्स। और मैं एक और भी ऐड कर देता हूँ, आजकल के जितने मॉडर्न टीवीज हैं
0: जी,
1: इनमें एक और चीज बड़ी मजे की आ गई है कि आप जैसे अभी विंटर में बैठे हुए हैं फ्रेंड्स के साथ
0: जी,
1: तो यू कैन मेक इट वर्किंग फायर प्लेस इलेक्ट्रिक। हाँ, वो पीछे एक ऐसा वो सीन चल रहा होता है और वहां पर ऐसी क्रैकलिंग साउंड आ रही होती है, वो जैसे वुड की फायर में बर्निंग की। दीज थिंग्स यू कैन ऐड, प्लस एक बड़ी अच्छी चीज व्हाट हैज एडेड अप टू दी दीज टीवीज दैट दे सैमसंग हैज कम अप अलोंग विद एलजी फ्रेम टीवीज।
0: अच्छा,
1: फ्रेम टीवीज आर सच अ नाइस थिंग दैट व्हेन यू पुट इट ऑन द वॉल व्हाट हैपन इज दैट इफ यू आर नॉट यूजिंग द एज ए टीवी इट बिकम्स a picture frame like Picasso ki painting jo bhi ho you can put it on it automatically wo uske upar play hoti rehti hai aur aapki family ki bhi pictures ho to you don't have to worry about ke koi banda paas se chalega usko lagega jaise aapne painting hire ki hai lekin evening time mein ya kabhi jaise aapne kaha tha Jagjit Singh aur Madam Noor Jahan ke agar kisi ne song sunne ho usko fireplace banana ho So having said that, तो मुझे लग रहा है कि we are going to be one of the best TV outlet for this year. You know, the amount of people who are interested in Sony, Samsung and LG TVs, they are huge. Especially अभी जो World Cup शुरू हो रहा है in about 14-15 days. उससे बहुत बड़ी हाइप है मार्केट में,
0: बिल्कुल,
1: एंड पीपल आर इनटू इट क्योंकि अभी तो प्लेऑफ चल रहे हैं, बट द मोमेंट प्लेऑफ विल फिनिश द वर्ल्ड कप स्टार्ट्स और उसके बाद आपको पता है कि वर्ल्ड कप ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ फ्रेंजी इन द मार्केट।
0: यस,
1: सो वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट सोनी डीलर्स। हमारे पास सैमसंग का 98 इंच का टीवी जो है इट्स अवेलेबल एंड वी आर गोइंग टू क्लियर ऑन दिस वीकेंड only for 1950 almost 100 inch ka tv hai aur 1950 plus tax mein
0: bilkul theek
1: sony ke hamare paas bravia 5 bravia 7 bravia 9 inki sound bar they are on clearance iske alawa lg is famous for its oleds
0: right
1: if you're looking for any oled tv in lg dixie is the place to come
0: sahi
1: और फिर हमारा ये दिस इज द लास्ट वीकेंड ऑफ जैसे हम पिछले दो दिन से कह रहे थे कि डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स हैज वन द डीलरशिप फॉर कैनमोर एंड वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट आई एम टेलिंग यू वन ऑफ द लार्जेस्ट कैनमोर डीलर इन द होल ओंटारियो
0: राइट
1: कि सबसे ज्यादा प्रोडक्ट हम उनसे नॉर्मली बाय कर रहे हैं वी हैव ऑर्डर अबाउट लाइक से 17 कंटेनर लोड्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड थर्डली आर प्राइसेस जैसे मैं आपको बताऊं कि इन अप्लायंसेस के ऊपर आमतौर पे जो हमारे नेशनल स्टोर जो कंपेटिटर हैं या हमारे कोई भी जो लोकल बिजनेस मीडियम साइज के जो बिजनेसेस हैं आर प्राइस जस्ट गिव यू आइडिया कि जो स्टोव है जो नेशनल स्टोर 799 का बेच रहा है फ्रिज 799 का बेच रहा है आप ये दोनों हमसे बाय करेंगे तो वी विल गिव $300 डिस्काउंट
0: वाह $300 डिस्काउंट है वाह
1: ये डिस्काउंट है यानी इफ यू बाय टू ऑफ देम यू गेट राइट वे $300 डिस्काउंट
0: वाह
1: इन द स्टोर सो आप ये समझे कि यू आर सेविंग अबाउट $150 ईच लाइक 650 का आपको स्टोर मिल जाएगा और 650 का ही फ्रिज मिल जाएगा और $399 का डिश वॉशर है और वाशर डायर हमारे पास एक आए हैं विदाउट एजिटेटर
0: जी
1: 5.2 क्यूबिक फीट लिटरली जो भी मार्केट में 5.2 क्यूबिक फीट के हैं दे आर अबाउट 899 to 999
0: जी
1: दिस ओनली दिस वीकेंड
0: सही
1: लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे टुमारो संडे एंड वी ऑलवेज इंक्लूड द मंडे इन आवर वीकेंड फॉर दीज फोर डेज सिर्फ आपको कोड जो है वो यूज करना पड़ेगा आमिर भाई का लवी दवी शो का
0: लाइक
1: फ्रॉम दैट रेफरेंस
0: या
1: इंस्टेड ऑफ 749 आई एम गोइंग टू टेल यू गुड प्राइस यू कैन गेट ओनली फॉर 495
0: दैट्स अ स्टैगरिंग डिफरेंस ये तो बहुत बड़ा फर्क है सलीम भाई वाह
1: बहुत बड़ा फर्क लिटरली यानी कि आप 749 से $495 $495 इन सब के ऊपर 2 साल की वारंटी है और इसके अलावा जो मेन चीज है कि वी इन द बिल्ट इन अप्लायंस है बिल्ट इन में क्या है कि वॉल ओवन है माइक्रोवेव है कुकटॉप आता है जो कि काउंटर के ऊपर लग जाता है एंड देन वी हैव यू नो बिल्ट इन डिश वॉशर जो कि पैनल रेडी डिश वॉशर आती हैं And the fourth one is in that one, जैसे panel ready fridges आ रही हैं. So those panel ready fridges, if you wanna see, you can come to the store, visit us. KitchenAid has given us a huge, you know, built-in kitchen. हमारे पास Bosch है, हमारे पास Samsung है, Electrolux है, and we are their authorized dealers. So if you are trying to upgrade your product and want to make sure that you want to get the best price. Before buying from anywhere else in whole city,
0: wow.
1: please come to Dixie Electronics. मैं आपको बताऊं कि आपको less than $8,000 में Frigidaire Gallery का पूरा you know built-in kitchen मिल सकता है.
0: बिल्कुल ठीक.
1: $8,000. आम तौर पे लोग people are buying those things you know roughly around $12,000-$13,000, but you will be getting the best product. In those kind of things.
0: बिल्कुल
1: ठीक. इसके अलावा हमारे पास आपको पता इलेक्ट्रिक फायर प्लेसेस हैं वॉशर ड्रायर हमारे पास है ऑल इन वन वेयर यू जस्ट व्हाट यू डू इज टेक्निकली इज दैट सैमसंग वाले को है ये बड़ी एक यूनिक सी चीज है कि आप सिर्फ आपने अपनी लॉन्ड्री को वॉशर के अंदर जो है वो जितने भी कपड़े हैं उसको रखना है रिमेनिंग इट विल वॉश इन 28 minutes.
0: Oh wow.
1: And 40 minutes में dry करेगा. You don't have to take the clothes out. Automatically कर देता है. और based on कि जितने ये आपके जो जितने भी कपड़े हैं, जैसे उनका soil level है, कितने वो उनको washing चाहिए होती है. तो ये इतनी ज़्यादा energy save कर रहा है कि literally आम तौर पे washer क्या होता है कि 55 minutes में हम wash करते हैं and 55 minutes में we dry.
0: वाह
1: दिस वन
0: ये तो क्या कमाल की प्रोडक्ट है चौधरी साहब. आप जानते हैं कि जब भी आप इसका तज़करा करते हैं तो न जाने क्यों मैं बड़ा एक्साइटेड हो जाता हूँ. किसी मासूम शोहर की तरह किसी बहुत नई नई हस्बैंड की तरह मुझे लगता है कि ये बड़े कमाल का प्रोडक्ट है और ये सूनर देन लेटर हम सबको ख़रीद ही लेना चाहिए। नंबर मैं आप शेयर कर देता हूँ, इस प्रोडक्ट के बारे में और भी बात करेंगे हम, सब हो जाएगा, कपड़े धुल भी जाएंगे, ड्राई भी हो जाएंगे, जो ही ये कपड़े धुल जाएं, ड्राई हो जाएं, आपको मैसेज भी आपकी घड़ी पर आ जाएगा कि काम हो गया है, कपड़े उठा लीजिए, कहानी ख़त्म, ये नंबर मिलाएंगे। और आज सलीम भाई से बात कीजिए, चाय का कप पिए, ये मशीन घर लाएं, ज़िंदगी आसान करें। 905-625-5900। बिजली बचेगी, टाइम बचेगा, सरदर्द बचेगी, आसानी पैदा हो जाएगी और आपके लिए बड़ी राहत हो जाएगी। अब सलीम भाई मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसका ज़्यादा फ़ायदा बीवियों को मिला या शोहरों को मिला?
1: आई थिंक इसका एज ए फैमिली मेरा ख्याल होगा।
0: अच्छा अच्छा।
1: तो आपको 40% इलेक्ट्रिसिटी की बचत है जो कि मियाँ की पॉकेट पे थोड़ा सा लाइट होगा। और बीवियों की बचत ये है कि देखें उन्होंने सिर्फ ट्रेन करना है हस्बैंड्स को वन टाइम के फ्रिज कपड़े कैसे डालने हैं, रेस्ट उनका, और देखें कितनी आसान सी ट्रेनिंग होगी, उनको कुछ यल नहीं करना पड़ेगा और आराम से सिखा सकती हैं सलीम को या आमिर भाई को कि जनाब रखने हैं। और बाकी ये खुद ही आई साइकिल सेलेक्ट करती है लिटरली, आई टेल यू दिस इज ऑल AI बेस्ड।
0: Oh, wow.
1: Number two, it consumes, आपको सोप को भी हर टच करने की जरूरत नहीं।
0: Wow.
1: आप वन टाइम इसको फिल कर दें एंड फॉर नेक्स्ट अप टू 47 लोड्स यू डोंट हैव टू वरी अबाउट के इसके अंदर कितना सोप डालना।
0: 47 लोड्स,
1: अप टू 47 लोड्स लिटरली, यानी आप समझे कि फॉर नेक्स्ट मंथ एंड हाफ आपको सोप को भी टच करने की जरूरत नहीं है।
0: अरे वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है।
1: काम सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपने सिर्फ कपड़ों को मशीन के अंदर रखना है और ये खुद ही वॉश करेगा, ड्राई करेगा, आपको फोन पे बता देगा कि क्लोथ्स हैव बीन ड्राइड आउट एंड वॉश्ड और डोर खुद खुद ओपन हो जाता है इसका, आपने कपड़े सिर्फ निकालने हैं। इसके अंदर ना कभी वो जो होता है ना आजकल एक मशीन के अंदर मोल्ड लग जाता है, कभी मोल्ड नहीं लगेगा इसके अंदर और सोक को आपको टच नहीं करना 47 डोर तक।
0: अरे वाह,
1: वन ऑफ दोस लग्जरीज Which literally you will, you know, any family who has future के अंदर मुझे लग रहा है ये सारा कुछ होगा ना, ये जैसे हमारे वॉशरूम्स हैं ये उन्हीं के अंदर चले जाएंगे ताकि वहीं पर लॉन्ड्री हो एंड व्हाटएवर टाइम यू नीड इट।
0: अच्छा, ये इनका साइज भी इतना छोटा है कि वहाँ वॉशरूम में ही लग जाएगा ये सारा सिस्टम।
1: 27 एक वॉशर के साइज के बराबर है ये।
0: ओ वाह वाह वाह, अमेजिंग, कमाल का प्रोडक्ट है ये, वाह।
1: यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग।
0: वेरी नाइस, ये तो कमाल का प्रोडक्ट है। अब जरा लवी डवी शो सुनने वालों के लिए स्पेशल डिस्काउंटेड प्राइस क्या होगा ये भी बता दीजिए।
1: देखिए ये मार्केट के अंदर आज की डेट में 2799 का है।
0: अच्छा,
1: आपके स्टोर के रेफरेंस से
0: जी,
1: आपके आवाज के रेफरेंस से और लवी डवी शो के रेफरेंस से मैं ये कह सकता हूँ कि आई कैन डू दिस वन फॉर 2395 फॉर दिस वीकेंड।
0: ओह वाओ, 2395 ओनली, एवरीथिंग इंक्लूडेड, वाह।
1: यस, इसमें और आपको इस ये लास्ट वीकेंड है, यू कैन गेट 0% फाइनेंसिंग ऑन दिस वन आल्सो।
0: जबरदस्त, वाह वाह,
1: एक साथ में है, यू डोंट हैव टू पे फुल अमाउंट और 0% फाइनेंसिंग है, कोई इंटरेस्ट नहीं है उसके ऊपर है और डिलीवरी फ्री दिस वीकेंड।
0: जबरदस्त, कमाल है ये।
1: जो बात इसकी सबसे बड़ी खूबी आमिर भाई हुई है कि 6.1 क्यूबिक फीट इसका ड्रम साइज है, विच इज द लार्जेस्ट राइट नाउ इन द होल मार्केट। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग 10 लॉन्ड्रीज यू मे हैव टू डू ओनली लाइक 5 लॉन्ड्रीज। टाइम की बचत देखें जरा, तो लॉन्ड्रीज पांच करनी पड़ेंगी इंस्टेड ऑफ 10 पर मंथ, और दूसरा ये है कि हाफ ऑफ द टाइम जो है उसमें सेविंग हो रही है। एंड फोर्थ वन जो चीज है इसके अंदर वो ये है कि कपड़ों की लाइफ बहुत ज्यादा बढ़ रही है।
0: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही,
1: इसकी लाइफ है, दैट हैज इंक्रीज्ड अ लॉट बिकॉज़ इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग एनर्जी एंड वॉशिंग एंड मेक द थ्रेड्स सो वीक ऑफ योर क्लोथ्स, इट विल सेव देम। सो आपकी एक शर्ट जो पहले 2 साल चलती थी या 3 साल, it can go on for next few years, like 5-6 years. कोई फर्क नहीं पड़ेगा.
0: बिल्कुल सही. यहाँ है नंबर, ये नंबर मिलाइए और मशीन घर ले आइए. सिंपल एज दैट. $500 का ये आपके लिए डिस्काउंट भी है, सहूलत भी है, टाइम भी बचेगा, एनर्जी भी बचेगी, काम भी हो जाएगा. 905-625-5900 905-625-5900. चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए. थैंक यू वेरी मच.
1: थैंक यू. थैंक यू.
2: The Lovey Dovey Show, driving you home, a melody above and beyond. Brought to you by Radio Toronto, Canada, Monday to Friday.
3: Lake Day ka plan tha, aur Toyota Tundra ke bina sukoon nahi, shor mila. But when you get a Tundra at your local Toyota dealer, to iski up to 11,000 pounds ki towing capacity se, aap decide karenge ki rukna kahan hai. Take advantage of red tag days. On now, lease a 2026 Tundra 4x4 Crew Max TRD Off-Road from $172 weekly for 36 months at 4.29% APR with $5,800 down. Visit shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
4: Another Dawn Clean with the Dawn Ducks.
5: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
6: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
5: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
6: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
5: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
6: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
5: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
4: Dawn Platinum, the better grease getter.
7: मम्मा, why don't you go to work now?
8: बेटा, तुझे क्या बताऊं कि मेरी जिंदगी ही रुक गई है. एक महीने से काम पर नहीं गई और अब इंश्योरेंस कंपनी क्लेम डिनाई कर रही है.
9: जिंदगी रुकती नहीं, बस रास्ता बदलना पड़ता है. कॉल सैयद एम रजा, आर कम्युनिटी इंजरी लॉयर, इंजरी लॉ के एक्सपर्ट लॉयर.
8: क्या वो मदद करेंगे?
9: मदद करेंगे. उन्होंने एक क्लाइंट को $2 million की एग्रीगेट सेटलमेंट दिलवाई. तुम्हारे लिए भी लड़ेंगे. इनके पास 12 साल से ज्यादा का experience hai and no fee until victory.
10: Car accident ya slip and fall? Don't call any third party agent. Directly call Sayyed M. Raza of Sayyed Law. Sayyed Law se Sayyed M. Raza.
9: Jahan sirf vaade nahi, result mile.
10: Call Sayyed M. Raza 416-937-5046. That is 416-937-5046.
11: Sirf mortgages. That's Rajiv Talwar, the mortgage superstar. Mortgage residential, low ya commercial, for customized mortgage solutions, choose Rajiv Talwar. Mushkil se mushkil mortgage ho, last minute deal ho, ya apni credit issues ho. Rajiv Talwar ka wasi ilm aur tajurba aapka kaam aasan kar dega. To yaad rakhiye, mortgage unse mat lijiye jo mortgage bhi karte hain, balki mortgage sirf unse lijiye jo mortgage hi karte hain. Call Rajiv Talwar of leading edge mortgage experts, 905-819-1001. 905-819-1001. License number 12374.
12: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना. साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स. पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर.
13: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर.
12: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स. बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी.
14: लवी डवी शो, आप हैं आमिर और शिवानी के साथ. और बड़ी एक्साइटमेंट के साथ अभी जो हमने खबर शेयर की, मंडे से आप हमें 2 से 3 तक आफ्टरनून ड्राइव में सुनेंगे. आपकी फरमाइश पर हम ये दोपहर में आपके लिए ये शो लेकर आएंगे. बहुत सारा म्यूज़िक होगा, बहुत सारी बातचीत होगी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होंगी और ये लवी डवी तरीके से आपके लिए अपने चिर परिचित अंदाज में, यानी कि फेमिलियर अंदाज में, जो आप पसंद करते हैं, पेश किया जाएगा. एक बड़ी अच्छी एक थॉट है आमिर, आप बिकॉज आप एक्सटेम्पो बड़ा अच्छा बोलते हैं और मेरी तरह आप प्रिपेयर होके नहीं बोलते, फिर भी उससे भी अच्छा बोलते हैं. तो एक चीज़ में ज़रूर आपकी इनपुट, मैं आपकी राय, आपकी इनपुट जानना चाहूँगी. एक थॉट है, हिंदी का है, मैं उसको ट्रांसलेट थोड़ा उर्दू में कर दूँगी. रिश्तों की, संबंधों की पाठशाला अगर बनाए रखनी है तो गणित विषय में कमज़ोर होना बहुत ज़रूरी है. इसका मतलब यह है कि हम जब किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, उसमें जो अच्छे ब्राइट स्टूडेंट्स हैं उनको एडमिशन मिलता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के ज़रिए और वो उस चीज़ को पढ़ते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज होता है, उसमें इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और उसमें वो माहिर होते हैं। और यार ये कि उनके लिए क्वालिफिकेशन एक ही होती है कि वो पढ़ाई में अच्छे होने चाहिए, मेरिट में आने चाहिए, हाँ, तभी उनको एडमिशन मिलेगा।
0: लाइक
14: लेकिन रिश्तों की पाठशाला, पाठशाला मतलब स्कूल, तो अगर रिश्तों का स्कूल अगर बनाया जाए तो उसमें कम अच्छा नहीं कमज़ोर होना ज़रूरी है एक सब्जेक्ट में किसी स्टूडेंट के, और वो है मैथ में। अगर आप रिश्तों की स्कूल बनाना चाहते हैं तो मैथ सब्जेक्ट में कमज़ोर होना बहुत ज़रूरी है। यानी रिश्तों में अगर आप मैथमेटिक्स लगाएंगे कि उसने दो किया तो मैंने तीन कर दिए, उसने तीन किए तो मैं तीन ही करूँ, चार कैसे कर दूँ, तो इसलिए जितना कमज़ोर आप मैथ में होंगे ना अपनों के साथ उतना ही रिश्ते मजबूत बनेंगे।
0: मैं ज़रा सा डिसएग्री करूंगा आपके थॉट के साथ,
14: ठीक है,
0: पूरे अदब से, पूरे एहतराम से, घुटनों को झुका के, लरजते हुए हाथों के साथ और कांपते हुए होंठों के साथ।
14: मतलब फ्राइडे को आप ऐसे ही लोगों से डिसएग्री करते हैं?
0: मतलब ये बड़ा आजिज़ाना सा तरीका है।
14: थॉट में फ्राइडे को ही कहा करूं?
0: नहीं, ख्वातीन के साथ डिसएग्री करने से पहले ये सारी चीजें कह देनी चाहिए।
14: जैसे भी चौधरी साहब कह रहे थे आसान तरीके से ट्रेन कर दीजिए।
0: तो ख्वातीन के साथ जब भी आप डिसएग्री करें तो उससे पहले एक तमहीद जरूरी है,
14: डिस्क्लेमर,
0: कम से कम एक सफे की तमहीद कि मैं तमाम दुनिया की माफिया मांगने के बाद ये डिसएग्री करना चाहता हूँ, तो ये मेरी तरफ से
14: जी।
0: अगर आप किसी रिश्ते को पक्का, सच्चा, मजबूत, पायदार, देर पा रखना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि हिसाब का बहुत पक्का होना चाहिए आप।
14: अच्छा,
0: 100% मेरे नज़दीक रिश्तों को मजबूत बनाने का एक ही फॉर्मूला है।
14: अच्छा,
0: और वो है डू मोर फॉर्मूला।
14: अच्छा,
0: आप हिसाब रखें किसी ने कितना किया, आप उससे ज़्यादा करने की कोशिश करें। दो दोस्ती, जैसे हम कहते हैं दोस्ती दो से शुरू होती है, एक तो दो के दरमियान होती है, टू इंग्लिश में कहते हैं, एक है देना, टू गिव। तो अगर आप हिसाब रखें कि शिवानी ने आज मेरी दो जुमलों में तारीफ की है, मेरे साथ की, मेरी रफाकत की, मेरी जो वर्किंग एथिक्स हैं उसकी, तो कल मुझे शिवानी के किसी एक पहलू की कम से कम 3 से 4 जुमलों में तारीफ करनी होगी।
14: एक इस पे बात आती है,
0: मुझे लगता है सर
14: कि तारीफ करते टाइम इसका मतलब जहन में ये चीज़ थी, कुछ मैथ था कि दो बार की तारीफ, इसका मतलब होता है कि मेरा मानना है, अगेन मेरा मतलब, मैं मेल फीमेल में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती, ये आजकल बिल्कुल समानता का, इक्वलिटी का जमाना है,
0: जी बिल्कुल,
14: तो मैं भी आपको पूरे सॉरी के साथ, पूरे रिस्पेक्ट के साथ, कि जब इंसान, जब आप मेरी तारीफ करें
0: जी,
14: हम और आप मान लीजिए दोस्त हैं
0: जी,
14: या आपने दोस्त की आप तारीफ करें,
0: हाँ,
14: तो आपको याद ही नहीं रहे कि उसने एक किया था कि दो तारीफ की थी,
0: हाँ,
14: जब आप उनकी तारीफ करें तो उस लम्हा मौजूद, जो आप कहते हैं मोमेंट में रह के, आपका दिल चाहे आप बोलते चले जाएं, नहीं दिल चाहे तो आप एक ही लाइन बोलें,
0: यानी हिसाब ही ना रखें,
14: ये पैरामीटर्स की तारीफ नहीं हो कि क्योंकि मुझे दो बोलना ही बोलना है, चाहे मुझे, मैं बिल्कुल ना, मुझे समझ में नहीं आए क्या बोलना है, फिर भी आज मैं दो बोलूंगा क्योंकि कल इसने दो बोला।
0: देखिए, दो का हिसाब रखने के लिए, या चलिए आपकी बात मान लेते हैं, दो का हिसाब ना रखने के लिए भी तो हिसाब का अच्छा होना ज़रूरी है कि ये दो था, मुझे अनगिनत करना है, तो अनगिनत भी तो किसी गिनती में ही आता होगा।
14: जी, अनगिनत गिनती में आता है, लेकिन उसके लिए दो को याद रखना ज़रूरी नहीं है। मतलब अनगिनत के लिए आपको वो गिनती को याद रखना ज़रूरी नहीं है, आपको ये याद ही नहीं होना चाहिए कि उसने दो तारीफ़ की कि नहीं की, बस आप उसमें खो जाइए कि इंसान आपकी तारीफ़ कर रहा है।
0: यानी आप उस लाइन से एग्री नहीं करती कि हिसाब की तो बहुत पक्के हो तुम देव
14: जी? वैसे हाँ जी वैसे मैं मैथ में मैं बहुत अच्छी थी, मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आते थे।
0: अच्छा?
14: मेरी जो पोजीशन क्लास में बनती थी वो एक मैथ से और एक हिंदी से बनती।
0: तो आजकल क्या हुआ फिर आपके मैथ्स को?
14: इसलिए अब एक एक उम्र के बाद छोड़ दिया
0: हिसाब किताब ही छोड़ दिया।
14: बहुत अच्छे बन गए मैथ में तो अब सोचा कि गणित को छोड़ ही दिया।
0: यानी आप ये कहना चाहती हैं कि आप किसी भी काम के जब उरूज पे पहुंच जाते हैं तो फिर वो बेमानी हो जाते
14: जी?
0: यानी आप मैथ के इतने उरूज पे पहुंच गए कि मैथ अपनी अहमियत ही खो गया?
14: नहीं, मैथ मेरे लिए पूरी है, लेकिन जब इट कम्स टू रिलेशनशिप।
0: अच्छा अच्छा।
14: पहले बचपन में रिश्तों में भी मैथ मेरा बड़ा मजबूत था।
0: अच्छा अच्छा।
14: तुम्हारे साथ रिश्ता तभी है जब तुम बना के रखोगे। अब थोड़ी मैच्योरिटी आ गई है।
0: थोड़ी नहीं, आप में इतनी मैच्योरिटी है कि कभी कभी मुझे यूं लगता है कि आप के अंदर एक छोटा सा हकीम भी छुपा हुआ है, एक छोटा सा आयुर्वेदा भी छुपा हुआ है, एक छोटी सी ब्यूटिशन भी आपके अंदर रहती है, एक होम मेकर भी आपके अंदर छुपी हुई है, एक छोटी सी कुक भी रहती है आपके अंदर। सो आप एक पूरा पटारा हैं। वाह,
14: 1935 की पैदाइश आपने कही है तो कुछ तो सीखा ही है ना।
0: 37 की कही थी, दो अपने पास से लगाए आज आप।
14: फिर आप मैथ पे आ गए।
0: स्टे ट्यून्ड, दिस इज लवी डवी शो।

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
2: इसी तरह जीटीए में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
3: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
4: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त है, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहाँ पहुँचे सभी वहीं पहुँचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
5: Another Don clean with the Don Ducks.
6: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
7: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
6: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
7: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
6: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
7: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
6: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
5: Dawn Platinum, the better grease getter.
8: ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਪੈਣਾ। ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਸਨਗਲਾਸਿਸ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਸਟੋਰ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋਹਣੇ ਫੇਸ ਵਾਲੀ

0: Optical, the name you can trust.
1: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर,
2: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर।
1: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
3: लवी डेवी शो, आप हैं शिवानी और आमिर के साथ। कहते हैं कुछ वक्त शरारतों को भी दिया कीजिए, वरना ये हसीन पल चले जाएंगे और फिर से लौट के नहीं आएंगे। तो हमारे अंदर एक ज़रूर एक बच्चा ज़िंदा होना चाहिए, एक चाइल्ड रहना चाहिए। जो एक बच्चा होता है ना, वो बहुत ट्रांसपेरेंट होता है, बहुत ऑनेस्ट होता है, हर चीज़ बता देता है। और हम जब बड़े हो जाते हैं तो हम कुछ ज़्यादा समझदार हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि हम डॉक्टर भी बन जाएं, हमारी अगर तबीयत ख़राब है तो हम अपने आप ही उसका ट्रीटमेंट कर लें। और इसके लिए हम जाते हैं, बस 2-3 दवाइयाँ खा लेते हैं और हम अचानक से ठीक फील करने लगते हैं। और हमें लगता है कि हमारी बड़ी से बड़ी बीमारी जो है वो यूँ ख़त्म हो गई कि बस फिर से लौट के नहीं आएगी। लेकिन चंद घंटों के बाद फिर से हमें सिम्टम्स पता चलने लगते हैं और हम फिर परेशान होते हैं। और कभी कभी तो जब बहुत देर हो जाती है तब हमें लगता है कि अब कुछ करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आराम से आप अपनी ज़िंदगी से हटा सकते हैं, इसको दूर कर सकते हैं। और वो सिर्फ 10 नंबर के फासले पर ये ट्रीटमेंट आपके लिए अवेलेबल है। पहले नंबर नोट कीजिए, क्योंकि जिन मेहमान से हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं उनसे बातचीत के बाद इस नंबर की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। 4374383399। और बिल्कुल परेशान नहीं हुई, इंटरव्यू के बाद आमिर जी ये नंबर फिर से अनाउंस करेंगे अपने अंदाज में। तो आयुर्वेद और हर्ब्स गुरु जी हमारे साथ जब जुड़ते हैं तो हमें लगता है कि अचानक से हम अच्छे होने लगे। क्योंकि गुरु जी एक और बड़ी खासियत है गुरु जी की, आमिर जी, जो हम लोग एक बार मिलने गए थे तो वो कह रहे थे कि जब गुरु जी के पास जाते हैं लोग तो 80% ठीक हो जाते हैं।
4: बिल्कुल, उनको देख के, उनसे बात करके, उनसे मिल के। कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं, ये ऊपर वाले की देन है बहुत बड़ी, कि उनको देखते ही पॉजिटिव एनर्जी आपको मिल जाती है। और बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो सिर्फ आपकी कुव्वते मुदाफ़त की वजह से, यानी जो कुव्वते मुदाफ़त का मतलब है कि वो कुव्वत, वो ताकत, वो शक्ति जिसे हम कहते हैं जो बीमारियों को मात देती है, कुव्वते मुदाफ़त।
3: गुरु जी के सामने हम बैठते हैं जाके तो ऐसा लगता है कि हम बीमारी हमारे शरीर से, बॉडी से निकल रही है।
4: जी बिल्कुल।
3: और गुरु जी 4 दिन ब्रैम्पटन में होते हैं, पहले से मैं आपको बता दूँ, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। और आमिर 3 दिन गुरु जी स्कारब्रो में होते हैं।
4: और ये सारा वक्त लोगों के दिलों में होते हैं।
3: हाँ, और दिलों में ऑल 7 डेज। गुरु जी नमस्कार, कैसे हैं आप?
5: नमस्कार, नमस्कार बहन जी, मैं भगवान आशीर्वाद से अच्छा है। भाई साहब नमस्ते, भाई साहब
4: बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस दिस मॉर्निंग।
5: सही कहता है, हम लोगों को दिल में रहिए तो उसके बिना क्या चाहिए भाई।
4: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप रहते हैं गुरु जी, आप लोगों के दिलों में रहते हैं।
5: लोगों को दिल में रहे तो भी देखो, कोई भी बीमार हुई तो अभी बहुत लोग बता रहे, कोई भी बीमार आए तो मेरे को क्या है, कुछ नहीं, मेरे पास गुरु जी है, गुरु जी के पास जाए तो ठीक हो जाएगा, वैसा हिम्मत से रह रहा है बहुत लोग। ये सारा मेरा को पूर्व जन्म का भगवान का, खुदा का आशीर्वाद है, नहीं तो वैसा नहीं होता है। अभी भी मेरे पास एक लोग आ गया था, वो बताया था गुरु जी मेरे को कल चोट मारते या मेरे हिम्मत में रहा, कुछ नहीं, गुरु जी है, गुरु जी के पास जाए तो 5 मिनट में, एक दिन में ठीक हो जाता है, वैसा हिम्मत से आया था, वैसा बोल रहा है। वो सुन के मेरे को खुश होता है। देखो भाई एक मास्टर को, उसको स्टूडेंट अच्छा होने को मास्टर को हैप्पी है।
4: बिल्कुल सही कहा आपने।
5: एक माता पिता को, उसको बेटा अच्छा होने को माता पिता को हैप्पी है। वैसा एक डॉक्टर को, एक पेशेंट अच्छा होने से डॉक्टर के हैप्पी है। वैसा मेरा पेशेंट तो 99% नहीं बोलते, 100% लोग बहुत अच्छा होता है, इसलिए मेरे को भी हैप्पी होता है। हमारा शो सुन के कितना लोग, बहुत लोग आगे आ रहा है, सारा लोग ठीक हो गया था, जॉइंट पेन लोग एंड कमर के दर्द में लोग एंड आर्थराइटिस पर्सन, स्किन प्रॉब्लम के लिए, स्नीजिंग के लिए, हार्ट प्रॉब्लम के लिए एंड वो होता है, वो चर्बी होता है, फैट को अंदर बॉडी का फैट होता है, फैट बहुत लोगों को लूज हो गया। बच्चा कम से कम अभी मैं एक साल में 26 लोगों को बच्चा हो गया भैया, ये भगवान आशीर्वाद से। फर्टिलिटी के प्रॉब्लम के लिए आता है, पीसीओडी के प्रॉब्लम के लिए।

0: आता है लेडीज को वाइट डिस्चार्ज हो ओवर ब्लीडिंग हो वैसा भी लोग भी आके ठीक होता है। और मेन इधर इधर ये कंट्री में एलर्जी एंड जॉइंट पेन ज्यादा होता है। हमारा भाई भाई लोगों को बहुत दूर लॉन्ग टर्म वो ड्राइविंग करता है इसलिए लोअर बैक पेन होता है। L3, L4, L5 में बल्जिंग होता है, डिस्क प्रॉब्लम होता है, वैसा लोगों को बहुत लोगों को ठीक हो गया। यूरिक एसिड से भी दूर कर दिया था लोगों को।
1: बिल्कुल सही। यहाँ गुरु जी एक दो सवाल मैं भी आपसे पूछ चाहता हूं। आजकल लोगों में मोटापा बहुत हो गया है, ओबेसिटी जिसे कहते हैं, सांस फूल जाता है, दो कदम चलते हैं बैठने को दिल करता है, सुस्ती पड़ जाती है, बिस्तर में से निकलने को दिल नहीं करता, और जो शख्सियत है, जो पर्सनालिटी है, वो भी डैमेज हो जाती है एकदम से। तो ये मोटापे का इलाज क्या है आपकी नजर में?
0: ये मोटा का कैसा होता है भैया, हमारा बॉडी को अंदर फैट लेवल्स ज्यादा होता है
1: जी,
0: एंड हमारा मसल्स को अंदर पानी लेवल ज्यादा आता है, इसलिए ओबेसिटी हो जाता है, ताकत कम होता है। ताकत तब कम होते, देखो हमारा बॉटल में, ओपन बॉटल में क्या होता है, पानी नहीं तो उसके अंदर हवा होता है। अच्छा। हम पानी भरे तो हवा बाहर जाता है, वैसा बॉडी को अंदर ताकत नहीं होता है, उधर पानी बैठता है, चर्बी बैठता है, हमारा स्ट्रेंथ कम हो जाता है, ओबेसिटी हो जाता है, फैट ज्यादा बन जाता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा बॉडी बैठने के टाइम में भी, बैठ के उठने के टाइम में नहीं उठ सकता है, वॉक कर नहीं सकता है, श्वास बढ़ जाता है, बॉडी वीकनेस हो जाता है, ओबेसिटी हो जाता है। इस कारण से क्या होता है, बॉडी में आर्थराइटिस, शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल वैसा होने को प्रॉब्लम होता है, लेडीज को पीसीओडी होने का प्रॉब्लम हो जाता है, इरेगुलर पीरियड आने का प्रॉब्लम होता है, और हार्मोनल इनबैलेंस हो जाता है। उसको लिए हमारा पास हिमालयन हर्बल से, हम सच्ची हर्बल से बहुत अच्छा अच्छा में बन गया था, उससे बहुत लोग फर्क हो गया।
1: बिल्कुल ठीक। यहाँ आयुर्वेदा एंड हर्ब्स गुरु जी का नंबर दे रहे हैं, मोटापा हद से बढ़ रहा है, सांस फूल जाता है, सीढ़ियां दो भी नहीं चढ़ पाते, तीसरी चढ़ते हैं सांस फूलने की वजह से, मजीद आगे जा ही नहीं सकते हैं आप, वॉक नहीं कर पाते हैं, जिंदगी यूं लगता है जैसे डिसेबल या मफलूज होके रह गई है। तो आयुर्वेदा एंड हर्ब्स गुरु जी से बात कीजिए। सातवीं पीढ़ी है आयुर्वेदा में, मुगलिया दौर में मुगल बादशाहों का इलाज करते थे इनके बड़े, इनके बुजुर्ग। आज हम बहुत लकी हैं कि गुरुजी हमें यहाँ मुयस्सर हैं। ये नंबर मिलाइए, गुरुजी से बात कीजिए, 437-438-3399। नंबर दोबारा बता रहे हैं आपको, 437-438-3399। गुरु जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए, थैंक यू वेरी मच।
2: थैंक यू गुरु जी।
1: थैंक यू।
3: लवी डवी सॉन्ग ऑफ द डे इज ब्रॉट टू यू बाय रूहानी कॉलेज। आंखों में बसा है डॉक्टर बनने का सपना, या सोच रहे हैं मसाज थेरेपिस्ट का शानदार करियर हो अपना, तो बस आपको है रूहानी कॉलेज ही चुनना। बेहतरीन पढ़ाई से शानदार कमाई वाले करियर के सफर में आपका हम सफर, रूहानी कॉलेज। रूहानी कॉलेज, यहाँ सपने सच में सच होते हैं। 905-731-2555, 905-731-2555, रूहानी कॉलेज।

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
2: इसी तरह जीटीए में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
3: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
4: ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਪੈਣਾ। ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਸਨਗਲਾਸਿਸ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਸਟੋਰ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ।
5: ਸੋਹਣੇ ਫੇਸ ਵਾਲੀਏ, ਉੱਚੀ ਹੀਲ ਵਾਲੀਏ, ਉੱਚੀ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਪਾਵੇਂ ਦਿਲ ਤੇ ਥਵਾਰੀਏ।
4: ਫੋਰ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮਸ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸਨਗਲਾਸਿਸ, ਵਿਜ਼ਿਟ kandaoptical.com ਔਰ ਕਾਲ 416-922-5263। ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ, ਦ ਨੇਮ ਯੂ ਕੈਨ ਟਰਸਟ।
6: एक नाम जिस पे आपको भरोसा है, एक नाम जो आप बहुत ट्रस्ट के साथ लेते हैं, एक नाम जिसमें बहुत सारा प्यार समाया हुआ है। जब पूरी की पूरी फैमिली, आप अपनी फैमिली के साथ, लव्ड वंस के साथ जहाँ पर जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, और वो शॉपिंग पे लिए हुए जब ग्लासेस आप लगाते हैं और सब एक तरीके से बिल्कुल नो सेम टू सेम बन के हम हॉलीडेज़ पर जाते हैं, स्टाइल में रहते हैं, एक पूरी अपीयरेंस पर ही फ़र्क पड़ जाता है। अगर अच्छे से आपने लगाए हो आमिर, एक लुक ही चेंज हो जाता है, और नहीं तो आपको बहुत कुछ काम करना पड़ता है अपने ऊपर अगर ग्लासेस अच्छे नहीं लगाए हैं। और कांडा ऑप्टिकल एक ऐसा नाम है जिसकी किसी भी लोकेशन पे चले जाए, काफ़ी चीज़ों को बड़े स्ट्रिक्टली फॉलो किया है इस हर एक लोकेशन ने। एक तो कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी है, जो स्टाफ है वो इतना एफिशिएंट है, इतना स्माइलिंग है, और इसीलिए खूबसूरत भी नज़र आता है, और हर तरफ एक स्टाइल नज़र आता है। ज़िंदगी को खुश नुमा तरीके से जीने का जज्बा हर एक लोकेशन में नजर आता है, और जो ब्रेन है के पीछे वो है अश्विनी कांडा जी।
7: जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ निभा रहे हैं जीटीए में कामयाब बिजनेस पर्सन की अगर बात की जाए, उनका जिक्र किया जाए, तो एक बड़ा और पायदार, अच्छा और मोतबर नाम अश्विनी जी का भी है। बात करते हैं, वेलकम टू द शो सर।
8: थैंक यू वेरी मच अमीर जी, शिवानी जी, आप बड़े ही प्यारे ढंग से मुझे इंट्रोडक्शन दी, मेरी जानकारी सभी तक शेयर की, थैंक यू वेरी मच। देखिए, बहुत देर से इस बिजनेस में हूँ, 1980 में जब मैं इस कंट्री में आया तो उसी टाइम से एक ही काम मुझे आता है कि ग्लासेस कैसे बनाने हैं, उनको रंग कैसे करना है, उनको हार्डन कैसे करना है, यू नो ऑल दिस। इफ यू गो, ये लंबा सफर है, तो इसमें बहुत कुछ सीखा है, कॉन्फिडेंस काफी आया है। उसके बाद देखो, सीख भी रहे हैं रोज की रोज, देयर इज नेवर एंडिंग, एंड लकीली वी हैव ए वेरी वेरी good team to work with me, and our community ne bahut hame saath diya hai. Since then we have multiple locations around GTA, and abhi to humne Kitchener mein bhi khola hai, Burlington mein, Milton mein, so all these areas we have locations. A few more are coming which we will share with our audience, obviously jaldi hi sunne walon tak pahunchayenge. But again, इसका सारा जो क्रेडिट है हमारी कम्युनिटी के ऊपर जाता है, क्योंकि उन्हीं के रीजन वी हैव ऑल दिस, एंड आल्सो अ मीडिया हु प्लेड अ बिग रोल इन अवर बिजनेस, बिकॉज जितना मर्जी हम अच्छा हो, पर एक बार पहली बार तो कस्टमर को लाने के लिए मीडिया जरूरी होता है, बिकॉज दे टेक अवर इंफॉर्मेशन एंड शेयर इट with everybody.
6: जी.
8: इसी रीजन लोग आते हैं, एक बार हम प्रूव कर देते हैं, then they continue to come.
6: अश्विनी जी कितने honest हैं, कह रहे हैं कि एक बार तो जरूरत पड़ती है, फिर कोई आ गया ना, फिर तो अश्विनी जी जिंदगी भर के लिए अपना बना ही लेंगे।
8: Honestly, देखिए, अगर पहली बार में हम फेल हो जाएंगे तो जितना मर्जी आप शोर मचाएंगे तो वो नहीं जाएंगे, वो कहेंगे ये दिस इज नॉट गुड। तो हमने ये पकड़ा होता है कि एक बार जब आ गया ना, एंड देन वी विल मेक श्योर वी प्रूव इट, एंड अगेन रोज की रोज मीडिया हमें हमेशा जरूरत हमारे पास, हमारी हमें उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उनकी हमेशा ही बिजनेस को जरूरत होती है, बिकॉज नए नए लोग एंटर करते हैं, नए नए लोग आते हैं, एंड एवरीबॉडी नीड्स टू अपडेट. मैकडॉनल्ड है, बड़ी बड़ी कंपनीज, होटल, ये देखिए इतनी बड़ी कंपनी. डू यू थिंक एनीबॉडी नीड देयर introduction? No. Everybody knows those names, but they still advertise.
7: Yes.
8: Reason they do it, they keep you up to date with information. They keep you in loop. And this is why media के लिए तो ताली बजती ही है.
7: बिल्कुल. मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ अश्विनी जी के, हम तो आपकी प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, ग्लासेस की बात करते हैं, स्पेक्स की बात करते हैं, लेकिन लोग आपकी मोहब्बत में ज्यादा आते हैं, इसकी क्या वजह है?
6: ये मतलब ना, ये इससे इससे अश्विनी जी को 15-16 साल जानना पड़ेगा तो पता.
8: देखिए बहुत ही आप अच्छे हो अमीर जी, आप बड़े बड़े अच्छे हो, दिल के अच्छे हो, बड़े खुश मिजाज हो, दिल लगा के रखते हो जब आते हो तो. आपको तो मुझे लगता है एक यक यक क्लब में एंट्री भी करनी चाहिए. Because you know you are so good at it. Also, at least give them 1 hour a day. Maybe a weekend. You know, 1 hour stage show, we go there and watch you and enjoy life. You know, 10 साल तो ऐसे ही बढ़ जाएंगे.
7: चले ये है कि कम से कम एक शख्स तो जरूर टिकट खरीदेगा, अश्विनी जी तो जरूर खरीदेंगे उसकी टिकट उस शो की.
8: नहीं नहीं, हम शिवानी जी हम सब इकट्ठे आएंगे वहाँ पे. तो बड़ा मजा आएगा.
7: थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.
8: इम्पोर्टेंट शिवानी जी, वी हैव ए ग्रेट पर्सन, यू नो, जो हमें सभी का बहुत साथ देता है, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम एज वेल. शिवानी जी तो मुझे बहुत बहुत बहुत पुराने, इनको तो तब से जानता जब जी छोटे से.
6: देखिए एक बार हमारे जिस स्टेशन में मैं पहले थी, वहाँ के ओनर ने किसी से मिलवाया कि हमारे पास ये देववंश से हैं, तो मुझे अचानक से लगा कि ये कुछ मतलब मुझे 1930 के बॉन्ड तो नहीं समझ रहे. तो मैंने उनके सामने कहा, जी हम, मैं ना बचपन में भर्ती हो गई थी, यहाँ पे खेलने आती थी तो मैं पत्थर मार मार के ग्लास तोड़ती थी. तो इन्होंने कहा कि बहुत तुम उधम मचाती हो, यहाँ काम करो थोड़ा सा. तब से हम
8: बहुत ही अच्छा लगता है आपसे बातचीत करने का. एंड अगेन सभी सुनने वालों का मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि हमें बहुत सपोर्ट करते हैं. एंड इसी एक ही उम्मीद है, एक ही विनती है कि एनी टाइम यू आर इन ए मार्केट टू बाई ग्लासेस, कॉन्टेक्ट लेंसेज, आई एग्जाम, हमें जरूर याद रखिए कांड ऑप्टिकल को. वी विल मेक श्योर कि आपको हम बढ़ चढ़ कर आपको बढ़िया प्रोडक्ट देंगे, बेटर सर्विस देंगे. एंड उसके साथ साथ ईद मुबारक भी मैं सभी सुनने वालों को करना चाहूँगा. बहुत ही अच्छा और त्यौहार है, तो उसके लिए भी इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर एवरीबॉडी. तो उसके लिए ईद की भी मुबारक सभी को. एंड कीप अप योर ग्रेट वर्क.
6: थैंक यू.
8: 416-922-5263 कांडा ऑप्टिकल का नंबर है
6: जी.
8: इसमें जब कोई भी डायल करते हैं तो दे कैन रीच Kanda Optical any store and book their appointment. And also we have a website kandaoptical.com. वहाँ जाके भी हम अपडेट करते रहते हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी डालते रहते हैं. कार्ड ये है, क्रोम हार्ट ट्रिम, ये जो टॉम फोर्ड है, प्राडा, डीटा, वेलेंटी, ऑल दीज ब्रांड्स आर अवेलेबल एट कांडा ऑप्टिकल. आइए, ढेर सारी सेविंग कीजिए, मौका दीजिए. वी विल मेक श्योर यू आर सुपर हैप्पी विद एवरीथिंग. थैंक यू.
6: थैंक यू अश्विनी जी, प्लेजर हैविंग यू विद अस ऑलवेज.
8: थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच.
9: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहाँ पहुँचे सभी वहीं पहुँचे आप भी. अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास. टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ. लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन. विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे.
10: शगन का दिन चढ़ेगा, सजना घर आएंगे, टोली लेकर जाएंगे, दुल्हन सजेगी, शहनाई भी बजेगी, लम्हा के संग हर घड़ी यादगार बनेगी. शादी हो या थीम शो, कॉर्पोरेट पार्टी हो या कोई खास इवेंट, ये पल तभी यादगार बनते हैं जब प्लानिंग हो परफेक्ट और एग्जीक्यूशन हो बेस्ट। और ये सब आपको मिलता है लम्हा इवेंट्स के साथ। डेकोरेशन से लेकर एंटरटेनमेंट तक, लाइट से लेकर मेहमानों की मुस्कान तक, सब कुछ बेमिसाल सेलिब्रेशन जो याद रहे सालों साल। तो इवेंट की डेट आप फिक्स कीजिए, बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए। लम्हा इवेंट्स, हर पल मुस्कुराइए, जिंदगी मनाइए। कॉल 416-522-0543।
6: क्या आप अपनी बढ़ती मॉर्गेज पेमेंट से परेशान हैं और आपको मॉर्गेज पेमेंट के लिए फाइनेंशियल हेल्प चाहिए? तो गौर से सुनिए, मॉर्गेज रिलीफ प्रोग्राम में एनरोल कीजिए। आप हर माह 500 से $1,500 तक की फाइनेंशियल एड हासिल कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 50 साल से 65 साल है, अच्छा क्रेडिट स्कोर है और पिछले 5 सालों में आपने अपना घर रीफाइनेंस नहीं कराया है और आपको मॉर्गेज पेमेंट में वाकई मुश्किल हो रही है, तो ये प्रोग्राम आप ही के लिए है। आज ही हमारे लोकल प्रोग्राम काउंसलर राज से बात कीजिए। राज 416-605-2584। लवी शो पर आखिरी बार 9 से 11 के शो में आपसे इजाज़त, और मंडे से हम 2 से 3 आपके साथ होंगे। उसी अंदाज में, उसी स्टाइल में आप सभी के साथ रूबरू होंगे, आप सभी से फ़ोन कॉल पर बातचीत होगी और ज़रूर हमें सुनिएगा इसी चैनल पर 2 से 3 मंडे से। हम एक नए टाइम पर आ रहे हैं, बहुत खुशी के साथ ये अनाउंसमेंट आपसे कर रहे हैं। होती है आपसे मुलाकात बहुत जल्द। और 416-303-3639, हैव अ नाइस वीकेंड, नमस्कार।
7: जिंदगी यह तब्दीली का नाम है। बहुत सी बातें, बहुत सी चीज़ें, बहुत से वाकयात जो आपके साथ रूनुमा होते हैं, उनके बारे में आपने ज़िंदगी में कभी सोचा भी नहीं होता। ज़िंदगी प्लानिंग नहीं है, ज़िंदगी बेसाख्ता होने वाले कुछ वाकयात, हादसात, सानहात का मजमुआ है। ये बात ध्यान में रखिए। और अकड़ जाना एक मुर्दे की पहचान है। जब इंसान मर जाता है तो वो अकड़ जाता है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, उसमें लचक नहीं होती, उसमें गुंजाइश नहीं होती। जो ज़िंदा आदमी है, जिसमें एहसासात हैं, महसूसात हैं, जिसमें इमोशंस हैं, जिसमें इंसानियत का जज्बा है, वो हमेशा लचकदार रहता है। ये लचक ही इंसान की पहचान है। चाहे वो रिश्ता हो, नाता हो, ताल्लुक हो, साथ हो, बंधन हो, प्यार हो, चाहत हो, इकरार हो, इजहार हो, सब लचक मांगते हैं। लचकदार बन जाइए, अपने आप में, अपने रवैयों में, अपने मिजाज में गुंजाइश पैदा कीजिए। वो दरख्त जो झुकना नहीं जानता, ज़रा सा तेज़ हवा का झोंका उसको ज़मीन बोस कर देता है, वो गिर जाता है और दोबारा खड़ा होने की हैसियत नहीं रहती उस दरख्त में। जो दरख्त झुके हुए होते हैं और लचकदार होते हैं, उन पे फल भी लगता है, उनमें छांव भी आती है और तेज़ हवा के झोंके का शिकार नहीं होते, बड़े से बड़ा तूफान भी झेल लेते हैं। इसलिए गुंजाइश पैदा कीजिए, लचक पैदा कीजिए, रवैयों में आसानी पैदा कीजिए। अपना ख्याल रखिए। रेडियो टोरंटो कनाडा के स्टूडियो 2 से अगले प्रोग्राम तक के लिए, जो कि मंडे को 2 से 3 नशर होगा, अपना ध्यान रखिए। शिवानी और आमिर तोफैल को इजाजत दीजिए। हैव अ वंडरफुल डे अहेड एंड हे यू, आई लव यू।

0: இசை மீறி உஃப்.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
2: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला. बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है. टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ. लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन. विजिट shoptoyota.ca or योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे.
3: Another Dawn clean with the Dawn Ducks.
4: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
5: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
4: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
5: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
4: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
5: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
4: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
3: Dawn Platinum, the better grease getter.
2: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना. साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स. पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर.
6: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर.
2: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स. बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी.

0: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहाँ पहुँचे सभी वहीं पहुँचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
1: बेस्ट साउथ एशियन क्लोथिंग के लिए एक ही स्टोर जहां पर आपको मिलेंगे एक छत तले बेस्ट फैशंस, बेस्ट स्टाइल्स एंड बेस्ट प्राइसेस। एशियंस पॉपुलर साउथ एशियन क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल स्टोर नियर मार्कम रोड एंड लॉरेंस एवेन्यू इन स्कारब्रो, 3601 लॉरेंस एवेन्यू ईस्ट, यूनिट नंबर 23, स्कारब्रो। नोन फॉर देयर साड़ीज, लहंगा, सलवार सूट्स, ब्राइडल वेयर, मेन्स ट्रेडिशनल क्लोथिंग, ज्वेलरी एंड गिफ्ट आइटम्स। एशियंस 416-438-6568, ईस्ट और वेस्ट। Asians is the best.
2: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन? तो जाएं एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस। वहाँ बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस। साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री। मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही। आज ही अपॉइंटमेंट लें। कॉल रमेश एट 416-990-2462। एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स the care it deserves.

0: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला। बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स टीआरटी ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन। विजिट shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
1: Another Dawn clean with the Dawn Ducks.
2: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
3: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
2: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
3: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
2: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
3: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
2: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
1: Dawn Platinum, the better grease getter.
4: क्या आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यून अप माई मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें। वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स। नए टायर्स लें एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिपेयर भी, साथ में ब्रेक, सस्पेंशन फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी। और हाँ, विद अ मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1,000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री। सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील। कॉल 9046-1000 for Midland and Sears and 416-757-1000 for Midland and Ellesmere or visit mymechanicauto.ca.
5: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

0: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला। बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन। विजिट shoptoyota.ca or योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
1: Another Don Clean with the Don Ducks.
2: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
3: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
2: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
3: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
2: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
3: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
2: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
1: Dawn Platinum, the better grease getter.
4: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन? तो जाएं एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस। वहाँ बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस। साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री। मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही। आज ही अपॉइंटमेंट लें। कॉल रमेश एट 416-990-2462। एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स the care it deserves.

0: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहां पहुंचे सभी वहीं पहुंचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
1: बेस्ट साउथ एशियन क्लोथिंग के लिए एक ही स्टोर जहां पर आपको मिलेंगे एक छत तले बेस्ट फैशंस, बेस्ट स्टाइल्स एंड बेस्ट प्राइसेस। एशियंस पॉपुलर साउथ एशियन क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल स्टोर नियर मार्कम रोड एंड लॉरेंस एवेन्यू इन स्कारब्रो, 3601 लॉरेंस एवेन्यू ईस्ट, यूनिट नंबर 23, स्कारब्रो। नोन फॉर देयर साड़ीज, लहंगा, सलवार सूट्स, ब्राइडल वेयर, मेंस ट्रेडिशनल क्लोथिंग, ज्वेलरी एंड गिफ्ट आइटम्स। एशियंस 416-438-6568, ईस्ट और वेस्ट। Asians is the best.
2: क्या आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यून-अप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें। वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स। नए टायर्स लिए एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिपेयर भी, साथ में ब्रेक, सस्पेंशन, फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी। और हाँ, विद मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1,000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री। सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील। कॉल 9046-1000 for Midland and Sears and 416-757-1000 for Midland and Ellesmere or visit mymechanicauto.ca.

0: Another Dawn Clean with the Dawn Ducks.
1: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
2: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
1: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
2: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
1: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
2: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
1: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
0: Dawn Platinum, the better grease getter.
3: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं शोर मिला बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स टीआरडी ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे
4: बेस्ट साउथ एशियन क्लोथिंग के लिए एक ही स्टोर जहां पर आपको मिलेंगे एक छत तले बेस्ट फैशंस, बेस्ट स्टाइल्स एंड बेस्ट प्राइसेस। एशियंस पॉपुलर साउथ एशियन क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल स्टोर नियर मार्कम रोड एंड लॉरेंस एवेन्यू इन स्कार्ब्रो 3601 लॉरेंस एवेन्यू ईस्ट यूनिट नंबर 23 स्कार्ब्रो नोन फॉर देयर साड़ीज लहंगा सलवार सूट्स ब्राइडल वेयर मेन्स ट्रेडिशनल क्लोथिंग ज्वेलरी एंड गिफ्ट आइटम्स एशियंस 416-438-6568 ईस्ट और वेस्ट एशियंस is the best.

0: listen to us, around the universe. www.cmr.fm.
1: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला. बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है. टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ. लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स टीआरटी ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन. विजिट shoptoyota.ca or योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे.
2: Cashpoint, one-stop shop for all your money transaction needs. हम provide करते हैं honest और reliable services for all your financial needs, जैसे कि worldwide money transfer, check cashing, currency exchange and buyback gold loan at exceptionally low rates. दुनिया के किसी भी कोने से send और receive money transfers, reliable, convenient and affordable. That's what Cashpoint money transfer services give you. Cashpoint offer करता है top dollars for your gold. Unwanted or used gold के लिए Cashpoint देगा fair market value. Located at 3852 Finch Avenue, Eastern Scarborough, Unit GO3. Aaj hi call karein 416-284-7000. 416-284-7000.
3: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना. साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स. पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर.
4: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर.
3: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स. बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी.

0: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
1: कैशपॉइंट वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल योर मनी ट्रांजैक्शन नीड्स। हम प्रोवाइड करते हैं ऑनेस्ट और रिलायबल सर्विसेज फॉर ऑल योर फाइनेंशियल नीड्स, जैसे कि वर्ल्ड वाइड मनी ट्रांसफर, चेक कैशिंग, करेंसी एक्सचेंज एंड बायबैक गोल्ड लोन एट एक्सेप्शनली लो रेट्स। दुनिया के किसी भी कोने से सेंड और रिसीव मनी ट्रांसफर्स, रिलायबल, कन्वीनियंट एंड अफोर्डेबल। दैट्स व्हाट कैशपॉइंट मनी ट्रांसफर सर्विसेज गिव यू। कैशपॉइंट ऑफर करता है टॉप डॉलर्स फॉर योर गोल्ड। अनवांटेड और यूज्ड गोल्ड के लिए कैशपॉइंट देगा फेयर मार्केट वैल्यू। लोकेटेड 3852 Finch Avenue, Easton Scarborough, Unit GO3. आज ही कॉल करें 416-284-7000, 416-284-7000.
2: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहां पहुंचे सभी वहीं पहुंचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।

0: South Asian Unlimited Radio, Monday to Friday, 12 to 2 p.m. South Asian Unlimited Radio, जहां news, views, sports, entertainment की खबरें होंगी बिल्कुल unlimited. Entertainment तो बहुत है, लेकिन यहां पर मिलेगा आपको बिल्कुल unlimited. News और views तो हर जगह मिलेंगे, लेकिन यहां पर मिलेगा बिल्कुल unlimited.
1: यहां भी होगा, वहां भी होगा, अब तो सारे जहां में होगा क्या? मेरा ही जलवा.
0: जी हाँ, साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो का जलवा मंडे टू फ्राइडे 12 से 2 बजे तक. पापा, ये कौन से शो की बात कर रहे हैं पापा?
2: है आदत, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत.
0: जी हाँ, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत. ये उस शो की बात कर रहे हैं जिसका नाम है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो, मंडे टू फ्राइडे 12 टू 2 पीएम.
3: और म्यूजिक म्यूजिक स्टार्ट करो भाई, लेके
0: रोशनी कर खुदा को हो मंजूर, आंधियों में चिराग जलते हैं. साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो, मंडे टू फ्राइडे 12 टू 2 पीएम. स्टे ट्यून्ड.

0: The advertisements, views, and opinions expressed in the radio show are that of the sponsors, guests, and callers, and are not necessarily those of the South Asian Unlimited show, host, and its producers. The show is for entertainment purposes only and does not advocate any sponsors' messages. It is solely the responsibility of the advertiser or sponsor. नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम मैं सनी जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर मंडे टू फ्राइडे 12 टू 2 पीएम साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो जहाँ न्यूज़ व्यू स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट की खबरें होती हैं बिल्कुल अनलिमिटेड स्टूडियो का नंबर 416-593-0055 और बाहर का तापमान 23 degrees Celsius एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर विल हिट 25 to 26 degrees today and little higher than yesterday of course temperatures and sunset hoga 8:50 per 8:50 p.m. hoga sunset and minimum temperatures at night time today 8 degrees single digits tomorrow 21 and 10 sunday ko 24 aur 11 but we are looking at next 7 days of a lot of sun and a bit of clouds and beautiful weather hai nothing to complain it's brampton tv and appliance ki taraf se ye segment jo hai hum aap tak pahunchate hain the weather report aap pahunchiye brampton tv and appliance par 801 bovade drive west at the corner of bovade and chakusi in brampton to get the amazing deals jo eid ki extended deals hai for this weekend and tv appliance laundry ke sultan aapko amazing deals offer kar rahe hain aaj hai south asian unlimited radio ka bollywood friday jahan par geet sangeet ka karwan chalega pehla geet aapne slum dog mill नेर से सुना सुखविंदर सिंह की आवाज़ में जय हो जिससे हमने जय हो करके दिन की शुरुआत कर ली है 12:15 बजे हमारी हेडलाइंस हैं स्पॉन्सर्स के मैसेजेस हैं एंड द गुड थिंग दैट हैपेंड यस्टरडे वाज कि 14 साल की एस्थर जो गायब थी पिछले दो हफ्ते से हैज़ बिन फाउंड सेफ एंड ऑब्वियसली जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है उसमें उस इंसान को शख्स को जो है हॉस्पिटल लेके जाया जाता है फॉर 72 आवर्स मॉनिटर किया जाता है बट शी इज़ बैक विद हर फैमिली दैट्स अ ग्रेट थिंग लॉट ऑफ पीपल वर ऑलमोस्ट गिविंग अप होप यू नो बट चमत्कार हुआ है एंड ग्रेट वर्क दैट द पुलिस फोर्स हैज़ डन उसके लिए भी उनको बिल्कुल जो है क्रेडिट जाता है फॉर डूइंग सच एन अमेजिंग वर्क एंड 12:08 है मे 29th है टमोरो इज़ द वीकेंड एंड देन मंडे को जब मुलाकात होगी तो फिर होगा नया हफ्ता नया महीना एंड जून के महीने में हम कर लेंगे अपनी पूरी एंट्री एंड इसके अलावा जो है 416-593-0055 और फीफा वर्ल्ड कप की तैयारियां चल रही हैं पार्क टू सर्व एज फीफा ट्रेनिंग साइट ये भी खबर सामने आ रही है क्योंकि अब फीफा को लेकर जून और जुलाई में पूरी धूमधाम से फीफा फीफा फीफा ही हर तरफ सुनाई देगा एंड इट्स अ गुड थिंग फॉर कैनेडा बिकॉज जितना भी फीफा यहाँ आने से जितनी गेम बड़ी होगी उतना ही हम सबके लिए अच्छा है डिक्लाइनिंग स्टूडेंट इनरोलमेंट की वजह से यॉर्क रीजनल डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड ने भी कट्स का ऐलान किया है प्रोविंस पैसेस बिल अलाउिंग to take over Toronto's stake in the deal that governs airport, Billy Bishop Airport. Province plans to designate airport special economic zone to fast track its expansion. And closure hoga on Lakeshore West and Berry Go lines this weekend, obviously for a lot of work that is being done. छोटी सी ब्रेक लेते हैं और जतिंदर गंदम भी हमारे साथ होंगे आगे चलकर रियल्टर जतिंदर गंदम उनसे क्विकली बातचीत करेंगे देर इज़ अ प्रॉपर्टी मस्कोका में कॉटेज प्रॉपर्टी है जो कि बहुत ही अमेजिंग है और बायर जो भी इंटरेस्टेड हो याद रखें द सेलर्स रियली मोटिवेटेड टू यू नो सेल देयर प्रॉपर्टी सो यू नो अच्छी कीमत मिल रही है मस्कोका में अगर आप कॉटेज में इंटरेस्टेड हैं तो ध्यान से सुनिएगा जो मैसेज आगे चलकर हम आपके लिए प्ले करेंगे एंड रियल्टर जितेंद्र गंदम का नंबर है 416-265-2222 आई बी राइट बैक
1: At Wayne's Auto Group, आप हम पर rely कर सकते हैं For everything automotive, चाहे हो daily commute या weekend scape, हमारा promise will always remain the same. हर journey को बनाए खास Wayne's Auto Group हमेशा आपके साथ Over 1400 dedicated associates जो बोलते हैं आपकी language, offering 9 brands across 15 dealerships, from first drive to lifetime care. Wayne's Auto Group is always there. आज ही visit करें wayneautogroup.com.
2: Hi, Anjali. जो कैसी हो? How's your son doing?
3: निशा पूछ मत, सारा दिन कंप्यूटर टीवी फोन पर लगा रहता है, आंखें तो खराब होंगी ही, होमवर्क के टाइम बैटरी गुल।
2: मैं समझ गई, उसे चाहिए प्रिस्क्रिप्शन वाले स्मार्ट ग्लासेस फ्रॉम क्लियर ऑप्टिकल।
4: शी इज राइट, चाहे बच्चे हो या बड़े, वेयर स्मार्ट ग्लासेस एवरी डे। ये प्रिस्क्रिप्शन स्मार्ट ग्लासेस आपके खराब होते विजन को स्टेबलाइज करे बिना किसी भी स्ट्रेस एंड फटीग ऑन योर आईज। विजिट 8005 फाइनेंशियल ड्राइव ब्रैम्पटन, 905-457-3232, क्लियर ऑप्टिकल बाय वरुण कैंडा।
0: बेस्ट साउथ एशियन क्लोथिंग के लिए एक ही स्टोर जहां पर आपको मिलेंगे एक छत तले बेस्ट फैशंस, बेस्ट स्टाइल्स एंड बेस्ट प्राइसेस। एशियंस पॉपुलर साउथ एशियन क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल स्टोर नियर मार्कम रोड एंड लॉरेंस एवेन्यू इन स्कारब्रो, 3601 लॉरेंस एवेन्यू ईस्ट, यूनिट नंबर 23, स्कारब्रो। नोन फॉर देयर साड़ीज, लहंगा, सलवार सूट्स, ब्राइडल वेयर, मेन्स ट्रेडिशनल क्लोथिंग, ज्वेलरी एंड गिफ्ट आइटम्स। एशियंस 416-438-6568, ईस्ट और वेस्ट, एशियंस इज द बेस्ट।
2: हाय अंजू, कैसी हो? How's your son doing?
3: निशा पूछ मत, सारा दिन कंप्यूटर टीवी फोन पर लगा रहता है, आंखें तो खराब होंगी ही, होमवर्क के टाइम बैटरी गुल।
2: मैं समझ गई, उसे चाहिए प्रिस्क्रिप्शन वाले स्मार्ट ग्लासेस फ्रॉम क्लियर ऑप्टिकल।
4: शी इज राइट, चाहे बच्चे हो या बड़े, वेयर स्मार्ट ग्लासेस एवरी डे। ये प्रिस्क्रिप्शन स्मार्ट ग्लासेस आपके खराब होते विजन को स्टेबलाइज करे बिना किसी भी स्ट्रेस एंड फटीग ऑन योर आईज। विजिट 8005 फाइनेंशियल ड्राइव ब्रैम्पटन, 905-457-3232, Clear Optical by Varun Kanda.

0: रानी राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: He's breaking through the midfield.
3: Don Valley North Hyundai आपको दे रहा है मौका FIFA World Cup 2026 के टिकट्स जीतने का। कोई भी व्हीकल बाइकर के घर ले जाएं और पाएं डबल एंट्रीज। विंटर टायर्स या एक्सटेंडेड वारंटी लें और हर एक के साथ पाएं एक एक्स्ट्रा एंट्री। आज ड्राइव करें, कल जीते। विजिट donvalleynorthhyundai.com today। A proud member of Vane's Auto Group।
4: Another Dawn clean with the Dawn Ducks.
5: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
6: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
5: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
6: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
5: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
6: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
5: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
4: Dawn Platinum, the better grease getter.

0: गुड आफ्टरनून, शुरू करते हैं साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो की ताजा तरीन हेडलाइंस। Welcome back, friends. And the headlines are brought to you by Clear Optical by Varun Kanda, Kavya Homeo Care, McQueen Dental Care, Rajdhani Sweets and Restaurant, Brampton TV and Appliances, Asians, popular South Asian clothing and textile store, and Real Lifetime Trading. Shuru karte hain taza tareen headlines. Russian drone attack ne Romania mein do logo ko ghayal kiya, sparks NATO and European Union outrage. Report ke anusar, mini pigs to organ printing. व्लादिमीर पुतिन का 26 बिलियन डॉलर एंटी एजिंग प्लान आया सामने। हॉर्मूज टोल्स को लेकर यूएस ने ओमान को थ्रेटन किया विद सैंक्शंस एंड यूएस ने कहा वी वोंट टॉलरेट दिस। टू डेज आफ्टर परफेक्ट हेल्थ रिपोर्ट के डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और वेनेजुएला को मिक्सअप किया। ट्रंप ने कहा वेनेजुएला के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट है एंड दे नो लॉन्गर हैव अ नेवी, Air Force and leadership. Actually, Trump was talking about Iran, not Venezuela. Trump ko sexual assault par accuse karne wali mahila par US ne interrogation shuru ki and Swiss train station par ek shakhs ne stab karke teen logo ko zakmi kiya. Man reportedly shouted Allahu Akbar and attacked three people. Officials ne ise terrorist act bataya hai. रिपोर्ट के अनुसार यूएस ईरान ने सीज फायर डील पर सहमति बना ली है, ट्रंप येट टू अप्रूव इट। प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल आर्मी को ऑर्डर दिया टू टेक कंट्रोल ऑफ 70% ऑफ द गाजा स्ट्रिप एंड कनेडियन शख्स ने 47,000 से ज्यादा मैनग्रोव ट्री 24 आवर्स में प्लांट किए, सेट्स अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। लोकल समाचारों में केनेथ लॉ आज प्लीड गिल्टी करेगा टू 14 काउंट्स ऑफ एडिंग suicide and dusri aur military toronto teen esther found safe jaanch jari hai and whitby crash ke baad teenage girl thrown 100 feet from vehicle and judge ne toronto ke plastic surgeon ko order diya to pay $21 million to former patients after installing 24 cameras around clinic widespread ttc and go train service suspensions ke chalte gardner expressway to close this sunday भारतीय समाचारों में अडानी स्किल्स ने गुजरात गवर्नमेंट के साथ पार्टनर किया टू ट्रांसफॉर्म 11 ITIs इन कच्छ और गुजरात ने इमरजेंसी टीम को डिप्लॉय किया एज लायन कप डेथ्स राइज टू 8 इन गिर। राजस्थान के मिनिस्टर गौतम डाक के खिलाफ केस दर्ज किया गया फॉर अब्यूजिंग कॉप्स। बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग इन पंजाब, जट सिख फेस, हिंदू कनेक्ट एंड दलित आउटरीच, ये बीजेपी की लार्ज पॉलिटिकल गैम्बल दिखती है, ब्रेकिंग द परसेप्शन ऑफ बीजेपी एज प्राइमरीली अ हिंदू पार्टी इन पंजाब। असेंबली इलेक्शन से पहले बीजेपी ने सरदार केवल सिंह ढिल्लों को प्रेजिडेंट ऑफ द पंजाब बीजेपी घोषित किया है। ढिल्लों अ फॉर्मर कांग्रेस लीडर एंड अ क्लोज एसोसिएट ऑफ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह रहे हैं। बीजेपी का फोकस मालवा, द्वाबा और माझा बेल्ट्स पर रहेगा। हीट वेव के चलते टूरिस्ट पहुंचे शिमला बट नो ट्रैफिक जैम येट। जम्मू कश्मीर के रजौरी में टेररिस्ट छुपे हुए हैं, ट्रूप्स ने हाइड आउट्स पर की फायरिंग। पुणे में डैम वाटर के रिसीड होने से पांडव एरा कंबरेश्वर टेंपल इमर्ज हुआ। अमित शाह का कहना है कि बंगाल ने BSF को 600 हेक्टर्स लैंड की दे दी है फॉर फेंसिंग विद इन 7 days एंड रिटायर्ड IAS ऑफिसर की दिल्ली हाउस फायर में मौत हुई, AC ब्लास्ट सस्पेक्टेड। म्यांमार प्रेसिडेंट अब इंडिया का दौरा करेंगे, ट्रेड एंड डिफेंस ऑन द एजेंडा एंड ड्राई टैप्स एंड लो प्रेशर वाटर क्राइसिस इन दिल्ली को ग्रिप किया डिस्पाइट सप्लाई फ्रॉम हरियाणा। पाकिस्तान की खबरों से ऑफिशियल्स के अनुसार ट्रेन ऑपरेशंस टू एंड फ्रॉम क्वेटा रिमेन सस्पेंडेड साइटिंग अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस फॉर द डिसरप्शन। वाशिंगटन में आज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डार और यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने मिड ईस्ट पीस एफर्ट्स को डिस्कस किया। मीटिंग के दौरान बायलैटरल टाइज को रिव्यू किया जाएगा, ग्लोबल डेवलपमेंट्स पर भी चर्चा हुई। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने यूएस में ओवरसीज पाकिस्तानीज को इन्वाइट किया टू ऑनर देयर रूट्स एंड इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। उन्होंने वादा किया कि पाकिस्तान के बेहतर दिन आने वाले हैं, पाकिस्तान के इकोनॉमिक प्रोग्रेस पर भी बातचीत की। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी लीडर्स से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने की मुलाकात। पीएमडी ने सिंध के दादू के लिए नए मैक्सिमम टेम्परेचर्स का ऐलान किया 51.5 डिग्री सेल्सियस, लरकाना और जकोबाबाद फॉलोड क्लोजली विद रीडिंग्स ऑफ 50.5 डिग्री सेल्सियस। NCCIA पंजाब ने एंटी स्टेट प्रोपेगेंडा एंड इंसाइटिंग अनरेस्ट ऑनलाइन के लिए 11 लोगों को हिरासत में ले लिया है। अलग अलग शहरों से सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को अरेस्ट किया गया। ये लोग स्टेट के खिलाफ कैंपेन चलाने के दोषी पाए गए। प्राइम मिनिस्टर शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान पूरी तरह से कमिटेड है टू स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल पीस वाया यूनाइटेड नेशन मिशंस, और PFF की लैक ऑफ प्लानिंग कॉस्ट के चलते पाकिस्तान AFC अंडर 20 एशियन कप क्वालिफायर पार्टिसिपेशन नहीं हुआ पॉसिबल। दूसरी ओर स्पोर्ट्स जगत से ऋषभ पंत ने रिजाइन किया एज लखनऊ सुपर जायंट्स कैप्टन 2 seasons आफ्टर रिकॉर्ड 27 crore रुपीज डील। गुजरात टाइटन्स के असिस्टेंट कोच पार्थिव पटेल का कहना है कि होपफुली वी विल बी एबल टू गेट वैभव सूर्यवंशी आउट अर्ली। और हेली मैथ्यूज टू लीड वेस्ट इंडीज इन ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप। और फॉर्मर क्रिकेटर आकाश चोपड़ा को लगता है कि वैभव सूर्यवंशी को लेकर BCCI सेलेक्टर्स शुड रिमेन पेशेंट एंड नॉट पुश हिम इनटू द सीनियर टीम डिस्पाइट स्टेलर IPL परफॉर्मेंस। बॉलीवुड खबरों से रणवीर सिंह की प्रलय की शूटिंग अगस्त से शुरू होगी। सलमान खान होस्ट्स प्राइवेट स्क्रीनिंग ऑफ मातृभूमि फॉर सुभाष गई। पूजा भट्ट के अनुसार पिता महेश भट्ट कन्वर्टेड टू इस्लाम बिफोर मैरिंग सोनी राजदान। पूजा ने कहा, माई डैड नेवर पार्ट वेज विद माई मॉम। सलमान खान ने स्टेप इन किया टू मेक पीस बिटवीन रणवीर सिंह एंड फरहान अख्तर। फिलहाल पूरी इंडस्ट्री डिवाइडेड है ओवर रणवीर सिंह एंड फरहान की कॉन्फ्लिक्ट ऑन डॉन 3। सलमान खान ने फोन करके दोनों पार्टीज को कहा टू रिजॉल्व द इश्यूज विदाउट हर्टिंग द फ्यूचर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव प्रोजेक्ट्स। वरुण धवन की फिल्म है जवानी तो इश्क होना है को सेंसर ने UA रेटिंग दी। रन टाइम एट 136 minutes। एंड लक्स कोजी साइंस वरुण धवन एज द ब्रांड एम्बेसडर टिल 2030 ड्यू टू हिज मैसिव ऑडियंस अपील एंड फैशन टेस्ट। और डायरेक्टर संजय गुप्ता और संजय दत्त टू रीयूनाइट फॉर कांटे 2। ये थी साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो की ताजा तरीन हेडलाइन। स्टूडियो का नंबर 416-593-0055, 416-593-0055 स्टूडियो का नंबर है जिस पर आप कर सकते हैं कॉल। एक कॉलर है, उन्हें लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जी आप ऑन एयर हैं, प्लीज गो अहेड।
1: जी सनी जी, कैसे आप?
0: जी फर्स्ट क्लास, आप सुनाइए।
1: बस बढ़िया जी, बढ़िया। आप जो वो एडवर्टाइज देते हैं ना एशियन एशियन की,
0: सॉरी
1: एशियन,
0: जी जी जी जी,
1: जो एडवर्टाइज देते हैं आप, तो वो स्टोर तो बंद हो गया, 4 महीना हो गया उसको बंद हुए।
0: नहीं, द एड्रेस इज 3601 लॉरेंस एवेन्यू ईस्ट, यूनिट 23 इन स्कारब्रो। सो मे बी यू आर गोइंग ऑन अ डिफरेंट एड्रेस।
1: नो, I think so. They were a little small one there.
0: You were probably going to some different store, क्योंकि ये जो है ये Markham Road और Lawrence Avenue के इलाके में है, and it's a very very big store. 3601 Lawrence Avenue East, number 25 unit, Scarborough.
1: हाँ सर जी, मैं वहीं पर ही रहता हूँ, वो बंद हो गया है।
0: सर वो तो खुला है, मुझे लगता है आप किसी और स्टोर के साथ इसको मिक्स अप कर रहे
1: हैं। अरे सर जी मैं दिन में 4 मरतबा वहां से पास होता हूँ। वो बड़ा स्टोर था कपड़े का, श्रीलंकन स्टोर, वो बंद हो गया है, 5-6 महीने हो गए उसको बंद हुए।
0: उनकी एड अभी शुरू हुई है। चलिए एनीवेज, आई लुक इनटू इट। बहुत बहुत शुक्रिया। एंड मे बी आप कंफ्यूज कर रहे हैं किसी और स्टोर के साथ। कई बार ऐसा भी होता है कि द लोकेशंस मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सो दैट कुड ऑल्सो बी अ फैक्टर। बट एनीवेज, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का गीत उदित नारायण की आवाज में, एंजॉय करें। आते हैं बहुत ही जल्द वापस। एंड बाहर का तापमान हो चुका है तकरीबन 24 डिग्री सेल्सियस।

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 6478631940 6478631940।
1: सुनो, आज मेरे भाई की फ्लाइट है इंडिया से।
2: अच्छी याद है। अच्छा, उसको कहना कि आते हुए एक प्लेट छोले भटूरे पैक करा के ले आए इंडिया से।
1: अजी, इंडिया जैसे स्वाद वाले छोले भटूरे खाने के लिए इंडिया के सपने ना लो, सीधा choleBhature.ca पे चलो।
3: choleBhature.ca, बेस्ट पंजाबी रेस्टोरेंट इन ब्रैम्पटन। छोले भटूरे, पतीले वाले मटर कुलचे, पाव भाजी, अमृतसरी कुलचे और भी कई डिलीशियस ऑथेंटिक इंडियन स्टाइल फूड के लिए पहुँचे। choleBhature.ca, कॉल 9054582448।
4: सर्विंग फ्रॉम 4 डाइनिंग लोकेशंस, 2 इन ब्रैम्पटन, 1 इन मिसागा एंड 1 बाय वॉन मिल्स।
5: जेनेसिस मार्कम, यहां मिले लग्जरी का फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस विद अ स्टेट ऑफ द आर्ट डीलरशिप और आपकी अपनी लैंग्वेज में एक्सपर्ट सर्विस। लीज करें ब्यूटिफुली डिजाइन 2026 G70 सिर्फ 1.9% से, या लीज करें 2026 GV70 सिर्फ 4.9% से। आज ही बुक करें टेस्ट ड्राइव। विजिट genesismarkham.ca, लोकेटेड एट वुडबाइन एवेन्यू एंड जॉन स्ट्रीट, मार्कम। Genesis Markham, doing luxury your way. A proud member of Wayne's Auto Group.
6: 10 meter. बस इन्ना को याद रखो। तो हानू ऊपरों लांग दिया बिजली दिया पावर लाइंस तो कटो कट 10 meter दूर रहना चाहिदा है। ओंटारियो विच बिजली तो होने वाली मौतां दा एक प्रमुख कारण पावर लाइंस हैं। अते बिना छुए भी तो आड़ी मौत दा कारण बन सकदिया हैं। जेकर तुसी बाहर काम कर रहे हो तो उपरों लंग दिया पावर लाइनस वल ध्यान दियो। अपने आप नू अते अपने उपकरणों नू इन्ना तो कटो कट 10 meter दूर रखो। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी अथॉरिटी वालों सुनेहा esasafe.com/stop-look-live ते होर जानो।
7: This part of the program is brought to you by Win Lifetime Trading. पिछले 15 सालों से successfully online trading से बहुत से परिवारों को side income provide करते आ रहे हैं, जिसमें आप हर महीने $2,000 से $6,000 US कमा सकते हैं। Flexible schedule है, surety with full confidence के साथ minimum $2,000 to $6,000 आप कमा सकते हैं। Free seminars attend करें हर Saturday afternoon. Make sure please make your appointment. Walk-in ना करें। 12:30 PM to 3:30 PM होता है seminar and call करके अपनी seat reserve करवा लें। 905-206-1008 905-206-1008। Mittal CPA Professional Corporation for all your tax related matters. 289-748-4040 289-748-4040।
8: लेक डेदा प्लान सी, पर टोयोटा टंड्रा दे बिना सगुन नहीं शोर मिलिया। जेकर तुसी अपने स्थानक टोयोटा डीलर तो टंड्रा ले आओ, ता इस दी 11,000 पाउंड तक दी टोइंग कैपेसिटी दे नाल तुसी फैसला करोगे कि रुकना किथे है। रेड टैग डेज दा लाभ लाओ। लीज करो 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स डीआरडी ऑफ रोड $172 वीकली तो 36 months लाई 4.29% APR ते $5,800 डाउन दे नाल। विजिट shoptoyota.ca जा अज ही अपने लोकल टोयोटा डीलर कोल जाओ।
9: Another Don Clean with the Don Ducks.
10: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
11: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
10: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
11: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
10: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
11: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
10: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
9: Dawn Platinum, the better grease getter.
12: दर्द अपनाता है पराए कौन, कौन सुनता है और सुनाए कौन, कौन दोहराए वो पुरानी बात, गम अभी सोया है जगाए कौन। वो जो अपने हैं क्या वो अपने हैं, कौन दुख झेले आजमाए कौन। अब सुकून है तो भूलने में है, लेकिन उस शख्स को भुलाए कौन। आज फिर दिल है कुछ उदास उदास, देखिए आज याद आए कौन, देखिए आज याद।
13: कॉन्डो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर 5 साल किसको रुकना है। बन जाइए डेवलपर एंड बिल्डर और बनाइए पैसे डे 1 से। कॉन्टेक्ट कीजिए अतीक खान एंड बिकम अ ब्रांड टू ग्रो योर ओन वेल्थ। 416-666-2745।
7: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर। एंड लोकल डेवलपर बिल्डर अतीक खान साहब हमारे साथ हैं, जो कि पिछले 25-26 साल से मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में इंगेज रहे हैं इन सदर्न ओंटारियो एंड ही हैज़ बिकम एन एक्सपर्ट एट व्हाट ही डज। बिजनेस कॉन्सेप्ट है क्या है, कैसा है,
14: क्यों, सब सवालों के जवाब मिलेंगे। लेकिन कल एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में अतीक भाई ने मेंशन किया था, जिसको लेकर ऑब्वियसली देयर आर सम क्वेरीज और कुछ लोगों के सवाल हैं, तो उसके बारे में बातचीत करते हैं। नंबर प्लीज अतीक भाई का नोट करें, 416-666-2745, 416-666-2745। ध्यान से सुनिएगा सेगमेंट को, और उसके बाद सेगमेंट के बाद आप अपनी अपॉइंटमेंट बनाएं और अतीक भाई से मुलाकात करें, या जूम मीटिंग भी कर सकते हैं। अतीक भाई, आपका स्वागत है।
15: थैंक यू सो मच सनी साहब, आपको, आपके लिसनर्स को प्यार भरा नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब।
14: जी आपको भी आदाब एंड गुड आफ्टरनून। एंड अतीक भाई, कल आप जब ऑन एयर थे तो यू वर मेंशनिंग अबाउट दिस प्रॉपर्टी, दिस लैंड, 100 acre की लैंड जो आपने एक्वायर की है, एंड जिसमें $60,000 पर एकर के हिसाब से। मैं चाहूंगा कि इस पे थोड़ा सा और हमें कुछ एक्सप्लेन करें, समझाएं, बिकॉज देयर वर लॉट ऑफ क्वेश्चंस आफ्टर यू लेफ्ट यस्टरडे, एंड लिसनर्स जानना चाहते थे कि भाई थोड़ा सा डिटेल में इस चीज को थोड़ा हमें समझाएं, यू नो व्हाट, हाउ, व्हाई एंड ऑल द क्वेश्चंस।
15: श्योर, और आपने बिल्कुल सही कहा, मेरा भी इनबॉक्स फुल हो गया था मैसेजेस से और कॉल से। मैं कोशिश करता हूं कि शॉर्ट में सबको एक्सप्लेन कर दूं कि सिचुएशन क्या है।
14: ठीक है,
15: सेकेंडरी प्लान सिटी ने अप्रूव कर दिया और

0: सिटी ने अपने ऑफिशियल प्लान में जोनिंग में अर्बन एरिया में इंक्लूड कर लिया। सो आपकी अपसाइड तो ये हो गई कि आपको अब लैंड पे कोई काम नहीं कराना है, वो ऑलरेडी डेवलपमेंट के लिए रेडी हो गई है।
1: ठीक है,
0: तो करंट जोनिंग उसकी एग्रीकल्चर, आज की तारीख में वो रेजिडेंशियल अर्बन के अंदर आ गई। 100 एकड़ की लैंड, और ये इसके टाइटल पे तीन अलग अलग ओनर थे, तीनों ने अपना मॉर्गेज डिफॉल्ट किया, और वो चीज जो 10 मिलियन से ऊपर की थी मुझे आधे से भी नीचे पैसों में मिल रही है थ्रू रिसीवरशिप। यहां तक भी बात क्लियर होगी?
1: ठीक है, बिल्कुल।
0: अब वो उसके जो नंबर बैठ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं तकरीबन कोई $60,000 पर एकड़ के हिसाब से।
1: $60,000 पर एकड़?
0: पर एकड़। नॉर्मली सिटी के अंदर नहीं, मतलब मैं आपको मिसिसागा, ब्रैम्पटन, स्कारब्रो, टोरंटो की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ थोड़े से आउटस्कर्ट, यानी हैमिल्टन, लंदन, वाटरलू, ओशवा नॉर्थ, इन एरियाज में आपको आज की तारीख में मार्केट से कम डिस्काउंटेड प्राइस में लैंड मिलती है $1 million पर एकड़। ये एवरेज बात कर रहा हूँ।
1: जी जी।
0: तो मिलियन की चीज आपको $60,000 पर एकड़ के हिसाब से मिलेगी, और इस पे कमर्शियल, रेसिडेंशियल, इंस्टीट्यूशनल, सीनियर होम, इन सब की अप्रूवल करानी है, और अप्रूवल कराने के बाद इस लैंड को हम सेल कर देंगे, और वही चीज जो आपको $60,000 पर एकड़ के हिसाब से मिल रही है ये X5 हो जाएगी, यानी 5X आप इसमें मल्टीप्लाई कर लें, इतना पैसा बनाने का इसमें मार्जिन है। जिसको प्रोजेक्ट में लॉन्ग टर्म चलना है वो रुक जाए, जिसको अपना पैसा मल्टीप्लाई करने अलग होना है वो अलग हो जाए। हमारा और आपका साथ स्टेज बाय स्टेज चलेगा, जैसे जैसे लैंड अप्रूव होती जाएगी आप अपना पैसा बाहर निकालते जाइए, यह फर्दर कंटिन्यू करते जाइएगा। और मजे की बात यह है कि ये जो $60,000 की बात हो रही है ये भी आपने तीन इंस्टॉलमेंट में पे करनी है। एक आप अभी देंगे जून में, एक आप देंगे सितंबर में, और आखिरी आप देंगे दिसंबर में। तो आपके ऊपर बर्डन भी नहीं आ रहा, लैंड टाइटल आपके नाम पे, ओनरशिप आपके नाम पे, और आपकी मर्जी है आप 1 एकड़, 10 एकड़, 50 एकड़, जितने लेना चाहें आप ले सकते हैं।
1: जी जी। एंड जिसके लिए ऑब्वियसली अतीक भाई से आप संपर्क करें 200-416-666-2745, 416-666-2745। अतीक भाई, हमारे एक लिसनर हैं जिन्होंने मुझे एक्चुअली अर्ली पार्ट ऑफ द वीक टेक्स्ट किया था। पर्सन लिव्स इन किचनर, उन्होंने आई गेस पिछले हफ्ते और द वीक बिफोर आपको सुना होगा, और उन्होंने जानने की कोशिश की थी, जबकि हम रेगुलरली इस चीज़ को रिपीट करते हैं कि देर आर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स यू बीन एंगेज्ड इन सदर्न ओंटारियो सिंस 2000। उन्होंने कहा कि किचनर वाटरलू में अगर कोई शख्स, आई थिंक ही प्रिज्यूम्स यू लिव इन GTA, तो उनको उनका सवाल ये था कि किचनर वाटरलू में कितना एक्सपर्टीज अतीक भाई का होगा, और इज इट द सेम फॉर इंटायर सदर्न ओंटारियो?
0: पूरे सदर्न ओंटारियो में एक ही आंसर है, और वो मेन चीज है कि अगर आपके पास इंजीनियर और प्लानर और आर्किटेक्ट, ये तीन बंदे अगर आपके पास स्ट्रांग है आपकी टीम के अंदर, तो आप मिरेकल्स कर सकते हैं, और अगर यही तीन बंदे आपके पास नहीं है या कमजोर हैं तो डिजास्टर के लिए तैयार हो जाए।
1: सो यू, द वे यूव गेन्ड एक्सपीरियंस इन व्हाट यू डू एंड यू डू इट द बेस्ट, आपका कहने का मतलब है कि भाई सदर्न ओंटारियो में कुछ भी हो वो जोनिंग करवाने, एट द एंड ऑफ द डे यू टेक द एंटायर हेडेक, यू, दिस इज द होमवर्क दैट यू एंड योर टीम डज, और वो प्रॉपर्टी कहीं पे भी हो सकती है।
0: 100% आपने सही समझा है। लिटरली टिम्बकटू भी अगर है और मुझे एड्रेस मिल जाता है, मैं आपको घंटे, दो घंटे या विद इन अ डे बता दूंगा कि इस लैंड पे फ्यूचर प्लान क्या बन सकता है, ये काम की है नहीं है, 5 साल बैठना है, 50 साल बैठना है या 5 महीने बैठना है। यू विल हैव ऑल द इंफॉर्मेशन विद जस्ट अ फोन कॉल अवे। अच्छे दिन है ये, इस वक्त जितने लोगों ने मॉर्गेज ले रखा हुआ है वो डिफॉल्ट पर आ रहे हैं। आई एम वेरी सॉरी टू से, मैं जिस प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ सनी साहब, जब मिलियंस की बात होती है, 100 एकड़ की बात हो रही है, फर्स्ट मॉर्गेज, सेकंड मॉर्गेज, थर्ड मॉर्गेज, मैं मतलब उन लोगों से जब मिलता हूँ तो हैरान हो जाता हूँ, किसने आपसे कहा था कि आप सेकंड और थर्ड मॉर्गेज तक चले जाएं? अगर फर्स्ट मॉर्गेज में ही आपकी बात नहीं मन रही तो आपको पता हो जाना चाहिए कि आप गलत चीज उठा रहे हो।
1: Exactly.
0: और वही हुआ, ओवर प्राइस में चीजें खरीद ली, अब कोर्ट के थ्रू मुझे पेनीज दे रहा हूँ, और उसमें मजे की बात यह है कि जो ओनर्स थे उनकी पूरी इक्विटी खत्म हो चुकी है। तो लिटरली आप मॉर्गेज बाय कर रहे हैं उस चीज का जो 10 मिलियन की, और आप 4 मिलियन में लेकर आ रहे हैं, तो आप राइट अवे मुझे

0: करें, अगर आपको $60,000 में ये एक एक एकड़ लेना है तो 416-666-2745 डायल कर दें, मैसेज कर दें, व्हाट्सएप कर दें, आई विल सेंड यू ऑल द इंफॉर्मेशन। अगर मिस कर देंगे तो सितंबर में यही 60,000 आप 100,000 पे करके ले रहे होंगे।
1: एग्जैक्टली दोस्तों, एंड ये इसी होमवर्क की मैं बात कर रहा था। ऐसे नहीं कि कहीं पे भी लैंड है आपने शायद देखी हो और आपने अतीक भाई को कहा तो अतीक भाई कहेंगे चलो जी जोनिंग बदल देते हैं, अक्वायर कर लेते हैं। ही डज ऑल दिस होमवर्क कि भाई सस्ते में जो चीज़ आप खरीदते हैं उसी से फिर मैक्सिमम प्रॉफिट आप गेन करते हैं। बाकी जानकारी के लिए द वन एंड ओनली अतीक भाई, 416-666-2745, 416-666-2745। इफ यू आर अ सीरियस पर्सन लुकिंग टू मेक सीरियस गेन्स ग्रोथ फॉर योर सेविंग्स, कॉल अतीक भाई राइट नाउ, 416-666-2745। एंड अतीक भाई बहुत बहुत शुक्रिया, अगले हफ्ते फिर होती है मुलाकात।
0: थैंक यू सो मच सर।
1: थैंक यू ब्रदर। 416-666-2745 और छोले भटूरे .ca डाइन एंड टेक आउट ऑप्शन है। चार लोकेशंस है, 2 इन ब्रैम्पटन, 1 इन वॉन एंड 1 इन मिसिसागा। छोले भटूरे .ca दिल्ली वाले वर्ल्ड फेमस। विल लाइफ टाइम ट्रेडिंग कल सैटरडे 12:30 से 3:30 होता है इनका फ्री सेमिनार सैटरडे आफ्टरनून, उसे अटेंड करने के लिए प्लीज़ रिजर्व योर सीट, प्लीज़ डोंट वॉक इन, कई बार फिर सीट ही नहीं मिलती। 9052061008। प्यारा संगीत, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, अभिजीत उदित नारायण की आवाज़ में अनु मलिक साहब भी बीच में आ जाते हैं क्योंकि वो म्यूज़िक देते हैं, फिर उनको लगता है भैया मैं भी अपनी आवाज़ दूंगा, एंड वी ऑलवेज नो हाउ ही डज दैट। एंड चलिए फिल्माया ऑन सैफ अली खान एंड अक्षय कुमार, और फिर ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस सुल्तान जी भी आगे चलकर हमारे साथ होंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। बाहर का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस।

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 647-863-1940, 647-863-1940।
1: He's breaking through the midfield.
2: Don Valley North Hyundai आपको दे रहा है मौका FIFA World Cup 2026 के टिकट्स जीतने का। कोई भी व्हीकल बाइकर के घर ले जाएं और पाएं डबल एंट्रीज। विंटर टायर्स या एक्सटेंडेड वारंटी लें और हर एक के साथ पाएं एक एक्स्ट्रा एंट्री। आज ड्राइव करें, कल जीतें। Visit DonValleyNorthHyundai.com today. A proud member of Vane's Auto Group.

0: जी हाँ, यहाँ त्योहार पूजा पाठ और सजावट का सामान, मंदिर, मूर्तियाँ, हवन सामग्री, फेंग शुई वास्तु आइटम्स, रिलीजियस बुक्स,
1: यानी पूरे इंडिया का कल्चर एक ही छत के नीचे।
0: 31 मेलेनी ड्राइव, ब्रैम्पटन। कॉल 905-458-6808
1: और विजिट pujahut.com।
2: इंडिया सजावट एंड पूजा हट।
0: जय श्री राम।
3: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। एंड आज टेम्परेचर्स जो हैं तकरीबन 25-26 डिग्री तक पहुंचेंगे। एक्सपेक्ट सनशाइन एंड टेम्परेचर्स अबव 20 डिग्रीज दिस इंटायर वीकेंड। केनेथ लॉ ने प्लीड गिल्टी किया है टू 14 काउंट्स ऑफ एडिंग एंड अबेटिंग सुसाइड। एंड वो मर्डर चार्जेस वाली बात जो है वो उससे हटाने की कोशिश की जा रही है। लॉ एडमिट्स टू सेलिंग डेडली सब्सटेंसेस टू वल्नरेबल पीपल, सम ऑफ हुम कमिटेड सुसाइड, ये उसने एडमिट किया है। मर्डर चार्जेस अगेंस्ट केनेथ लॉ टू बी विड्रॉन after he is sentenced today. So, अगर sentence आज आ जाता है तो, so this is the breaking news that came out. And इसके अलावा जतिंदर गंदम रियल्टर हमारे साथ हैं मस्कोका में। ये बहुत ही एक अमेजिंग सी प्रॉपर्टी है, कॉटेज है, और अगर आप इसके मालिक बनना चाहते हैं तो 416-265-2222 पर जतिंदर जी से संपर्क कर लीजिए। क्लियर ऑप्टिकल बाय वरुण कांडा, ब्रैम्पटन, जॉर्जटाउन, दो लोकेशन से सर्व करते हैं। बहुत ही इनके ज़बरदस्त सर्विसेज हैं। नेम ब्रांड सनग्लासेस पर बहुत अमेजिंग डील्स वरुण जी ने लगाई हुई हैं। राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट 30+ लोकेशन से सर्व करते हैं 100% प्योर वेजिटेरियन फूड, ज़बरदस्त मिठाइयों का दूसरा नाम इज राजधानी। चलिए जितेंद्र जी से बातचीत करते हैं। टेक इन्फॉर्मेशन, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस कॉटेज तो इसकी चाबियां आपके हाथ में हो सकती हैं बहुत जल्द। जितेंद्र जी, आपका स्वागत है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर।
4: हेलो, सत श्री अकाल जोशीपा जी, गुड आफ्टरनून। तो अब आप अपने स्रोतों लिए मस्कोका के कॉटेज लेके आए हैं। यह जी कॉटेज है 2 एकड़ के लॉट के बनी हुई है। 2 साल तो घट समा हो इस कॉटेज में बने हुए, 3 बैडरूम ने, 3 वाशरूम ने, प्लस थोड़े को अनफिनिश बेसमेंट है जिद एक्सट्रा बैडरूम बना सकते हो। फुली अपग्रेड प्रॉपर्टी है। यह प्रॉपर्टी एयरबीएनबी से चल रही है पिछले 1.5 साल तो। लास्ट ईयर 2025 के लगभग $1,00,000 के लगे है एयरबीएनबी तो रेवन्यू से, प्लस ओनर आप भी उत्थे जाके रह रहे हैं। जे तुसी इस प्रॉपर्टी नूं लेना चाहुंदे हो इदां दी कॉटेज ते साडे नाल गलबात कर लिओ। साडा नंबर 416-265-2262। रियल स्टेट दी मार्केट दे विच कोई भी प्रॉपर्टी बाय करना चाहुंदे हो जां सेल करना चाहुंदे हो, कॉल 416-265-2262। थैंक यू वेरी मच
3: जी। जतिंदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया थोड़ा। ते नंबर आ 416-265-2262, नंबर आ 416-265-2262, 416-265-2222। एंड अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं इस प्रॉपर्टी में, मस्कोका की कॉटेज है, तो जल्द से जल्द जतिंदर जी से संपर्क करें। गीत संगीत भी चलेगा, आपकी जो रिक्वेस्ट आ रही है वी विल प्ले देम। एंड लेकिन उससे पहले एक छोटी सी स्टोरी हमारे टेक्निकल डायरेक्टर कार्तिक साहब ने लाइन अप कर दी है, वो एंजॉय करें।
5: Genesis Markham, यहाँ मिले लग्जरी का फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस विद अ स्टेट ऑफ द आर्ट डीलरशिप और आपकी अपनी लैंग्वेज में एक्सपर्ट सर्विस। लीज करें ब्यूटिफुली डिजाइन 2026 G70 सिर्फ 1.9% से, या लीज करें 2026 GV70 सिर्फ 4.9% से। आज ही बुक करें टेस्ट ड्राइव। विजिट genesismarkham.ca, लोकेटेड एट वुडबाइन एवेन्यू एंड जॉन स्ट्रीट, मार्कम। Genesis Markham, डूइंग लग्जरी योर वे, अ प्राउड मेंबर ऑफ वेन्स ऑटो ग्रुप।
3: एक और कहानी मेरी जुबानी। प्रयास करो, तमाशा मत देखो। एक गांव में आग लग गई। आग बढ़ती जा रही थी और गांव वाले अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। एक चिड़िया ने यह दृश्य देखा और अपनी चोंच में पानी भरकर आग बुझाने का प्रयास करने लगी। वो बार बार अपनी चोंच में पानी लाती और आग पर डालती। जब गांव वालों ने चिड़िया को आग पर पानी डालते देखा तो उनमें भी जोश आ गया और बोले कि अगर ये चिड़िया प्रयास कर रही है तो हम क्यों नहीं कर सकते। सबने प्रयास किया और आग बुझ गई। यह सारा दृश्य एक कौवा देख रहा था। उसने चिड़िया से कहा कि तेरे पानी डालने से कुछ होना तो था नहीं, फिर तू क्यों कर रही थी। चिड़िया बोली, मेरे पानी डालने से कुछ हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मुझे गर्व है कि जब भी इस आग की बात होगी तो मेरी गिनती आग बुझाने वालों में होगी, तेरी तरह तमाशा देखने वालों में नहीं, तेरी तरह तमाशा देखने वालों में नहीं।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम पहुंच चुके हैं ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट एट द कॉर्नर ऑफ बोवेड एंड चिंकूसी। एंड ब्रैम्पटन टीवी अप्लायंस लॉन्ड्री के सुल्तान सुल्तान जी हमारे साथ है। ओपन 7 डेज अ वीक, 11 AM टू 7 PM एंड द नंबर टू कॉल इज 905-450-2828। कई घरों की दोस्तों क्लोजिंग्स चल रही हैं और क्लोजिंग्स में सबसे पहले जो चीज आपको चाहिए होती है अप्लायंस लॉन्ड्री। एंड मैं सोचता हूं कि वहीं से शुरू कर लेते हैं सुल्तान जी से। सुल्तानिक डील्स आपको आपकी क्लोजिंग से पहले दिलवा देते और आप जो है पहुंच जाइए ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंस पर। सुल्तान जी आपका स्वागत है।
1: थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सनी भाई। और जैसे आपने बताया जी, बहुत सारे घरों की क्लोजिंग हो रही हैं अभी। आप बिलीव करें कि हमें किचनर, कैम्ब्रिज, स्टोनी क्रीक, वेलेंट और नियाग्रा फॉल साइड की इतनी क्लोजिंग्स आ रही हैं और कस्टमर इतना फायदा उठा रहे हैं। उसकी रीजन ये है कि अगर वो ले रहे हैं फ्रिज, स्टोव, डिशवाशर, 3-पीस किचन बंडल, तो $5,000 वाला उन्हें मिल रहा है 2999 में। $2,000 कस्टमर सेव करेंगे। किचन स्टेनलेस स्टील किचन का बंडल है ये। और अगर लॉन्ड्री ऐड करते हैं जी, तो टॉप लोड वॉशर एंड ड्रायर $1,700 वाला सिर्फ 1099 का है। और अगर स्टैकेबल वॉशर एंड ड्रायर चाहिए, वॉशर नीचे ड्रायर ऊपर स्टैक हो जाएगा, $2,200 वाला 1499 का है। $700 लॉन्ड्री सेक्शन में और $2,000 किचन सेक्शन में सेव करने के बाद टोटल सेविंग $2,700 बनती है। और कस्टमर फ्री डिलीवरी हम करेंगे कस्टमर्स को, और कस्टमर 6 मंथ में पे कर सकते हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं है जी, फ्री होम डिलीवरी के साथ। इसके लिए आपको विजिट करना है 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट, जस्ट ईस्ट ऑफ चिंकूजी ऑन बोवेड है जी। ब्रैम्पटन अप्लायंसेस, ये वन वर्ड है, BramptonAppliances.com। हमारी वेबसाइट से डायरेक्शन ऑफ द स्टोर भी ले सकते हैं, प्रोडक्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और वॉक इन कस्टमर को जो एडिशनल डिस्काउंट दिया जा रहा है, जो कि अप टू 40% तक का डिस्काउंट है, उसका भी फायदा उठा सकते हैं। 905-450-2828 हमारा नंबर है जी। 905-450-2828 जी।
0: 905-450-2828। यहाँ पर अप्लायंस लॉन्ड्री के सेक्शन में मैं क्विकली ये भी चाहूंगा कि कुछ हमारे पास रेंटल प्रॉपर्टीज भी लिसनर्स के पास होती हैं, तो उनके लिए कोई स्पेशल्स अगर आप बताना चाहें, क्योंकि रेंटल प्रॉपर्टी जब टेनेंट आता है, नया टेनेंट आता है, तो लॉट ऑफ टाइम्स वी नीड द एंटायर सेटअप टू बी चेंज्ड, तो उस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालें।
1: जी बिल्कुल, डेफिनेटली जी, अगर कोई भी एग्जिस्टिंग घरों के लिए या रेंटल प्रॉपर्टी के लिए कोई भी होम अप्लायंसेस लेना चाहते हैं, सिंगल वॉशर चाहिए 649 में मिल जाएगा, सिंगल ड्रायर चाहिए 549 में मिल जाएगा, सिंगल डिशवॉशर चाहिए आपको किचन में $900,000 वाली 499 में मिल जाएगी, सिंगल स्मूथ टॉप इलेक्ट्रिक स्टोव चाहिए $1,200 वाला 799 का स्पेशल प्रमोशन पे आया है, 30 इंच अपराइट फ्रीजर के साथ फ्रिज चाहिए आपको तो वो भी $1,400 वाला 899 में स्टेनलेस स्टील का मिलेगा। कुछ भी होम अप्लायंसेस में चाहिए आपको तो बिल्ट इन किचन के साथ भी हमारे पास 40% का डिस्काउंट है, जिसमें बॉश का बिल्ट इन कुकटॉप, बॉश का बिल्ट इन वॉल ओवन, बॉश का बिल्ट इन माइक्रोवेव, बॉश कंपनी का ही बिल्ट इन काउंटर डेप्थ फ्रिज, पूरे का पूरा बिल्ट इन किचन जो है $16,000 वाला सिर्फ $9,900 में है। $6,100 आप बॉश के बिल्ट इन किचन पे भी सेव करेंगे। ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट, जस्ट ईस्ट ऑफ चिंकूजी ऑन बोवेड है जी। 905-450-2828, 905-450-2828 जी।
0: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस। दोस्तों मैं ये जरूर बता दूं कि जो डील्स हमारी कम्युनिटी को डेकेड्स हो गए, मतलब ये कोई 5-10 साल की बात नहीं है, डेकेड्स से जो डील्स हमें ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंस से मिल रही हैं, सुल्तान जी से मिल रही हैं फॉर टीवी अप्लायंस लॉन्ड्री, आर कम्युनिटी नोज दैट। और जिस तरह से एक हर हफ्ते, हर महीने, हर त्यौहार पर, फेस्टिवल्स पर अमेजिंग डील्स मिलती है, हमारा भी फर्ज बनता है कि हमने उतना ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंस को सपोर्ट करना है, बिकॉज ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंस ने हमें ऑलवेज अमेजिंग डील्स दिए। सुल्तान जी, टीवी सेक्शन पर थोड़ी सी रोशनी डालें, क्या अमेजिंग डील्स है फॉर दिस वीकेंड?
1: सनी भाई, टीवी सेक्शन में फीफा वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर कर रहा है जी सैमसंग। उसकी वजह से सैमसंग ने एक्सक्लूसिव डील्स दी हैं अपने हाई एंड डीलर्स को, जिसमें 801 बोवे ड्राइव वेस्ट ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस टॉप ऑफ द लिस्ट आ रहा है जी इस वक्त। इसीलिए 85 इंच का QLED क्वांटम डॉट क्वांटम प्रोसेसर के साथ 85 इंच QLED हाई एंड टेक्नोलॉजी सैमसंग ब्रांड में आपको $2000 वाला स्पेशल प्राइस पे सिर्फ $1299 में मिलेगा। $700 आप 85 इंच बिग स्क्रीन टीवी पे सेव करेंगे, क्योंकि सैमसंग पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है जी इस वक्त फीफा वर्ल्ड कप को, तो इसको मिस ना करें, इसका जरूर फायदा उठाएं। इतनी प्राइसेस ड्रॉप कभी भी नहीं सैमसंग कंपनी में अपने हाई एंड टेक्नोलॉजी पे की जितनी फीफा वर्ल्ड कप की वजह से बिग स्क्रीन टीवी में ड्रॉप किया गया है, और वो भी आपने 6 मंथ में पे करना है, कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। इवन 55 इंच चाहिए सिर्फ $399 में मिल जाएगा, 65 इंच चाहिए सिर्फ $699 में मिल जाएगा, 79 इंच आपको मिलेगा, सॉरी 95 इंच ये हमारे पास स्पेशल पे आया है जी सैमसंग का, 98 इंच जो $3500 वाला सिर्फ $1999 में मिलेगा। सो 98 इंच द बिगेस्ट स्क्रीन फ्रॉम सैमसंग आपको मिल रहा है सिर्फ $1999 का बोवेड एंड चिंकूजी पे ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ जी, $3000 तक की भी शॉपिंग करें तो $500 अ मंथ करके पे कर सकते हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो क्यों ना फिर 98 इंच बिग स्क्रीन टीवी वो भी $1999 का अपने घर में लगवाएं, और फीफा वर्ल्ड कप पे स्पोर्ट्स के शौकीन जो हैं इस स्पोर्ट्स इवेंट को बिग स्क्रीन टीवी पे एंजॉय करें। हमारे पास स्पेशल प्राइस है, स्पेशल डिलीवरी फ्री है, और स्पेशल ही आप 6 मंथ में पे करेंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं है। 905-450-2828 905-450-2828 जी।
0: बहुत बहुत शुक्रिया सुल्तान जी,
1: थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया
0: जी। 905-450-2828 ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस।

0: You're listening to The Sunny Joshi Show on South Asian Unlimited Radio, CMR 101.3 FM.
1: ये वो टाइम ऑफ द ईयर है जिसका आप वेट कर रहे थे. डेमोन्स्ट्रेटर इवेंट एट डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस, मई 16 तक. लीज रेट्स एज लो एज 2.9% अप टू 24 मंथ्स. सेलेक्ट डेमो व्हीकल्स पर सेविंग्स अप टू $4,989 इंक्लूडेड. बेस्ट सिलेक्शन के लिए डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस जल्दी विजिट करें. जल्दी करें, ऑफर एंड्स मई 16th. विजिट donvalleynorthlexus.com टुडे. अ प्राउड मेंबर ऑफ वेन्स ऑटो ग्रुप.
2: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
3: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: Hum honge aapke saath hamesha.
2: काव्या होम्यो केयर, काफी इलाज जहां बेअसर हो जाते हैं वहां से शुरू होता है होम्योपैथी का असर। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नए से लेकर कई पुरानी बीमारियों तक, जैसे एलर्जीज, एस्मा, आर्थराइटिस, हेयर लॉस, स्किन डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, मेल या फीमेल हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और फॉर एनी काइंड ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस हमारे होम्योपैथ से मिले जिनको 20 साल का ज्यादा तजुर्बा है। काव्या होम्यो केयर, जहां से शुरू होता है हेल्दी लाइफ का सफर। 10 कोट्रेल बुलेवार्ड, Unit 104 in Brampton, 647-760-2779, 647-760-2779.

0: $100 कमा रहे हैं, बहुत से तो $300 भी कमाते हैं, why don't you too?
1: तो इल्म सीखो ऐसा जो खूब कमाए पैसा at Win Lifetime.
0: Learn to earn at Win Lifetime. Call 905-206-1008.
2: कैंपिंग का प्लान था मस्त सी, पर टोयोटा टकोमा दे बिना सारे लोग जिथे तुसी भी पहुंचे उत्थे। जेकर रेड टैग डेज च तुसी टकोमा ले आओ ता इस दी जबरदस्त समर्था ते दमदार आई फोर्स इंजन तुहानू ले जावे थोड़ा होर दूर, सकून दे होर नेड़े। रेड टैग डेज दा लाभ लाओ, लीज करो 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 $114 वीकली तो 36 मंथ्स लाई 4.69% ते $4900 डाउन दे नाल। विजिट shoptoyota.ca या अज ही अपने लोकल टोयोटा डीलर कोल जाओ।
3: Another Dawn clean with the Dawn Ducks.
4: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
5: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
4: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
5: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
4: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
5: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
4: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
3: Dawn Platinum, the better grease getter.
6: You're listening to The Sunny Joshi Show on South Asian Unlimited Radio, CMR 101.3 FM.
7: वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं सनी जोशी फिर से आपका स्वागत करता हूं साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर। एंड बाहर का तापमान हो चुका है 24 डिग्री सेल्सियस, इट इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। इस सनशाइन को एंजॉय करें, क्योंकि फिर कुछ महीने बाद हमारी वो कंप्लेंट होगी कि भाई सनशाइन नहीं है एंड क्लाउडी वेदर एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। सो बीच बीच में जब मौका मिले, आप अगर काम भी कर रहे हैं तो बीच बीच में थोड़ा सा निकल कर लंच के दौरान इस ब्यूटीफुल सनशाइन को इन्जॉय करें। और जहाँ पर मैंने कहा बीच बीच में निकल कर, वहाँ पर मुझे लगता है कि अरिजीत सिंह का गीत है बीच बीच में, एंड दैट इज़ फिल्म आया ऑन अनुष्का शर्मा एंड शाहरुख खान फ्रॉम द मूवी जब हैरी मेट सेजल। एंड इस साल शाहरुख फैन के लिए खुशखबरी होगी, क्रिसमस में रिलीज़ हो रही है उनकी किंग, एंड किंग में ऑब्वियसली किंग शाहरुख खान प्ले कर रहे हैं एंड अभिषेक बच्चन इज प्लेइंग द बैड गाय, बट देन इट हैज़ अ ह्यूज स्टार कास्ट, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, रानी मुखर्जी एंड सो मेनी अदर पीपल इन द फिल्म, एंड यू नो एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ फायर वर्क्स एट द बॉक्स ऑफिस। चलिए इन्जॉय द सॉन्ग, आते हैं बहुत ही जल्द वापस 1:15 बजे तकरीबन। मॉर्गेज क्वीन नीलम सदोव जी भी हमारे साथ होंगी।

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 6478631940, 6478631940।
1: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला। बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स टीआरडी ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
2: काव्या होम्यो केयर, काफी इलाज जहां बेअसर हो जाते हैं वहां से शुरू होता है होम्योपैथी का असर। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नए से लेकर कई पुरानी बीमारियों तक, जैसे एलर्जीज, एस्मा, आर्थराइटिस, हेयर लॉस, स्किन डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, मेल या फीमेल हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और फॉर एनी काइंड ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस, हमारे होम्योपैथ से मिले जिनको 20 साल का ज्यादा तजुर्बा है। काव्या होम्यो केयर, जहां से शुरू होता है हेल्दी लाइफ का सफर। 10 कोट्रेल बुलेवार्ड, Unit 104 in Brampton, 6477602779, 6477602779.
3: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
4: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 6478631940, 6478631940।
1: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहां पहुंचे सभी वहीं पहुंचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
2: Another Don Clean with the Don Ducks.
3: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
4: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
3: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
4: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
3: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
4: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
3: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
2: Dawn Platinum, the better grease getter.
5: Hi अंजू, कैसी हो? How's your son doing?
6: निशा पूछ मत, सारा दिन कंप्यूटर टीवी फोन पर लगा रहता है, आंखें तो खराब होंगी ही, होमवर्क के टाइम बैटरी गुल।
5: मैं समझ गई, उसे चाहिए प्रिस्क्रिप्शन वाले स्मार्ट ग्लासेस फ्रॉम क्लियर ऑप्टिकल।
7: शी इज राइट, चाहे बच्चे हों या बड़े, वेयर स्मार्ट ग्लासेस एवरी डे। ये प्रिस्क्रिप्शन स्मार्ट ग्लासेस आपके खराब होते विजन को स्टेबलाइज करे बिना किसी भी स्ट्रेस एंड फटीग ऑन योर आईज। विजिट 8005 फाइनेंशियल ड्राइव ब्रैम्पटन 9054573232 Clear Optical by Varun Kanda.
8: इस सीजन शानदार कैनेडियन रोड ट्रिप विच ड्राइवर सते अनादि टोयोटा दा होवेगा द ग्रेट वाइड नॉर्थ दे अनजान रस्तियां नाल आमना सामना। इस च साथ देण के चिप्स, चाह वाली ब्रेक्स अते अतरंगी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार सफर तो पहला एक गल याद रहे, एह टाइम है तुहाडे स्थानक टोयोटा डीलर ते एक्सपर्ट सर्विस दा। ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स अते टायर बदलों लई तुहाडा एक ईजी स्टॉप। अज ही अपॉइंटमेंट बुक करो क्योंकि यह सफर होण वाला है तूफानी।
9: क्रेडिट कार्ड, जीएसटी या कर्जों की समस्या, हम दिलवा सकते हैं 80% कर्जों से माफी और फीस लेंगे अप्रूवल के बाद। क्रेडिट बिल्डिंग में भी करेंगे मदद। सर्विंग यू फ्रॉम 4 लोकेशंस ऑल अक्रॉस जीटीए। ऑल डेट सॉल्यूशंस, मोहम्मद सिद्दीक 4166710577 4166710577 alldeatsolutions.ca।
10: अपने करीबी को खोने से बड़ा कोई गम नहीं। Brampton Crematorium and Visitation Center and Ajax Crematorium and Visitation Center में आप और आपके परिवार को शांति से इस अवसर पर अफसोस करने का वक्त मिलता है। 8 साल का लंबा तजुर्बा, हर फेथ और हर धर्म और कल्चर के लिए यहाँ कंप्लीट रेंज ऑफ क्रिमेशन एंड मेमोरियल आपके चॉइस की एक्सक्लूसिव फैसिलिटीज भी उपलब्ध है। हर कदम हम आपके साथ। 30 Brampton Court in Brampton, 905-458-2222 or log on to bcbc.info or 384 Finn.

0: जोशी।
1: At Wayne's Auto Group, आप हम पर rely कर सकते हैं for everything automotive. चाहे हो daily commute या weekend scape, हमारा promise will always remain the same. हर journey को बनाए खास. Wayne's Auto Group, हमेशा आपके साथ. Over 1400 dedicated associates जो बोलते हैं आपकी language. Offering 9 brands across 15 dealerships. From first drive to lifetime care, Wayne's Auto Group is always there. आज ही visit करें waynesautogroup.com.
2: This segment is brought to you by Clear Optical by Varun Karna, जो कि दो लोकेशन से आपको सर्व करते हैं, Brampton and Georgetown. Exams के लिए doctors available 7 days a week, 905-457-3232. For name brand sunglasses, always remember Clear Optical by Varun Karna. The segment is also brought to you by Home Life Miracle के superstar realtors Sarabjit Gill, CP Chatwal for real estate buying, selling, investments. एक बार इनसे जरूर संपर्क करें, some amazing properties that they have in the range of 700,000 and 800,000 in Brampton, in GTA. Sarabjit Gill, CP Chatwal, 647-887-2707 or 416-627-4737. And the segment is also brought to you by Rajdhani Sweets and Restaurant, which 30-plus locations se serve karte hain. 100% pure vegetarian food. Zabardast mithaiyon ka dusra naam, Rajdhani Sweets and Restaurant. McQueen Dental Care, Dr. Raj Gill, 9960 McQueen Drive, Unit 6 in Brampton. For all your dental needs, insurance ho ya na ho, McQueen Dental Care ke paas aapke liye special packages available hain. Talk to Sirat 905-794-8883. Chahe braces lagwane hain, ya phir dentures, ya partial dentures, root canal cleaning, ya checkups. Call McQueen Dental Care, 905-794-8883.
3: Genesis Markham, यहाँ मिले लग्जरी का फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस विद अ स्टेट ऑफ द आर्ट डीलरशिप और आपकी अपनी लैंग्वेज में एक्सपर्ट सर्विस. लीज करें ब्यूटिफुली डिजाइन 2026 G70 सिर्फ 1.9% से, या लीज करें 2026 GV70 सिर्फ 4.9% से. आज ही बुक करें टेस्ट ड्राइव. विजिट genesismarkham.ca, लोकेटेड एट वुडबाइन एवेन्यू एंड जॉन स्ट्रीट, मार्कम. Genesis Markham, doing luxury your way. A proud member of Wayne's Auto Group.
2: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है. इंडस्ट्रियल अलायंस से हमारे डियर फ्रेंड फाइनेंशियल प्लानर एडवाइजर अमन मेहता जी हमारे साथ हैं. 241 क्लेरेंस स्ट्रीट, यूनिट 26, ब्रैम्पटन इज वेयर द ऑफिसेज आर लोकेटेड. 416-707-9900. अमन जी जब आते हैं तो कुछ ना कुछ भाई हमें तो सिखा के जाते हैं. मी ऑन अ पर्सनल लेवल आई गेट टू लर्न सो मच अबाउट बिजनेस कॉरपोरेशन. इतने सालों से बिजनेस करने के बावजूद कई चीज़ों के बारे में आपको बिल्कुल आइडिया नहीं होता, एंड देन व्हेन अ एक्सपर्ट लाइक अमन जी इज ऑन एयर तो फिर आंखें खुलती हैं. 416-707-9900. अमन जी आपका स्वागत है. हेलो
4: ताकि
2: भाई हमें कुछ नॉलेज भी गेन हो जाए इस लवली लवली से वेदर में अबाउट द लवली थिंग कॉल्ड बिजनेस. पहला सवाल आपके लिए, आप हैं हॉट सीट पर. नंबर आपका एक बार फिर से दे दूं, 416-707-9900, क्योंकि कई बार हमारे लिसनर्स ही कुछ जबरदस्त सवाल भेज देते हैं पूछने के लिए. अमन जी, व्हाट इज द बिगेस्ट फाइनेंशियल मिस्टेक सक्सेसफुल बिजनेस ओनर्स मेक आफ्टर देयर कॉरपोरेशन स्टार्ट्स जनरेटिंग प्रॉफिट्स? मुझे लगता है ये गलती कईयों से हो जाती होगी.
4: जी सनी भाई, होता क्या है ना, फाइनेंशियल लिटरेसी इज ऑल अबाउट कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे टैक्स बचाना है. तो द बिगेस्ट मिस्टेक व्हाट आई सी बिजनेस ओनर्स मेक व्हेन दे स्टार्ट जनरेटिंग प्रॉफिट्स इज पैसे को यूज कैसे करना है. अब नॉट नोइंग कि इफ दे इन्वेस्ट इनटू पैसिव इनकम्स. पैसिव इनकम का मतलब क्या होता है, अगर आप रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में है तो आपकी एक्टिव इनकम रेडियो ब्रॉडकास्टिंग है, बट इफ यू बाय लैंड, स्टॉक्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं वो पैसिव इनकम है. सनी भाई, जैसे ही आप कॉर्पोरेट से पैसे निकाल

0: के पैसिव इनकम में वो करना शुरू करते हैं, इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, गेस व्हाट, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, नॉट ओनली यू लूज योर बिजनेस बेसिक बेनिफिट, वहां पर आपको 51% टैक्स मिलता है. तो लोगों को यही नहीं पता होता कि करना क्या है. तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग मनी ऑन द पेपर, दे आर लूजिंग ऑन डबल टैक्सेशन. ये सबसे बड़ा कंस्ट्रेन है बिजनेस ओनर्स के लिए.
1: क्या बात है, नो आइडिया, पता भी नहीं होता कई बार इन चीजों के बारे में. अमन जी, मेनी पीपल थिंक स्टेट टैक्सेस ओनली इफेक्ट द वेल्दी, क्या ये बात सच है? इज दैट द ट्रूथ?
0: बहुत प्यारा क्वेश्चन सनी भाई. वेल्दी वर्ड जो है ना, हमारे माइंड में होता है कि वो वेल्दी है, उसके पास बड़ी गाड़ी है, बड़ा घर है, बड़ा बिजनेस है, लेकिन जितने बड़े बिजनेस हैं उतने बड़े एक्सपेंसेस हैं. सो वेल्दी वर्ड, यू आर वेल्दी, और एक ना बड़ी अच्छी प्रोवर्ब, एक बड़ी अच्छी वो स्लैंग लाइन आती है, यू आर रिचर देन यू थिंक. इसका मतलब क्या है कि हर आदमी सोचता है मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आज आपको सारी एसेट्स बेच के सारे लोन्स पे करने पड़े तो आपके हाथ में जो बचता है वो आपकी नेटवर्थ है. एंड आई एम श्योर इफ यू एनालाइज, नोबडी हैज लेस देन 100,000 एसेट. क्यों? क्योंकि होता क्या है, कुछ ना कुछ तो आपके पास है, घर है आपके पास, फर्नीचर है, बिजनेस है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, उन सब की कुछ ना कुछ वैल्यू है. सो वेल्दी वर्ड जो है माइंड से निकाल दें, वी ऑल आर वेल्दी. अगर आप इस कंट्री में 2 साल से पुराने हैं तो आपको इन टैक्सेस के बारे में जरूर सोचना चाहिए
1: और फाइनेंशियल प्लानर अमन मेहता साहब से मुलाकात जरूर करनी चाहिए. दिस इज दैट मीटिंग जो आप मीटिंग से निकलने के बाद अपने आप को थैंक यू करेंगे कि यार पहले क्यों नहीं किया, पर चलो देर आए दुरुस्त आए, कर लिया, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. 416-707-9900. ये जो सवाल है ना, मैं चाहूंगा लिसनर्स बड़ा ध्यान से सुने, बिकॉज इसका जवाब हम कईयों को नहीं पता है, यू नो, बिकॉज हम कईयों के साथ ये हुआ नहीं है, और भगवान ना करे हो, पर हो जाएगा जब होना है. व्हाट हैपेंस अमन जी टू अ कॉरपोरेशन व्हेन द ओनर पैसेस अवे अनएक्सपेक्टेडली? और ये पैसिंग अवे जो है अनएक्सपेक्टेडली अनफॉर्चुनेटली होता है अक्सर.
0: आई नो सनी भाई, नोबडी इज बॉर्न विद अ डेट टिल. हम कहते ना कि एवरी प्रोडक्ट कम्स विद एक्सपायरी डेट, सिर्फ ह्यूमन बींग के पास एक्सपायरी डेट नहीं होती. हाँ, गुड टिल होती है कि हम गुड टिल 50 या 60 है. तो आपका क्वेश्चन बड़ा जेन्युइन है कि इफ समबडी पैसेस अवे अनएक्सपेक्टेडली. सनी भाई, इस कंट्री का उसूल है, बिल्डिंग बनने में सबसे पहले एग्जिट साइन लगता है, ताकि कल को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो भागना कहाँ से है आपको पता होना चाहिए. एंड वी डोंट फॉलो दैट प्रिंसिपल. सो अगर कई कल भगवान ना करे कोई ओनर पैसेज हुए अनएक्सपेक्टेडली, देर कैन बी लॉट ऑफ टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस, ओनरशिप डिस्प्यूट्स, लिक्विडिटी एसेट्स, और सर्वाइविंग फैमिली के लिए इट कैन बिकम अ चैलेंज अगर आपने सक्सेशन प्लानिंग या अप्रोप्रिएट फंडिंग स्ट्रैटेजीज नहीं बनाई है, तो दैट ट्रांजिशन कैन बी अ वेरी वेरी पेनफुल इवेंट. सो प्लीज मेक श्योर, जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर ओन फैमिली, जस्ट इमेजिन करें इस चीज को कि आज अगर मैं इस बिजनेस में नहीं हूं या कुछ गॉड फॉरबिड समथिंग हैपेंस, कैसे मेरा बिजनेस ट्रांसफर होगा? क्या मेरे पास विल्स हैं, पावर ऑफ अटॉर्नीज हैं, क्या मेरे पास सक्सेशन प्लानिंग है? इफ नॉट, यू नीड टू थिंक सीरियसली. सनी भाई, दिस इज समथिंग विच यू कैंट अवॉइड, बिकॉज अ लॉट ऑफ फैमिलीज व्हेन दे सफर दे काइंड ऑफ कर्स, यार हमको ये क्यों नहीं हमने किया. एंड दैट इज द नॉट द टाइम टू लर्न. टाइम टू लर्न इज टूडे नाउ.
1: Exactly. And the time to call Aman Mehta Ji is today, right after this segment. 416-707-9900. Ye bahut valuable cheeze hain. Just like life insurance, hum tab tak nahi lete ga rahe, bhai, hum nahi honge, hume kya hai, this and that. But pata in cheezo ke baare mein jab tak chalta hai, kai baar cheeze haath se nikal jati hai. You don't want that to happen. We often hear the phrase, Aman Ji, the wealthy borrow instead of selling assets. Iska matlab kya hai exactly?
0: सनी जी, यहीं पर की है. अगर मैं आपको वापस लेके जाऊं आपके करियर में, जब आप इस कंट्री में आए थे, द बेस्ट वे ऑफ मेकिंग मनी वॉज वेन यू बोरोड. बोरोड का मतलब आपने घर लिया फ्रॉम अ बैंक एट अ लोअर इंटरेस्ट रेट, और आपके पैसे ग्रो करने शुरू हुए हायर इंटरेस्ट रेट पे. दैट वॉज द ओनली वे यू कुड एक्यूमुलेट कैश और वैल्यू इन दिस कंट्री. सो कोई भी बंदा जो अगर अपने आप को बोरो करके प्रॉपर यूज नहीं कर रहा है, डोंट टेक मी रॉन्ग, बोरोइंग इज नॉट फॉर एवरीवन सनी भाई. क्योंकि क्या होता क्या है, जब हम सोचते हैं कि बोरो मेरा हो गया है, वहीं पर हम गलती करते हैं. बोरो आपका नहीं है, आपको उससे ज्यादा कमाना है, और उसके लिए अगर आपके पास फाइनेंशियल प्लानर अच्छा है ना सनी भाई, आई कैन प्रॉमिस यू अ लॉट ऑफ पीपल अंडरस्टूड कि उनके टाइम की वैल्यू मल्टीप्लाई हो गई है जस्ट बाय बोरोइंग. सो एक कॉरपोरेशन का छोटा एग्जाम्पल देता हूँ. ही हैड $1 million इन्वेस्टमेंट उसके थी, हमने उनके साथ प्लानिंग शुरू की, वी गॉट हिम 3 times लोन. सो उसको 3 million मिल गए बोरो करने के लिए, इंटरेस्ट वाज अ राइट ऑफ एट 3% एंड ही इज मेकिंग अराउंड 12%. सो आज कहां वो 1 million पे 8% कमा रहा था, कहां वो 3 million पे 8% कमा रहा है. यू कैन इमेजिन हाउ फास्ट हिज एसेट्स विल ग्रो. बट यहां मैं पीस ऑफ कॉशन देना चाहूंगा वेरी केयरफुली, दिस इज नॉट फॉर एवरीवन.
1: जी, एंड दोस्तों फाइनेंशियल प्लानर अमन मेहता जी जैसा इंसान आपके साथ हो, हु वैल्यूज योर टाइम, योर एफर्ट, योर मनी, योर सिक्योरिटी, योर सेफ्टी, व्हाट मोर डू यू नीड? व्हाट अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोफेशनल, और अमन जी को हम कौन नहीं जानते, दस का दम जो हमारे यहाँ का मोस्ट पॉपुलर 101.3 FM का शो था, यू नो, उसके प्रोड्यूसर एंड होस्ट अमन जी. 416-707-9900, वक्त कम है, दो सवाल क्विकली पूछ लेते हैं अमन जी से. अमन जी, एक तो इज कॉर्पोरेट लाइफ इंश्योरेंस रियली एन एक्सपेंस और कैन इट बी कंसिडर्ड एन एसेट? एंड ऑल्सो मैं यहाँ पर ही जोड़ देता हूँ, वाई डू मैनी फैमिलीज लूज वेल्थ By the third generation.
0: सनी भाई, इसका कुछ ही आंसर देता हूँ. अगर आप गाड़ी में एयर बैग एक्सपेंस समझ के लेंगे तो यू नो वट, यू हैव टू थिंक अबाउट इट ट्वाइस. इट इज ऑलवेज एन एसेट, मोर वैल्यू देन द कार इटसेल्फ. क्योंकि जब गाड़ी लगती है सबसे पहले हम ये बोलते हैं शुक्र एयर बैग डिप्लॉय हो गया. तो थर्ड जनरेशन क्यों लूज कर रही है? बिकॉज हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन उसको रिटेन कैसे करना है वो हमारी स्ट्रैटेजी नहीं है. एंड आई ओपनली ऑन एयर से, आप एक बार मेरे साथ एक घंटा बैठे, If I don't prove it on paper कि कैसे आप tax efficiently, now मैं tax efficient, TRA compliant हूँ बिल्कुल, और 20 years इस career में हूँ, and बड़ी proudly इस बात को ये करता हूँ कि जितनी फैमिली से भी हम जुड़ते हैं ना सनी भाई, इट्स मोर ऑफ अ फैमिली. मैं आपको वे आउट दिखाऊंगा हाउ इट इज डन. करना है नहीं करना है वो आपकी ऑप्शन है, बट ऑनेस्टली आई कीप ऑन एजुकेटिंग द कम्युनिटी. एंड आई ऑलवेज अप्रिशिएट सनी भाई यू एंड द होल CMR फैमिली for helping me bring my voice on air for such an event.
1: मुझे लगता है ये वो सेगमेंट है जिसके लिए मुझे आपको हर दिन, हर मतलब जब आप ऑन एयर आते हैं, आपको एक $500 का चेक भेज देना चाहिए CMR और साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो की तरफ से फॉर एजुकेटिंग अस अबाउट स्टफ दैट वी समटाइम्स फील कि हमें बहुत कुछ पता है. आपके सेगमेंट के बाद मैं इतना छोटा महसूस करता हूं कि भाई मुझे कितनी चीजों के बारे में कोई इल्म नहीं है, आइडिया नहीं है, बट आई थिंक आई बीन इन बिजनेस फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, आई नो इट ऑल. दोस्तों अमन मेहता जी नंबर एक ही है, 416-707-9900. ही इज बीन डूइंग दिस फॉर 20 years now, financial planner हैं, advisor हैं, और आपकी स्थिति के हिसाब से, situation के हिसाब से, आपके परिवार के finances के हिसाब से, आपके finances के हिसाब से, आपको correct, proper advice देते हैं. The number one financial planner that I know, Aman Mehta, 416-707-9900. I just don't call companies, brands and people number one just because वो on air होते हैं. It takes time for me to actually say कि भैया ये बंदा मेरे हिसाब से number one है. And Aman Mehta अपने काम को बहुत ही शिद्दत से प्रार्थना की तरह, वर्शिप की तरह करते हैं. एंड दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट हिम, दैट्स व्हाट आई लव अबाउट हिम, ही इज अ ग्रेट फ्रेंड. अमन मेहता फाइनेंशियल प्लानर, 416-707-9900. अमन जी बहुत बहुत शुक्रिया.
0: थैंक यू सर, हैव अ लवली वीकेंड एंड थैंक्स फॉर द जेनरस वर्ड.
1: थैंक यू ब्रदर, टेक केयर. 416-707-9900 और बाकी सब फर्स्ट क्लास है. ये कह रहे हैं अरिजीत सिंह, नीति मोहन, एंड द फिल्म वॉज कलंक, एंड वरुण धवन पर फिल्म आया, और वरुण धवन के डैड डेविड धवन कहते हैं कि भाई मेरे बेटे की 10 हिट्स के बाद जब ये 11वीं फ्लॉप हुई थी, इट वॉज हार्ट ब्रेकिंग, बट फिर भी जिंदगी फर्स्ट क्लास है, इंजॉय करें. बाहर का तापमान 23 degrees Celsius. आई विल बी बैक.

0: You're listening to South Asian Unlimited Radio. For advertising, call 647-863-1940. 647-863-1940.
1: ਕੈਂਪਿੰਗ ਦਾ ਪਲਾਨ ਤਾਂ ਮਸਤ ਸੀ ਪਰ ਟੋਯੋਟਾ ਟਕੋਮਾ ਦੇ ਬਿਨਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਰੈਡ ਟੈਕ ਡੇਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਟਕੋਮਾ ਲੈ ਆਓ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਦਮਦਾਰ ਆਈਫੋਰਸ ਇੰਜਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੇ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਦੂਰ ਸਕੂਨ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਰੈਡ ਟੈਕ ਡੇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲਓ ਲੀਜ਼ ਕਰੋ 2026 ਟਕੋਮਾ 4x4 ਡਬਲ ਕੈਬ SR5 $114 ਵੀਕਲੀ ਤੋਂ 36 ਮੰਥਸ ਲਈ 4.69% ਤੇ $4900 ਡਾਊਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਜ਼ਿਟ shoptoyota.ca ਜਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਟੋਯੋਟਾ ਡੀਲਰ ਕੋਲ ਜਾਓ
0: Real estate is not easy business aur jo easy nahi use easy banate hain realtor Raj Joshi from Royal LePage Credit Valley ghar khareedna ya phir ghar bechna first time home buyers ya phir investors sabki pasand ka rakhte hain khayal ye hai Raj Joshi realtor bemisal call Raj Joshi from Royal LePage Credit Valley Realty 647-866-1086 647-866-1086 Raj Joshi sirf naam hi kafi hai
2: अक्सर घर खरीदने में सिक्योरिटी हमारी आखिरी चॉइस होती है ऐसा क्यों
3: नया इलाका और नया घर
2: अक्सर इन घरों में ज्यादा चोरियां होती हैं। घर नया ले या पुराना बिना सिक्योरिटी के अधूरा रहेगा आपका प्लान फॉर कंप्लीट पीस ऑफ माइंड एंड प्रोफेशनल सिक्योरिटी एडवाइस पॉल सहगल 416-940-0624 416-940-0624 और विजिट paulsecurity.com प्रिवेंशन इज सॉल्यूशन
0: बेस्ट साउथ एशियन क्लोदिंग के लिए एक ही स्टोर जहां पर आपको मिलेंगे एक छत तले बेस्ट फैशंस, बेस्ट स्टाइल्स एंड बेस्ट प्राइसेस एशियंस पॉपुलर साउथ एशियन क्लोदिंग एंड टेक्सटाइल स्टोर नियर मार्कम रोड एंड लॉरेंस एवेन्यू इन स्कारब्रो 3601 लॉरेंस एवेन्यू ईस्ट यूनिट नंबर 23 स्कारब्रो नोन फॉर देयर साड़ीज लहंगा सलवार सूट्स ब्राइडल वेयर मेन्स ट्रेडिशनल क्लोदिंग ज्वेलरी एंड गिफ्ट आइटम्स एशियंस 416-438-6568 East or West, Asians is the best.

0: इमिग्रेशन
1: कम्युनिटी का जाना बचाना और भरोसेमंद नाम मनन गुप्ता आपके लिए लाए हैं कैनेडियन इमिग्रेशन की प्रोफेशनल सर्विसेज। कॉल मनन गुप्ता 416-451-0040 दैट इज 416-451-0040 और विजिट skylakeimmigration.com।
2: लेक डेटा प्लान सी पर टोयोटा टंडरा दे बिना सगुन नहीं शोर मिलिया। जेकर तुसी अपने स्थानक टोयोटा डीलर तो टंडरा ले आओ ता एसडी 11,000 पाउंड्स तक दी टोइंग कैपेसिटी दे नाल तुसी फैसला करोगे कि रुकना किथे है। रेड टैग डेज दा लाभ लाओ। लीज करो 2026 टंडरा 4x4 क्रू मैक्स डीआरडी ऑफ रोड $172 वीकली तो 36 मंथ्स लाई 4.29% APR ते $5,800 डाउन दे नाल। विजिट shoptoyota.ca जा अज ही अपने लोकल टोयोटा डीलर कोल जा।
3: मॉर्गेज का कोई भी काम याद रखें एक ही नाम मॉर्गेज आर्किटेक्ट्स के सनी जोशी। फर्स्ट मॉर्गेज, सेकंड मॉर्गेज, होम इक्विटी, रिन्यूअल्स, बैड क्रेडिट, इनकम इश्यूज के लिए लेट्स टॉक। बेस्ट रेट्स, बेस्ट सर्विस एंड बेस्ट मॉर्गेज प्रोफेशनल सनी जोशी। 6478631940 6478631940।
4: जैसा बाजार का तकाजा है वैसा लिखना अभी नहीं सीखा। मुफ्त बटता हूं मैं तो आज भी, मैंने बिकना अभी नहीं सीखा। एक चेहरा है मेरा कमबख्त, एक चेहरा है मेरा कमबख्त, वो भी इतना जिद्दी है कि जैसी उम्मीद है जमाने को वैसा अभी दिखना नहीं सीखा। जैसी उम्मीद है जमाने को वैसा अभी दिखना नहीं सीखा।
3: वेलकम बैक फ्रेंड्स एंड इट्स ऑलमोस्ट टाइम टू से गुड बाय। अब हमारी मुलाकात आपसे होगी मंडे यानी नेक्स्ट वीक। मुझे दीजिए इजाजत। CMR 101.3 FM पर साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो मंडे टू फ्राइडे 12 to 2 PM। टिल देन गुड बाय एंड गॉड ब्लेस लेडीज एंड जेंटलमैन।

0: You're listening to CMR FM 101.3.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
2: The opinions stated by the various contributors to Sean Express are not to be considered as endorsed by Sean Express or CMR. They represent the opinions of the individual or business in question. All information given on this radio show is for education and entertainment purpose only. Moreover, the health tips given on this radio show should be cleared with a physician or nutritionist. We make no guarantee about the accuracy of information presented on this show.
3: Attention please, Sean Express, Masiki Rail Gari, CMRP Station, 101.3 FM par aa chuki hai.
4: Jal mein sunane aayi, subah manane aayi, chatpate gossip ke saath masti lutane aayi. Aayi Sean Express, masti ki rail gari, aayi Sean Express, masti ki rail gari.
5: Sean Express, मस्ती की रेलगाड़ी,
6: एक ड्राइव इन मस्ती शो जिसमें है आज के जमाने के टॉप सॉन्ग्स, ताजा तरीन खबरें और चटपटी गॉसिप्स जो आप ड्राइव को बनाएंगे पावर ड्राइव. Sean Express, मस्ती की रेलगाड़ी, ड्राइव टाइम शो विद शालिनी,
5: ब्रॉट टू यू बाय Sean Media.
7: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आप सभी का शालिनी वेलकम करती है मस्ती की रेलगाड़ी पर ऑन CMR FM 101.3. इट्स 2 o'clock और हमारा और आपका साथ रहेगा बरकरार शाम के 4 बजे तक. फाइनली फ्राइडे आ चुका है और आज सिर्फ वीकेंड का इंतज़ार नहीं, थोड़ा ख़ुद को सेलिब्रेट करने का दिन है. पूरे हफ्ते हमने जो मेहनत की है, जो चुनौतियां पार की हैं और जो छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाए हैं, उन सब के लिए ख़ुद को एक स्माइल देना तो बनता है. आज का इंस्पायरिंग पॉजिटिव थॉट कहता है कि सफलता हमेशा बड़ी छलांगों से नहीं मिलती, रोज़ उठाए गए छोटे छोटे कदम ही आपको मंजिल तक पहुंचाते हैं. कहते हैं कि उम्मीदों का दिया जलाए रखिए, हौसलों को हमेशा सजाए रखिए, मंजिल मिल ही जाएगी आखिरकार एक दिन, बस मुस्कुराकर कदम बढ़ाए रखिए. तो आज शिकायतों को ज़रा छुट्टी देते हैं, खुशियों को प्रायोरिटी देते हैं और इस फ्राइडे को ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिविटी के साथ जीते हैं मिलकर मस्ती की रेलगाड़ी पर. और बहुत ही अमेजिंग सा ट्रैक है, ओ बॉय चार्ली, तूने दिल की बाजी मार ली. आज पंकज कपूर का बर्थडे है और ये वंडरफुल सा फुट टैपिंग नंबर आपकी नज़र मस्ती की रेलगाड़ी पर.
8: है ना.

0: की बाजी मार ली दोस्तों। दिल की बाजी मारने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। असल मायने में दिल की बाजी वो जीतता है जो दिल से काम करता है। मेहनत होनी एक अलग जगह है। आप अपने करियर में मेहनत कर सकते हैं, लेकिन जहाँ दिल लगाना है ना, वहाँ सिर्फ दिल का ही काम होता है, वहाँ मेहनत और दिमाग का काम नहीं होता। आप सिर्फ और सिर्फ अपने दिल को साफ रखिए, ऑटोमेटिकली दिल की बाजी आप जीत सकते हैं। तो आज फ्राइडे को कोशिश करते हैं कि आपको दिल से एक बार फिर से कनेक्ट करें और दिल की बाजी हम सभी साथ मिलकर जिएं, दिल से दिल का कनेक्शन करें। मस्ती की रेलगाड़ी पर ऑन CMR FM 101.3। इट्स अ ब्यूटीफुल फ्राइडे, 29th ऑफ मई आज की तारीख है और बाहर का मौसम मैं चेक कर लेती हूँ। इट्स अ ब्यूटीफुल डे, सनशाइन के साथ 23 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है और आज का हाईएस्ट जाएगा 3 बजे 24 डिग्री सेंटीग्रेड और रात का लोएस्ट जा सकता है रात के 11 बजे 13 डिग्री सेंटीग्रेड। और एक और दिन है खुश होने के लिए, एक और दिन है वीकेंड के प्लान्स बनाने के लिए, एक और दिन है अपनों और परायों के चेहरों पर स्माइल लेकर आने के लिए। और यही हमारी कोशिश है दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत सी मस्ती की रेलगाड़ी की राइड लेकर आए हैं। बॉलीवुड कैलेंडर खोलेंगे और जैसा बताया आज पंकज कपूर का बर्थडे है, उनके बारे में कुछ और बातें करेंगे, कुछ मूवीज़ के बारे में बात करेंगे, लेटेस्ट कौन सी रिलीजेज हो रही हैं, कौन सी फिल्म पुराने दौर की सुपरहिट रही थी, इसके अलावा कौन सी मिड एज के ऐसे गाने हैं जो अनसुने हमने कर दिए हैं, बहुत दिनों से बहुत वक्त से हमने नहीं सुने, ऐसे गाने भी आपके तक पहुंचाएंगे और बिहाइंड द सीन स्टोरीज़ भी पहुंचाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आज के दिन की बात करेंगे कि आज का दिन क्यों है वेरी वेरी स्पेशल, आज के दिन में क्या खास होने जा रहा है, राइट? कुछ इंटरेस्टिंग मेहमान जुड़ेंगे बहुत ही अमेजिंग डील्स एंड ऑफर्स के साथ और आपकी हमसे बातचीत तो होती रहेगी। आज का टॉपिक भी रखेंगे तैयार। स्टूडियो का नंबर 4165930055 4165930055। छोटा सा टाइनी सा ब्रेक, वील बी राइट बैक, स्टे ट्यून्ड। शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी स्टेशन CMR 101.3 FM पर आ चुकी है। Dear sponsors, for fast, effective and result-oriented ride, get on board Shaun Express. For info, call 416-569-7812, 416-569-7812 or email info@shaunmedia.com, shonmedia.com.
1: You work hard, manage to make both ends meet. Right combinations do miracles. If tax and accounting is your need, think Rajiv Madan. Depth of experience, passion for accounting. Tajurba wahi jo kaam aaye, aapko fayda pahunchaye. Certified General Accountant, Rajiv Madan. Tax accounting ke sabhi pehluon par paini nazar. Fark aazmane pe pata chalega. Call CGA Rajiv Madan, 905-362-2200. 905-362-2200.
2: 2970 Drew Road, Suite 214B, Mississauga.
1: CGA Rajiv Madan. Thoughts become things.
3: Another Don Clean with the Don Ducks.
4: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
5: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
4: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
5: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
4: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
5: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
4: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
3: Dawn Platinum, the better grease getter.
6: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहां पहुंचे सभी वहीं पहुंचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
7: Team Hashtag Homes and Rahul Kashyap Lekar aaye hain first time home buyers ke liye an amazing opportunity. Freehold townhomes from $499,000 and detached homes from $605,000. First time home buyers can enjoy up to $130,000 in savings with new rebates, unlocking home ownership for the first time home buyers with the closing of 2027. Agar aap is opportunity ko grab karna chahte hain, then get in touch with Team Hashtag Homes today at 647-993-4844.

0: जी हाँ, विन लाइफ टाइम के सॉफ्टवेयर के जरिए आप दुनिया में कहीं से भी जितना चाहो पैसा बना सकते हो। एवरी सैटरडे 1 PM इनका सेमिनार अटेंड तो करें, इट कैन चेंज योर लाइफ। कॉल 9052061008, दैट इज 9052061008, और विजिट winlifetime.com। विन लाइफ टाइम।
1: इस तेज रफ्तार जिंदगी में लीजिए एक लवली ब्रेक। चाहे बैक होम जाना हो या करनी हो दुनिया भर की सैर, अपने ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस को बनाइए लवली विद लवली फेयर्स। वेकेशन पैकेजेस, टूर्स या फ्लाइट्स, लवली ट्रैवल्स इज ऑलवेज रेडी टू मेक योर ट्रिप मेमोरेबल एंड अफोर्डेबल। कहीं और से टिकट्स बुक करने से पहले एक बार लवली फेयर जरूर चेक करें। लवली ट्रैवल्स, 80 मैरिटाइम बुलेवार्ड, यूनिट नंबर 54 इन ब्रैम्पटन। कॉल 9054585300, 9054585300.
2: Jamming as much variety into your workday as possible.
3: Radio Resync complete.
4: Hit music.
5: Hit after hot hit.
1: This segment is sponsored by Madras Restaurant, bringing you authentic South Indian flavors with their unlimited thali. 20 plus delicious dishes, fresh and unlimited, starting at just 20-26, Friday to Sunday, only at Madras Restaurant. वेलकम बैक दोस्तों, शालिनी एक बार फिर से स्वागत करती है मस्ती की रेलगाड़ी पर। CMR FM 101.3, it's 214 राइट नाउ। और आज बर्थडे मना रहे हैं एक ऐसे एक्टर जिनकी एक्टिंग में है डेप्थ, रियलिज्म एंड परफेक्शन का कॉम्बिनेशन, और हर कैरेक्टर को वो लिटरली जिंदा कर देते हैं ऑन स्क्रीन। एक ऐसा नाम जो ग्लैमर से नहीं बल्कि प्योर टैलेंट से जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं ब्रिलियंट एक्टर पंकज कपूर के बारे में, और इनका सफ़र शुरू हुआ थिएटर से। तो जब इनकी हम एक्टिंग देखते हैं तो बिल्कुल मंजी हुई एक्टिंग नजर आती है जो एक थिएटर एक्टर में होती है जनरली। वहीं से उन्होंने अपनी एक्टिंग की स्ट्रांग फाउंडेशन रखी। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी NSD से इन्होंने ट्रेनिंग ली और धीरे धीरे बन गए एक्टर्स एक्टर। जी हाँ, बहुत सारी इनकी आइकॉनिक फिल्में आई जैसे जाने भी दो यारों, मकबूल, फाइंडिंग फैनी, और मकबूल में उनका परफॉर्मेंस एकदम इंटेंस और पावरफुल था और क्रिटिक्स ने उन्हें दिया स्टैंडिंग ओवेशन। बॉलीवुड के साथ साथ पंकज कपूर ने टेलीविज़न में भी अपनी हिस्ट्री बनाई है। कैसे भूल सकते हैं ऑफिस ऑफिस को, और मुसादीलाल का कैरेक्टर कैसे भूल सकते हैं, आज भी लोगों के दिलों में वो जिंदा है। कॉमिक टाइमिंग, उनका जो सटायर है एकदम यूनिक, एकदम परफेक्ट था। तो सॉन्ग्स में हालांकि कम नज़र आते हैं, लेकिन अगला जो सेगमेंट है, जो गाना है, हमने लिया है एक बहुत ही अमेजिंग सी फिल्म में जिसमें ये डैड थे और इनके बेटे शाहिद कपूर इनकी मूवी में भी बेटे बने। बिल्कुल फन लविंग फिल्म थी, और उससे जुड़ा हुआ एक बहुत प्यारा सा गाना है, आपकी नज़र करेंगे। कहते हैं कि पंकज कपूर ने जो है मेन स्ट्रीम रोल्स काफ़ी कम किए, लेकिन हर रोल इतना पावरफुल दिया है कि अब तक यादगार बन चुका है। और क्वालिटी से ज़्यादा, क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पर इन्होंने फोकस किया है, और यही रीज़न है उनकी स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन का। उनकी डायलेक्ट डिलीवरी, एक्सप्रेशंस एकदम नेचुरल और एफर्टलेस होते हैं। तो चलिए दोस्तों, वी आर हिटिंग फ्राइडे इवनिंग वेरी सून, और आपकी आज की शाम को बनाते हैं शानदार। शाम शानदार, आपकी नज़र करते हैं फ्रॉम द मूवी शानदार टू सेलिब्रेट दिस आइकॉनिक एक्टर्स बर्थडे ऑन मस्ती की रेलगाड़ी। एंजॉय।

0: dear sponsors for fast, effective and result-oriented ride. Get on board Sean Express. For info, call 416-569-7812, 416-569-7812, or email info@seanmedia.com, seanmedia.com.
1: वीरे वधिया फर्नीचर ली किथे जावा
2: भाई चार लोकेशन तो देन सेवावा बस ऐसे करके ही मैं ता मिड्डा फर्नीचर ते ही जावा
3: लेटेस्ट डिजाइन एंड हाई एंड फर्नीचर विद बेस्ट सर्विसेज मार्केट दे प्राइस नालों 10-30% सस्ती प्राइस दा दावा कर देने
4: मिड्डा फर्नीचर आओ घर दफ्तर नु सजाओ ब्रैम्पटन स्कारब्रो मिसिसागा ते कैम्ब्रिज लोकेशन ते आओ ता सही
3: आजमाओ ता सही अपना बनाओ ता सही मिड्डा फर्नीचर कॉल करो 416-901-2810 416-901-2810 10 मिड्डा फर्नीचर।
5: वेल दोस्तों, और मस्ती की रेलगाड़ी में आज एक्साइटमेंट थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि आज फ्राइडे का दिन है और इस वक्त मस्ती की रेलगाड़ी को हम जीडीए से बाहर लेकर जा रहे हैं और सीधे पहुंचते हैं टिंग टोंग लंदन, जहां पर पांचवी लोकेशन खुल चुकी है मिड्डा फर्नीचर गैलरी की और कल बड़े ढोल धमाकों के साथ एक फॉर्मल लॉन्च होने जा रहा है। एंड ज्वाइनिंग अस नाउ ऑन एयर इज पवन मिड्डा जी विद द ग्रेट ग्रेट ऑफर्स। पवन जी, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेलकम टू शो।
6: थैंक यू जी, और जो आप मुबारकें हैं सब आपको हैं, छोटी बहन को हैं, छोटी बहन और जो जितने मेरी एक्सटेंडेड फैमिली हैं, बड़ी बहनें, बड़े भाई, बच्चे, कहते हैं ना मेरी बच्चियां, मेरे बच्चे, और किसी का चाचा, किसी का मामा, किसी का ताया और किसी का बड़ा भाई, किसी का छोटा भाई, और जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका तो कहते हैं अजीज। तो ये बड़ा प्यार हमें बड़े सालों से मिलता आ रहा है, तो उसके लिए ऋणी हूँ मैं, ऋणी हूँ। और सभी को मिलता होगा अपने जो बिलावट का प्यार, और मेरी इतनी बड़ी एक्सटेंडेड फैमिली है कि मुझे बड़ा मान महसूस होता है। और मैं अपने आप को कहता हूँ, मैंने बहुत बार ये रेडियो पे भी कहा है कि दौलत पैसों से तो होगा, बिल गेट्स या बहुत वाले एप्पल वाले अमीर होंगे, पर प्यार मिलने में मैं अपने आप को मानता हूँ कि मुझे ये प्यार मिला और आपका साथ मिला, वैल्यूएबल बिजनेस दिया, जॉब से कैरियर शुरू करा था, फिर एक छोटा स्टोर, फिर एक से बड़ा, बड़े से दो, दो से तीन, तीन से चार, चार से पांच, तो ये सब कुछ हुआ। तो जब अपने साथ खड़े होते हैं तो अपनों के बगैर ये संभव नहीं हो पाता, और अपना आपका जब प्यार मिलता, साथ मिला, वैल्यूएबल बिजनेस मिलना, ये बहुत किस्मत वालों की बात होती
5: है। सही बात है,
6: मैं अपने आप को किस्मत वाला मानता हूँ और ये चाहता हूँ मेरी छोटी बहन नजर भी उतार ले ताकि ये नजर भी ना लगे इस प्यार को, ये प्यार यूं ही बना रहे। और हमने भी अपनी तरफ से भी कोशिश करी है कि जो हमें आप लोगों की वजह से वॉल्यूम डिस्काउंट हमें मिला, हमें जितना सस्ता मिला हमने आपको दिया। हर दुकानदार एक रीजनेबल प्रॉफिट कमाता है
5: जी,
6: हम भी कमाते हैं, और लेकिन हम सस्ते भी हैं फिर आपके लिए, और प्रूफ भी करा हमने उस रिश्ते को। रिश्ता तो शालिनी जी बनाना, मतलब आप किसी को भी कह सकते हैं,
5: सही कि बात है,
6: लेकिन उस रिश्ते को निभाना मतलब वो है। तो जैसे आप निभाते आ रही हैं तो वैसे ही निभाना जो है ना बड़ा वो हार्ड होता है। बनाना कहते हैं इजी होता है लेकिन निभाना होता है। आप लोग भी निभा रहे हैं, इतने सालों से निभा रहे हैं, और हमारी भी पुरजोर कोशिश है कि हम आपके जो भी है हम भी उस रिश्ते को निभा भी पाए और प्रूव भी कर पाए। मीठा बोलना कह देना अभी बात है, प्राइस फिर सस्ती होनी भी चाहिए, प्रूफ के साथ भी सस्ती होनी चाहिए, नहीं तो हर बंदा ही ढोल बजा के कह रहा है कि मैं सस्ता, मैं सस्ता, मैं सस्ता हूँ। लेकिन हम आपने हुनस्ती को भी सराहा, इसके लिए भी आपको जो सलूट है। तो आए, जैसे मेरी बहन ने कहा कि पांचवीं लोकेशन पे आपका स्वागत है, आई नो 1.5-2 घंटे की ड्राइव है ब्रैम्पटन से, जो बहन भाई आ जाएंगे मैं अपने आप को किस्मत वाला मानूंगा, जो नहीं आ सकते फोन द्वारा भी हमें गुड विशेस भेज सकते हैं, ईमेल से भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप से भी कर सकते हैं, कहते ना दिल तो दिल के पास होना चाहिए।
5: क्या बात।
6: और हाँ, ब्रैम्पटन मिसिसागा स्कारब्रो कैम्ब्रिज में भी आ सकते हैं, ग्रैंड ओपनिंग डील का फ्लायर हमारी वेबसाइट के ऊपर लग गया है, हर परचेज के साथ गिफ्ट भी है।
5: oh, wow.
6: गिफ्ट का भी मॉडल नंबर है, गिफ्ट का भी मॉडल नंबर दे रहे हैं। ऐसे की अगर जो रग देंगे आपको, कारपेट देंगे तो तीन मॉडल लिखे हुए हैं, लैंप लिखे हुए हैं तो उसके मॉडल लिखे हुए हैं, वॉल आर्ट जो बड़ी बड़ी पिक्चर हैं उनके मॉडल लिखे हुए हैं कि ये गिफ्ट है, आप एक चूज कर ले, मतलब उनमें से आप एक चूज कर ले तो आपको आना है मिड्डा फर्नीचर पे। हाँ, हर आइटम फ्लायर पे कई बार नहीं होती, जो आप ढूंढ रहे हैं, जो आप ढूंढ रहे हैं वो बाजार से सस्ता भी, और आपका हमें प्यार चाहिए, साथ चाहिए, गुड विशेस चाहिए। जैसे आपने चार लोकेशनों को प्यार दिया, पांचवी को भी आप देंगे, तो आए मिड्डा फर्नीचर। मिड्डा फर्नीचर 416-901-2810, 416-901-2810, थैंक यू वेरी मच जी,
5: थैंक्स अ लॉट पवन जी, फिर से आप के साथ हम ज्वाइन करेंगे बहुत जल्दी और कुछ और डील्स लेते हैं। तब तक दोस्तों आप middafurniture.com विजिट करें, 416-901-2810, 416-901-2810, नाउ सर्विंग फ्रॉम 5 locations. Talk to you very soon. बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे फिर पवन जी, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।
6: Thank you.
5: All right. Well, दोस्तों आपको एक बार फिर से वेलकम करते हैं मस्ती की रेलगाड़ी पर ऑन CMRFM 101.3 और ये नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ द ओल्ड क्लासिक्स आप तक पहुंचाया जा रहा है देओल ट्रैवल के सौजन्य से। और एयर टिकट बहुत ही स्पेशल फेयर लगा हुआ है, टोरंटो से दिल्ली आप जा सकते हैं बिफोर मिड जून, लिमिटेड सीट्स के साथ, वन वे 849 में, दो लगेज के साथ। टोरंटो से दिल्ली जा सकते हैं आफ्टर मिड जून 999 में, वन वे विद टू बैगेजेस। वेल इन जुलाई लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं, टोरंटो से दिल्ली वन वे जा सकते हैं $1,049 में विद टू बैग्स। लास्ट मिनट डील्स आर ऑल्सो अवेलेबल, टू लोकेशंस टू सर्व यू, इटोबिको एंड ब्रैम्पटन देओल ट्रैवल, 905-588-5100 एंड 905-588-4200, 588-5100 and 588-4200. And this segment is co-sponsored by Yash Windows and Doors. आप दोस्तों अगर world class quality के windows and doors चाहते हैं तो Yash Windows and Doors पर ज़रूर आप जाइए। और ये जो हैं all over Ontario में services देते हैं, खुद ही manufacturing करते हैं और इनकी export जो team है वो install करती है आपकी property पर, no middleman, no compromise। और style, looks, quality, security, durability, efficiency, energy efficiency, everything together, price ऐसी जो आपके pocket को suit करे। इसके अलावा business opportunity भी है, आप franchise option का भी सहारा ले सकते हैं और एक growing team का हिस्सा बन सकते हैं। Yash Windows and Doors, 416-732-3600, that's 416-732-3600। Beautiful सा track आपकी नज़र मस्ती की रेलगाड़ी पर, जो सलाम करता है हमारी आपकी जिंदगियों को।

0: Sean Express News Bulletin brought to you by Sean Media. News headlines sponsored by Anjum Qureshi. For all kinds of car accident claims, call 416-570-0157. That's 416-570-0157.
1: शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी में सवार हो चुके हैं आप और ये है न्यूज जंक्शन। पहले जान लेते हैं हेडलाइंस, दुनिया भर की बड़ी खबरें। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर वाले $250 के नोट को जारी करने की तैयारी शुरू हो गई है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा पट्टी के 70% हिस्से पर सैन्य नियंत्रण लेने का आदेश दिया। न्यूयॉर्क सिटी की मेयर जोहरान ममदानी ने ईरान जंग का किया विरोध, कहा यह युद्ध अब खत्म होना चाहिए क्योंकि इसकी सबसे बड़ी कीमत आम लोग चुका रहे हैं। वहीं भारत में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शुक्रवार को दिल्ली के बंगाली मार्केट में बने टोडरमल पार्क में ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स के बीच पहुंचे। दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके की याचिका पर केंद्र सरकार और एक्स को नोटिस जारी किया। भारत में मॉनसून की एंट्री हो गई है लेट, मौसम विभाग ने बताया। श्रीलंका के ऊपर कम दबाव वाले तूफानी हवाओं के चलते मॉनसून अटक गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में एक सीरियल अटैकर अपने पतले पैरों के कारण नफरत करता है लड़कियों से और उन पर कैंची से हमला करता है। बॉलीवुड से जुड़ी खबरों में मेगास्टार पिता चिरंजीवी की विरासत के बीच अपनी अलग पहचान बनाना रामचरण के लिए नहीं होगा आसान। अभिनेता सलमान खान ने रणवीर और फिल्म मेकर फरहान अख्तर के बीच चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए पहल की।
2: और दोस्तों अब नजर डालते हैं आज की लेटेस्ट लोकल खबरों की तरफ और सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक बड़ी क्राइम अपडेट से। टोरंटो और वॉन एरिया में सिनेगॉग पर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने एक और टीनेज सस्पेक्ट को गिरफ्तार किया है और ये दो हमले सिर्फ 20 मिनट के अंतर पर हुए थे, एक बेथ एब्राहम यूसुफ ऑफ टोरंटो में और दूसरा बाथर्स्ट और ग्लेन कैरिन एरिया के एक गॉक के पास हुआ था। राहत की बात यह रही कि किसी को चोट नहीं आई लेकिन दोनों जगह गन फायर के निशान मिले हैं। इससे पहले एक 17 साल के आरोपी को भी अरेस्ट किया जा चुका है और उस पर कई चार्जेस लगाए जा चुके हैं। अब बात उस मिसिंग टीन केस की जिसने पूरे शहर को परेशान कर दिया था। 14 साल की एस्थर, जिसे एसटी के नाम से जाना जाता है, वो सेफ मिल चुकी है लेकिन टोरंटो पुलिस सर्विसेज ने साफ किया है कि इन्वेस्टिगेशन अभी ख़त्म नहीं हुआ। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये लंबी गुमशुदगी में कोई क्रिमिनल एक्टिविटी शामिल थी या नहीं और जिस घर में वो मिली वहाँ रहने वाले लोगों की जाँच भी जारी है। अब इकोनॉमी की बात करें तो यूथ के लिए जॉब मार्केट आसान नहीं नज़र आ रहा। स्टैटिस्टिक्स कनाडा के आंकड़ों के मुताबिक 15 से 24 साल के युवाओं में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़कर 14.3% हो गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि देश टेक्निकली रिसेशन में जा चुका है जिससे जॉब्स पाना और मुश्किल हो गया है। हैमिल्टन से एक डिस्टर्बिंग खबर सामने आई है जहां हार्बर से एक बॉडी बरामद हुई है। पुलिस ने मामले को सस्पिशियस मानते हुए होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया और लोगों से जानकारी देने की अपील की है। एजुकेशन सेक्टर में भी हलचल की खबर, टोरंटो TCDSB के एक पुराने लैंग्वेज प्रोग्राम को बंद करने के खिलाफ पिटिशन शुरू हो चुकी है जिसे 24 घंटे में 600 से ज़्यादा लोगों ने साइन किया है। ट्रस्टी का कहना है कि ये प्रोग्राम हज़ारों स्टूडेंट्स के लिए बहुत अहम है और इसे बचाया जाना चाहिए। इंटरनेशनल फ्रंट पर डोनाल्ड ट्रंप जो यूएस प्रेसिडेंट है उन्होंने अनाउंस किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर लगाया गया नेवल ब्लॉकेज अब हटा दिया जाए जिससे ग्लोबल शिपिंग को राहत मिल सकती है। ऑन्टारियो पॉलिटिक्स में ट्रांस

0: हटाने के कई ऑप्शंस थे, लेकिन गवर्नमेंट में जीरो कॉस्ट ऑप्शन गवर्नमेंट ने चुना। और अब एक फ्रॉड अलर्ट रिचमंड हिल से। यॉर्क रीजनल पुलिस एक 49 ईयर ओल्ड सस्पेक्ट डगलस रॉड्रिक्स की तलाश कर रही है, जिसने अलेजिडली स्पैनिश स्पीकिंग न्यू कमर्स को टारगेट किया। वो खुद को कार सेल्स पर्सन बताकर लोगों से पैसा लेता था और फिर गायब हो जाता था। अंत में अब वेदर अपडेट दे दें। आज फ्राइडे का फैंटास्टिक मौसम है, काफ़ी शानदार रहने की उम्मीद है। हाई ऑफ 23 डिग्रीज एंड लोज ऑफ 13 डिग्री सेंटीग्रेड। पूरे दिन सनशाइन का मजा आपको मिलेगा। सुनते रहिए शालिनी के साथ मस्ती की रेलगाड़ी ऑन CMRFM 101.3 शाम के 4 बजे तक। गुड आफ्टरनून। न्यूज हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय अंजुम कुरैशी। फॉर ऑल काइंड ऑफ कार एक्सीडेंट क्लेम्स कॉल 416-570-0157। दैट्स 416-570-0157।
1: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMRFM 101.3। शॉन एक्सप्रेस, म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस इम्प्रेस इम्प्रेस।
2: Another Don Clean with the Don Ducks.
3: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
4: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
3: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
4: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
3: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
4: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
3: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
2: Dawn Platinum, the better grease getter.
5: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला। बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन। विजिट shoptoyota.ca or योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
6: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
7: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?
8: Ja.

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: Hum honge aapke saath hamesha.
2: खुदा ना करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूं और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है आज ही मुझे कॉल करें आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है 416-570-0157.
3: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना साथ देने आएंगे स्नैक्स चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर
4: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर
3: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी
5: शगन का दिन चढ़ेगा सजना घर आएंगे टोली लेकर जाएंगे सजेगी शहनाई भी बजेगी लम्हा के संग हर घड़ी यादगार बनेगी शादी हो या थीम शो कॉर्पोरेट पार्टी हो या कोई खास इवेंट ये पल तभी यादगार बनते हैं जब प्लानिंग हो परफेक्ट और एग्जीक्यूशन हो बेस्ट और ये सब आपको मिलता है लम्हा इवेंट्स के साथ डेकोरेशन से लेकर एंटरटेनमेंट तक लाइट से लेकर मेहमानों की मुस्कान तक सब कुछ बेमिसाल सेलिब्रेशन जो याद रहे सालों साल तो इवेंट की डेट आप फिक्स कीजिए बाकी

0: जी हाँ, विन लाइफ टाइम के सॉफ्टवेयर के जरिए आप दुनिया में कहीं से भी जितना चाहो पैसा बना सकते हो। एवरी सैटरडे 1 PM इनका सेमिनार अटेंड तो करें, इट कैन चेंज योर लाइफ। कॉल 9052061008, दैट इज 9052061008, और विजिट winlifetime.com। विन लाइफ टाइम।
1: वेलकम टू मद्रास रेस्टोरेंट। स्वाद स्वाग और साउथ का तड़का। फ्राइडे सैटरडे और संडे एंजॉय कीजिए ऑथेंटिक साउथ इंडियन अनलिमिटेड थाली स्टार्टिंग एट सिर्फ 20-26। 20+ साउथ इंडियन डेलिकेसीज, गर्मा गर्म और अनलिमिटेड पराठा, इडली वड़ा, स्पाइसी अरोमेटिक करीज एंड मोर। अनलिमिटेड सर्विंग्स, अमेजिंग वैरायटी और प्राइस जो पॉकेट को भी खुश करे। डोंट फॉरगेट टू ट्राई देयर सिग्नेचर डोसास, बिरयानी एंड लॉट मोर। मद्रास रेस्टोरेंट, 9057896600, दैट्स 9057896600। बॉलीवुड में रोजाना बदले जमाना, जमाना शॉन एक्सप्रेस पर ये रहा लेटेस्ट गाना। वेल दोस्तों, लेटेस्ट गाने की बात हुई है और बहुत ही अमेजिंग सा ट्रैक आपकी नज़र करने जा रहे हैं। फिल्म का नाम है मैं वापस आऊँगा। बड़ी इंटेंस फिल्म है, डायरेक्शन है इम्तियाज अली का और इस फिल्म में है दलजीत दोसांझ, शर्वरी वाघ और साथी कलाकार नसीरुद्दीन शाह भी इस फिल्म में है। और ये फिल्म जो है इंडिया के पार्टीशन की बैकड्रॉप पर बेस्ड एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल लव स्टोरी है, जिसमें बिछड़ने, इंतज़ार और अपने वतन और अपनों के लिए एक जो तड़प होती है उसको दर्शाया गया है। और ये फिल्म रिलीज होने जा रही है 12 जून को। कहते हैं दोस्तों कि कुछ कहानियाँ सिर्फ प्यार की नहीं होती, कुछ कहानियाँ सिर्फ प्यार की नहीं होती, वो इंतज़ार की होती हैं, वो उम्मीद की होती हैं, वो उस वादे की होती हैं जो वक्त और दूरियाँ जो होती हैं वो भी नहीं तोड़ सकती। कहते हैं कि मीलों की दूरियाँ हों या सदियों का फासला, मीलों की दूरियाँ हों या सदियों का फासला, जो दिल में बस जाए वो लौट कर ज़रूर वापस आता है। मैं वापस आऊँगा, इसी एहसास को लेकर आ रहे हैं इम्तियाज़ अली। ये कहानी है मोहब्बत, जुदाई और उस उम्मीद की जो हर बिछड़े हुए इंसान के दिल में कहीं ना कहीं ज़िंदा ज़रूर रहती है। इसी फिल्म से लिया गया सुपर हिट ट्रैक आपकी नज़र।

0: मैं वापस आऊंगा इस फिल्म से लिया गया बहुत प्यारा सा गाना है और ये इम्तियाज अली के डायरेक्शन में लाइक आई सेड बिफोर दिस इज गोइंग टू बी अ ब्रांड न्यू फिल्म लॉन्चिंग ऑन 12th of June। और हमारे साथ पहुंच रहे हैं अब राहुल कश्यप जी और उनसे करेंगे एक छोटी सी मुलाकात और वो लॉन्च करने लगे हैं बहुत अमेजिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आप ही के लिए और उन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को खोजने के लिए निकले हैं राहुल जी और आज वापस स्टूडियो नहीं पहुँच सके लेकिन उनसे हम फोन लाइन पर ही बातचीत करते हैं और आपसे पूछते हैं राहुल जी कि क्या स्पेशल है हमारे लिसनर्स के लिए। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू यू एंड वेलकम टू द शो।
1: जी शाह जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू एंड ऑल आवर लिसनर्स।
0: थैंक यू सो मच राहुल जी फॉर जॉइनिंग अस टुडे। और इतना अच्छा मौसम है और आज फैंटास्टिक फ्राइडे भी है तो कुछ एक्स्ट्रा यू नो परफेक्ट हो जाए हमारे लिसनर्स के लिए।
1: जी एब्सोल्युटली, फर्स्टली आई वांट टू अपोलोजाइज टू आवर लिसनर्स कि आज रेडियो पे आना था। I wanted to be in the studio today with you guys, but जी. unfortunately, कुछ commitments की वजह से, and because we're working on some amazing opportunities for our listeners and our clients, I got caught up with that. So that's why I couldn't be there. But next week I'll be coming to the studio not once but twice, so
0: that's
1: that we can
0: great.
1: Definitely recap everything that's been happening in the real estate market.
0: जी.
1: But जो एक बहुत you know amazing news ये है कि आज की date में you know we all know the numbers that has come out for the month of April.
0: Mm-hmm.
1: They are very promising, especially for the low rise community.
0: Achha.
1: क्योंकि जो भी ये low rise products आ रहे हैं, जो इनके price points हैं, that has kind of stirred the pot. That's how I would like to call it.
0: Mm.
1: उसकी वजह से market के अंदर एक थोड़ी सी positivity वापस आई है.
0: बिल्कुल.
1: The numbers are starting to look a little bit better.
0: Yes.
1: The buyer's confidence is coming back. And जो हमारे first time home buyers हैं, even the regular buyers and some investors as well.
0: Hmm.
1: If the deal is making sense price point wise and location wise, they are pulling the trigger and they are making the move and they are getting themselves the right unit that works financially for them.
0: क्या बात?
1: और उसी की वजह से हम एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन projects लेकर आ रहे हैं और वो भी हमारे एक तो field region में है because two of the projects are coming up in Caledon.
0: अच्छा.
1: Caledon में आने वाले हैं और एक का तो लॉन्च इसी वीकेंड हो गया है, होने वाला है, सो वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। और जो अगला प्रोजेक्ट है कैलेडन का, दैट्स कमिंग अप ऑन जून 17। सो पहली बात कैलेडन के अंदर, अगर आप वेस्ट कैलेडन मैकलॉगलिन और मेफिल्ड के एरिया में देखना चाहते हैं, वी हैव ब्रांड न्यू टाउन होम्स, डिटैच होम्स कमिंग अप from the starting price of $729,000.
0: Kya baat hai? That's amazing.
1: 30,000 mein, this is net of HST price.
0: Yes.
1: For absolutely free whole townhouse, traditional townhouse hai, with backyard, and these are not 1,500 square feet. We're talking about 1,700 approximate square feet of townhomes.
0: My God.
1: So, square foot ke townhomes hain ye.
0: Kya baat?
1: Jo aa rahe hain Caledon West ke andar, right at McLaughlin and Mayfield ke upar. 7,30,000 se ye shuru hone wale hain. 729,990 ke price point hai.
0: Very
1: you
0: nice.
1: Cannot go wrong with something like this, especially in the border of Caledon and Brampton. So, I know a lot of our listeners, they love it over there.
0: Kya baat?
1: Saath hi saath jo hamare detached hain, we are getting 30-footers, 38-footers and 45-footers
0: wow.
1: home that are also coming up in detached.
0: Mm-hmm.
1: Or jo detached ki pricing shuru hone wali hai, that is in the high $800,000.
0: Beautiful.
1: High $800,000 mein aapko detached ka ghar milne wala hai Caledon ke andar.
0: Very nice.
1: You cannot go wrong with that.
0: Not at all.
1: Ye project ka launch is weekend hai.
0: Uh-huh.
1: That means you can start reserving your units right away. You don't have to wait. There's only limited release coming up. And this is the final phase for this community jo aapki hai West Caledon ke andar, right at the border of Mayfield and McLaughlin. Now, agar aapko East Caledon mein dekhna cha rahe hain, especially at Mayfield and Gore ka jo area hai, and that's close to my house because I live in that neighborhood as well, so I know that neighborhood really, really well.
0: Very nice.
1: Mayfield and Gore ke corner ke upar, wahan pe Solmar is the builder. They're bringing not couple hundred, 2,500 homes. 2,500 घरों की कम्युनिटी बनने वाली है वहाँ पे. इट्स गोना बी अ मास्टर प्लान कम्युनिटी दैट्स कमिंग अप. और यहाँ पे आपके ट्रेडिशनल टाउन होम्स हैं, सेमी डिटैच हैं, और साथ ही साथ आपके डबल कार गैराज हैं यहाँ पे आपके डिटैच होम्स.
0: सो
1: दैट्स कमिंग अप. एंड इसका जो लॉन्च है वो जून 17th को है. हमेशा की तरह हमारे पास प्लैटिनम एक्सेस है, वी हैव गारंटीड एलोकेशन इन दिस साइट. और यहाँ पे आपको मैं बता सकता हूँ कि जो टाउन होम्स होने वाले हैं, देयर नॉट स्मॉल टाउन होम्स ईदर गाइस, देयर वाइड फ्रीहोल्ड ट्रेडिशनल टू स्टोरी टाउन होम्स.
0: नाइस.
1: जो शुरू होंगे इन द 700,000 रेंज एज वेल.
0: ब्यूटीफुल.
1: सो दैट टाउन होम स्टार्टिंग इन द 700,000 रेंज. Semi-detached are going to be starting in the $800,000 range.
0: Mm-hmm.
1: Or detached homes Again, guys, these are double car garage. Okay? Not single car garage.
0: Uh-huh.
1: Double car garage, four bedroom, fully detached homes, traditional two-story with a backyard. Jahan pe aap apne bachon ke swing bhi laga sakte hain.
0: Mm-hmm.
1: These are coming at $900,000 range.
0: Wow, that's great. That's a steal.
1: You cannot go wrong with this.
0: Not at all.
1: Like I mentioned, it's going to be a master plan community, not a couple of hundred homes, 2,500 homes over the lifetime of the site. And this is phase one. So you know it. In today's market, phase one, HST ka rebate jo hai aapka, this is your opportunity to grab. And we can secure your unit right away. All you have to do is give us a call so we can provide more details. And just to give you a more idea, yahan pe they're going to be creating a lot of activities and parks for the kids. Mm-hmm. You're going to get a splash pad. Yahan pe basketball courts banne wale hain.
0: Tennis
1: courts banne wale hain. And jo hamare cricket lovers hain, there's a cricket pitch coming as well.
0: Oh,
1: that's going to be built for this community especially. So
0: wow,
1: there's a lot happening, keeping the Indian community in mind, the South Asian community in mind.
0: Right.
1: So we're super excited for this site.
0: Mm.
1: June 17th, ko iska official launch hone wala hai. And we have guaranteed allocations here. So again, our clients don't have to worry about it. They'll get their first choice right away.
0: Beautiful.
1: So, and the third project, we're going to Mississauga, Fort Credit, Lakeview Village on Lakeshore Road. Wahan pe Aura Townhomes ka phase, jo second phase ka launch hai, wo hone wala hai from Taiwan. Pehla phase, 3 din ke andar completely sold out. Absolutely sold out. Ye dusra jo phase hone wala hai, yahan pe pricing shuru hogi in the 500,000 range.
0: Okay.
1: These are gonna be your two-story stacked townhomes.
0: Achha.
1: Two-bedroom minimum. Yahan se two or three-bedroom ke options yahan pe available hone wale hai.
0: Parking
1: include hone wali hai price point ke andar. You're going to get the net of HST rebate. Lots of incentives are coming in. We have co funds available. This project ka jo official launch hai, wo hai June 9th. Ko.
0: Theek hai.
1: So once again, if you want guaranteed allocation and units in Aura 2 that's coming up and Mississauga, get in touch with Team Hashtag Homes. We have more details available that I can share with our clients and our listeners once they call me.
0: Gee.
1: And again, the number to call, 647-993-4844. 647-993-4844.
0: 647-993-4844. 647-993-4844. ये नंबर अपने पास रखें दोस्तों. और ऐसी एक्सेप्शनली गुड डील्स जो बिल्कुल मार्केट कंडीशन के हिसाब से है, ऐसी सेट की गई हैं कि आपकी पॉकेट में फिट हो जाए एक अच्छा सा इन्वेस्टमेंट. सो राहुल कश्यप जी और हैशटैग होम्स, एक ऐसा नाम जो रियल एस्टेट की दुनिया में ट्रेंड कर रहा है हर तरफ, ज़रूर याद रखिएगा नंबर फिर से टू कॉल और टेक्स्ट राहुल जी, 647-993-4844, 647-993-4844. और अगले हफ्ते दो बार आपसे मुलाकात होने जा रही है राहुल जी इन स्टूडियो, और लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू. हैव अ ग्रेट वीकेंड.
1: थैंक यू सो मच शांति.
0: ओके, ऑल द बेस्ट. वेल दोस्तों, चलते हैं एक बहुत ही प्यारे से गाने की तरफ बहुत जल्दी, और एक छोटा सा टाइनी सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद एक बहुत प्यारा सा गाना है और आपको लिए चलते हैं 90s के दौर में. स्मॉल हम एक मैसेज लेते हैं अपने स्पॉन्सर्स का, उसके बाद वापस लौटते हैं. स्टे ट्यून्ड.
2: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMR FM 101.3. शॉन एक्सप्रेस, म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस.
3: कैंपिंग का प्लान था मस्त सी, पर टोयोटा टकोमा दे बिना सारे लोग जिथे तुसी भी पहुंचे उथे. जेकर रेड टैग डेज च तुसी टकोमा ले आओ ता इस दी जबरदस्त समर्था ते दमदार आईफोर्स इंजन तुहानू ले जावे थोड़ा होर दूर, सकून दे होर नेड़े. रेड टैग डेज दा लाभ लाओ. लीज करो 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 $114 वीकली तो 36 मंथ्स लाई 4.69% ते $4900 डाउन दे नाल. विजिट shoptoyota.ca या अज ही अपने लोकल टोयोटा डीलर कोल जाओ.
4: ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਪੈਣਾ. ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਸਨਗਲਾਸਿਸ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਸਟੋਰ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ.
5: ਸੋਹਣੇ ਫੇਸ ਵਾਲੀਏ, ਉੱਚੀ ਹੀਲ ਵਾਲੀਏ, ਗੁੱਚੀ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਪਾਵੇਂ ਦਿਲ ਤੇ ਥਵਾਰੀਏ.
6: ਫੋਰ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮਸ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸਨਗਲਾਸਿਸ, ਵਿਜ਼ਿਟ kandaoptical.com ਔਰ ਕਾਲ 416-922-5263. ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ, ਦ ਨੇਮ ਯੂ ਕੈਨ ਟਰਸਟ.
7: घर या बिजनेस के लिए चाहिए पैटियो कवर, परगोला, बेसमेंट कैनोपी या रिट्रैक्टेबल ऑनिंग्स,
8: तो कॉल करें कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी Brampton ka trusted naam for residential or commercial projects.
7: Best quality, stylish designs or great pricing. Chahe sunroom ho ya ho custom canopy, sab kuch milega yahan.
8: Free quotation ke liye abhi call kare 416-831-4790. That's 416-831-4790. Ya pahuncho 24 Regan Road, Brampton.
7: California awning and canopy. Banaye aapki space sundar aur functional.
0: शॉन एक्सप्रेस यानी आप और हम और इस गाने में है कुछ दम।

0: Sean Express News Bulletin brought to you by Sean Media.
1: हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्र बीत जाती है दिल को दिल बनाने में। बशीर बद्र साहब के नशार के साथ आज आगाज कर रहे हैं इस खास सेगमेंट का। और सबसे पहले रुक कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर वाले $250 के नोट को जारी करने की तैयारी शुरू हो गई। ट्रंप सरकार का कहना है कि अगर कांग्रेस कानून बदल देती है तो नया नोट छापने का रास्ता साफ हो जाएगा। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने बताया कि अभी अमेरिका में एक नियम है जिसके तहत किसी जीवित व्यक्ति की तस्वीर नोट पर नहीं छापी जा सकती। इसी नियम में बदलाव की कोशिश चल रही है। अगर प्रस्ताव पास हो जाता है तो ट्रंप अमेरिकी नोट पर छपने वाले 150 साल से ज्यादा समय बाद पहले जीवित व्यक्ति होंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा पट्टी के 70% हिस्से पर सैन्य नियंत्रण लेने का आदेश दिया है। वेस्ट बैंक में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा, हम इस समय हमास को दबा रहे हैं, अब हम गाजा पट्टी के 60% इलाके को कंट्रोल करते हैं। पहले हम 50% पर थे, फिर 60% पर पहुंचे। मैंने आदेश दिया है कि इसे बढ़ाकर, तभी भीड़ में किसी ने चिल्ला कर कहा 100%। इस पर नेतन्याहू ने कहा, एक एक कदम आगे बढ़ते हैं। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी ने ईरान जंग का विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये युद्ध अब खत्म होना चाहिए क्योंकि इसकी सबसे बड़ी कीमत आम लोग चुका रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए ममदानी ने कहा, आज से 3 महीने पहले एक ऐसा युद्ध शुरू हुआ था जिसके लिए किसी ने वोट नहीं किया था, लेकिन इसकी कीमत उन लोगों ने चुकाई जिनकी इसमें कोई आवाज नहीं थी। तो अभी ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के उस पार होंगी भारत से जुड़ी हुई खबर।
2: Dear sponsors, for fast, effective and result-oriented ride, get on board Sean Express. For info, call 416-569-7812, 416-569-7812 or email info@seanmedia.com, shonmedia.com.

0: Lifetime. Learn to earn at Win Lifetime. Call 905-206-1008.
1: जी दोस्तों, आपका स्वागत करती है शालिनी CMRFM 101.3 पर विन लाइफ टाइम के इस सेगमेंट में. और आज फ्राइडे का फैंटास्टिक दिन है. आज बड़ा हैपनिंग सा दिन है. और इस दिन अगर आपने एक बात सुन ली और उस बात पर अमल कर लिया तो आपकी आने वाली जिंदगी सुधर सकती है. यानी आप जिंदगी भर जीत सकते हैं. कैसे जीत सकते हैं जानने के लिए आपको लिए चलते हैं विन लाइफ टाइम की तरफ. और हमारे साथ जुड़ेंगे रिनाउंड ट्रेडर एंड ट्रेनर राफी जी. Rafi ji, good afternoon and welcome to the show.
2: Thank you very much. Good evening, good afternoon to you and your listeners.
1: वेरी गुड आफ्टरनून. थैंक यू सो मच वंस अगेन राफी जी. तो चलिए, फ्राइडे आ चुका है और फ्राइडे सबसे ज्यादा जरूरी इसलिए होता है कि ये एक वर्किंग वीक का लास्ट डे होता है और इसके बाद लोगों को प्लानिंग करनी होती है सैटरडे की. और हमारे कई सारे लिसनर्स ने आपकी सैटरडे का जो फ्री सेमिनार है उसके लिए अपनी सीट्स बुक की हैं. पर जो लोग नहीं कर सके उनको बताएं कि कल ऐसा क्या होने जा रहा है जिसकी वजह से हम सभी लोग अपनी लाइफ को एक बड़ा पॉजिटिव सा टर्न दे सकते हैं.
2: देखिए, जिंदगी में अपॉर्चुनिटी हर मौके पे आती है. 2008 से हम सेमिनार करते आ रहे हैं. हजारों लोगों ने सेमिनार सुना है, कुछ पहली दफा सुन रहे हैं. मैं यही कहता हूँ कि अगर आपने कुछ ऐसा स्किल लाइफ में लेके आना है कि आपको कल आने वाले पैसों की स्ट्रेस ना हो, आपको अपनी जॉब का खतरा ना हो, एम्प्लॉयर का खतरा ना हो, बिजनेस का खतरा ना हो, तो कोई ऐसी स्किल सीख लें जो रिसेशन प्रूफ है. ऑनलाइन ट्रेडिंग है, ये हम सिखाते हैं, पिछले 18 साल से सिखाते आए हैं. ऑफ कोर्स जब आप भी हमारा ऐड लेती रही हैं तो हम यही कहते थे पहले इसको ज्वाइन करें फिर आपकी कन्विक्शन खुद ही आ जाएगी.
1: जी जी जी, बिल्कुल सही बात है. तो कल आपका सेमिनार है राफी जी, तो ये बताएं कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इस काम को कर सकते हैं, क्या प्री रिक्विजिट चाहिए इस ट्रेडिंग बिजनेस को सीखने के लिए और इससे पैसे कमाने के लिए.
2: ट्रेडिंग की प्री रिक्विजिट यही है, आप गुड फॉलोअर है, वो आपको इंस्ट्रक्शन हम जो दे हैं वो फॉलो कर सके. ना आपको कोई अकाउंटिंग चाहिए, ना सॉफ्टवेयर की कोई स्किल चाहिए. बेसिक सी चीजें हैं, सिर्फ हमें फॉलो करें और फिर एक्सपर्ट सुपरविजन के नीचे हम आपको बिठा देते हैं और एनीवेयर फ्रॉम 14 डेज टू 2 मंथ्स आप सीख जाते हैं.
1: 14 दिनों से 2 महीने तक का टाइम देना है दोस्तों आपको. आपने जैसे सुना तो आप बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं, तो यू नो 14 दिन थोड़े से कम स्मार्ट हैं. या मैं ये कहूं कि थोड़ा सा कम वक्त दे रहे हैं अगर, तो शायद 2 महीने आपको लग जाएं, राइट, अगर आप किसी और काम में हैं. तो क्या इस काम को अपनी रेगुलर जॉब के साथ किया जा सकता है राफी जी? और इफ यस, तो इसमें कितनी फंडिंग डालनी होती है?
2: आसान क्वेश्चन पहले करता हूँ, कोई फंडिंग नहीं डालनी, क्योंकि मैथ के भी पेपर में पहले लोग स्टूडेंट्स आसान कर लेते हैं. तो आपके 2 क्वेश्चन है. सबसे पहला है कि आपने अपने पैसे इस इंडस्ट्री में नहीं डालने. ये हमारी, मैं आपसे बेग करता हूँ कि ट्रेडिंग में आना चाहते हैं तो अपने पैसे ना लेके आए. हमारे पास ऐसी फर्म्स हैं जो कैपिटल दे देती हैं, सारे का सारा रिस्क वो लेती हैं. नंबर 2, कौन कर सकता है? कोई भी करे, पार्ट टाइम जरूर शुरू करें, इसको आहिस्ता आहिस्ता लें. लो स्टार्ट करते हैं $50 to $100 अ डे और आज हमारे पर रिजल्ट्स आ गए हैं. आज के बी के पीपल हैव टेकन $15,000-$20,000 होम टुडे विदाउट इन्वेस्टिंग.
1: क्या बात है, क्या बात है, अमेजिंग. तो वेल दोस्तों, कल बिल्कुल फ्री सेमिनार है और दोपहर के 1 बजे मिसेस आगा की 2 लोकेशन पर होने जा रहा है. फ्री सीट है, आप जल्द से जल्द बुक कराएं. लिमिटेड सीट्स बट अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी. winlifetime.com 10 नंबर के फासलों पर खड़ी है आपकी अपॉर्चुनिटी. गो एंड ग्रैब इट बिफोर इट्स टू लेट. 905-206-1008, दैट्स 905-206-1008. थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए राफी जी. हैव अ ग्रेट वीकेंड, फिर आपसे जुड़ेंगे.
2: थैंक यू.
1: शॉन एक्सप्रेस न्यूज बुलेटिन ब्रॉट टू यू बाय शॉन मीडिया.

0: वेलकम आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। और अब जान लेते हैं भारत से जुड़ी हुई खबरें। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शुक्रवार को दिल्ली के बंगाली मार्केट में बने टोडरमल पार्क में ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स के बीच पहुंचे, जहां उन्होंने ऑटो चालकों से बात की। राहुल उनका यूनिफॉर्म पहने भी नजर आए। पार्क में बैठे राहुल के कुछ वीडियो सामने आए हैं, जिसमें वे ऑटो ड्राइवर्स के साथ खाना खाते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान वे ऑटो की सवारी करते हुए भी दिखे। राहुल ने ऑटो ड्राइवर से उनकी रोजमर्रा की चुनौतियों, उनकी इनकम, उनके बढ़ते हुए खर्च और काम करने के हालात के बारे में जाना। उनकी शिकायतें सुनी, उनकी जीवन शैली और समस्याओं पर चर्चा की। दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके की याचिका पर केंद्र सरकार और एक्स को नोटिस जारी किया है। दिपके ने सीजेपी का एक्स अकाउंट ब्लॉक किए जाने को चुनौती दी है। कोर्ट के फिलहाल अकाउंट दोबारा चालू करने का अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में फैसला लेने से पहले सरकार का पक्ष सुनना जरूरी है। जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव की बेंच ने कहा कि सरकार का पक्ष सुने बिना ऐसा आदेश नहीं दिया जा सकता, क्योंकि मामले के व्यापक प्रभाव और दूरगामी परिणाम हैं। भारत में मॉनसून की एंट्री लेट हो गई है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को बताया, श्रीलंका के ऊपर कम दबाव वाली तूफानी हवाओं के चलते मॉनसून केरलम तट से 35 किलोमीटर दूर 5 दिन से अटका है और अगले 2 से 3 दिन इसके आगे बढ़ने के आसार नहीं है, यानी राहत की खबर आते आते अटक गई। केरलम के तट पर मॉनसून पहुंचने की सामान्य तारीख 1 जून मानी जाती है। इससे पहले मौसम विभाग ने 26 मई तक ही मॉनसून आने का अनुमान जताया था। ताजा अनुमान के मुताबिक अब ये 7 दिन बाद केरल तट पर पहुंचेगा, यानी पिछले अनुमान से मॉनसून करीब 10 दिन बाद देश में एंट्री करेगा। उत्तर प्रदेश में एक सीरियल अटैकर अपने पतले पैरों के कारण लड़कियों से नफरत करता है और उन पर कैंची से हमला कर देता है। उधर सरकारी टीचर्स को अब गायों के लिए भूसा जुटाने का भी आदेश मिला है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता के खेत से 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश निकला, तो महाराष्ट्र का एक व्यक्ति सिर्फ 5,000 कमाने के लिए ट्रेन में 1,22,00,000 देकर निकल पड़ा। वहीं चीन का एक 68 साल का बुजुर्ग 30 घंटे तक समुद्र में बोट चलाकर देश से चौथी बार भाग गया। ऐसी अजब गजब खबरें भी हैं। और अब खबर बॉलीवुड से। मेगा स्टार पिता चिरंजीवी की विरासत के बीच अपनी अलग पहचान बनाना रामचरण के लिए आसान नहीं था। करियर की शुरुआती ब्लॉकबस्टर सफलता ने उन्हें स्टार बनाया, लेकिन फ्लॉप फिल्मों ने उन्हें गहरे अवसाद और आत्मसंदेह में धकेल दिया। एक समय वे खुद को कमरे में बंद कर लेते थे और प्रशंसकों से माफी तक उन्हें मांगनी पड़ी थी। अभिनेता सलमान खान ने रणवीर सिंह और फिल्म मेकर फरहान अख्तर के बीच चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए पहल की। यह विवाद रणवीर सिंह के अचानक फिल्म डॉन 3 को छोड़ने के बाद शुरू हुआ था, जिसके बाद फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज ने रणवीर के खिलाफ असहयोग प्रस्ताव यानी नॉन कोऑपरेशन नोटिस जारी कर दिया। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक सलमान खान ने दोनों पक्षों से निजी तौर पर बातचीत की है, ताकि इस मामले को शांति से सुलझाया जा सके। सलमान ने दोनों पक्षों से बात की। रिपोर्ट के मुताबिक सलमान खान ने रणवीर सिंह और फरहान अख्तर दोनों के साथ उनके अच्छे संबंध हैं, इसी वजह से उन्होंने इस गंभीर होते विवाद में बीच बचाव करने का फैसला किया है। तो शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी में न्यूज जंक्शन का ये स्टॉपेज यहीं तक। शुक्रिया।
1: Dear sponsors, for fast, effective and result-oriented ride, get on board Sean Express. For info, call 416-569-7812, 416-569-7812 or email info@seanmedia.com, seanmedia.com.
2: ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਪੈਣਾ। ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਸਨਗਲਾਸਿਸ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਸਟੋਰ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ।
3: ਸੋਹਣੇ ਫੇਸ ਵਾਲੀਏ, ਉੱਚੀ ਹੀਲ ਵਾਲੀਏ, ਗੁੱਚੀ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਪਾਵੇਂ ਦਿਲ ਤੇ ਥਵਾਰੀਏ।
4: ਫॉर ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮਸ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸਨਗਲਾਸਿਸ, ਵਿਜ਼ਿਟ kandaoptical.com ਔਰ ਕਾਲ 416-922-5263। ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ, ਦ ਨੇਮ ਯੂ ਕੈਨ ਟ੍ਰਸਟ।
5: बिल्कुल दोस्तों, आपने मांगी थी अच्छी अच्छी डील, आपने कहा था आज का मौसम बहुत अच्छा है तो ऐसी फैंटास्टिक डील्स होनी चाहिए कि आपका फ्राइडे और भी ज़्यादा मज़ेदार बन जाए, तो उसका इंतज़ाम हमारे पास हो चुका है इन स्टूडियो और हमारे साथ जुड़ने लगे हैं वन एंड ओनली अश्विनी कैंडा जी फ्रॉम कैंडा ऑप्टिकल। और जैसे जैसे मौसम वार्म होता है डील्स को और ज़्यादा वार्म किया जाता है, तो अश्विनी जी वेरी वार्म वेलकम, हाउ आर यू?
6: बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच शालिनी जी। एंड जैसा कि आपने बताया, ब्यूटीफुल डे है आउटसाइड, बहुत अच्छी धूप लगी है और ठंड भी नहीं गर्मी भी नहीं और बहुत ही प्यारा दिन है। इसके लिए जरूरी है व्हेन वी आर आउट वी आर डूइंग एनी वाटर एक्टिविटीज, एनीथिंग टू डू विद अंडर द सन और ऑन द वाटर, वी नीड टू प्रोटेक्ट अवर आईज बिकॉज यूवी रेज go high. Mm-hmm. That's where we need to protect our eyes. Take anybody on the water, they need to have polarized lenses. It helps. They can sort of see through the water. Shalini ji, this is so good.
5: Wow.
6: People doing fishing, any boats or anything like this is an amazing experience.
5: Nice.
6: We have got latest डिजाइन्स हमारे पास पहुंच चुके हैं, कलर्स पहुंच चुके हैं, एंड यू हैव मिरर कोटिंग्स ऑन द लेंसेज, वी हैव डबल कोटिंग ऑन द फ्रंट एंड द बैक, सो इट इज एन अमेजिंग टेक्नोलॉजी व्हाट वी हैव। जाके ट्राई कीजिए, या अगर आपको नॉन पोलराइज्ड लेंसेज भी चाहिए वो हमारे पास पूरी तादाद में हर कलर्स में अवेलेबल है। उसके साथ वी ऑल्सो डू कस्टमाइजेशन प्रिस्क्रिप्शन लेंसेज, किसी के को प्रोग्रेसिव चाहिए, बाइफोकल चाहिए या सिंगल विजन डिस्टेंस ओनली चाहिए, उनके लिए भी उनके हिसाब से जैसा कलर चाहेंगे, जैसी कोटिंग्स चाहेंगे उसके हिसाब से बना के देंगे। इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस।
5: क्या बात,
6: शालिनी जी बता रहा हूँ कि हमारे पास जब हमारे कस्टमर आते हैं, ऑफ कोर्स दे एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम कांडा ऑप्टिकल बिकॉज वी आर नोन फॉर कस्टमाइजेशन, we known for the best of the best quality lenses and frames. We do customization, even putting their initials on the lenses. We can customize the colors for them.
5: क्या बात है?
6: मैं आज किसी को बता रहा था कि we had so many time requests, especially this request last week. Somebody bought a special watch with two colors on that, on the bezel.
5: Achha.
6: We had to match the color of those lenses.
5: Oh, really?
6: It is so amazing because he wanted to wear together. He said, this is just like, you know, this thing happening. We used to have ladies coming in, they want to match the color of their eyes with the dress they're wearing. Now, the new trend is even the watches, they want to match the color of the watch with the lenses.
5: Oh, nice. Mere jaisa hi koi insaan hoga jisne suggest kiya. That's amazing.
6: Customized lenses, diamond cut lenses.
5: Why not?
6: Diamond, put it on the glass.
5: Amazing.
6: Glasses or on the frames. We've got it all available.
5: Beautiful.
6: Any shape, any color, any size you are thinking of getting, we've got it all. We
5: Very
6: have...
5: Nice.
6: Solid gold frames available for you in white gold, yellow gold, Cartier frames ले सकते हैं,
5: क्या बात है?
6: Chrome hard frame ले सकते हैं, Dita frame, Chanel frame, Bulgari, Prada, Versace, you name it, we've got
5: Amazing.
6: It. And own special pricing. That's important.
5: क्या बात है? अश्विनी जी ये तो भाई मज़ा ही आ गया। तो दोस्तों आप ज़रा स्टाइलिश बन के निकलें और अश्विनी जी के वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा इंस्टाग्राम पर, एंड ही इज़ अ स्टाइल आइकॉन हिमसेल्फ लाइक आई ऑलवेज से। और भाई समर में वी ऑल वेयर नाइस ड्रेसेस स्पेशली लेडीज़ और इवन मैन, तो आप लोग जो दोस्तों हैं ज़रूर चाहिए कैंडा ऑप्टिकल की न्यूरेस्ट लोकेशन पर। फॉर डिटेल्स विजिट कैंडा ऑप्टिकल .com 416-922 कैंडा 922-5263 एंड celebrate the summer together. Thank you so much Ashwini ji for joining us today. Phir aap se mulaqat hoti hai. All the best.
6: थैंक यू, बाय।
5: और कैंडा ऑप्टिकल स्पॉन्सर कर रहा है अगला गाना, नैना दा क्या कसूर, बेचारी आंखों का क्या कसूर है। दोस्तों आंखों का कोई कसूर नहीं है, कसूर हमारा है जब हम स्टाइलिश ग्लासेस नहीं लगाते आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए। फ्रॉम द मूवी अंधाधुंध आपकी नज़र मस्ती की रेलगाड़ी पर। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं इन स्टूडियो और उनसे भी करेंगे बातचीत। मुकेश शाह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फ्रॉम मॉर्गेज डिलिजेंट, और इसके साथ साथ यश विंडोज एंड डोर से धर्म जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत सारी डील्स, बहुत सारे ऑफर्स, बहुत सारे एक्साइटमेंट लेकर स्टे ट्यून्ड।

0: One-stop solution for all your mortgage needs. Bank declined. Mortgage for self-employed. Quick closing in 48 hours. Or commercial loan. Just don't worry. 647-512-7000. Mortgage broker Mukesh Chauhan from Mortgage Diligent. FSRA number 10252. Conditions apply.
1: Don't worry. Mukesh Chauhan hai.
2: डोंट वरी मुकेश चौहान है जिनको आप देख रहे हैं इस वक्त सोशल मीडिया पर लाइव इन स्टूडियो विद अस मुकेश जी वेरी वार्म वेलकम हाउ आर यू
3: शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद आई एम डूइंग ग्रेट ऑसम
2: ग्रेट टू सी यू टुडे यू लुक इवन हैप्पियर देन बिफोर मौसम का तकाजा है मौसम का असर सीधे आपके ऊपर आ रहा है
3: मौसम बड़ा बेईमान है और बहुत धन्यवाद आई एम रियली ब्लेस्ड टू इनवाइटेड मी थैंक यू सो मच
2: थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस और आपका इंट्रोडक्शन दे दूं बड़ा हैवी पोर्टफोलियो लेकर आते हैं मुकेश चौहान और 20 सालों से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है उन्हें मॉर्गेज इंडस्ट्री में बैंकर भी रह चुके हैं ही कैन लिटरली हेल्प यू रीफाइनेंस एंड कंसोलिडेट ऑल योर डेट्स इनटू छोटी सी प्यारी सी मंथली पेमेंट 55 एंड अबव हैं अफोर्डेबिलिटी में नहीं है आपकी मॉर्गेज तो आप रिवर्स मॉर्गेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और खुशी खुशी इंडिपेंडेंस आपके खुद के घर में ले सकते हैं होम इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट की बात हो लो इनकम लो क्रेडिट से परेशान हो या पावर ऑफ सेल में आप फंसे हुए हैं सब चीज़ों का सलूशन है मुकेश जी के पास एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट बिजनेस ओनर्स के लिए भी कैश फ्लो का इंतज़ाम हो जाएगा अप टू $1 million की वर्किंग कैपिटल का भी इंतज़ाम करा देंगे 6475127000 मुकेश जी एक बार फिर से स्वागत है तैयार हैं आप
3: बहुत बिल्कुल जी बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो आपको ईद की बहुत सारी शुभकामनाएं और आपके टीम को भी और हमारे सारे प्यारे लिसनर्स को और मैं वेट कर रहा था शायद आप सवैया मुझे ऑफर करेंगे
2: उसके लिए आपको आना पड़ेगा हमारे घर डेफिनेटली आपको सवैया ऑफर करेंगे मुकेश जी और आपका ताल्लुक पाकिस्तान से है
3: बिल्कुल जी
2: तो आपको तो बड़ी पुरानी यादें भी होंगी
3: बहुत ज्यादा ये तो टाइम था बिल्कुल आस पड़ोस मिठाइयाँ सवैया सब कुछ आता था
2: जी
3: इस दौरान तो इज रियली एक्साइटिंग टू सेलिब्रेट दिस सच काइंड ऑफ इवेंट सो स्पेशली हम कनाडा में मल्टी कल्चरल हमारी सोसाइटी है सो वी रियली एंजॉय एवरी सिंगल इवेंट्स व्हेनेवर वी कम अक्रॉस
2: जी बिल्कुल तो शुरुआत करते हैं आज की बातचीत की और आज हम वी आर गोइंग टू ब्रिज द गैप्स ब्रिज फाइनेंसिंग की आज बात करेंगे आपसे तो ये किस तरह की फाइनेंसिंग है हाउ कैन इट हेल्प अस द होम ओनर्स
3: बिल्कुल देखें ब्रिज फाइनेंसिंग बड़ा डिफरेंट टॉपिक छेड़ा आपने जफा और डेफिनेटली आई वुड लव टू आंसर देखें ब्रिज फाइनेंसिंग में ये होता है आप अपना घर बाय करना चाहते हैं राइट और आप घर बेचना भी चाहते हैं अभी देखें घर बेचेंगे पैसे आएंगे तो घर बाय करेंगे ना राइट
2: दैट्स राइट
3: ये सिचुएशन ऑपोजिट हो जाएगी आपकी ब्रिज फाइनेंसिंग के अंदर आप अपना ड्रीम हाउस पहले बाय करना चाहते हैं आप बाय कर सकते हो और अपना घर बाद में बेचना चाहते हो बेच सकते हो अब सवाल ये पैसे कैसे आपके रोटेट होंगे कैसे फाइनेंसिंग में एडजस्टमेंट होगी आपको बैंक 30 डेज से लेके 120 डेज का टाइम देगा टू मेक द पेमेंट फ्रॉम योर प्रोसीड
2: ओके
3: मतलब एग्जांपल है 1 जून को आप घर बाय कर रहे हैं और September 1st को आप बेच रहे हैं
2: अच्छा।
3: तो आपको 4 महीने का टाइम मिल गया तो क्या हुआ आपकी होता क्या है मैं बताऊं शालिनी जी ये सारी चीजें सारी कॉस्टिंग का
2: yes.
3: आप जब आप बहुत ऑब्वियस है आपको घर इंपॉर्टेंट मिला है अगर आप उसको टाइम पे क्लोज नहीं कराते हो आपको पेनल्टीज पड़ती है
2: yeah.
3: आपको बिल्डर भी लगा सकता है रीसेल yeah. भी लगा सकता है और कॉन्सिक्वेंसेज भी हैं बट इन सारी चीजों बचने के लिए आंसर एक ही है ब्रिज फाइनेंसिंग इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है
2: बिल्कुल
3: आपके पास सेल एंड परचेज एग्रीमेंट फॉर्म होना चाहिए
2: okay.
3: कि आप खरीद रहे हैं और बेचने का भी होना चाहिए सेल एंड परचेज एग्रीमेंट फॉर्म मतलब डेट फिक्स्ड होनी चाहिए ऐसा नहीं है आपने खरीद लिया और आपने घर बेचा नहीं है तो बैंक भी जो है लेजिट अपनी सारी ड्यू डिलिजेंस करता है तो मेक श्योर यू गाइस यूविंग अ फर्म सेल एंड परचेज एग्रीमेंट एंड ब्रिज फाइनेंसिंग का कोई भी प्रश्न है कोई भी डिस्कशन है क्लैरिटी चाहिए Give me a call.
2: 647-512-7000. अच्छा अब मुकेश जी अब बड़ा घर चाहिए हमें से बहुत लोगों को हम अपग्रेड करना चाहते हैं और वो भी डाउन पेमेंट भी हो लिमिटेड चाहिए भी ज़्यादा और अच्छा। देना भी हो लिमिटेड सो आई एम श्योर यू हैव अ सोल्यूशन फॉर दैट एज वेल
3: बड़े घर की बात है तो बड़ी परेशानी है राइट तो इसमें देखें बिल्कुल परेशानी की बात नहीं है आपको द ग्रेट न्यूज़ ये है कि अगर आप छोटे घर से बड़े घर में जाना चाहते हैं कॉन्डो से सेमी सेमी से डिटैच डिटैच से अपने महल में जाना चाहते
2: yeah.
3: हैं तो एज लॉन्ग एज 1.5 मिलियन का घर है
2: okay.
3: आप 10% डाउन पेमेंट से खरीद सकते हैं
2: wow.
3: चाहे फर्स्ट टाइम होम बायर हैं चाहे आप अपग्रेड करना चाह रहे हो, दो कंडीशन है इसके अंदर, आपका क्रेडिट स्कोर 680 एंड अबव होना चाहिए।
2: अच्छा।
3: और दूसरी बात है कि मैक्सिमम एक्सपोजर, मैक्सिमम अमाउंट 1.5 मिलियन से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
2: ठीक है।
3: तो ये कोई सेकंड फाइनेंसिंग में नहीं आपको बता रहा कि आपको बीइंग अ सेल्फ एम्प्लॉयड, हमेशा ये परेशानी रही है शालिनी जी कि सेल्फ एम्प्लॉयड को 20% देनी पड़ेगी पेमेंट, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ आपको सेकंड मॉर्गेज लेनी पड़ेगी, 90% फाइनेंसिंग लेंडर से आएगी, बैंक से आएगी, आपको सिर्फ 10% देनी है।
2: oh, wow.
3: बाकी और एक मजे की बात ये, आपको सेकंड स्वीट बनाना है, साथ साथ आपको घर अपग्रेड करवाने हैं, अप टू $100,000 की एडिशनल फाइनेंसिंग भी मिलेगी।
2: क्या बात है।
3: तो इन्फॉर्मेशन cool. तो मैंने बहुत सारे दिए, आई लव टू गिव यू मोर इन्फॉर्मेशन, गिव मी अ कॉल, गिव मी अ शॉट, दिस इज मुकेश चौहान मॉर्गेज ब्रोकर फ्रॉम मॉर्गेज डिलीजन, नंबर टू कॉल मी 6475127000, 6475127000।
2: लास्ट आपसे मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी मुकेश जी बिफोर यू गो, कि ये जो प्राइवेट मॉर्गेज है ये किस तरह से हमें हेल्प करती है इन द मोस्ट चैलेंजिंग टाइम्स।
3: प्राइवेट मॉर्गेज के नाम सुनते ही एक तो पहले वर्ड पहले फॉरन जहन में आती है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा
2: और बड़े सारे क्वेश्चन मार्क्स आ जाते हैं
3: बहुत सारे, वाई मैं प्राइवेट में जा रहा हूँ, परेशान हो जाते हैं बिल्कुल क्योंकि आपकी इनकम लिमिटेड और एक्सपेंसिस आपके राइट अवे बढ़ जाते हैं। जो रेगुलर मॉर्गेज जो 4,000 की, मे बी प्राइवेट आपको 6,000 की पड़ेगी।
2: बिल्कुल।
3: मगर मैं आपको सिचुएशन बेस्ड बताता हूँ, ठीक है। अगर आपको 3 महीने की मॉर्गेज मिस करी है, पावर ऑफ सेल का नोटिस आ गया है, आप बताएं क्या करेंगे। मैं एग्जांपल देता हूँ एक और आपको, यहाँ से आप मॉन्ट्रियल जा रहे हैं, गाड़ी खराब हो गई रास्ते में, गाड़ी को छोड़ देंगे आप? ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसको फिक्स करवाएंगे, फिर अपनी डेस्टिनेशन में आप पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। इज अ प्रोसेस, देखिए प्राइवेट मॉर्गेज इज अ प्रोसेस टू कम आउट फ्रॉम दैट करंट डिफिकल्ट टाइम, डिफिकल्ट सिचुएशन।
2: बिल्कुल।
3: रीजनेबल रेट्स के साथ आपको हेल्प करूंगा टू गेट द प्राइवेट फाइनेंसिंग विद द रीजनेबल लैंडर ब्रोकर फी। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात है एग्जिट स्ट्रेटेजी अगर पता है आपको। देखिए प्राइवेट फाइनेंसिंग एक शॉर्ट टर्म प्लान है।
2: Yes.
3: 3 महीने से लेके 1 साल के लिए ले रहे हैं तो फिर ठीक है, इसके साथ शादी मत करें, डोंट गेट मैरिड, कम आउट ऑफ द सिचुएशन, आई विल हेल्प यू आउट टू गेट द सॉल्यूशन, गिव यू द क्लियर पाथ के प्राइवेट फाइनेंसिंग पावर ऑफ सेल में है, मॉर्गेज पेमेंट आपने मिस करी है, क्रेडिट कार्ड पेमेंट मिस करी है, सीआरए के ड्यूज हैं, आपने प्रॉपर्टी टैक्स बिल 3-3 साल से नहीं पे की है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, बैड क्रेडिट है, कंज्यूमर प्रपोजल या बैंक्रप्सी की हुई है आपने, इंपॉर्टेंट, इन सारी सिचुएशन से निकलने के लिए आपको प्राइवेट फाइनेंसिंग हेल्प करती है। एज आई मेंशन, it is not about the product, it is about your solution.
2: Beautiful.
3: Give me a call, give me a shout, I'm here to help you. This is Mukesh Chauhan, mortgage broker. Number, Shalini ji, aap Jumma hai aur aap hi bataiye.
2: 6475127000, that's 6475127000. Mukesh ji, thank you so much for joining us.
3: Bahut shukriya, bahut dhanyawad, Eid ki bahut sari shubhkamnaen aapko, aapke team ko once again, and thank you for inviting me.
2: Thanks a lot, anytime, all the best. Well, dosto, ek bahut pyara sa gana aapki nazar karenge, Mukesh ji ne ghar ka to इंतजाम करा दिया और आपकी प्रॉपर्टी का इंतजाम करा दिया, तो ये तेरा घर, ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है और घर हसीन बनता है किस चीज़ से, ब्यूटिफाई करने से, उसको अच्छी अच्छी विंडोज, टॉप क्वालिटी की विंडोज, टॉप क्वालिटी के डोर्स जब आप लगाते हैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट नेम इन द कम्युनिटी से, यानी यश विंडोज एंड डोर्स। हमारे साथ धर्म जी जुड़े हैं आज हिमसेल्फ इन स्टूडियो, द मैन बिहाइंड द सक्सेस ऑफ यश विंडोज एंड डोर्स। प्यारा सा गीत आपकी नजर करते हैं, उसके बाद चलते हैं यश जी से मुलाकात करेंगे मस्ती की रेलगाड़ी पर। स्टे ट्यून्ड।

0: ये तेरा घर, ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, या आपका ऑफिस बहुत हसीन है, अगर आप चाहते हैं ऐसा आपके घर जो आ रहे हैं मेहमान वो बोलें, तो आपको एक काम ज़रूर करना है, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के विंडोज़ एंड डोर्स इंस्टॉल करने हैं। यश विंडोज़ एंड डोर्स से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वन एंड ओनली नाम बिहाइंड द सक्सेस ऑफ यश विंडोज़ एंड डोर्स, धर्म जी। धर्म जी वेलकम, हाउ आर यू?
1: एकदम कुशल मंगल मैम, आपको और सारे श्रोताओं का जुग जुग के नमस्कार करता हूँ।
0: क्या बात है धर्म जी, और आपसे मुलाकात हुई थी और आपने मुझे पूरी अपनी स्टोरी बताई थी, आपने कहाँ से स्टार्ट किया और कैसे आपके जहन में आइडिया आया यश विंडोज़ एंड डोर्स का, और कहाँ आज यश विंडोज़ एंड डोर्स है। तो अगर मैं आपसे पूछूँ एक सवाल सबसे पहले, कि अगर आप पीछे देखते हैं और सोचते हैं कि आपने इतनी लंबी जर्नी तय की है एंड दिस इज़ वेयर यू आर, आपको कैसा लगता है?
1: मुझे लगता है कि मैं अभी 25% पर पहुंचा हूं।
0: अरे वाह,
1: 75% टू गो।
0: आई लव दैट।
1: कुदरत को मैं बोलता हूं 150 साल की आयु से कर दो और 125 साल तक ऐसा ही रखो।
0: राइट। और आपके बारे में एक मैंने सीक्रेट ये भी सुना है धर्म जी, कि आप इतने ज़्यादा वर्कहॉलिक हैं और आपको देखकर आपका जो पूरा स्टाफ है वो बड़ा मोटिवेटेड रहता है। यू आर द फर्स्ट वन टू रीच द ऑफिस, एम आई राइट?
1: एकदम, और सारे लोग इतने कमीशन पर हैं कि सबको और मैक्सिमम कमीशन के लिए रीच आउट करने के लिए वो लगते ही लगे ही रहते हैं।
0: अरे वाह, दैट्स अमेजिंग, सो ग्रेट हार्ड वर्किंग टीम यू हैव धर्म जी। सबसे पहले यश विंडोज एंड डोर्स का नंबर नोट करें, 416-732-3600, दैट्स 416-732-3600। तो हमेशा हम बताते हैं यू नो यश विंडोज एंड डोर्स की प्लस पॉइंट्स, यूएसपीज, आज मैं आपके लफ्ज़ों में सुनना चाहूँगी धर्म जी, क्या है यश विंडोज एंड डोर्स एंड हाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स?
1: यश विंडोज एंड डोर्स पहले तो डीलर नहीं है, यश विंडोज डोर की दो फैक्ट्रीज हैं, विंडो डोर की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं पिछले 14 साल से।
0: क्या बात है,
1: पहली कंपनी ओंटारियो में ऐसी है जो 95% रिटेल करती है, घर घर जाके विंडो बेचती है और 5% होलसेल करती है।
0: क्या बात है,
1: तो होलसेलरों का जो रिलरों का जो डिमांड होती है कि ऑर्गन गैस मत डालो, रिसाइकल विंडो दो, ये सारी चीज हम सुनते नहीं है।
0: जी जी।
1: हम प्योर 30 ईयर की फ्रेम की वारंटी, 30 साल की ग्लास की वारंटी, 30 साल मल्टीपल लॉक सिस्टम की वारंटी। वी आर द ओनली कंपनी इन ओंटारियो व्हिच इज गिविंग यू हाईएस्ट वारंटी।
0: ओह नाइस, तो वारंटी की बात रही तो आपने इतने सालों की वारंटी बताई है धर्म जी। हम बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि विंडोज एंड डोर्स में भी इतनी वारंटीज आती हैं और इतने तरह तरह के ऑप्शंस हैं उसमें। आई वेंट थ्रू योर फैक्ट्री और मुझे आपने खुद पूरा टूर दिया था एंड यू शोड मी डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंडोज एंड डोर्स। ये भी आपने दिखाया था कि बिल्डर्स बाय डिफॉल्ट कौन सा लगाते हैं और आपके जो क्वालिटी है वहां तक पहुंचने के लिए कितने लेवल्स पे अपग्रेड करना पड़ता है लोगों को। राइट,
1: मैं तो आपको ये बार बार बताता हूँ सारे श्रोताओं को।

0: जरूरत के लिए अक्रॉस ऑन्टारियो, जस्ट कम टू द जस्ट कॉल अस 416-732-3600। बाकी की सारी चीज हम पूरी कर देंगे।
1: वेरी नाइस। और धर्म जी, एक चीज और हमने सुनी है कि प्रोजेक्ट जितना भी छोटा हो, जितना भी बड़ा हो, आपकी टीम जो है उतने ही डेडिकेशन के साथ काम करती है और इतना सीरियसली लिया जाता है।
0: आज हमारे पास जो एक सेल्स पर्सन के पास, रिस्पेक्टेड सेल्स पर्सन के पास जो अपॉइंटमेंट्स थी
1: जी,
0: उनके पास एक जॉब थी, खाली 4 स्क्रीन वो अम्मा जी को चेंज करनी है।
1: अच्छा।
0: तो गायब आदमी वहाँ पास जाएंगे, वो स्क्रीन निकालेंगे, बना के उनके घर पे डाल देंगे।
1: अच्छा।
0: और she is 85 year old.
1: क्या बात है?
0: So we are not even charging her anything
1: because
0: she is living alone.
1: That is so sweet. I'm sure आपको बहुत सारी blessings मिलेंगी और आप you're giving back to the community. दोस्तों, Yash Windows and Doors number 416-732-3600. Best of the best quality वहाँ मिलती है. Durability, looks, security, energy efficiency, everything together. अच्छा, और अब हमारे साथ तमाम listeners जो सुन रहे हैं धर्म जी, और वो लोग अपना business expand करना चाहते हैं, एक ऐसी team को join करना चाहते हैं जहाँ पर dedication बहुत हो, काम थोड़ा कम हो, क्योंकि एक स्ट्रक्चर्ड वे में उनको अपना बिजनेस खोलना हो, सो व्हाट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज?
0: यस विंडोज, पहले तो विंडो डोर एक ऐसी सेगमेंट है जिसमें कभी रिसेशन नहीं है
1: जी।
0: इतने सारे घर हैं, इतने सारे लोगों के नए घर बन रहे हैं कि इतने सारी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके टाउन में खाली शोरूम खोलेगा, वो उस टाउन के शोरूम को ही आपको हैंडल करना है।
1: अच्छा।
0: ना तो आपको मेजरमेंट करनी है, ना तो आपको कोई इंस्टॉलेशन करवानी है, ना तो आपको कोई सर्विस देनी है। एवरीथिंग वी आर गोइंग टू प्रोवाइड। आपको सेल्स एंड सेल्स के सिवा कुछ नहीं करना। उसके साथ आपको ट्रेनिंग मिलेंगी, प्रॉपर ट्रेनिंग भी हम देंगे। आपको लगेगा कि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत होगा, छोटा सा कन्वीनियंस स्टोर से भी कम इन्वेस्टमेंट पे आप विंडो डोर की फ्रेंचाइजी ले सकते हो।
1: Very nice.
0: अगले जनरेशन को भी ये कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो।
1: वेरी नाइस। तो भाई, देर किस बात की है? ऑल द बिजनेस ओनर्स वर लिसनिंग टू आवर शो, 416-732-3600, दैट्स 416-732-3600, यश विंडोज एंड डोर्स। तो धर्म जी, कुछ और ऐड करना चाहेंगे बिफोर यू गो?
0: वेदर बहुत अच्छा है, विदाउट वेस्टिंग टाइम हर रोज दोपहर में 1-2 घंटा निकालिए, शाम को 1-2 घंटा निकालिए, और ये 4 महीने का वेदर जो कनाडा को मिलता है उसका पूरा लुफ्त उठाइए।
1: दैट्स राइट। 416-732-3600, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे इन स्टूडियो।
0: थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू।
1: आपसे फिर मुलाकात होती है। ऑल द बेस्ट दोस्तों। एक छोटा सा टाइनी सा हम ब्रेक लेते हैं, कुछ स्पॉन्सर्स के मैसेजेस लेंगे। वी विल बी राइट बैक फॉर मोर अपडेट्स, फॉर मोर सॉन्ग्स एंड मोर डील। स्टे ट्यून्ड।
2: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMRFM 101.3। शॉन एक्सप्रेस, म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस।
3: You work hard, manage to make both ends meet. Right combinations do miracles. If tax and accounting is your need, think Rajiv Madan. Depth of experience, passion for accounting. Tajurba wahi jo kaam aaye, aapko fayda pahunchaye. Certified General Accountant, Rajiv Madan. Tax accounting ke sabhi pehluon par paini nazar. Fark aazmane pe pata chalega. Call CGA Rajiv Madan, 905-362-2200. 905-362-2200.
4: 2970 Drew Road, Suite 214B, Mississauga.
3: CGA Rajiv Madan. Thoughts become things.
5: संजीव पुरी ऑफ स्टार लाइफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट इंक एक ब्रोकर है और डील करते हैं सारे मेजर कंपनीज के साथ। ही कैन शॉप अराउंड फॉर यू फॉर द बेस्ट प्लान्स ऑफ इंश्योरेंस दैट विल सूट योर बजट एंड नीड्स। संजीव पुरी इंश्योरेंस प्लान्स में तो माहिर है ही, लेकिन हाई रिस्क इंश्योरेंस प्लान्स के बेस्ट रेट्स दिलाने में बहुत ही माहिर है। तो अगर किसी को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, बाईपास सर्जरी, लिवर या किडनी के इश्यूज हो, या इंश्योरेंस कंपनी ने आपकी इंश्योरेंस डिक्लाइन की है, तो संजीव पुरी को आप कॉल करेंगे फ्री कोट के लिए। और अगर आपको लगता है कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी के बहुत हाई प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो पॉलिसी रिव्यू करवाने के लिए भी संजीव पुरी 416-890-3232, 416-890-3232।
6: Another Don Clean with the Don Ducks.
7: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
8: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
7: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
8: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
7: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
8: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
7: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
6: Dawn Platinum, the better grease getter.
9: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहां पहुंचे सभी वहीं पहुंचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप

पुमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टैकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।

0: जी हाँ, यहाँ त्योहार पूजा पाठ और सजावट का सामान, मंदिर, मूर्तियाँ, हवन सामग्री, फेंगशुई वास्तु आइटम्स, रिलीजियस बुक्स,
1: यानी पूरे इंडिया का कल्चर एक ही छत के नीचे।
0: 31 मेलेनी ड्राइव, ब्रैम्पटन। कॉल 905-458-6808
1: और विजिट pujahut.com।
2: इंडिया सजावट एंड पूजा हट।
0: जय श्री राम।
3: शॉन एक्सप्रेस, गानों की स्वीट डिश।

0: खुदा ना करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157।
1: जी दोस्तों, कार एक्सीडेंट एक ऐसी चीज़ होती है जिसको हम एट ऑल कॉस्ट अवॉइड करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अवॉइड नहीं कर सकते ज़िंदगी में, कभी भी कुछ हो सकता है। उसके लिए बेस्ट होती है कि वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, लेकिन वी शुड बी रेडी टू वेलकम द बेस्ट। तो जब तक आप वर्स्ट के लिए प्रिपेयर्ड हो जाएंगे देन एवरीथिंग इज गोइंग टू बी जस्ट परफेक्ट इन योर लाइफ। इसीलिए हमारे साथ एक परफेक्ट जो है मेहमान जुड़ी हैं जो आपको परफेक्ट सॉल्यूशंस देती हैं उस वक्त जब आपका अपना दिमाग काम नहीं कर रहा होता सॉल्यूशन ढूंढने के लिए और जल्दबाजी में हम गलत कदम उठा लेते हैं। तो जब हम इस सूरत में पड़ जाते हैं कि एक्सीडेंट हो गया, वहाँ पर जो है गहमा गहमी चल रही है, आपस में झगड़े हो रहे हैं, स्ट्रेस हो रहा है, आपको खुद चोट लगी हुई है, गाड़ी भी टूटी हुई है, फिर उसमें दिमाग वैसे भी काम नहीं करता, तो ऐसे में आपको डायल करना होगा ये नंबर जो आपको बताएगा आपकी पहली स्टेप क्या होनी चाहिए। तो अंजुम कुरैशी जी बड़ा रेनाउंड नाम है एक्सीडेंट क्लेम की दुनिया का, 416-570-0157 ये नंबर अपने फोन्स में आप स्टोर कर लें और उनसे करते हैं एक छोटी सी मुलाकात। अंजुम जी वेलकम।
2: बहुत बहुत शुक्रिया और तमाम सुनने वालों को भी आदाब नमस्ते सत श्री अकाल। हमने हमेशा कहा कि हमारा काम है आपके साथ अवेयरनेस को शेयर करना। तो जैसा कि हमने बताया कि कुछ लोग जो है वो अपना एड्रेस कहीं और रहते हैं और चेंज कर लेते हैं और लोग इस बात को सीरियस नहीं लेते। अभी पिछले हफ्ते क्या एक सिर्फ हम एक वाकया ही शेयर कर सकते हैं कि एक एक्सीडेंट हुआ और वो रहते कहीं और थे, स्टोनी क्रीक का उन्होंने एड्रेस दिया हुआ था।
1: अच्छा।
2: तीन लोग इंजर्ड हैं, तीनों हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं और अभी उनको आगे चल के इनकम रिप्लेसमेंट भी देना है, सब कुछ देना है। जब इन्होंने इंश्योरेंस कंपनी को कॉल किया एक्सीडेंट कहाँ हो गया, तो जहाँ एक्सीडेंट हुआ था उन्होंने बताया, आप वहाँ क्या कर रहे थे, हम मिलने के लिए गए थे रात को 2 बजे। अच्छा जी ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी को अगर जरा सा भी रेड फ्लैग हो जाए तो वो फिर हर चीज को डिग आउट करती है। उन्होंने उनके फोन बिल्स निकाले, उनके बैंक की कहाँ वो बैंकिंग करते थे वो सारा मालूम किया, डॉक्टर कहाँ था, और जाहिर है कि जहाँ आदमी रहता है ये सारी चीजें वहीं होती हैं। तो फिर उन्होंने उनके पूरे केस को डिक्लाइन कर दिया। $49,000 अभी उन्होंने डीलरशिप को देने थे और कार जो है अभी 49,000 उस पर बाकी थे।
1: अच्छा।
2: और गाड़ी टोटल राइट ऑफ है, लेकिन अब उसको एक पैसा भी नहीं देंगे क्योंकि आपने अपने आप को मिसलीड किया, आपने झूठ बोला। अब आप सोचो कि एक तो आपको आपके मतलब मियां बीवी और बेटा हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं और आपको ये पता चलता है कि आपने जो झूठ बोला था इंश्योरेंस कंपनी ने उसकी वजह से आपके केस को डिक्लाइन कर दिया। आपको पैसे इसलिए नहीं मिलेंगे कि आपको जब एक हाई रिस्क का एरिया है और आपको उसकी वजह से $150 ज्यादा देने पड़ते हैं, तो आप अपनी तरफ से बहुत दिमाग लड़ा के या कोई आपको कह देता है कि किसी और जगह का एड्रेस दे दो, आप दे देते हैं और आप बिलीव करो कि इंश्योरेंस कंपनी जो आपने एड्रेस दिया होता है वहां जाके विजिट करते हैं। बाज़ औक़ात किसी के रिश्तेदार रहते होते हैं, बाज़ औक़ात तो वहां कोई रहता ही नहीं है, 2 साल पहले आपने वो जगह छोड़ी थी मगर आप वो एड्रेस यूज कर रहे हो। ये सारी चीजें जो है आपके इंश्योरेंस में नेगेटिव इम्पैक्ट देती है आपको जो है वो। अगर फर्ज करो कि आपके कोई रिश्तेदार रहते हैं, बेटा भाई कोई भी रहता है, और आपने कहा कि जी वो हमारा एड्रेस है इंश्योरेंस कंपनी का ही मालूम किया, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी बेवकूफ नहीं है। जब इंश्योरेंस कंपनी पैसा देती है तो उसके पास हर किस्म का राइट मौजूद है और वो जो ना आपका फोन बिल निकालते हैं, आपका डॉक्टर कहाँ है, आप जॉब कहाँ करते हो। तो अगर आप 140 मील दूर का अगर आप एड्रेस दे रहे हो तो रियलिस्टिक बात ही नहीं है कि आप डॉक्टर के लिए यहाँ आते हो, चलो ठीक है मान लिया, आप ग्रोसरी करने यहाँ आते हो, आप बच्चों के स्कूल आपके यहाँ है, आपकी जॉब यहाँ है, मतलब आप कितना उसको करोगे कि कितना आप झूठ बोलोगे।
1: नॉट पॉसिबल।
2: और फिर पूरा का पूरा आपका केस डिक्लाइन हो जाता है और उस वक्त आपको पता चलता है कि जो मैंने $50 या $100 जो महीने के बचाए थे वो अब मुझे कितनी बड़ी सजा दे रहे हैं या कितना बड़ा कॉन्सिक्वेंस है। हमारा काम ये है आपका अवेयरनेस पहुंचाना, आपको ये बताना कि रॉन्ग एड्रेस बहुत सीरियस मसला है, प्लीज ऐसा नहीं करें, जहां आप रहते हैं वहां का एड्रेस दें और कभी भी इंश्योरेंस कंपनी से आप मिस रिप्रेजेंट नहीं करें। मेरा काम आप तक मैसेज पहुंचाना, कोई भी कार एक्सीडेंट होता है मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी, आप मुझे कॉल करते हो 416-570-0 01574165700157 मेरा नंबर है। एट फॉल्ट एक्सीडेंट हो, नॉट एट फॉल्ट एक्सीडेंट हो, दोनों सूरतों में आप हमें कॉल कर सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू सो मच अंजुम जी फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। नंबर फिर से बता दें दोस्तों, 4165700157, दैट्स 4165700157। आप भी रखें और आपके अपनों तक भी ये नंबर पहुंचाएं। मस्ती की रेलगाड़ी पर आपका हम फिर से स्वागत करते हैं ऑन CMR FM 101.3। और दोस्तों, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगर आपको चाहिए अगेंस्ट पेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ, तो वैनगार्ड पेस्ट कंट्रोल आपकी जो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल पेस्ट कंट्रोल करते हैं, इको फ्रेंडली सेफ ऑप्शंस देते हैं, 100% सेटिस्फैक्शन गारंटेड है। अयान काशिफ जी से आज ही बात करें, 647-966-4355, 647-966-4355। और सच ए ब्यूटिफुल मौसम आउटसाइड, घर या बिजनेस के लिए आप पैटियो कवर, परगोला, बेसमेंट कैनोपी, रिट्रैक्टेबल ऑनिंग्स लगवा सकते हैं कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी से बात करके, जो लार्जेस्ट ऑनिंग सप्लायर हैं कैनेडा वाइड। और ब्रैम्पटन का बड़ा ट्रस्टेड नाम है, फ्री बारबेक्यू विद एनी कैनोपी या ऑनिंग इंस्टॉल्ड, बिल्कुल फ्री बारबेक्यू है। 24 रीगन रोड ब्रैम्पटन में लोकेटेड है कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, स्टाइल भी, प्रोटेक्शन भी। 416-831-4790, 416-831-4790। चलते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ, उसके बाद बहुत प्यारा सा गीत आपकी नजर।
3: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMR FM 101.3। शॉन एक्सप्रेस, म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस।
4: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
5: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: Hum honge aapke saath hamesha.
2: Medical insurance for new immigrants, the visitors insurance and super visa insurance ke best rate and best plan ke liye ek hi naam Sanjeev Puri.
3: Sanjeev shop around karke aapko behtareen rate aur plan ki guarantee dete hain jisme khansi, zukham, bukhar, slip and fall, walk-in clinic doctor ke fees, medicine and test ke kharche se lekar ambulance hospitalization and funeral tak sab covered hota hai.
2: You will get full refund if super visa is declined.
3: Iske ilawa bachcho ki RESP, life insurance, mortgage insurance, funeral insurance, critical illness insurance, disability insurance के लिए भी कॉल करें संजीव पुरी 416-890-3232 890-3232.
4: Another Don Clean with the Don Ducks.
5: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
6: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
5: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
6: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
5: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
6: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
5: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
4: Dawn Platinum, the better grease getter.
7: लेक डेदा प्लान सी पर टोयोटा टंड्रा दे बिना सकून नहीं शोर मिलिया जेकर तुसी अपने स्थानक टोयोटा डीलर तो टंड्रा ले आओ ता एस दी 11,000 पाउंड्स तक दी टोइंग कैपेसिटी दे नाल तुसी फैसला करोगे कि रुकना किथे है रेड टेक डेज दा लाभ लाओ लीज करो 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स डीआरडी ऑफरोड $172 वीकली तो 36 मंथ्स लाई 4.29% APR ते $5800 डाउन दे नाल विजिट shoptoyota.ca जा अज ही अपने लोकल टोयोटा डीलर कोल जा
3: वेलकम बैक दोस्तों मस्ती की रेलगाड़ी सीएमआर एफएम 101.3 पल भर के लिए कोई मुझे प्यार कर ले झूठा ही सही ये गाना जो है आपके लिए हम प्ले करने जा रहे हैं फ्रॉम द मूवी जॉनी मेरा नाम और लेकिन अब हमारे साथ जो आवाज़ जुड़ने जा रही है वो झूठा नहीं बिल्कुल सच्चा प्यार सच्चा अफेक्शन उनसे मिलता है सब लोगों को पवन मिड्डा जी जुड़ेंगे मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन पवन जी फॉर द ग्रैंड ओपनिंग ऑफ फिफ्थ लोकेशन टुमारो इन लंदन आपका वेलकम है और हम सभी इंतजार कर रहे हैं डील सुनने का
8: जी थैंक यू वेरी मच और ये सब कुछ संभव हो पा रहा है आप लोगों के आप बहन भाइयों के प्यार सहयोग और जो आपकी जो बड़ों की दुआएं हैं छोटों का विशेष हैं और बिल्कुल पांचवीं लोकेशंस की ग्रैंड ओपनिंग और ये चेन वाइड पांचों लोकेशन से सेल जारी है और हमारा फ्लायर अपलोड हो चुका है हमारी वेबसाइट के ऊपर इवन देन आप एक फ्लिप ऐप है बहुत सारे फ्लायर वहां पे आते हैं वहां भी हमारा फ्लायर अपलोड कर दिया गया है सोशल मीडिया के जितने हैंडल्स हैं वहां पे भी हमारा फ्लायर आपको देखने को मिलेगा और हमने फ्लायर में डाला है मिड टू हाई एंड फर्नीचर
3: क्या बात है
8: क्योंकि मिड टू हाई एंड में मिड ऑफ फर्नीचर आपकी बचत भी 10-30% तक करवाता है आपकी बचत जो है तो बचत आपको अगर ज्यादा बचत चाहिए तो मिड टू हाई एंड में इसका मतलब ये नहीं है कि कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट नहीं बन रही कि हमारे पास 299, 199, 499, 499 वाला जो बहुत सारी आपको ऐड देखने सुनने में मिलती है वो भी हमारे पास होता है वो भी बाजार से कम होता है क्यों कम होता है कि हमें वॉल्यूम डिस्काउंट आपके जो आप हमें वॉल्यूम देते हैं हमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है वो हमारा कोई मोटिव किसी को ना ही क्रिटिसाइज करना है ना ही किसी से कंपटीशन करना है आपसे रिश्ता मजबूत कर रहे हैं वो तभी होगा जब हम आपको आप कहेंगे आप हमें चेक करेंगे जैसे कहते हैं एक बार आए अजमाएं और हमें अपना बनाए जब आपके टेस्ट में पास हो जाएंगे फिर तो तभी तो रिश्ता और मजबूत होगा तो मिड्डा फर्नीचर उसके लिए जाना जाता है तो हमारा फ्लायर देखें या जो भी आप लेना चाहेंगे उसके लिए हर परचेज 500 एंड अबव के साथ हमने फ्लायर के ऊपर गिफ्ट रखे हैं
3: nice.
8: और गिफ्ट के भी चॉइस के मुताबिक रखे
3: अरे
8: हैं अगर तीन लैंप रखे हैं आप कोई चूज अपने अपने घर के डेकोर के हिसाब से चूज कर सकते हैं जो पिक्चर अगर एक रखी है मिलेगी एक तीन चार की चॉइस आपको दे रहे हैं, वो भी एशले फर्नीचर की, मतलब कोई ऐसी वैसी उठा के नहीं दे रहे, एशले फर्नीचर के मॉडल नंबर के साथ दे रहे हैं, जिसकी रिटेल वैल्यू आप चेक कर सकते हैं, किसी की 200 है, किसी की 250 है, और किसी लैंप की $90 $100 है। तो डिपेंड्स है कि आपको क्या, जैसे हमने 3000 अबव के साथ दो गिफ्ट रखे हैं विच इज 500 रिटेल वैल्यू के, तो एक बोलना अलग बात है कि मैं $20 वाले को कह दूं जी $500 के, मैं प्रूफ दूंगा, मैं मॉडल नंबर दूंगा, मैं दूंगा प्राइस होगी, तो क्योंकि ये बहन भाई से पर्दा कहेगा, बहन भाई से गिमिक्स कहेगी ना, मेरे को किसी बहन भाई ने मेरे से कहा कि भाई ग्रैंड ओपनिंग होगी तो गिफ्ट देना, हम मैं दिल से मेरा मन है कि मैं ग्रैंड ओपनिंग है, खुशी है, जब सेलिब्रेशन होती है तो शादी पे तो कई बार नोटों को भी लुटाया जाता है, करते हैं ना जी ऐसे कि आप ढोल वाले के ऊपर नोट उला रहे होते, कोई खुशी कर रहे होते हैं सेलिब्रेशन करते, तो गिफ्ट कोई मेरी बहन कोई मांग नहीं रही, तो हम दिल से चाहते हैं कि मेरे बहनों का भाइयों का बड़ों का छोटों का बच्चों का रिस्पेक्ट हो, और ये हमारी जो खुशी है उसमें आप सब शामिल हो।
3: Very nice.
8: मेरी बात बिजनेस देने की, तो आप सालों साल से बिजनेस देते आ रहे हो और देते रहोगे, हमें जो आशा बहुत है, आई एम वेरी पॉजिटिव, तो हमारी तरफ से प्राइस कम होगी, क्वालिटी अच्छी होगी, और सर्विस अगर कोई इशू आता है वो अच्छी होगी, डिलीवरी का टाइम जो बोला जाएगा वो टाइम पे होगा, तो हमारा ये रिश्ता बना रहना चाहिए। मिड्डा फर्नीचर, मिड्डा फर्नीचर 4169012810 4169012810 हमारा नंबर है, और मिड्डा फर्नीचर .com पे जाके भी हमारा आप हमारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, फ्लायर भी देख सकते हैं, और इंतजार है आपका, आज भी आए कल आए, कल ग्रैंड ओपनिंग जो लंदन में 12 बजे जो हमारे ऑनरेबल मेयर हैं लंदन के और उनका स्टाफ और जो काउंसलर्स हैं सभी आएंगे, 12 बजे रिबन कटिंग होगी, और आप आ सकते हैं, 10 बजे भी खोल देंगे, आए आपका स्वागत है, थैंक यू वेरी मच जी,
3: बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी, मेनी कांग्रेचुलेशन, मुलाकात होती है आपसे, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीकेंड। कहते हैं दोस्तों कि प्यार अगर सच्चा हो तो एक उम्र भी कम लगती है, प्यार अगर सच्चा हो तो एक उम्र भी कम लगती है, और अगर दिल टूट जाए तो एक पल भी भारी लगता है, कभी कभी कोई बस एक नज़र में दिल में उतर जाता है और फिर उसकी यादों का सफ़र सारी ज़िंदगी चलता है हमारे साथ, छोड़े जाते हैं आज आपको इस प्यारे से गाने के साथ, पल भर के लिए कोई मुझे प्यार कर ले झूठा ही सही, हैव अ वंडरफुल वीकेंड अहेड, मुलाकात होती है मंडे आपसे फिर से शो के बाद, डायरेक्ट नंबर 416-569-7812 416-569-7812 Have a great rest of the day. Namaskar.

0: You're listening to CMR FM 101.3.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
2: The views and information shared by the guests and their ads are their own and shall not be construed as advice from Radio Voice hosts. We make no recommendations or endorsements for radio show programs, products, or experiences mentioned on air. Personal views expressed by the guests, ads, interviews will always be presented as such. No liability, explicit or implied, shall be extended to Radio Voice or the show hosts whose words and or opinions appear on the show.
3: रेडियो वॉइस एक ऐसा रेडियो शो जो सुने आपकी बात,
4: जो हो आपके दिल के करीब,
3: जो मनाए आपके त्योहार,
4: रखे चुटकुले तैयार,
3: जहाँ पर मिले आपके सवालों के जवाब,
4: जहाँ मचे शायरी की धूम,
3: जो दे खबरें अप टू डेट
4: और दे ढेरों इनाम।
3: आपका अपना रेडियो शो रेडियो वॉइस
4: जतिन के संग
3: ऑन CMR 101.3 FM। ट्यून इन मंडे टू फ्राइडे और लॉग ऑन टू CMR.FM।
5: हाँ जी, मेरे भाइयों जी वॉइस और हम हैं आपके दोस्त जतीन। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वनकम। बंदर भाइयों, इन हसीन वादियों में खो जाने का दिल करता है, इन हसीन वादियों में खो जाने का दिल करता है, कुदरत के इस हुस्न पर मर मिटने का दिल करता है। यूं तो गुजरी है जिंदगी कई शहरों में, मगर यूं तो गुजरी है जिंदगी कई शहरों में, मगर अब उम्र भर यहीं पे ठहर जाने को दिल करता है, इन हसीन वादियों में। आइए लिए चलता हूँ एक हसीन नगमे की ओर। ये वॉइस हम है आपकी दोस्त जतीन।

0: रेडियो वॉइस आपकी पहली चॉइस 416-660-8545।
1: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला। बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स टीआरटी ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन। विजिट shoptoyota.ca or योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
2: Another Dawn clean with the Dawn Ducks.
3: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
4: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
3: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
4: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
3: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
4: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
3: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
2: Dawn Platinum, the better grease getter.
5: नॉर्थ अमेरिका का सब तो वड्डा माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर।
6: यहाँ से आपको ठाका चुन्नी मेहंदी जागो मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा। 30 मेलेनी ड्राइव यूनिट 9 और 10 ब्रैम्पटन। टेलीफोन 905-799-9400।
7: माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर।
1: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर।
8: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर।
1: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
9: मेडिकल इंश्योरेंस फॉर न्यू इमिग्रेंट्स, द विजिटर्स इंश्योरेंस एंड सुपर विजा इंश्योरेंस के बेस्ट रेट एंड बेस्ट प्लान के लिए एक ही नाम।
10: संजीव शॉप अराउंड करके आपको बेहतरीन रेट और प्लान की गारंटी देते हैं, जिसमें खांसी, जुखाम, बुखार, स्लिप एंड फॉल, वॉकिंग क्लिनिक डॉक्टर के फीस, मेडिसिन एंड टेस्ट के खर्चे से लेकर एम्बुलेंस, हॉस्पिटलाइजेशन एंड फ्यूनरल तक सब कवर्ड होता है। इसके अलावा बच्चों की RESP, लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, फ्यूनरल इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस के लिए भी कॉल करें संजीव पुरी 416-890-3232।
11: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
12: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165.
13: Tasty dosa khane ka man hai? Hamara favorite Guru Lakshmi hai na? Unit 44-50, 7070, St. Barbara Boulevard, Mississauga. Monday or Tuesday ko dinner, sham 5 to 10. Thursday, Friday, Saturday, Sunday, lunch 12 to 3, dinner 5 to 10. Wednesday ko band, magar, long weekend pe khule rehte hain. Call karein 905-795-2299 ya visit karein gurulakshmi.com. Guru Lakshmi, South India ke swad ka asli tadka.
14: घर कहीं भी लेना हो

0: For any information, call Sarab Sabarwal 647-864-8844. That's 647-864-8844.
1: Or visit teamsabarwal.com.
2: Your search ends here.
3: रेट्स फर्नीचर का यह मैसेज जरा ध्यान ना सुनो।
4: सस्ते

0: Meet Rohit the Yes Man at Ritz Furniture Planet, 5200 Dixie Road, Mississauga. Telephone 905-232-RITZ. That is 232-7489. Visit ritzfurnitureplanet.ca.
1: Sasta saman sasta nahi, high end da saman mile sasta.
2: हाँ जी महेंद्र भाइयों जी टू वॉइस और हमें आपके दोस्त जतीन फर्नीचर की दुनिया का सबसे अच्छा यार रिट्ज फर्नीचर यहां पर मिलेगा आपको सब कुछ और बहुत सारा प्यार। हाँ जी महेंद्र भाइयों फर्नीचर की दुनिया का धुरंधर यानी कि रिट्ज फर्नीचर प्लेनेट 5200 डिक्सी रोड यूनिट नंबर 53 मिसिसागा। कॉल भी कर सकते हैं 6477657657 रिट्ज फर्नीचर प्लेनेट .ca है वेबसाइट। ईद के मौके पर बेहतरीन सेल लगाई है, आप जरूर पहुंचिए क्वालिटी फर्नीचर के लिए। आइए हम सीधे पहुंचते वहीं पर बात करते हैं हिमानी जी से। हिमानी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज हमारे श्रोताओं को प्रमोशंस के बारे में बताएं और आखिर में आपका कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस भी जरूर कहे। ओवर टू यू हिमानी जी।
3: जी थैंक यू सो मच और सबसे पहले रेडियो सुनने वाले सभी लिसनर्स को रिस्क की टीम की तरफ से प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और इसी के साथ ईद की शुभकामनाएं वैसे तो हमने दे दी थी बट स्टिल हमने कहा कि ईद एक दिन की थी लेकिन हम पूरा वीक जो है क्योंकि सबको आने का टाइम तो नहीं मिला रिच पे, सबने ईद भी सेलिब्रेट करनी थी इसलिए हम वीकेंड पे जो है वो ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं बेसिकली हर एक फर्नीचर पे। तो उसके लिए हम इनवाइट कर रहे हैं सभी को और ईद स्पेशल जो है वो डील्स हम इस वीकेंड पे देंगे और उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी जैसे कि हैसली की सॉलिड वुड बेडरूम सेट्स, सोफा सेट्स, डाइनिंग टेबल्स, कॉफ़ी टेबल्स, बहुत सारी एक्सेंट आइटम्स, मैट्रेसेस, मतलब घर की हर एक चीज़ जो घर को चार चांद लगा देती है वो आपको एक ही स्टॉप पे मिलेगी विच इज़ रिच फर्नीचर प्लानेट 5200 डिक्सी रोड मिसिसागा, डिक्सी एंड मैथिसन के बिल्कुल पास और यूनिट 5200 डिक्सी रोड मिसिसागा। फोन नंबर हमारा है 905-232-7489। आप उस पर कॉल भी कर सकते हैं और हमारे सेल्स रेप से बात भी कर सकते हैं, कोई आपकी क्वेरी है स्टॉक कलर ऑप्शंस के रिगार्डिंग कुछ भी पूछना आपको वो आपकी हर तरह से तसल्ली करवाएंगे। और साथ में एक सोफ़ास की इंफॉर्मेशन दे दूँ, लेट्स से आप सोफ़ास कस्टमाइज करवाना चाहते हैं और उसमें कुछ भी कोई भी सीटिंग नैरो वाइड करानी है या फिर आपने हार्ड फोम या सॉफ्ट फोम कुछ भी ऐसा कुछ चेंज करवाना है, लेग्स का स्टाइल चेंज कराना है, टफ्टिंग करवानी है, क्रिस्टल्स लगवाने हैं, बटन्स लगवाने हैं, कुछ भी कस्टमाइजेशन करानी है और रूम में कई बार क्या होता है कोई वॉल बीच में आ रही होती है उसकी वजह से आप सोफ़ा फिट नहीं कर पाते हैं और उसके लिए भी आपको पूरा वॉल टू वॉल वो है वैसे ही मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आपको सोफ़ा बनवा के देते हैं। इसके साथ हमारे पास फाइनेंसिंग ऑप्शन भी अवेलेबल है जिसमें आप 6 मंथ प्लान या फिर 12 मंथ पेमेंट प्लान विद 0% इंटरेस्ट रेट आप ले सकते हैं। और साथ में जो मेन बात है हमारा फ्लायर आपने देखा है जिसमें आपको इतनी सारी डील्स मिलेंगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतनी कम प्राइसेस पे ये डील्स कैसे। और ये सारी डील्स देखने के लिए आपने हमारी वेबसाइट पे जाना है विच इज ritzfurnitureplanet.ca, ritzfurnitureplanet.ca पे जाके आपने हमारा फ्लायर बिल्कुल मिस नहीं करना क्योंकि इसी में मिलेंगी ये ढेर सारी अमेजिंग डील्स। एंड वंस अगेन एड्रेस प्लीज नोट कर लीजिए 5200 डिक्सी रोड मिसिसागा, फोन नंबर है 905-232-7489 और बाकी के फोन नंबर्स आपको हमारे फ्लायर पे दिख जाएंगे, आप किसी भी नंबर पे कॉल करके हमारे सेल्स रेप से बात भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन, ईद मुबारक।
2: हिमानी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बंदर भाइयों फैमिली के साथ जरूर पहुंचिएगा रिट्ज फर्नीचर प्लेनेट 5200 डिक्सी रोड यूनिट नंबर 53 मिसिसागा। कॉल भी कर सकते हैं 6477657657 और करंट फ्लायर्स देखने के लिए और डिटेल जानकारी के लिए विजिट कीजिएगा रिट्ज फर्नीचर प्लेनेट .ca। ये हिट वॉइस हम है आपके दोस्त जतीन। क्या बात है, उलझन में लग रही हो?
4: उलझन ही तो है, एक तरफ चिंटू के दांतों में कीड़ लग गई है, चॉकलेट इतने खाता रहता है, और दूसरी तरफ माँ जी के दांतों में दर्द हो रहा है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: समझना क्या, डॉक्टर नील गज्जर को फोन करो, बहुत ही रिनाउंड डेंटिस्ट है, और उन दोनों के साथ साथ तुम्हारा और मेरा भी अपॉइंटमेंट बना लो दांत की सफाई करने के लिए। ये लीजिए फोन नंबर 289-401-0009 289-401-0009।
4: डॉक्टर नील गज्जर, 735 ट्वीन एवेन्यू स्वीट 16 मिसिसागा, कॉल 289-401-0009।

0: जी हाँ, यहाँ त्योहार पूजा पाठ और सजावट का सामान, मंदिर, मूर्तियाँ, हवन सामग्री, फेंग शुई वास्तु आइटम्स, रिलीजियस बुक्स,
1: यानी पूरे इंडिया का कल्चर एक ही छत के नीचे।
0: 31 मेलिनी ड्राइव, ब्रैम्पटन। कॉल 905-458-6808
1: और विजिट
2: पूजाहट.com।
0: जय श्री राम।
3: Craving something truly authentic? Mumbai Grill in Ajax has been delighting taste buds for 18 years. Jo specialized in mouth-watering momos plus tandoori and butter chicken momos. Jahan milenge best of South Asian cuisine. Miss out mat karna unka famous lunch and dinner buffet. Signature dishes like butter chicken and shahi paneer. Agar food aapko karta hai excite, to zarur pahunche Mumbai Grill at 619 Kingston Road, Ajax. Call kare at 905-239-4077 ya visit kare MumbaiGrill.com. Available for small and very large group catering services. Mumbai Grill, yummy food that thrills.
4: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
5: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165.
6: हाँ जी मेरे भाइयों, ये वो ही सर हम हैं आपके दोस्त जतीन। आइए नजर करते हैं अराउंड द इंडिया। भारत और कनाडा के बीच द्विपक्षीय संबंधों और व्यापार को बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल जी सबसे बड़े व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल ट्रेड डेलीगेशन के साथ कनाडा पहुंचे हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक दो गुना करने और इस साल के अंत तक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA को पूरा करने पर सहमति बनी है। पीयूष गोयल जी और उनके प्रतिनिधिमंडल ने BAPS स्वामीनारायण संस्था टोरंटो की मुलाकात भी की और मंदिर में जाकर दर्शन और आशीर्वाद लिए। वैश्विक दबाव के कारण भारतीय मुद्रा रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अपने सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंच गया है और यह 97 रुपये प्रति डॉलर के आंकड़े को छू रहा है। डॉलर की मजबूती और रुपये की कमजोरी के चलते अब भारतीय रिजर्व बैंक भी बैंकों की डेली ओपन करेंसी पोजीशन पर नजर रख रहा है ताकि बाजार में अटकलों को रोका जा सके। IPL फ्रेंचाइजी लखनऊ सुपर जायंट्स ने एक बड़ी खबर देते हुए कहा कि टीम मैनेजमेंट ने बड़ा फैसला लेते हुए विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को कप्तानी की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया है। फ्रेंचाइजी जल्द ही नए कप्तान के नाम की घोषणा कर सकती है। कर्नाटक में नए सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसे राज्यपाल ने स्वीकार कर लिया है। इस्तीफे के बाद सिद्धारमैया दिल्ली पहुंचे, जहां 10 जनपद पर उन्होंने मुलाकात की। मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर आगे की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। बेंद्र भाइयों, एक और खबर सामने आ रही है। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन आज भारतीय शेयर बाजार में दोपहर 3 बजे के बाद अचानक भारी गिरावट देखने मिली। सेंसेक्स और निफ्टी में आए इस तेज क्रैश के पीछे MSCI इंडेक्स की तिमाही रीबैलेंसिंग और ग्लोबल मार्केट के दबाव को मुख्य वजह माना जाता है। पेपर लीक विवाद के बाद 21 जून को होने वाली नीट UG परीक्षा के दोबारा आयोजन को लेकर सरकार बेहद सतर्क है। प्रश्न पत्र को प्रिंटिंग प्रेस से परीक्षा केंद्र तक पूरी सुरक्षा के साथ पहुंचाने के लिए सरकार भारतीय वायुसेना की मदद लेने पर विचार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है। हाँ जी मित्र भाइयों, ये थी अराउंड द इंडिया टॉप खबरें, ये हिडन वॉइस, हम हैं आपके दोस्त जतीन। नेशनल और इंटरनेशनल खबरों के लिए जरूर पढ़िएगा weeklyvoice.com।

0: For any information, call Sarab Sabharwal 647-864-8844. That's 647-864-8844.
1: Or visit teamsabharwal.com.
2: Your search ends here.
3: क्या बात है, उलझन में लग रही हो?
4: उलझन ही तो है, एक तरफ चिंटू के दांतों में कीड़ लग गई है, चॉकलेट इतने खाता रहता है, और दूसरी तरफ माँ जी के दांतों में दर्द हो रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: समझना क्या, डॉक्टर नील गज्जर को फोन करो, बहुत ही रिनाउंड डेंटिस्ट है, और उन दोनों के साथ साथ तुम्हारा और मेरा भी अपॉइंटमेंट बना लो दाँत की सफाई करने के लिए। ये लीजिए फोन नंबर 289-401-0009 289-401-0009.
4: Dr. Neil Gajar, 735 Tween Avenue, Suite 16, Mississauga. Call 289-401-0009.
5: Ritz Furniture, ਦਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ।

0: Meet Rohit the Yes Man at Ritz Furniture Planet 5200 Dixie Road, Mississauga. Telephone 905-232-RITZ. That is 232-7489. Visit ritzfurnitureplanet.ca.
1: Sasta saman sasta nahi. High end da saman mile sasta.
2: इस सीजन शानदार कैनेडियन रोड ट्रिप विच ड्राइवर सते ओना दी टोयोटा दा होवेगा दी ग्रेट वाइड नॉर्थ दे अनजान रस्तियां नाल आमना सामना इस च साथ देन के चिप्स चाह वाली ब्रेक्स अते अतरंगी प्लेलिस्ट्स पर इस यादगार सफर तो पहला एक गल याद रहे
3: एह टाइम है तुहाडे स्थानक टोयोटा डीलर ते एक्सपर्ट सर्विस दा
2: ऑयल चेंजेस ब्रेक चेक्स अते टायर बदलों लई तुहाडा एक इजी स्टॉप अज ही अपॉइंटमेंट बुक करो क्योंकि यह सफर होने वाला है तूफानी
4: हाँ जी मित्र भाइयों ये वॉइस और हमें आपके दोस्त जतीन आइए नजर करते हैं अराउंड कनाडा टॉप खबरें। स्टैटिस्टिक्स कनाडा की आज की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल की पहली तिमाही क्वार्टर वन में कनाडा की जीडीपी में गिरावट आई है जिसका सीधा मतलब है कि देश टेक्निकल मंदी की ओर बढ़ रहा है इसकी चपेट में आ चुका है टेक्निकल रिसेशन। अब मजेदार बात करते हैं मतलब साफ है बॉस अब टीम हॉर्टन्स की कॉफी पर जो एक्स्ट्रा डॉलर खर्च हो रहा था उस पर अब जेब कतरने वाली फीलिंग आएगी। इकोनॉमिस्ट का कहना है कि ग्रोथ रुक गई है और यहां जनता सोच रही है कि ग्रोथ का तो पता नहीं पर बैंक अकाउंट का बैलेंस जरूर रुक गया है। एक और खबर टोरंटो का सेंटिनियल पार्क हुआ अचानक चकाचक फीफा वर्ल्ड कप की तैयारियां शुरू। टोरंटो की मेयर ओलिविया चो ने इटोबिको में सेंटिनियल पार्क में नए स्पोर्ट्स हब का उद्घाटन किया। यह पार्क फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए ऑफिशियल ट्रेनिंग साइट बनने जा रहा है जिस पर $75 मिलियन का खर्च हो रहा है। अब मजेदार बात 75 मिलियन इतने में तो हमारे इंडिया के कई शहरों में हर गली के कोने पर एक वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बन सकता है। खैर फुटबॉल प्रेमी खुश है कि रोनाल्डो और मेसी के पैर उसी ग्रास पर पड़ेंगे जहां कल तक लोग अपने डॉगी को टहलाने निकलते थे। तरक्की इसी को कहते हैं ना। और बहनर भाइयों एक और खबर सोशल मीडिया का नया रायता हवाई जहाजों से गिराए जा रहे हैं कीड़े। अरे क्या बात है आइए खबर बताता हूँ। ओंटारियो में इन दिनों टिक्स छोटे कीड़े जो काटते हैं उसकी तादाद बहुत बढ़ गई है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक अफवाह उड़ी कि सरकार आसमान से हवाई जहाजों के जरिए ये कीड़े गिरा रही है। आज एक्सपर्ट्स को सामने आकर सफाई देनी पड़ी कि यह मजा एक बकवास कॉन्स्पिरेंसी थियरी है। अब मजेदार बात वाह मतलब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सिर्फ भारत में ही नहीं कनाडा में भी टॉप गियर में चल रही है। सरकार के पास और कोई काम थोड़ी है कि वो टिकटॉक छोड़कर आसमान से टिक्स गिरवाएगी। भाई मौसम बदला है कीड़े खुद आए हैं किसी पायलट ने आकर पार्सल ड्रॉप नहीं किया है। और बहनों भाइयों एक और खबर सिगरेट के पैकेट पर अब और डरावने होंगे चित्र हेल्थ कनाडा का नया पैतरा। वर्ल्ड नो टोबैको डे से ठीक पहले कनाडा के स्वास्थ्य मंत्री ने ऐलान किया है कि आने वाले हफ्तों में सिगरेट के पैकेटों पर और भी ज्यादा कड़े और डरावने वार्निंग मैसेज छापे जाएंगे जो अगस्त 2026 तक पूरी तरह लागू हो जाएंगे। अब मजेदार बात कनाडा सरकार को लगता है कि सिगरेट के पैकेट पर ये आपको बीमार कर सकता है लिखने से लोग डर जाएंगे। उन्हें क्या पता स्मोकर्स इतने ढीठ हो गए हैं कि पैकेट पर भूत की फोटो भी लगा दोगे तो वो कहेंगे अरे भाई ये भूत वाले पैकेट की जगह कोई और भी चित्र लगा दो। धुआं तो हम यूं ही छोड़ते रहेंगे और भूत को भी कहेंगे क्या सिगार पियोगे। बहनर भाइयों धूम्रपान से दूर रहिएगा क्योंकि सरकार जो करती है हमारे भला के लिए ही करती है भलाई के लिए करती है। ये रेड वॉइस हम हैं आपके दोस्त जतीन कनाडा की हर खबर weeklyvoice.com पर।

0: Haan, Mom. Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
1: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi, and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: संजीव पुरी ऑफ स्टार लाइफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट इंक एक ब्रोकर है और डील करते हैं सारे मेजर कंपनीज के साथ. ही कैन शॉप अराउंड फॉर यू फॉर द बेस्ट प्लान्स ऑफ इंश्योरेंस दैट विल सूट योर बजट एंड नीड्स. संजीव पुरी इंश्योरेंस प्लान्स में तो माहिर है ही, लेकिन हाई रिस्क इंश्योरेंस प्लान्स के बेस्ट रेट्स दिलाने में बहुत ही माहिर है. तो अगर किसी को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, बाईपास सर्जरी, लिवर या किडनी के इश्यूज हो या इंश्योरेंस कंपनी ने आपकी इंश्योरेंस डिक्लाइन की है, तो संजीव पुरी को आप कॉल करेंगे फ्री कोट के लिए. और अगर आपको लगता है कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी के बहुत हाई प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो पॉलिसी रिव्यू करवाने के लिए भी संजीव पुरी 416-890-3232
4: हाँ जी मित्र भाइयों, यू डू वॉइस और हमें आपके दोस्त जतीन.

0: अब यह शो जब से आया है टीआरपी चार्ट पर कुंडली मारकर बैठ गया है। शो में अमीर गरीब का वही पुराना ड्रामा चल रहा है, लेकिन दर्शकों को इसमें इतना मजा आ रहा है जैसे इन्हें हर एपिसोड के साथ फ्री नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन मिल रहा हो। इस हफ्ते नंबर 2 पर गंगा मई की बेटियां। बहन और भाइयों, इस शो का नाम सुनकर ही लगता है कि आधा आधा पुण्य तो सिर्फ टीवी ऑन करने से ही मिल जाएगा। इमोशन का ऐसा सैलाब आता है कि दर्शकों को सोफे पर बैठने के लिए लाइफ जैकेट की जरूरत पड़ जाए। हाँ जी बहन और भाइयों, गंगा मई की बेटियां बहुत खूब कर रही है। बेटियां आगे है और सास पीछे चल रही है। हाँ जी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। नंबर 3 पर एकता कपूर का यह रिबूट वर्जन आज भी लोगों के दिलों पर राज करता है। और तुलसी और मिहिर के खानदान में इतने ट्विस्ट आ चुके हैं कि अब तो खुद मिहिर को भी ये याद नहीं होगा कि इस जन्म में कितनी बार जिंदा होकर वापस आया है। तुम से तुम तक नंबर 4 पर इस शो में ऐसा एज गैप और रोमांटिक ड्रामा चल रहा है कि सिंगल्स को देखकर वैसे ही कॉम्प्लेक्स हो जाए। हीरो हीरोइन एक दूसरे को देखने में इतना वक्त लगाते हैं कि बैकग्राउंड म्यूजिक बनाने वाला भी थक कर शायद सो जाता है। हाँ जी, तुम से तुम तक 4 नंबर पर। और 5वें नंबर पर याद है ना जो सीरियल सालों तक नंबर 1 पर रहा, वो पहुंच गया है 5वें नंबर पर। याद आया नहीं आया? चलिए हम याद दिलाते हैं आपको कि कौन सी वो सीरियल है जो नंबर 1 से बिछड़कर अब पहुंच गई है नंबर 5 पर। सही आपने सोचा, ये है अनुपमा। हाँ जी बंदर भाइयों, ऐसा भी वक्त आएगा ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। अनुपमा नंबर 5 पर, और अनुपमा नंबर 4, 3, 2 और 1 पर आने के लिए खूब मेहनत कर रही है। लगता है कि पिछले वाले जो कलाकार थे उन्हें शायद वापस भी बुलाना पड़े, लेकिन कोशिश तो ये हो जा रही है कि जो भी एग्जिस्टिंग फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में आगे चलते हुए अनुपमा को आगे बढ़ाया जाए। हाँ जी, अनुपमा नंबर 5 पर। और अब आपको ये भी बताना चाहेंगे कि अनुपमा नंबर 5 पर है इसीलिए अब अनुपमा में एक और ट्विस्ट आने वाला है। कौन सा ट्विस्ट होगा आगे वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन बहनों भाइयों, ये थी टीवी की दुनिया की टॉप 5 सीरियल्स। ये हिट वॉइस, हम हैं आपके दोस्त जतीन।
1: रेडियो वॉइस आपकी पहली चॉइस, कॉल करें 416-660-8545।
0: हाँ जी बेनर भाइयों, ये वॉइस और हम हैं आपके दोस्त जतीन। आइए चलते हैं टीम अरोरा रियल्टी की ओर। नंबर 1 रियल एस्टेट एजेंट्स, टॉप रियल्टर्स इन ब्रैम्पटन एंड मिसिसागा। GTA में कहीं भी प्रॉपर्टी लेनी हो, बेचनी हो, इन्वेस्टमेंट करना हो या फिर रियल एस्टेट की कोई भी एडवाइस चाहिए, एक बार टीम अरोरा के कप्तान परवीन जी से बात और मुलाकात जरूर कीजिएगा। नंबर 2 डायल इज 416-910-8923, 416-910-8923, teamarora.com है वेबसाइट। परवीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज हमारे श्रोताओं को एजुकेट करें। ओवर टू यू सर।
2: जतिन जी, मेरी तरफ से वॉइस के सभी लिस्टनर को नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। जैसे कि जतिन जी, मार्केट में अभी काफी अच्छी एक्टिविटी हो रही है और खास करके प्री कंस्ट्रक्शन में मार्केट में काफी एक्टिविटी है, तो आज मैं थोड़ा सा प्री कंस्ट्रक्शन जो नए प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो जतिन जी, ये है क्योंकि HST की वजह से जो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं मार्केट में काफी एक्टिव हैं प्री कंस्ट्रक्शन वाली साइड में, और इसके साथ काफी इन्वेस्टर्स का भी इंटरेस्ट बढ़ रहा है प्री कंस्ट्रक्शन की साइड में। और आज मैं जो हम दो प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करूंगा जो कि बहुत ही अच्छे हैं फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए भी। सबसे पहले तो मिसिसागा में लेक शोर के ऊपर जो एक 177 एकड़ की जो लेक यू कम्युनिटी बनी है साउथ मिसिसागा में, वहां पे एक प्रोजेक्ट है वो आ रहा है जिसमें के जो टाउन हाउसेज है स्टार्ट हो रहे हैं हाई 500

0: में। और ये जो टाउन हाउसेज हैं जतिन जी, बिकॉज इसका जो पहला प्रोजेक्ट फेज था वो एक ही दिन में सेल हो गया था लास्ट मंथ, और अब ये दूसरा फेज लॉन्च हो रहा है क्योंकि प्राइस पॉइंट इसका काफी अट्रैक्टिव है और लेक व्यू कम्युनिटी है। और सबसे बड़ी बात ये है, एक एक पार्किंग साथ है इन टाउन हाउसेज के साथ। अगर हमारे कोई भी भाई बहन जो कि साउथ मिसिसागा में लेक के ऊपर रहना चाहते हैं और बजट उनका लिमिटेड है, तो उनके लिए ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि हाई 500s में बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस है। इसी के साथ एक और प्रोजेक्ट है जो हम जून के महीने में जतन जी लॉन्च करने वाले हैं, और ये जो प्रोजेक्ट है ये न्यागरा रीजन में है ये प्रोजेक्ट, और जहाँ पे भी टू स्टोरी ट्रेडिशनल टाउन हाउसेज हैं, और ये जो टू स्टोरी ट्रेडिशनल टाउन हाउसेज हैं विद बैकयार्ड, और इनका जो स्टार्टिंग प्राइस पॉइंट है वो है जी 499। स्टार्टिंग क्या कहूँ, इसका प्राइस ही 499 है क्योंकि ये 499 के ऊपर ही इनका प्राइस रहेगा। और ये जो प्राइस है इसमें जतिन जी 50 से 60 हजार के ऐसे अपग्रेड्स हैं एज ए स्टैंडर्ड फीचर जो के बाकी बिल्डर्स हैं आपको चार्ज करते हैं उन फीचर्स के लिए। और इसका डिपॉजिट स्ट्रक्चर है वो भी काफी फ्लेक्सिबल है, आप 10 हजार डिपॉजिट के साथ इस टाउन हाउस को बुक कर सकते हैं और नेक्स्ट ईयर 2027 में इनकी क्लोजिंग्स हैं। और ये जो प्रोजेक्ट है जतिन जी, इसके हम एक्सक्लूसिव ब्रोकर हैं। अगर हमारे कोई भी भाई बहन न्यागरा रीजन में कोई टाउन हाउस देख रहे हैं और वो भी ब्रांड न्यू टू स्टोरी ट्रेडिशनल टाउन हाउस विद बैकयार्ड जस्ट फॉर 499 विद $10,000 की डिपॉजिट के साथ। इसके साथ जतिन जी हमारे पास ओकविल में एक प्रोजेक्ट है, वहां पे हमारे पास डिटैच घरों की ऑप्शन है अगर आपका ओकविल में कोई इंटरेस्ट है, और ब्रैम्पटन में भी हमारे पास एक प्रोजेक्ट है जिसमें कि डिटैच घरों की ऑप्शन है। अगर आप इन किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं या आपको अभी इस चीज की क्लैरिटी नहीं हो रही कि आज की डेट में प्री कंस्ट्रक्शन में बाय किया जाए या ना बाय किया जाए, एक बार आप हमें कॉल करें, एटलीस्ट एक बार हमारे साथ मुलाकात करें, हम आपकी सिचुएशन के मुताबिक आपको एडवाइस करेंगे कि आपके लिए क्या बेटर ऑप्शन है। नंबर है हमारा जतिन जी 416-910-8923, या आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं teamaroda.com। थैंक यू जतिन जी।
1: परवीन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेंद्र भाइयों एक बार तो बात और मुलाकात बनती ही है। 416-910-8923 teamaroda.com है वेबसाइट। परवीन जी बहुत बहुत शुक्रिया।
2: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहाँ पहुँचे सभी वहीं पहुँचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
1: डॉक्टर नील गज्जर एसोसिएट्स एंड स्पेशलिस्ट्स, फैमिली डेंटिस्ट, केयरिंग फॉर ऑल योर डेंटल नीड्स, एक्सेप्ट कर रहे हैं पेशेंट्स जिनके पास CDCP यानी कि कैनेडियन डेंटल केयर प्लान है। अगर आपने ये प्लान रिसीव नहीं किया है और आप एलिजिबल है तो इस प्लान में एनरोल होने के लिए विजिट करें CDCP वेबसाइट। CDCP की वेबसाइट विजिट करके एनरोल हो जाइए और कांटेक्ट कीजिए डॉक्टर नील गज्जर एसोसिएट्स एंड स्पेशलिस्ट का। बेंद्र भाइयों आपकी अपॉइंटमेंट अभी से बुक करवा ले 905-564-2021 905-564-2021। डॉक्टर नील गज्जर एसोसिएट्स एंड स्पेशलिस्ट्स, आपके फैमिली डेंटिस्ट।
3: रेडियो वॉइस आपकी पहली चॉइस 416-660-8545।
1: हाँ जी मित्र भाइयों, जीडो वॉइस और हम हैं आपके दोस्त जतीन। कितना हसी सफर है, कितना हसी है मौसम, लेकिन मित्र भाइयों फैमिली के साथ क्या रिड्ज फर्नीचर का सफर आपने किया, जरूर उस तरफ जाइएगा। रिड्ज फर्नीचर की टीम मुस्कुराते हुए करेगी आपका स्वागत और आप वहां फर्नीचर और उसकी प्राइजेस और क्वालिटी देखकर चेहरे पे लाएंगे मुस्कान। रिट्ज फर्नीचर पर जरूर पहुंचेगा, जबरदस्त सेल लगी है आपके लिए। आइए सीधे चलते हैं वहीं पर ज्यादा जानकारी लेने, बात करेंगे हिमानी जी से। हिमानी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो वॉइस में। प्लीज हमारे श्रोताओं को बताएं, रिट्ज फर्नीचर प्लेनेट क्या जबरदस्त प्रमोशंस आपने किए है, क्या जबरदस्त सेल लगाई है, प्लीज हमारे श्रोताओं को अपडेट कीजिए। ओवर टू यू।
4: जी थैंक यू सो मच, और सबसे पहले रेडियो सुनने वाले सभी लिसनर्स को रिट्ज की थीम की तरफ से प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। और इसी के साथ आपको ये बता दें कि ईद जो है, ईद स्पेशल जो सेल थी वो हमने पूरा वीकेंड तक कंटिन्यू करने का सोचा है, और संडे इवनिंग तक आपको ये डील्स कंटिन्यू मिलेंगी जो हमारे फ्लायर पे पोस्टेड है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि रिट्ज फर्नीचर का फ्लायर आपने देखना है, और फ्लायर देखने के लिए आपने हमारी वेबसाइट नोट करनी है, विच इज रिट्ज फर्नीचर प्लैनेट .ca, RITZ फर्नीचर प्लैनेट .ca पे जाके आपने हमारा फ्लायर जरूर चेक करना है, क्योंकि उसी में मिलेंगी आपको ये ढेर सारी अमेजिंग डील्स, जिसमें आप ले सकते हैं बेडरूम सेट, सोफा सेट्स, डाइनिंग टेबल्स, कॉफी टेबल्स, मैट्रेसेस, एक्सेंचर्स, हर एक आइटम जो घर को चार चांद लगा देती है। वो देयर्स ओनली वन स्टॉप टू बाय, विच इज रिट्ज फर्नीचर प्लैनेट, 5200 डिक्सी रोड, मिसिसागा, यूनिट 53। और साथ में अगर आपको सोफाज कस्टमाइज करवाने हैं, विच इज कि अगर आपको उसमें कुछ लगाना है, क्रिस्टल्स लगवाने हैं टफ्टिंग के साथ, बटन्स लगवाने हैं, या फिर आपको कोई लेग्स का स्टाइल चेंज कराना है, या और फिर आपको सीटिंग नैरो वाइड करानी है, कोई अपने रूम की मेजरमेंट के हिसाब से आपको कोई साइज बड़ा छोटा करना है सोफे का, तो एल शेप सेक्शनल्स में भी आपको मतलब कैसी भी कस्टमाइजेशन चाहिए, हर तरह से जो हमारी सेल्स टीम है, देयर एक्सपर्टीज आपको हर तरह से सेटिस्फाई कराएंगे। और साथ में हमारे पास फाइनेंसिंग ऑप्शन भी अवेलेबल है, जिसमें कि आप 6 months या फिर 12 months पेमेंट प्लान ले सकते हैं, विच इज 0% इंटरेस्ट रेट के साथ, सो विच इज वेरी बेस्ट ऑफर। एंड वंस अगेन 5200 डिक्सी रोड, मिसिसागा, और फ्लायर देखने के लिए आपने हमारी वेबसाइट पे जाना है रिट्ज फर्नीचर प्लानेट .ca, RITZ फर्नीचर प्लानेट .ca। एंड फोन नंबर हमारा 905-232-7489, और सैटरडेज एंड संडेज वी आर ओपन टिल 6:30, सो वी विल वेट फॉर यू। और चाय और रिफ्रेशमेंट हमारे इस तरफ से होगा, ईद स्पेशल है सो वो विल सेलिब्रेट टुगेदर, एंड वी ऑल आर वेटिंग फॉर यू गाइस, सो मोस्ट वेलकम एट रिट्ज फर्नीचर प्लैनेट। थैंक यू सो मच
1: हिमानी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कितना हसी है मौसम, तो इस हसीन मौसम में रिट्ज फर्नीचर जरूर जाइएगा, 5200 डिक्सी रोड, यूनिट नंबर 53 इन मिसिसागा। रिट्ज फर्नीचर प्लैनेट .ca है वेबसाइट, और कॉल भी कर सकते हैं 6477657657, 7657657657। ये डू वॉइस, हम है आपके दोस्त जतीन।
5: Another Dawn Clean with the Dawn Ducks.
6: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
7: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
6: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
7: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
6: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
7: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
6: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
5: Dawn Platinum, the better grease getter.

हाँ जीविंदर भाई, ये डो वॉइस और हम हैं आपके दोस्त जतीन। आइए करते हैं जिंदगी की बात। बंदर भाइयों, एक समय की बात है, गंगा नदी के किनारे पीपल का एक पेड़ था। पहाड़ों से उतरती गंगा पूरे वेग से बह रही थी कि अचानक पेड़ से दो पत्ते नदी में आ गिरे। एक पत्ता आड़ा गिरा, एक सीधा गिरा। जो आड़ा गिरा वो अड़ गया, कहने लगा, आज चाहे जो भी हो जाए मैं इस नदी को रोक रूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए मैं इस नदी को आगे नहीं बढ़ने दूंगा। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, रुक जा गंगा, अब तू और आगे नहीं बढ़ सकती, मैं तुझे यहीं पर रोक दूंगा। पर नदी तो बहती जा रही थी, उसे तो पता भी नहीं था कि कोई पत्ता उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। पर पत्ते की तो जान बनाई थी, वो लगातार संघर्ष कर रहा था, नहीं जानता था कि बिना लड़े भी वही पहुंचेगा जहां लड़कर थककर हारकर पहुंचेगी। पर अब और तब के बीच का समय उसकी पीड़ा का, उसके संताप का काल बन जाएगा। वही दूसरा पत्ता जो सीधा गिरा था, वह तो नदी के प्रवाह के साथ ही बड़े मजे से बहता चला जा रहा था। वह ये कहता था कि चल गंगा, आज मैं तुझे तेरे मिशन तक पहुंचा दूंगा, चाहे जो हो जाए मैं तेरे मार्ग में कोई अवरोध नहीं आने दूंगा, तुझे सागर तक पहुंचा कर ही दम लूंगा। नदी को इस पत्ते के बारे में भी कुछ पता नहीं था, वह तो अपनी ही धुन में सागर की ओर बढ़ती जा रही थी। पर पत्ता तो आनंदित है, वह तो यही समझ रहा है कि वह नदी को अपने साथ बहाकर ले जा रहा है। आड़े पत्ते की तरह सीधा पत्ता भी नहीं जानता था कि चाहे वो नदी का साथ दे या न दे, नदी तो वहीं पहुंचेगी जहां उसे पहुंचना है। पर अब और तब के बीच का समय उसके सुख का, उसके आनंद का काल बन गया जाएगा। जो पत्ता नदी से लड़ रहा है, उसे रोक रहा है, उसकी जीत की कोई संभावना नहीं है, और जो पत्ता नदी को बहाए जा रहा है, उसकी हार की कोई संभावना नहीं है। हमारा जीवन भी उस नदी के समान है जिसमें सुख और दुख की तेज धाराएं बहती रहती है, और जो कोई जीवन की इस धारा को आड़े पत्ते की तरह रोकने का प्रयास करता है वो मूर्ख है, क्योंकि न तो कभी जीवन किसी के लिए रुका है, न ही रुक सकता है। वह अज्ञान में है जो आड़े पत्ते की तरह जीवन की इस बहती नदी में सुख की धारा को ठहराने या दुख की धारा को जल्दी बहाने की मूर्खता करता है। बहनों भाइयों, सुख की धारा जितने दिन बहती है उतने दिन तक बहकर ही रहेगी, आप उसे बढ़ा नहीं सकते। हम जिंदगी में सीधे हो या आड़े हो, जिंदगी को तो बहने ही वाली है, हमें जिंदगी के साथ बहते जाना है, बस मुस्कुराते हुए। ये थी जिंदगी की बात। हम हैं आपके दोस्त जतीन।

एंड हियर वी मीट अगेन ऑन द डे जो आज सिर्फ इसलिए नहीं है यहाँ चर्चा में क्योंकि ये फ्राइडे है या क्योंकि सूरज दादा चमकते रहे या मुस्कुरा मुस्कुरा के, पर इसलिए भी क्योंकि टुडे इज टोरंटो का न्यू कमर डे. बोले तो स्वागत करता देन टू ऑल न्यू कमर्स हियर, बाहे फैलाए. अपना टोरंटो इज इन वेलकम मूड एंड वॉन्ट टुडे टू सेलिब्रेट 12th एनुअल टोरंटो न्यू कमर डे एट नेथन फिलिप्स स्क्वायर, वही जगह जहां सब लेते हैं फोटो विद द टोरंटो साइन टू शेयर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ बैक होम. क्या आगे भाई, हम तो अपन यहाँ कनाडा में. मेला लगा था आज वहाँ 10 से 3 के बीच में विद लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर न्यू कमर्स जिससे वो एट होम फील कर सकें. और बहुत सारी जानकारी उन्हें अपनी आगे की यहाँ जीविका के लिए मिल सके. हालांकि सीएन टावर आज चमकेगा इन ब्लू कलर टू मार्क वर्ल्ड मेलानोमा मंथ. और वीकेंड है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फेस्टिवल भी होते रहेंगे, कहीं कंस्ट्रक्शन डिलेज होंगे, कुछ रास्ते जैसे कि डीवीपी गार्डनर संडे को बंद भी होंगे फॉर बाइक फॉर ब्रेन हेल्थ. वीकेंड प्लस वेदर ऑसम, तो यूं भी मन में रहती है फुल ऑन उमंग अंतरंग, है ना. सो ऑन दिस आज का दिन दिलाता है याद, कभी हम भी थे न्यू कमर यहाँ. एंड इट्स इम्पॉर्टेंट टू मेक ऑल द न्यू कमर्स फील एट होम, बींग हेल्प्ड, टेकन केयर ऑफ, लाइक यू नो हम सभी ने भी उम्मीद की थी तब वाली नोट. दिस इज स्वाति एंड हैरी ऑन फिल्मी नुक्कड़ सीएमआर 101.3 एफएम पर सेइंग कि घर छोड़ा देश छोड़ा, नया ख्वाब सजाने को बहुत कुछ छोड़ा, लाखों मुश्किलें झेली और शहर को अपना बनाने के लिए बहुत कुछ जोड़ा किया. पर सच सच बताना, क्या आप टोरंटो का विंटर भी आपको लगने लगा है अपना सा सुहाना सुहाना, या आज भी ढूंढता है दिल वही अपना पुराना ठिकाना सा.

0: देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवर्टाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042, विजिट filminukkad.com।
1: Genesis Markham, यहाँ मिले लग्जरी का फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस विद अ स्टेट ऑफ द आर्ट डीलरशिप और आपकी अपनी लैंग्वेज में एक्सपर्ट सर्विस। लीज करें ब्यूटिफुली डिजाइन 2026 G70 सिर्फ 1.9% से, या लीज करें 2026 GV70 सिर्फ 4.9% से। आज ही बुक करें टेस्ट ड्राइव। विजिट genesismarkham.ca, लोकेटेड एट वुडबाइन एवेन्यू एंड जॉन स्ट्रीट, मार्कम। Genesis Markham, डूइंग लग्जरी योर वे। अ प्राउड मेंबर ऑफ वेन्स ऑटो ग्रुप।
0: इस बायर्स मार्केट में घर का प्राइस बहुत कम मिल रहा है और रियल्टर्स कमीशन भारी पड़ रहा है, क्या करूं?
2: स्मार्ट सेलिंग प्राइस बेशक मार्केट डिसाइड करती है, लेकिन माय रियल्टर के सेलर एडवांटेज प्रोग्राम से आप खुद डिसाइड करते हैं सर्विस पैकेज और कमीशन भी।
0: यानी फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल दोनों मेरे हाथ में।
2: बिल्कुल, लिस्टिंग कमीशन स्टार्ट्स फ्रॉम 0.99%। मैं हूं संजीव मनोचा, ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड माय रियल्टर। कॉल मी फॉर अ फ्री मार्केट इवैल्यूएशन एट 4168437600।
0: Property, my choice, my Realco, the real estate company. Or visit myrealco.com. Not intended to solicit buyers and sellers already under contract.
3: Another Don clean with the Don Ducks.
4: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
5: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
4: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
5: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
4: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
5: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
4: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
3: Dawn Platinum, the better grease getter.
6: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
7: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129, 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888, दैट्स 9054608888।
6: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
8: At Wayne's Auto Group, आप हम पर रिलाई कर सकते हैं फॉर एवरीथिंग ऑटोमोटिव, चाहे हो डेली कम्यूट या वीकेंड स्केप, हमारा प्रॉमिस विल ऑलवेज रिमेन द सेम, हर जर्नी को बनाए खास। Wayne's Auto Group, हमेशा आपके साथ। ओवर 1400 डेडिकेटेड एसोसिएट्स जो बोलते हैं आपकी लैंग्वेज, ऑफरिंग 9 ब्रांड्स अक्रॉस 15 डीलरशिप्स, फ्रॉम फर्स्ट ड्राइव टू लाइफ टाइम केयर। Wayne's Auto Group is always there. Aaj hi visit kare waynesautogroup.com.
0: Get on your feet with Peppy Nukkad Beats.
9: Jhum chikum kuch kum jhum.

फिल्म में ये गाना खास डेडिकेटेड था टू माउंट एवरेस्ट. अब देखो ना, लोग प्यार में गाने लिखते हैं या माउंट एवरेस्ट के प्यार में गाने लिखे गए. फिल्म थी ऊंचाई जहां मैसेज था कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना हो या आपकी बकेट लिस्ट में कुछ और है जो आपको करना रह गया है. अगर रह गया है तो उम्र का मुखिया देखना. खुद को एक मौका देना तो भाई बनता है ना. वैसे वर्ल्ड्स टॉलेस्ट पीक इसे कहते ही हैं, अबव सी लेवल वाली, ऑब्वियसली अबव सी लेवल, क्योंकि बिलो सी लेवल में तो हवाई के माउंटेन का नाम आता है ना. और कोई 88.48 मीटर्स टॉल बताया गया था जब लास्ट ईयर 2020 में मेजर हुई थी. एंड उम्र 60 मिलियंस यंग, क्या बात है. पर बात ना सिर्फ यही नहीं ठहरती, क्योंकि इट्स ऑल्सो माउंटेन ऑफ ब्यूटी, कल्चर एंड हिस्ट्री. एंड यस, जहाँ खतरे की कभी कभी जोर से बज सकती है घंटी, आप जब चढ़ रहे होते हैं, जो चढ़ रहे होते हैं उन्हें पता होता है वेदर. बाकी स्पिरिचुअलिटी की भी बात से कनेक्ट करते हैं लोग इसको कहीं ना कहीं. बट मैं ये देख रही थी कि इसका नाम कहाँ से आया, तो देखा पीक 15 इसे पहले कहते थे, पर फिर 1865 में सर जॉर्ज एवरेस्ट जो थे उनके नाम पर इसका नामकरण हो गया. इनफैक्ट नेपाल में तो इसे सगर माता के नाम से बुलाते रहे हैं, ये मुझे पता था, कांश की देवी मतलब होता है जिसका, या पीक ऑफ द हेवन. तिब्बत में चोमो लुंगमा के नाम से, मतलब पहाड़ों की देवी माँ. और जब गॉडेस मान रहे हैं इतनी भाषाओं में, देशों में, तो सेक्रेट भी तो मानते ही होंगे, है ना. और इसीलिए परमिशन सेफ्टी के अलावा जाने के लिए चाहिए होती है समिट जब करना हो. बकायदा बेस कैंप पर पूजा होती है बिफोर यू पुट योर फीट ऑन टू द माउंटेन. एक रिचुअल है प्रॉपर. हालांकि हम सभी ने यू नो रट रट के एग्जाम्स में लिखा है कि एडमंड हिलेरी जो थे न्यूजीलैंड से, अलॉन्ग विद टेंजिंग नॉर्गे फ्रॉम नेपाल, वो पहले थे विद अ सक्सेसफुल समिट जो आज के दिन May 29 को 1953 रिकॉर्ड हुआ. एंड दैट्स वाई डे टुडे इज ऑल्सो इंटरनेशनल माउंट एवरेस्ट डे. पर बहुत लोगों का मानना है कि रिकॉर्ड पहली बार तब हुआ. इसका मतलब ये नहीं कि उससे पहले, क्योंकि रिकॉर्ड नहीं था, किसी ने किया नहीं ऐसा. पॉइंट. एनीवे, फास्टेस्ट समिट का रिकॉर्ड जो है वो 10 घंटे 56 मिनट्स का है, और यंगेस्ट जाने वाला 13 साल का बताया जाता है, ओल्डेस्ट 80 साल का. इन शॉर्ट, जुनून उम्र कहाँ देखता है ना. उड़ने का ख्वाब लिए ये मन का परिंदा खुले आसमान में उड़ ही जाता है.

0: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहाँ पहुँचे सभी वहीं पहुँचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल i4 इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
1: Movies released, Broadway's on. कौन सी वेब सीरीज शुड बी बिंज वॉच्ड? अगर है कंफ्यूजन तो ट्यून इन फॉर नुक्कड़'स वीकेंड वॉच। ऑलराइट, इस वीक बहुत सारी फिल्में सिनेमा का मुंह देख रही हैं, तो धीरे धीरे बताती जाती हूँ कौन कौन सी हैं, क्या हैं, सो दैट यू कैन चूज टू वॉच इफ यू लाइक देम एनफ, सुनने के बाद, है ना। तो पहले तो है जैकी श्रॉफ की बच्चों वाली फिल्म द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो एलियंस का आगमन। अनकन्वेंशनल साइफाई कॉमेडी है, थ्रिलर है, कहानी है बच्चों के ग्रुप की जो दादाजी को सुपर हीरो बनने के लिए प्रेरित करते हैं जब गांव में एक एलियन का आगमन हो जाता है। बेसिकली एक बच्चा है जो नए स्कूल में फिट इन होने के लिए वहां पे बैठ मार देता है, कहानी सुना देता है कि भाई मेरे दादा तो सुपर हीरो हैं, पर बच्चे कहाँ बच्चे रह गए, कहते हैं ऐसे नहीं मानेंगे, पहले सबूत दो। तो दादाजी कहते हैं कि नहीं, ये सच बोल रहा है, मैं हूँ सुपर हीरो, पर मेरी पास तभी किक इन करती है जब कोई एलियन पृथ्वी पर अटैक करता है, एंड मजे की बात वो भी हो लेता है। तो बच्चों के साथ ही डेफिनेटली फिल्म देखी जा सकती है, आफ्टर ऑल सुपर हीरो फैंटेसीज समझदारों में कहाँ ही चलती हैं। वेल, फिल्म के रिव्यूज ओवरऑल अच्छे हैं, स्वीट सी नॉस्टैल्जिक इसे बताया जा रहा है। यूं भी बच्चों की अच्छी फिल्में बनती नहीं हैं आजकल, बहुत मुश्किल से कोई कोई दिखती है। हालांकि VFX इफेक्ट्स जो हैं बहुत ग्रेट नहीं है, सेकेंड हाफ कह रहे हैं थोड़ा इंटरेस्टिंग भी कम है देन फर्स्ट हाफ, बट ओवरऑल आई थिंक इट कैन बी योर पिक, स्पेशली इफ यू हैव किड्स।

0: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला। बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स टीआरडी ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन। विजिट shoptoyota.ca or योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
1: Movies released, Broadway's on. कौन सी वेब सीरीज शुड बी बिंज वॉच्ड? अगर है कंफ्यूजन तो ट्यून इन फॉर नुक्कड़'स वीकेंड वॉच। अच्छा, द ग्रैंड सुपर हीरो के अलावा एक और फिल्म रिलीज हो रही है, जीना दिल से इसका टाइटल है। यूथफुल है, म्यूजिकल कॉमेडी है जिसके फोकस में है प्यार व्यार, दोस्ती वस्ती, ढेर सारे इमोशंस, थोड़ा सा पागलपन और खूब सारी मस्ती। कहानी दोस्तों के एक क्रेजी गैंग की है जिनकी लाइफ जो होती है ना वो ऊपर नीचे हो जाती है ड्यू टू सम केओस जो क्रिएट होता है हिलेरियस मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से। राज की बात यहाँ से वहाँ शिफ्ट जब होती है, चाइनीज विस्पर्स की तरह जब फैलती है तो कुछ की कुछ कहानी बन के पहुँचती है ना। होता है हम सबकी लाइफ में। यूथफुल है तो रोमांस वाला एंगल भी है। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि लाइफ इज बेस्ट लिव जब उसे बिना डरे खुशी खुशी जिया जाए पूरे दिल से, वरना ये जीना भी कोई जीना है लल्लू। हाँ, नटवरलाल कह के गए है ना। फिल्म कैन बी अ फील गुड ब्रीजी वन ऐसे रिव्यूज कहते हैं जो हंसाएगी और कुछ समझाएगी भी। ओवरऑल रिव्यूज ओके हैं। जीना दिल से को आप देख सकते हैं समय निकाल के।
2: Porque lo sé, everybody come on, let's do baila tres, dos, uno, every-

0: अगर देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042। विजिट filminukkad.com।
1: It's Toyota Red Tag Days at Martville Toyota. 2026 Prius Plug-in Hybrid. Ghar le jaane ka perfect time. Receive kare up to $7,500 off. Current Toyota owners ke liye up to 1% rate reduction. Toyota Tundra finance kare as low as 3.99% for up to 36 months. Aapke trade ke liye hum dete hain top dollar. Visit Martville.com. Ya jaye 5362 Highway 7, Markham Bay. Martville Toyota, Wayne's Auto Group ka proud member.

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
2: Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
3: काव्या होम्योकेयर, काफी इलाज जहां बेअसर हो जाते हैं वहां से शुरू होता है होम्योपैथी का असर। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नए से लेकर कई पुरानी बीमारियों तक, जैसे एलर्जीज, एस्मा, आर्थराइटिस, हेयर लॉस, स्किन डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, मेल या फीमेल हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और फॉर एनी काइंड ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस, हमारे होम्योपैथ से मिले जिनको 20 साल का ज्यादा तजुर्बा है। काव्या होम्योकेयर, जहां से शुरू होता है हेल्दी लाइफ का सफर। 10 कोट्रेल बुलेवार्ड, 104 in Brampton, 647-760-2779, 647-760-2779.
4: Find out Thai Spring Special Mortgage Rates and Extra Promotion Ka with Amit Khurana. 5 years fixed 4.14%, 3 years fixed 4.19%, 5 years variable 3.55%, plus cashback from bank and special gift from Amit Khurana up to $1,500. Terms and conditions apply. Call Amit 647-341-2785, 647-341-2785 or visit amitkurana.com.
5: ये वो time of the year है जिसका आप wait कर रहे थे. Demonstrator event at Don Valley North Lexus, May 16th तक. Lease rates as low as 2.9% up to 24 months. Select demo vehicles per savings up to $4,989 included. Best selection ke liye Don Valley North Lexus, jaldi visit kare. Jaldi kare. Offer ends May 16th. Visit DonValleyNorthLexus.com today. A proud member of Vane's Auto Group.
6: नटवर, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती।
7: मगर क्यों? पिताजी नहीं माने क्या?
6: वो बात नहीं है, हम जब भी घूमने जाते हैं तुम पता नहीं कौन सा रेडियो चलाते हो, ना वो गाने बजाते हैं, ना तुम अच्छा गाते हो।
7: तो आप क्या गाना भी सीखना होगा?
8: हाँ, सिर्फ CMR at 5 PM पर ट्यून इन रहना होगा। रेडियो CMR at 5 PM, योर इवनिंग म्यूजिकल ड्राइव।

always the first sound that comes out of our mouth जब पिनविंच कभी चुप जाता है. बाकी ये जो पेपर क्लिप्स होते हैं ना, ये बहुत सेफ रहते हैं क्योंकि ब्यूटीफुली कर्व्ड होते हैं. द टेस्ट की स्ट्रेंथ जो होती है ना सबको होल्ड करने के साथ साथ, स्पेशली इन हैवी एंड एडवर्स सिचुएशंस, वो भाई तन को सीधा खड़े रखने में नहीं, कर्व्स में होती है कई बार. पर अगर यही पिन कभी खुल जाते हैं तो बंद ताले और छेद खुलने के काम भी आते हैं, है ना. वेल, नेशनल पेपर क्लिप डे है आज और मैं जिज्ञासु जीव इसके बारे में पढ़ने लग पड़ी तो सोचा आपसे भी कुछ शेयर जरूर करूं. ये बेंट वायर पेपर क्लिप का पहला यूसेज मेरे सामने आया सैमुअल फे के द्वारा किया गया. म्यूजियम के टिकट जो थे उन्होंने फैब्रिक से क्लिप करे थे कि कहीं खो ना जाए. इन 1867 पहला पेटेंट हुआ, फिर धीरे धीरे डिफरेंट पेटेंट्स आए, डिफरेंट यू नो डिजाइंस आए, न्यूज़पेपर के लिए आए क्लिप करने के लिए साथ साथ. बट मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी मुझे मिली पेपर क्लिप प्रोजेक्ट की, करूँ शेयर. तो वेल बताती हूँ. टेनिसी के एक स्कूल में बच्चों को होलोकास्ट के बारे में पढ़ाया जा रहा था, 90s की बात है, और बताया गया कि कैसे वर्ल्ड वॉर टू के दौरान लोग इसे पहनते थे एज अ सिंबल ऑफ डिफाइंस, लाइक यू नो स्टिकिंग टुगेदर, पर्टिकुलरली नॉर्वेजियंस जो थे. इनफैक्ट उस समय जो नाजीज थे उन्होंने इसी कारण से पेपर क्लिप बैन भी कर दी थी. तो 1998 में टेनेसी के स्कूल ने कुछ ऐसा किया कि वहाँ के जो बच्चे थे ना, 6 मिलियन पेपर क्लिप्स उन्होंने इस प्रोजेक्ट के तहत कलेक्ट की. एक पेपर क्लिप फॉर 1 life lost. नाउ दिस प्रोजेक्ट गेन्ड गुड अटेंशन ग्लोबली. 30 मिलियन से ज्यादा पेपर क्लिप्स कलेक्ट हुई बाय 2001, यानी कि विद इन 3 years. और फिर जो बुक थी ना 6 मिलियन पेपर क्लिप्स, उसके ऑथर पीटर एंड डेगमार, उन्होंने जर्मन रेल रोड म्यूजियम से एक रेल कार खरीदी और इस स्कूल में भेजी. जानते हैं क्यों? टू हाउस ऑल 30 मिलियन पेपर क्लिप्स. इन शॉर्ट, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ स्मॉल स्टफ, है ना. वैसे मैं ये सोच रही थी कि हमारी लाइफ में भी ना दो चीजें हैं जरूर से जो हमारी लाइफ की पेपर क्लिप हैं. एक तो भाई माँ, है ना, जो हम लड़ते मिटते भाई बहनों को, पूरे परिवार को एक साथ बांधे रखती हैं क्लिप्ड एकदम. और एक प्यार, वही तो होता है ना जो जानता है कि कुछ भी हो जाए हम साथ साथ हैं.

movies released Broadway's on. कौन सी वेब सीरीज शुड बी बिंज वॉच्ड? अगर है कंफ्यूजन तो ट्यून इन फॉर नुक्कड़'स वीकेंड वॉच. राइट है, तो वीकेंड वॉच में आगे मैं बताने वाली हूँ अबाउट एक और फिल्म, दर्शी सफारी की है वो, कृष्णा और चिट्ठी इस फिल्म का टाइटल है. काफ़ी इंटेंस ड्रामा है, इमोशनल, त्याग, पैशन और देन क्रिकेट मैच के खेलने के जज्बे से भरपूर है. स्टेडियम के शोर से खामोशी तक का सफ़र, जो सिर्फ खेल नहीं है, किसी के लिए उसकी डेस्टिनी भी हो सकती है. कहानी एक पंडित जी की, जिनकी एक ज़मीन है कश्मीर में, जिस पर वो मंदिर बनाना था उन्हें, क्योंकि ग्रांटेड थी ज़मीन मंदिर के लिए, पर वहाँ पर एक करप्ट MLA है जो उस ज़मीन पर मॉल बनाना चाहता है. तो पंडित जी को चैलेंज करता है इसलिए कि चलो वहाँ पर एक काम करते हैं, क्रिकेट मैच रखते हैं, जो जीता ज़मीन उसकी. लगान फिल्म याद आ गई ना, मुझे तो आ गई. पंडित जी का बेटा बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, सचिन तेंदुलकर का फ़ैन है, और लोकल मैच खेलना उसे अपनी इज्जत कम मालूम देता है. ये लोकल मैच मैं नहीं खेलता. पर फिर क्या होता है, उसके पास एक चिट्ठी आती है जिससे कहती है खेलो. मालूम है वो चिट्ठी किसकी होती है? सचिन तेंदुलकर की. अब आइडियल ने उसके कह दिया फिर तो खेलना ही है ना. अब उसके बाद क्या होता है, उसके लिए आपको कृष्णा उसकी चिट्ठी पढ़नी होगी, मतलब फिल्म देखनी होगी. फिल्म देखिए और फिर मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी. आगे और भी बताऊंगी अभी कुछ और फिल्में जो हो रही हैं रिलीज, उनके बारे में.

0: अगर देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042। विजिट filminukkad.com।
1: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहाँ पहुँचे सभी वहीं पहुँचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
0: अच्छा, ऑटो एंड होम इंश्योरेंस के बिना तो काम चलता नहीं इफ यू हैव अ कार एंड अ हाउस, है ना? अब ऐसे में सोचिए, अगर आपके पास एक कार और एक घर है और इंश्योरेंस पर सालाना आपके $400 से $500 की बचत हो जाती है, या आपके पास दो कार और एक घर है और ऑटो एंड होम इंश्योरेंस पर आपकी बचत हो सकती है अप टू $2,029, तो कितना अच्छा हो, है ना? यानी कि रेट्स भी सही मिल जाए, कवरेज कॉम्प्रोमाइज ना हो एंड सेविंग्स ही सेविंग्स। तो भाई ये पॉसिबल है। कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑलस्टेट की मिसिसागा साउथ एजेंसी एट 6474535353। उनको कॉल करेंगे तो आपको और ऑप्शंस भी पता चल सकते हैं। 6474535353।
2: Another Don Clean with the Don Ducks.
3: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
4: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
3: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
4: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
3: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
4: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
3: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
2: Dawn Platinum, the better grease getter.
0: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन? तो जाएं एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस। वहाँ बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस। साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री। मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही। आज ही अपॉइंटमेंट लें। कॉल रमेश एट 416-990-2462। एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स अ केयर इट डिजर्व्स।
1: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला। बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
0: रेट्रो इन मेट्रो, नुक्कड़ क्लासिक्स।

released Broadway's On. कौन सी वेब सीरीज should be binge watched? अगर है confusion, तो tune in for Nukkad's Weekend Watch. वीकेंड वॉच के लास्ट सेगमेंट में आते हैं हम. कृष्णा की चिट्ठी पढ़ने के अलावा, जीना दिल से के डिसीजन के अलावा, सुपरमैन दादा के कारनामे देखने के अलावा, देयर आर फ्यू मोर दैट यू कैन वॉच. साइकोलॉजिकल थ्रिलर है एक जिसका नाम है ऑब्सेस. मतलब कैसे एक सड़क पर ड्राइव करते हुए छोटी सी झड़प बन जाती है वायलेंट एंड डेंजरस गेम ऑफ सर्वाइवर्स, उसकी कहानी. तो एक खूनी है इसमें जो अनस्टेबल डिस्टर्ब्ड है मेंटली एंड इमोशनली. उसके पास अपने बॉस से मैसेज आता है अब्यूसिव सा कि भाई तुम्हें ड्रंक ड्राइविंग के लिए नौकरी से निकाला जा रहा है. उसे बहुत गुस्सा आता है, थोड़ा सा बेइज्जती भी फील करता है और गुस्से में वो जाकर सीधा बॉस का मर्डर कर देता है. एक लड़की है जो कि सिंगल मॉम है, अपने बच्चे को के लिए बहुत प्रोटेक्टिव है और अपनी माँ के पास जा रही है वो, और दोनों सड़क पर मिलते हैं. रोड रेज एनकाउंटर जैसे कहते हैं, लड़ाई होती है. बंदा उस लड़ाई को दिल पे ले लेता है और शुरू होता है फिर चूहे बिल्ली का खेल. ओवरऑल रिव्यूज ऐसे ही हैं, नॉट ग्रेट. आई वुड नॉट वॉच इट, पर जिनको साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स देखना अच्छा लगता है और जगह ना जिसमें एक रेस चल रही है, तू आगे मैं पीछे, मैं आगे तू पीछे, उनको शायद अच्छी लग सकती है. रादर मैं देखना चाहूँगी ये एनिमेटेड 3D फिल्म, बच्चों की है. रिटर्न ऑफ द जंगल नाम है, जोश दोस्ती ताकत ये इसकी टैगलाइन है. ये मैं देखना चाहूँगी, दिल तो बचा है जी, है ना. अ परफेक्ट फ्रेंडली वॉच विद अ क्यूट मैसेज एंड स्टोरी थ्रू जंगल विजडम एंड इंटरेस्टिंग क्लाइमेट के ऊपर इन्होंने बात करी है. इसमें जो कैरेक्टर्स हैं, यंग ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन हैं और साथ में एनिमल्स भी हैं, पर है सारा एनिमेशन ही. मिल मिलकर एक कहानी बुनते हैं जिसमें मज़ा आएगा आपको. मुझे ट्रेलर बड़ा क्यूट लगा और इसके गाने भी बड़े अच्छे अच्छे से, जैसे होते हैं ना उसके जंगल बुक के वैसे से कहानी गाने हैं. कार्टून फिल्मों का शौक जिन्हें है कहीं दबा छुपा सा भी, मुझे लगता है उनको ये मिस नहीं करनी चाहिए. नाम है रिटर्न ऑफ द जंगल, जोश दोस्ती ताकत.

Welcome back. आप सुन रहे हैं CMRR at 5 PM स्वाति और हासिल के साथ on 101.3 FM and trending today is also hashtag ये जवानी है दीवानी अपने टाइम की ब्लॉकबस्टर एंड थर्ड हाईएस्ट ग्रॉसर DDLJ ऑफ दिस जनरेशन एंड यस ये जवानी है दीवानी ऑफ फॉरएवर ऑल टाइम दिल से जवान जनरेशन. बाकी वो भी है ना कि जब भी ये फिल्म मैं देखती हूँ फिल्म का वो डायलॉग एक्चुअली इस फिल्म के लिए ही फील करने लगती हूँ कि अगर तुम्हें थोड़ी देर और मैं देखती रही ना तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा फिर से. और ब्रेकअप के बाद भी मैं देख रही थी कि इतनी सॉलिड केमिस्ट्री दो जनों की हो सकती है वो वाकई ऑसम है इस फिल्म में. वेल मूवी डेफिनेटली हैज अ रिपीट वैल्यू एंड सेम गोज विद द सॉन्ग्स एज वेल. बदतमीज द कमिंग अप नेक्स्ट.

0: For any information, call Sarab Sabarwal 647-864-8844. That's 647-864-8844.
1: Or visit teamsabarwal.com.
2: Your search ends here.
3: Find out Thai Spring Special Mortgage Rates and Extra Promotion Ka with Amit Khurana. 5 years fixed 4.14%, 3 years fixed 4.19%, 5 years variable 3.55%, plus cashback from bank and special gift from Amit Khurana up to $1,500. Terms and conditions apply. Call Amit 647-341-2785, 647-341-2785 or visit amitkhurana.com.
4: Genesis Markham, यहाँ मिले लग्जरी का फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस विद अ स्टेट ऑफ द आर्ट डीलरशिप और आपकी अपनी लैंग्वेज में एक्सपर्ट सर्विस. लीज करें ब्यूटिफुली डिजाइन 2026 G70 सिर्फ 1.9% से, या लीज करें 2026 GV70 सिर्फ 4.9% से. आज ही बुक करें टेस्ट ड्राइव. विजिट genesismarkham.ca, लोकेटेड एट वुडबाइन एवेन्यू एंड जॉन स्ट्रीट, मार्कम. Genesis Markham, doing luxury your way. A proud member of Wayne's Auto Group.
5: Exclusively picked.

वेल ये था 90s की इश्क से, जहाँ काजोल थी, आमिर थे, पर फिल्म में वो आपस में इश्क विश्क में बिल्कुल नहीं थे. इनफैक्ट इतना लंबा करियर उनका रहा आपस में, जब उन्होंने काम किया एज लीड पेयर टुगेदर, वो जाकर किया उन्होंने इन 2006 की फना में, विच वॉज रिलीज आज ही के दिन टुडे, एंड इट वॉज अ सुपर हिट फिल्म. काफी अवार्ड भी मिले थे इसको. कहते हैं जब आमिर वॉज आस्ड कि तीन चॉइसेस बताओ फॉर द गर्ल्स फॉर द रोल ऑफ जूनी, तो आमिर खान सेड काजोल, काजोल एंड जस्ट काजोल. वेल फिल्म का मेरा फेवरेट गाना इज देखो ना, वो बारिश वाला गाना. पर कहते हैं ना सिफारिशों का जमाना है, तो चांद की सिफारिश को कैसे ठुकराऊं? बोले तो

0: देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042। विजिट filminukkad.com।
1: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहाँ पहुँचे सभी वहीं पहुँचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
2: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
3: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129। 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888, दैट्स 9054608888।
2: सर्विंग फ्रॉम 2 लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
4: क्या आपके होम एंड ऑटो इंश्योरेंस के रिन्यूअल का टाइम आ गया है? क्या आप गुड रेट्स में एक सही कवरेज ढूंढ रहे हैं? तो कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑलस्टेट की मिसी सागर साउथ एजेंसी एट 6474535353। दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस पर $2,029 तक की सेविंग्स कर सकते हैं। सिमरन बेंस एंड ऑलस्टेट के साथ आप हैं इन गुड हैंड्स। कॉल सिमरन बेंस एट 6474535353, 6474535353।
5: And yes, even for one car and a home, $400 to $500 की annual savings possible. Call Simran Benz 6474535353.
6: Another Don clean with the Don Ducks.
7: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
8: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
7: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
8: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
7: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
8: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
7: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
6: Dawn Platinum, the better grease getter.
1: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं।

0: For any information, call Sarab Sabarwal 647-864-8844. That's 647-864-8844.
1: Or visit teamsabarwal.com.
2: Your search ends here.
3: नॉर्थ अमेरिका का सब तो वड्डा माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर।
1: यहाँ से आपको ढाका चुन्नी मेहंदी जागो मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा। 30 मेलेनी ड्राइव यूनिट 9 & 10 ब्रैम्पटन। टेलीफोन 905-799-9400।
4: माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर।
5: डॉन वैली नॉर्थ हंडे पे हो रही है जबरदस्त हंडे संडे की अल्टीमेट सेविंग सेल ऑन मई 24th। इन्वेंटोरी पर ह्यूज बोनस ऑफर्स, डील्स इतनी जबरदस्त की मिस नहीं कर सकते। संडे मई 24th को अपने कैलेंडर में मार्क कर दो। डॉन वैली नॉर्थ हंडे पर हमारी टीम बात करती है हिंदी, उर्दू, पंजाबी और तमिल में। विजिट करिए डॉन वैली नॉर्थ हंडे .com, वुडबाइन एव और डेनिसन स्ट्रीट।
6: You are tuned into CMR at 5 PM with RJ Swati on Filmy Nukkad. It's the free time.

0: through the midfield.
1: Don Valley North Hyundai आपको दे रहा है मौका FIFA World Cup 2026 के टिकट्स जीतने का. कोई भी व्हीकल बाइकर के घर ले जाएं और पाएं डबल एंट्रीज. Winter tires या extended warranty लें और हर एक के साथ पाएं एक extra entry. आज drive करें, कल जीते. Visit DonValleyNorthHyundai.com today. A proud member of Vane's Auto Group.
2: FIFA के टिकट चाहिए घर तो जाए Don Valley North Hyundai पर. अब पूछो वहाँ क्यों? उन्होंने खूब समझाया हम सबका मन. अब देखो ना, FIFA के टिकट्स लेना कोई छोटी बात थोड़ी है. मारा मारी हो रखी है भाई टिकट्स की. मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लग रहा है उन टिकट्स का हाथों में आना. ऊपर से बजट के बाहर उनकी प्राइसिंग फॉर साधारण इंसान है ना. पर Don Valley North Hyundai के साथ ये हो सकता है आसान. अब पूछे कैसे? एक बैलेंस है उनका जिसमें एंट्री आपको करनी होगी बस टिल May 31st, दैट्स अ डेडलाइन. और फिर ड्रॉ होगा जून में. जिनके नाम निकला है उनको मिल जाएंगे टिकट्स FIFA के. अगर आप मुझसे कोई भी Hyundai कार लेते हैं ना तो दो टिकट्स जीतने के लिए आपको ड्रॉ में दो नाम डालने होंगे बैलेट में. अगर विंटर टायर्स लेते हैं विद स्टोरेज तो एक नाम एक टिकट के लिए डाल पाएंगे. या फिर कोई एक्सटेंडेड वारंटी ले लेते हैं तो भी एक नाम फॉर वन टिकट आप लकी ड्रॉ बैलेट में डाल पाएंगे. देखिए ऐसे नहीं तो वैसे क्या आपको FIFA टिकट्स मिल पाते हैं? और Don Valley North Hyundai ने तो अपनी कोशिश आपके सामने रख दी है आपको जिससे टिकट्स मिल पाए. अब आपको करने अपने प्रयास. जल्दी जाएं एट Don Valley North Hyundai Woodbine Avenue Markham. फिर होंगे आम के आम और कटली के दाम.

0: चले।
1: अगर देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042। विजिट filminukkad.com।
2: ये वो टाइम ऑफ द ईयर है जिसका आप वेट कर रहे थे। डेमोन्स्ट्रेटर इवेंट एट डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस, मई 16th तक। लीज रेट एज लो एज 2.9% अप टू 24 मंथ्स। Select demo vehicles per savings up to $4,989 included. Best selection ke liye Don Valley North Lexus jaldi visit kare. Jaldi kare. Offer ends May 16th. Visit DonValleyNorthLexus.com today. A proud member of Vane's Auto Group.
1: मेरे रेगुलर किराया देने से प्रॉपर्टी मेरे लैंडलॉर्ड की मॉर्गेज फ्री हुई और मेरे अपने घर का सपना वो सपना ही रह गया।
3: अब वक्त है अपने घर का सपना साकार करने का। मैं हूँ संजीव मनोचा, ब्रोकर ऑफ रेकर्ड माय रियल को, द रियल एस्टेट कंपनी। पिछले 20 सालों में मैंने सैकड़ों फर्स्ट टाइम बायर्स को उनके बजट और जरूरत के हिसाब से घर खरीदने में हेल्प की है। अब बारी आपकी। कॉल मी नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एंड स्मार्ट बायर्स रिवॉर्ड प्रोग्राम एट 416-843-7600।
1: दैट्स 416-843-7600 और विजिट माय रियल को .com.
4: Another Don clean with the Don Ducks.
5: Oh, he's doing dishes with Don Platinum.
6: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
5: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
6: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
5: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
6: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
5: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
4: Don Platinum, the better grease getter.
1: विंटर्स में हमारे व्हीकल्स थोड़ी एक्स्ट्रा केयर मेंटेनेंस मांगते हैं और उसके लिए गो टू माय मैकेनिक ऑटो एंड टायर। सभी तरह की मैकेनिकल रिपेयर्स और टायर सर्विसेज के लिए अब वहाँ किसी भी ऑयल चेंज और सर्विसेज के साथ गेट अ कॉम्प्लीमेंट्री विंटर मेंटेनेंस इंस्पेक्शन। गेट अ $20 ऑफ ऑन ऑल सिंथेटिक ऑयल चेंज सर्विसेज। मिशलिन टायर्स के ऑथराइज्ड डीलर हैं ये, एंड यू कैन गेट अप टू $150 रिबेट जब आप 4 नए टायर्स खरीदते हैं। इंश्योरेंस से ये डायरेक्ट डील करते हैं। विजिट देयर मार्कहम स्टोर एट मिडलैंड एंड स्टील्स और स्कारब्रो स्टोर मिडलैंड एंड एल्समियर। For details, visit mymechanicauto.ca. Tune in to your favorite radio in GTA. CMR 101.3 FM.

ब्यूटिफुल से लिरिक्स, और ये गाना मुझे इसीलिए भी खास बहुत पसंद है, बहुत ही रिलेटेबल एट ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ। और लिरिसिस्ट हैं योगेश। इनके गाने ना बहुत ही उलझुलझी बातों और फीलिंग्स को बहुत ही सरल सीधे तरीके से कह डालते थे, एंड दैट वॉज द खूबी। वो खुद ये कहते थे कि जो देखता हूँ जीता हूँ वही लिख देता हूँ, अपने आसपास के लोगों को जिंदगी को ऑब्जर्व करता हूँ और लिख देता हूँ। कहते हैं जब फिल्मों में उन्हें काम नहीं मिला था ना, तो फर्नीचर शॉप पर वो काम करने लगे और मालिक से ये कह दिया कि देखो प्लीज़ किसी को पता ना चले। पर तब उनके जो बेस्ट फ्रेंड हैं जिनका नाम सत्तू बताया जाता है, उन्हें पता चल गया, एंड ही केम एट द स्टोर। और तब योगेश जी से लिपट कर वो खूब रोए कि यू आर मेड टू राइट, सिर्फ लिखो, ये सब मत करो। अ फ्रेंड हु बिलीव्स इन यू, वो लकी थे मेरे ख्याल से कि ऐसा दोस्त उन्हें मिला। और तब योगेश जी के सहन में जब वो लिपट कर रो रहे थे ना, कुछ ऐसे ख्याल आए जो बाद में इस फेमस गाने का हिस्सा भी बने, कि कभी तो ये दिल कहीं मिल नहीं पाते और कहीं से निकल आते जन्मों के नाते, है ना। आनंद, रजनीगंधा, छोटी सी बात, इन सभी फिल्मों के जो स्लाइस ऑफ लाइफ वाले गाने हैं, दे विल ऑलवेज बी इन आर हार्ट्स लाइक योगेश जी विल। This is Swati signing off for now, leaving you with this one of the gem of his writings.

0: घर खरीदने के लिए ये बेहतरीन वक्त है। इस बायर्स मार्केट में अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो टीम भट्टी से राब्ता कीजिए। सही मशवरा और प्रोफेशनल सर्विसेज, कॉल अरशद भट्टी 416-300-5600 या तलहा भट्टी 647-295-7861। फॉर ऑल योर रियल एस्टेट नीड्स कॉल टीम भट्टी 416-300-5600 और 647-295-7861।
1: If you are involved in a car accident or a slip and fall, you can speak to a lawyer directly. Call Muhammad Alam, barrister at law and personal injury lawyer at Alam Law Office. No fee unless he wins your case. For free advice, call 416-625-2636. That's 416-625-2636.
2: अपने मकान की next month closing है, कुछ सोचा है टीवी और अप्लायंसेस कहाँ से लेने हैं?
3: हाँ, Brampton TV and Appliances, जहाँ special sale चल रही है, TV, fridge, washer, dryer, kitchen range और microwave सारा कुछ मिल जाएगा बहुत ही reasonable price पे।
2: सेल तो अब चल रही है पर हमें चाहिए नेक्स्ट मंथ।
3: आज के रेट हम लॉक भी करवा सकते हैं।
2: दैट्स वंडरफुल।
3: वहाँ से सेल फोन और इंडिया भेजने के लिए 220 वोल्ट का सारा सामान भी मिल जाएगा।
2: ब्रैम्पटन में ये कहाँ पे है?
3: ऑन बवे जस्ट वेस्ट ऑफ मैक्लॉगलन। टेलीफोन 905-450-2828 और विजिट BramptonAppliances.ca।
0: सिटी ऑफ ब्रैम्पटन शहरियों को 7 जून दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक गेज पार्क ब्रैम्पटन में ईद की खुशियों में शामिल होने की दावत देती है। इस फैमिली फ्रेंडली तकरीब में बच्चों के लिए फ्री एक्टिविटीज, लाइव कल्चरल परफॉर्मेंसेज, दिलचस्प खेल और हलाल फूड के स्टॉल्स होंगे। मेहमानों से गुजारिश है कि वो मकामी तंजीमों की सपोर्ट के लिए नॉन पेरिशेबल फूड आइटम्स या नए अनरैप खिलौने लेकर आएं। मजीद मालूमात के लिए brampton.ca/eid पर लॉग इन हों। अलकरम ज्वेलर्स। अगर आपको दुबई और मिडिल ईस्ट जैसे जेवरात की तलाश है तो अब आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे के स्टोर पर तशरीफ लाइए अलकरम ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के बेहतरीन सेट्स। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर पर मौजूद मिलेंगे। आज ही विजिट कीजिए अलकरम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। 9058280009। It's 905-828-0009। Your login ho alkaramjewelers.ca। Alkaram Jewelers, farmaish aapki, guarantee hamari।

0: तलावट्टी को कॉल मिलाएं।
1: तलावट 6472957861 प्रीकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टीज स्पेशल पैकेजेस फॉर फर्स्ट टाइम होम बायर्स अ मेंबर ऑफ डेडिकेटेड रियल एस्टेट प्रोफेशनल टीम तलावट 6472957861
0: को कॉल मिलाएं।
1: तलावट 6472957861
2: याद रखें, अगर आप किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस में चार्ज हो गए हैं या आपको कोई भी फैमिली लॉ का मसला है जैसे कि प्रॉपर्टी डिवीजन, स्पाउसल सपोर्ट, चाइल्ड कस्टडी एंड एक्सेस या आपका कोई सिविल लिटिगेशन का मामला है, कम्युनिटी के जाने पहचाने और तजुर्बेकार लॉयर ताहिर मजीद से राब्ता कीजिए 6478384773। कानूनी मामलात के लिए उनसे राब्ता कीजिए जो कानून को मुकम्मल तौर पर जानते हैं। फॉर ऑल योर लीगल मैटर्स कॉल ताहिर मजीद 6478384773।
3: बहुत खुशबू आ रही है खाने में, ऐसा लग रहा है जैसे घर के पिसे हुए मसालों से बना हो। अरे खुशबू कैसी नहीं होगी, ये हांडी के मसालों का कमाल है जो चुन चुन के इकट्ठे किए गए हैं खास हमारे लिए ताकि ये लज्जत और स्वाद हमें मिल सके।
4: हांडी मसाले, बिल्कुल घर जैसा स्वाद।
5: फॉर होलसेल इंक्वायरी कॉल 4167465550 7465550।
2: अगर आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को कनाडा बुलाना चाहते हैं तो शहबाज अकबर उनकी इंतहाई प्रोफेशनल टीम आपको मुकम्मल कंसल्टेंसी फराहम करेंगे। अगर आप रेफ्यूजी क्लेम करना चाहते हैं या इमिग्रेशन रेफ्यूजी बोर्ड में किसी भी किस्म के अपील करना चाहते हैं, बिजनेस इमिग्रेशन अप्लाई करना हो, स्किल्ड वर्कर क्लास हो, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, स्टूडेंट वीजा या सुपर वीजा अप्लाई करना चाहते हो या फिर फैमिली स्पॉन्सरशिप, तो हमारी एक्सपर्ट टीम आपकी मुकम्मल रहनुमाई करेगी। दो लोकेशन से आपको सर्व करते हैं, ईस्ट में मार्कम एंड शेपर्ड, वेस्ट में हाईवे 10 और स्टील्स का इंटरसेक्शन। अभी रब्ता कीजिए 4168559464। शहबाज अकबर साहब के रब्ते के नंबर 4168559464। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन।
6: टोरंटो तैयार हो जाओ, सबसे ज्यादा इंतजार करने वाली फैमिली इंटरटेनमेंट नाइट इनाम घर कनाडा 28 जून को, जिसमें शामिल हैं मजेदार डिनर, दिलचस्प गेम, बड़े इनाम और लाइव कॉन्सर्ट। टिकट सिर्फ $25, 10 जून के बाद $39। बुकिंग के लिए अभी कॉल कीजिए 4167106777। ई ट्रांसफर inamgharcanada@gmail.com।
2: कर्ज इंसान का जहनी सुकून छीन लेता है, अगर आप कर्ज के बोझ से परेशान हैं तो ऑल डेट सॉल्यूशन के एम सिद्दीक से राबिता कीजिए 4166710577। जीटी भर में चार लोकेशन से आपको सर्व करते हैं, मुकम्मल राजदारी और फीस आपके केस के सेटल होने के बाद लेते हैं। केस देखने के बाद मुकम्मल गारंटी के साथ आपको बताएंगे कि कितने फीसद तक कर्ज माफ हो सकता है और फिर सूद से पाक आसान अकसात में आप अदायगी कर सकेंगे। कलेक्शन कॉल आना हो जाएंगी बंद और आपकी परेशानियां हो जाएंगी।

0: एतमाद के साथ कॉल कीजिए 416-671-0577।
1: The best gourmet pizza with best prices, Pizza Pop, 3075 Ridgeway Drive, Mississauga, or visit pizzapop.ca. Family के साथ dine in करें या take out. बच्चों और बड़ों सभी की पहली choice Pizza Pop. लजीज और मजेदार तंदूरी chicken pizza, cheese steak pizza, chicken shawarma pizza. Exclusive family offer: large tandoori chicken pizza, large cheese pizza, two dipping sauce, three cans of pop for $24.99 only. For more information and take out order, call 905-828-0985. It's 905-828-0985. Pizza Pop, 3075 Ridgeway Drive, Mississauga.
2: अपने खुश के लम्हात को यादगार बनाएं। आइकॉन इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कारपोरेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए तीन खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं, जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं। तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं। इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन्स, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन, 6887 डिक्सी रोड, मिसिसागा, एम्पल पार्किंग और क्लोज टू हाईवेज। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 437-425-2500 और ब्रॉम्पटन में क्वींस मैनर इवेंट सेंटर 2 ऑक्शन लेन ब्रॉम्पटन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 416-814-3600 क्वींस मैनर इवेंट सेंटर।
3: Sirf mortgages. That's Rajiv Talwar, the mortgage superstar. Mortgage residential, low ya commercial, for customized mortgage solutions, choose Rajiv Talwar. Mushkil se mushkil mortgage ho, last minute deal ho, ya phir credit issues ho. Rajiv Talwar ka wasi ilm aur tajurba aapka kaam aasan kar dega. To yaad rakhiye, mortgage unse mat lijiye jo mortgage bhi karte hain, balki mortgage sirf unse lijiye jo mortgage hi karte hain. Call Rajiv Talwar of leading edge mortgage experts 905-819-1001. 905-819-1001. License number 12374.
4: Assalamu alaikum. You are listening to Radio Pakistan Toronto.
5: Radio Pakistan Toronto, CMR 101.3 FM. Studios mein aapke number 416-593-0003. Ek baar phir aapko le chalenge Mida Furniture Wholesale Gallery. Aur janab London, Ontario ki kal opening hone ja rahi hai inki location ki 3075 Wonderland Road South Unit D. Aur panchon location ke liye main bhi char kahe gaya. Panchon location hai inki Mississauga, Brampton, Scarborough, Cambridge, London, Ontario. 416-901-2810. MidaFurniture.com inki website hai. Bahut special kal ke liye bahut zabardast deals hain. Aur agar aapka is waqt hai to लंदन ओंटारियो चले जाइए। आप जनाब बहुत से रिफ्रेशमेंट्स भी हैं और आपके लिए बहुत से तोहफे भी हैं। मेरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार फिर उन्हें हम खुश आमदीद कहेंगे। मेरा साहब वेलकम यू अगेन सर।
6: हाँ थैंक यू भट्टी साहब, और जैसे आपने कहा कि ग्रैंड ओपनिंग की पूरी लहरें बह रही हैं, लंदन में मैं हूँ। देखो आज ही बहुत सारे परिवार फैमिलीज आई हुई हैं, बहुत अच्छा लगता है ये प्यार पाके, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और हमने भी कम्युनिटी का, क्योंकि हर बहन भाई का, देखो मैं भी, हम सभी भी जब शुरुआत करी तो मतलब किसी दोस्त से भी सोफा लिया होगा और फिर सस्ते वाला लिया होगा, फिर आज ऊपर वाले की कृपा से अच्छा भी लिया होगा। तो हमने ना हर सेगमेंट का, मतलब हर बहन भाई का, कोई भाई ना भाई, कोई बहन भाई इमिग्रेंट आया है, किसी बच्चे ने अभी शुरुआत करी है, या जो बहन भाई कहते हैं ऊपर वाले की बरकत है, वो माइकल अमीनी के भी मतलब हमने रखे हैं। तो मैं डील देने जा रहा हूँ, एक सोफा, लव और चेयर, तीन पीस हम लाए हैं। और उसमें वैसे सस्ते भी आते हैं भट्टी साहब, वो मतलब 799 के भी होते हैं, पर मैं जब बहन भाई कहता हूँ चले ही ना, जो 6 महीने के अलावा जो साल के बाद खराब ही हो जाए तो 800 लगाने का फायदा क्या। तो हमने इम्प्रूवमेंट करके 999 में परफॉर्मेंस फैब्रिक लगा दिया, ताकि अगले 5-7 साल आपके खराब ही नहीं हो।
5: बिल्कुल,
6: अगर आप प्राइस पॉइंट ढूंढ रहे थे, सोफा भी, लव सीट भी, चेयर भी, कंडीशन यही है कि आपको तीनों पीस इकट्ठे लेने पड़ेंगे। तो मैंने कंटेनर ही ले लिया और कॉस्ट पे लगा दिया। तो कनेडियन मेड में तो मिड्डा फर्नीचर की कहते भी, मैं वैसे कहते नहीं घमंड ना हो जाए, मान है कि हमें वो वॉल्यूम जो हम लेते हैं, 599 का सोफा, सारी उम्र फ्रेम खराब नहीं होता, हार्ड फोम डाली हुई है। और आपको फिर एक और मजे की बात है, ग्रैंड ओपनिंग खुशी में दूसरी लोकेशन पे भी चार मॉडल की चॉइस दे रहा हूँ, चार मॉडल की चॉइस भी दे रहा हूँ, ताकि किसी बहन को वो लगता है कि ये राउंड आर्म नहीं चाहिए थी, स्ट्रेट वाली नहीं चाहिए थी, डिजाइन ये चाहिए था, फैब्रिक ये चाहिए थी, वो भी कर रहे हैं। एशले फर्नीचर के 5 मॉडल आपको दे रहा हूँ, 599 के दे रहा हूँ, वो भी सोफा आपको दे रहा हूँ। हमने मेपल वुड के बेड एड करे, और जो MDF जैसे हार्डवुड भी कहते थे भट्टी साहब, तो हार्डवुड में सारे बहन भाइयों को पता है कि जो रेलिंग होती थी ना वो खराब हो जाती थी, रेलिंग वो ऐसे पहिए से लगे होते थे, कुछ आपने थोड़ा भारी रखा और टूट जाता था मतलब अपने। तो हमने एक्सटेंशन ग्लाइडर बोलते हैं स्टील के, मतलब एक दो ड्रॉर को $24 के लगते हैं, आपसे प्राइस हमने मैन्युफैक्चरर को निचोड़ा है कि आप भी कॉस्ट पे दो हम भी कॉस्ट, आप आके देखेंगे तो प्राइस थोड़ी सी तो वो जो मतलब जो 799 का था वो 899 का हुआ, जो होना चाहिए था 1299 का, लेकिन उसकी क्वालिटी अगले आप फिर 10 साल 15 साल 20 साल बेड खराब नहीं होगा आपका मतलब अपने, तो वो हमने कोशिश करी है कि मेरे बहन भाइयों के घर में फर्नीचर उम्दा क्वालिटी का जाए, लंबा चलने वाला जाए, और जो प्राइस देखें बड़े कारपोरेट स्टोरों से तो उनको 30-40% बचत भी हो। टॉप ग्रेन लेदर की बात हमने पिछले लिंक में करी, टॉप ग्रेन लेदर जो है वो आपको सोफा आपके घर में 1299 का और 1399 में ऑल ओवर लेदर की मैं बात कर रहा हूँ, 7 कलर की च्वाइस भी कर रहा हूँ जो आपको सेक्शनल चाहिए या एशले के, तो कोई मॉडल नंबर आप ट्राई करके आए। हाँ, कुछ एक्सक्लूसिव मॉडल लिखे होते हैं वो हमारे पास नहीं होते क्योंकि उन्हीं कोई एक्सक्लूसिव वाला वो होते हैं, लेकिन बिना एक्सक्लूसिव के लिखा हुआ आप ही प्राइस पता करके ले आए और ये सोच के आ जाए कि भाई के 100 रुपए 10-30% और सस्ता मिल जाएगा, जो कंटेनर में आता होगा वो 30% सस्ता होगा, नहीं तो 12-10 जी मेरे मुझे भी 10 ही रटा हुआ है, 12% सस्ता होगा। अब तो 5 लोकेशन हो गई है और हमने जो गिफ्ट आपको दे रहे हैं, गिफ्ट हमारे फ्लायर पे देख लें कि जैसे 500 की परचेज तक, फिर 1000 के बाद वाली परचेज तक, फिर 2000 के बाद वाली पर, और 3000 प्लस पे तो दो गिफ्ट दे रहे हैं $500 रिटेल वैल्यू में, रिटेल वैल्यू बोल रहा हूँ, हमें भी 3-350 के तो आते ही होंगे। तो अगर आप कहोगे नहीं भाई हमें तो चाहिए ही नहीं, आपको वो कैश बैक भी वापस कर देंगे। तो हमें आपको बहन भाई वाला रिश्ता बनाना ना मटी साहब, कि 500 वाला सुना 500 के रहे आते तो होंगे ना 380 के आसपास हमें भी, तो 380 अगर आप नहीं लेंगे तो वाई नॉट, हम तो स्पेंड कर ही रहे हैं आश्रय से भी, आश्रय को भी पे करके ले रहे हैं, आप बहन भाइयों को कम करके दे देंगे। तो हम चाहते हैं कि गिफ्ट भी आपको घर पहुंचे, अगर आपको नहीं चाहिए कई बार रग नहीं चाहिए कई या कुछ और आपको इक्वलेंट अमाउंट का चाहिए तो वो दे देंगे, नहीं चाहिए तो पैसे कम करके दे देंगे, तो तभी तो रिश्ता बनेगा, तभी तो हमारा बना हुआ है। हॉनेस्टी को आप सराहते हैं, मुझे भी रेडियो पे अच्छा लगता है कि जो दिल में है वही जुबान पे आए, तो क्योंकि कोई हेरा फेरी गिमिक्स से दूर हमने रहा रहे हैं, परमात्मा ऐसे ही हमें बना के रखे कि हम भी आप भी ऐसे सराहते रहें, आप भी ऐसे अप्रिशिएट करते रहें और हम भी आपकी दिखाई हुई राह पे चलता रहें। तो मिड्डा फर्नीचर और भट्टी साहब ने मुझे कहा था कि ईद की सेलिब्रेशन तो ट्यूसडे से लेके पूरे वीकेंड तक रहेगी, तो दोबारा से भट्टी साहब आपको आपके परिवार को, और मैं ये कहूंगा ये आपका और मेरा दोनों का एक्सटेंडेड फैमिली है जो हमारे सुनने वाले, जो भट्टी साहब आप मेरे साथ
5: जी जी बिल्कुल ऑफ कोर्स,
6: क्योंकि जो आपके जितने भी सुनने वाले हैं तो मैं कह रहा हूँ हम और आप भाई हैं, हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है। आपको बहुत बहुत ईद की शुभकामनाएं, ऊपर वाले से यही दुआ कि आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और अपने बच्चों के साथ आपका प्यार बना रहे और हमारे साथ भट्टी साहब और हमारे साथ भी आपका ये बड़े सालों का जो प्यार बना रहे इसको नजर ना लगे, ये प्यार और बढ़े, ये रिश्ता और गूढ़ा हो। मेरा उर्दू पंजाबी हिंदी थोड़ा मिक्स हो जाता है, तो ये रिश्ता और गूढ़ा हो और स्ट्रांग हो। और भट्टी साहब मैं तो ऑलवेज आपकी अम्मी को यहाँ से सलाम करता हूँ, पुत्र हर कार्यक्रम में सारी दुनिया ने जोड़ के रखे,
5: बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच मेरे साहब, बहुत शुक्रिया। और आपको भी मुबारकबाद 5th लोकेशन की, और मतलब सामने अगर लंदन ओंटेरियो के करीब हैं और कल आपका इस वक्त है तो ज़रूर आप तशरीफ़ ले जाइए, और लंदन ओंटेरियो की लोकेशन की 3075 वंडरलैंड रोड साउथ यूनिट डी है, नंबर एक ही है 4169012810। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM, हमारे स्टूडियोज़ में रबता के नंबर 4165930003। वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जो है अमेरिका में हैं, ईद उन्होंने वहीं मनाई और वाशिंगटन में उन्होंने अमरीकी हमनसब मार्को रूबियो से मुलाकात की है। दफ्तर ख़ारजा के तर्जमान के मुताबिक दोनों रहमानों ने पाक अमरीका दो तरफ़ा ताल्लुकात मस्बत पेशरफ्त और इत्मीनान का इजहार किया है, बदलते इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया है, तजारत सरमाकारी समेत दीगर शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात बढ़ाने और सिक्योरिटी दहशतगर्दी के खात्मे पर दो तरफ़ा तआवुन मनसूबा मजबूत बनाने पर भी इतफाक़ किया है। दोनों रहमानों ने पाक अमरीका शराकत दारी को आगे बढ़ाने पर भी इतफाक़ किया। एक तरह का ये सब्जेक्ट, एक ही तरह की ये जो है प्रेस रिलीज़ होती है, वही चीज़ें होती हैं, दोस्ती शराकत दारी बला बला, लेकिन बहरहाल गुफ्तगू ज़ाहिर है इन चीज़ों में भी होती है, लेकिन फ़िलहाल तो ईरान और अमेरिका वाले मामलात हैं जो हर जगह जारी हैं। आज जो है वो अहम ऐलान सदर ट्रंप ने तो किया, लेकिन उसके बाद अभी तक सूरत अलवाज़े नहीं हुई है, क्योंकि उनका जो इजलास था वो किसी नतीजे के बगैर जो है वो ख़त्म हो गया। ख़बरों के बाद इस हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियोज़ में रबते के नंबर 4165930003, रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM में आपको होस्ट और दोस्त अरशद भट्टी हूँ।

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए। मिठाइयाँ ऐसी कि मजा आ जाए।
1: राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: Global Travel and Tours.

0: स्पेशल पैकेज डील के लिए कॉल करें 9052753555 9052753555
1: 918 डंडा स्ट्रीट ईस्ट यूनिट 1C मिसिसागा बटकराही की पिकरिंग लोकेशन में आपके लिए 6 जून से हलवा पूरी का स्पेशल नाश्ता ऐसा जायका जो आपने पहले कभी चखा ही ना हो इसके अलावा बटकराही की रिवायती कड़ाही गोट पाए निहारी खोए वाले चने स्मोकी कीमा बटर और सेसमी नान लस्सी और बेशुमार आइटम्स केटरिंग के लिए स्मॉल और लार्ज ट्रेज अवेलेबल हैं जिसमें आपके पसंद की बेशुमार डिशेस रेस्टोरेंट के साथ 150 लोगों तक की पार्टी के लिए बैंक्वेट हॉल जिसमें मेहंदी बर्थडे वेडिंग फैमिली या कॉर्पोरेट इवेंट्स अरेंज किए जा सकते हैं बुकिंग के लिए अभी कॉल कर लें बटकराही 820 किंगस्टन रोड पिकरिंग 9058390002 बटकराही जहां 6 जून से हलवा पूरी का स्पेशल नाश्ता
2: SSR ऑटो सर्विस 921 पेप एवेन्यू साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ पेप एंड मार्टिमोर हर किस्म की गाड़ियों की जर्नल और इलेक्ट्रिकल रिपेयर के लिए तशरीफ लाइए ऑयल चेंज टायर चेंज लाइट रिपेयर ब्रेक सस्पेंशन मफलर सर्विस इंजन सर्विसेज इसके अलावा सेफ्टी इंस्पेक्शन 3D लेजर अलाइनमेंट के साथ साथ न्यू और यूज टायर्स भी अवेलेबल हैं ड्राइव थ्रू मेंटेनेंस और नमाज की सहूलत भी मियां अशरफ साहब या नबील अशरफ साहब से राब्ता कीजिए 416-466-8782 416-466-8782 टोरंटो में 23 साल से 24/7 खुलने वाली वाहिद शॉप SSR ऑटो सर्विस 921 पेप एवेन्यू
3: डॉक्टर फयाज अहमद कुरैशी एंड एसोसिएट्स अब मिसिसागा के बाद स्कारब्रो में 2155 लॉरेंस एवेन्यू ईस्ट लॉरेंस और ब्रिजमाउंट का इंटरसेक्शन 416-757-9999 दांतों की कोई भी बीमारी हो आप एतमाद के साथ डॉक्टर फयाज अहमद कुरैशी और उनकी तजुर्बाकार टीम की प्रोफेशनल सर्विसेज का फायदा उठाइए तमाम इंश्योरेंस प्लान एक्सेप्ट करते हैं इंश्योरेंस ना रखने वालों के लिए स्पेशल डिस्काउंट रूट कैनाल ट्रीटमेंट और री ट्रीटमेंट के स्पेशलिस्ट हैं मिसिसागा लोकेशन 1110 ब्लूर स्ट्रीट ईस्ट ब्लूर और डिक्सी के इंटरसेक्शन 905-232-5678
4: बारबेक्यू टुनाइट की दूसरी लोकेशन 5165 डिक्सी रोड डिक्सी और एमको का इंटरसेक्शन मिसिसागा में 200 से ज्यादा लोगों की गुंजाइश बड़ी पार्टीज भी आप अरेंज कर सकते हैं बारबेक्यू आइटम्स बिहारी कबाब सीख कबाब कड़ाही बिरयानी ताजा नान और बेशुमार डिशेज जायका वही और खूबसूरत सेकंड लोकेशन पार्टीज की बुकिंग या मालूमात के लिए कॉल कीजिए 9052829868 बारबेक्यू टुनाइट की सेकंड लोकेशन 5165 डिक्सी रोड डिक्सी और एमको का इंटरसेक्शन मिसिसागा में 9052829868
5: जनाब आज के प्रोग्राम को ग्लोबल ट्रैवल टूर भी स्पॉन्सर करते हैं और कमल रशीद साहब इस वक्त सऊदी अरब में हैं वो अगले हज के लिए वहाँ पे कुछ अरेंजमेंट्स हैं वो देख रहे हैं तो आज उनसे हमारा रब्ता नहीं हो सका तो दुनिया में आपको कहीं भी सफ़र करना हो बड़ी तमाम बड़ी एयरलाइंस के कंसोलिडेटर हैं इसके साथ साथ अंडर वन रूफ आपके लिए इमिग्रेशन की सर्विसेज भी हैं कौंसलेट सर्विसेज भी हैं और मनी ट्रांसफ़र की सर्विसेज भी हैं हज उम्र के स्पेशल पैकेजेज़ हैं इनके पास आप नंबर नोट कर लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो 9052753555 बट कड़ाही की पिकिंग लोकेशन पर हलवा पूड़ी के नाश्ते का आगाज़ हो रहा है 6 जून से और ज़बरदस्त किस्म की हलवा पूड़ी है अली भाई कहते हैं कि ऐसा जायका आपने चखा नहीं होगा तो आप तशरीफ़ ले जाइए बट कड़ाही की पिकिंग लोकेशन 820 किंगस्टन रोड पिकिंग 9058390002 9058390002 24 घंटे माइन शादा बड़ी पाकिस्तान .fm पर सुन सकते हैं हमारा टेलीविजन चैनल है टोरंटो 360 TV रेसेट के वाले से कोई सर्विस चाहिए टीम भट्टी से रब्ता कीजिए कॉल तला भट्टी 6472957861 6472957861 लिए चलेंगे आपकी न्यूज़ की तरफ जो पेश करें जनाब जुबैरुद्दीन साहब
6: You're listening to CMR FM 101.3
7: न्यूज़ के लिए हमें तावन दिया है अंजुम कुरैशी साहब ने
8: खुदा न करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो न सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूं और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है आज ही मुझे कॉल करें आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है 416-570-0157 416-570-0157
9: न्यूज के लिए तावन देते हैं आइकॉन इवेंट स्पेस 6887 डिक्सी रोड मिसागा डिक्सी डेयरी के इंटरसेक्शन 3 खूबसूरत हाल 1200 तक अफराद की गुंजाइश एम्पल पार्किंग अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाइए आइकॉन इवेंट स्पेस के साथ मजीद मालूमात के लिए कॉल कीजिए 4374252500 इट्स 4374252500 आइकॉन इवेंट स्पेस
10: न्यूज के लिए दावत दिया है टीम भट्टी रियल स्टेट फॉर ऑल योर रियल स्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 6472957861 6472957861
11: बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम ये रेडियो पाकिस्तान टोरंटो है अब आप जुबैरुद्दीन से खबरें सुनिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जंगबंदी में तौसी के बारे में हतमी फैसला करने के लिए आज अपने मुशीरों के साथ मीटिंग की है ताहम इस मुलाकात का नतीजा अभी तक वाज़ेह नहीं है इस मुलाकात से कबल उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि मुज़ाकराती मुहिदा इस बात को यकीनी बनाएगा कि ईरान आबनाए हुरमुस को दोबारा खोले और कभी भी जौहरी हथियार हासिल न करने का अहद करे उन्होंने ये भी कहा था कि ईरान के अफजूदा यूरेनियम के ज़खायर को ज़मीन से बाहर निकालकर तबाह कर दिया जाएगा दूसरी जानिब ईरानी हुकाम ने इस बात पर जोर दिया है कि मुआहदे के मुसवदे में फीस वसूल किए बगैर आबनाए हुरमुस को खोलना और ना ही जौहरी मवाद को तबाह करने का अहद शामिल है इससे पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि वो आबनाए हुरमुस की नाकाबंदी ख़त्म कर रहे हैं और वहाँ फंसे हुए जहाज़ और उनका अमला घर वापसी की तैयारी करें ईरान से मुज़ाकरात के हवाले से अपनी एक पोस्ट में उनका कहना था कि तेहरान के साथ ताहुक्म सानी पैसों का कोई तबादला नहीं होगा जबकि दीगर कम अहमियत के हामिल निकात पर इत्तेफाक हो गया है